0: साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है। उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। उस रोज लोग मुतफर्रिक हालत में पलटेंगे ताकि उनके आमाल उनको दिखाए जाएं और जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बदी की होगी वो उसको देख लेगा।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक गांव में एक शरारती लड़का रहता था, जिसका नाम अली था। अली अपने वालिद के साथ एक खेत में रहता था, जहां वो गायें, बकरियां और दीगर जानवर पालते थे। भाई, अली को तो शरारतें करने का बहुत शौक था और अक्सर वो गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन अली के जहन में एक अजीब ख्याल आया। वो सोचने लगा कि गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो अपने खेत के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मदद करें, भेड़िया भेड़िया मेरे खेतों में घुस आया है। गांव के लोग ये सुनकर परेशान हो गए और दौड़ते हुए अली के खेतों में पहुंचे। वो अपने साथ डंडे और दीगर औजार लेकर आए ताकि वो भेड़ियों को भगा सकें। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि ना कोई भेड़िया था और ना ही कोई खतरा। बस वहां अली खड़ा जोर जोर से हंस रहा था और कहने लगा, आप सबको तो मैंने आज भी बेवकूफ बना दिया, यहाँ कोई भेड़िया वेड़िया नहीं था। गांव वाले बहुत गुस्सा हुए, लेकिन वो सोचने लगे कि चलो जाने दो, बच्चा है, इसलिए उन्होंने उसे माफ कर दिया और वापस चले गए। लेकिन अली कहाँ बाज आने वाला था। चंद दिन बाद अली ने दोबारा वही हरकत की। दोस्तों, वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मदद करो मदद करो। गांव के लोग अली की आवाज सुनकर दोबारा भागे और जैसे ही वो खेत पहुंचे तो एक बार फिर वहां ना कोई भेड़िया था और ना कोई खतरा। और फिर से अली साहब वहां पे कह के लगाकर हंस रहे थे, देखा आप लोग फिर बेवकूफ बन गए। गांव वाले इस बार काफी नाराज हो चुके थे और उन्होंने इस बार अली को वार्निंग भी दी कि वो दोबारा ऐसा ना करे। लेकिन अली अपनी शरारतों से कहां बाज आता था। फिर वही हुआ। चंद दिन बाद अली ने तीसरी बार वही हरकत की और फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया मदद करो। इस बार गांव वाले ये सोचने लगे कि शायद इस बार भी वो झूठ ही बोल रहा है। तो हुआ ये कि ज्यादातर लोग नहीं आए, सिर्फ चंद लोग वहां पहुंचे और उन्हें भी कोई भेड़िया नजर नहीं आया। वो तो अली पर शदीद गरजे और बहुत गुस्सा करने लगे, अली तौबा करो, हम तुम्हारी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं, अगर तुमने दोबारा हमें बुलाया तो हम कभी नहीं आएंगे। अली को ये सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी हरकतों पर हंसता रहा और खुश था कि उसने गांव वालों को इतनी आसानी से इतनी बार बेवकूफ बना दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वाकई अली के खेत में एक भेड़िया घुस आया। भेड़िया अली के जानवरों को मारने और खाने लगा। अली तो खौफ ज़दा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मदद करें, मैं सच बोल रहा हूँ, भेड़िया आ गया है, कोई तो मेरा यकीन करो, कोई मेरा यकीन करो, मेरी मदद करो। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो समझे कि अली साहब एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से किसी ने भी इसकी मदद के लिए आने की जहमत नहीं की। अली बार बार चीखता रहा लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार भेड़िया अली के कई जानवर ले गया और खेत में तबाही मचा दी। अली बेचारा बेबस होके रोने लगा। वो बहुत अफसरदा था कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब गांव वाले अगले दिन खेत पर आए तो उन्होंने देखा कि अली के जानवर गायब थे और खेत तबाह बर्बाद हो चुका था। अली ने रोते हुए कहा,
1: मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वाकई में खेतों में कोई भेड़िया घुस आएगा, लेकिन आप लोग मेरी मदद के लिए नहीं आए।
0: गांव के एक बुजुर्ग ने अली से कहा, अली बेटा, ये सब तुम्हारे झूठ की वजह से हुआ है। तुमने हमें इतनी बार बेवकूफ बनाया कि अब हम तुम पर यकीन ही नहीं कर सकते थे। ये याद रखो कि झूठ बोलने से एतमाद टूट जाता है, और जो एतमाद खो देता है वो मदद से भी महरूम हो जाता है। अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वो आइंदा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उसने गांव वालों से माफी मांगी और ये अहद किया कि वो एक ईमानदार और नेक लड़का

बनेगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक ये था कि झूठ बोलने से ना सिर्फ एतमाद टूटता है बल्कि हम दूसरों की मदद और मोहब्बत से भी महरूम हो जाते हैं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी चाहिए।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है. अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है. मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर. दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है. याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है. रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए. रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है. और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है. सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं. विदारत दाखला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.

0: क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ अमिता आपके साथ। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वेल, आज कदर ग्रीन

0: मॉन्यूमेंट पर डालेंगे जिसे किसी कंस्ट्रक्शन क्रू ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है. एक ऐसा साइलेंट गार्जियन जो सदियों से हमारी इस मिट्टी, हमारी इस रेत की हिफाजत या यूं कहें प्रोटेक्शन कर रहा है. तसव्वुर कीजिए एक ऐसा जानदार जो सिर्फ सुबह की हल्की सी ओस या यूं कहें मिस्ट पर जिंदा रहता है और 50 डिग्री की झुलसती गर्मी में भी 100 साल से ज्यादा मुस्कुरा कर खड़ा रहता है. आज का एपिसोड उस अनडिस्प्यूटेड किंग के नाम है जिसे हम द घाफ ट्री कहते हैं. ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये कतर की विरासत लेगेसी है, हमारा शील्ड है और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद है. तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम द डेजर्ट शील्ड की गहराइयों में उतरेंगे. तो जनाब, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने एक ऐसा टारगेट सेट किया है जो शायद सुनने में नामुमकिन लगे, पर हमारा डिटर्मिनेशन टोटली स्ट्रॉन्ग है, बुलंद है. प्लांट अ ट्री इनिशिएटिव के तहत साल 2030 तक पूरे कतर में 10 मिलियन पेड़ लगाने का विजनरी गोल रखा गया है. अब आप सोचेंगे कि अमिता, इतने सारे पेड़ आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पार्क्स को सुंदर बनाने के लिए है? क्योंकि ज्यादातर हमारा दिमाग वही दौड़ के जाता है. बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक जंग है डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ. जब हम अपनी मिट्टी में यहाँ के नेटिव स्पीशीज लगाते हैं तो हम सिर्फ ग्रीनरी नहीं बढ़ा रहे बल्कि कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं और अपनी नेशन की हवा को ठंडा कर रहे हैं. हर एक सैपलिंग, यूं कहें हर एक पौधा जो आज मिट्टी में जा रहा है, वो हमारे क्लाइमेट के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनेगा. हम सिर्फ बीज नहीं बो रहे, हम आने वाली नस्लों के लिए एक सांस लेने लायक कतर तैयार कर रहे हैं. तो जनाब, आज के हमारे कतर ग्रीन बीज के इस स्पेशल सेगमेंट प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट में आज हम बात करने वाले हैं स्टार की. यस, ये स्टार कोई इंसान नहीं है बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिसने कतर की मिट्टी को सदियों से थामा हुआ है. आज बात होगी द गाफ ट्री, जिसे साइंटिफिक जुबान में प्रोसिपस सिनेरेरिया कहते हैं. जब आप कतर के हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर किसी डेजर्ट सफारी पर निकलते हैं तो आपको दूर कहीं एक अकेला पेड़ खड़ा नजर आता है. तपती धूप है, चारों तरफ रेत है, ना कोई पानी का जरिया है, ना कोई सहारा है, फिर भी वो पेड़ वहां मुस्कुरा रहा होता है. कभी सोचा है कैसे? हाँ, तो आज हम इस डेजर्ट किंग की जो वो कहते हैं ना कि राज है, सीक्रेट, वो हम जानेंगे कि कैसे ये लिविंग लेजेंड अपने आप में एक लिविंग लेजेंड बना है.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. तो जनाब, अगर आप एक गाफ ट्री या गाफ का पेड़ इसे देखेंगे तो आप उसकी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं. यस, ऊपर से ये पेड़ शायद उतना बड़ा ना लगे पर इसका असली जो एम्पायर है वो जमीन के नीचे छिपा होता है. यस, कुरानिक बोटानिक गार्डन और भी जो वर्चुअल नर्सरी के माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते हैं कि गाफ की जो जड़ें हैं वो जमीन में 30 मीटर्स तक नीचे जा सकती हैं. समझ रहे हैं? एक बार आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए 30 मीटर्स कितना होगा, यानी एक 10 मंजिल, हाँ 10 स्टोरी जो इमारत होती है, 10 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है, उतनी गहराई जितना ये पेड़ ऊपर है उससे कहीं ज्यादा ये जमीन के अंदर समाया हुआ होता है. इन गहरी जड़ों का मकसद सिर्फ पानी ढूंढना नहीं है. बेशक ये उस गहराई से पानी निकाल लेता है जहाँ कोई और पौधा या पेड़ नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसका असली मकसद बहुत बड़ा है, दैट इज सॉइल स्टेबलाइजेशन. ये जड़ें कतर की मिट्टी को एक मजबूत पकड़ देती हैं, ये एक एंकर की तरह काम करती है ताकि रेगिस्तान की चलती हुई रेत हमारी सड़कों और हमारे शहरों को निगल ना ले. ये पेड़ हमें सिखाता है कि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो दुनिया का कोई भी तूफान आपका वजूद नहीं मिटा सकता. चलिए अब बात करते हैं कतर में उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत होती है, एंड दैट इज कूलिंग.

0: जब जुलाई अगस्त की गर्मी अपने शबाब पर होती है और टेम्परेचर 50 डिग्रीज को छूने लगता है, तब हम सब अपने घरों में एसी फुल करके बैठ जाते हैं। लेकिन घाव घाव तब भी रेगिस्तान में सीना तान कर खड़ा होता है। क्या आपको पता है कि घाव ट्री को नेचुरल एयर कंडीशनर कहा जाता है? इसके घने पत्तों की छांव, यस, इसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से कई डिग्री कम होता है। पुराने जमाने में जो बेडुइंस होते थे वो इसी पेड़ के नीचे पनाह लेते थे। ये सिर्फ छांव नहीं देता बल्कि हवा को ठंडा भी करता है। इसके पत्ते सुबह की ओस को कैप्चर करते हैं और एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं जहाँ जिंदगी पनप सके। ये कुदरत की सबसे सोफिस्टिकेटेड, वो कहते हैं ना, डेजर्ट टेक है। हाँ, इंसान ने तो एसी अब बना लिया है, लेकिन गाफ तो सदियों से हमारी नेशन को कूल रख रहा है। वैसे गाफ सिर्फ एक बायोलॉजिकल अजूबा नहीं है, इसका एक गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल रिश्ता भी है हमारी सरजमीन से। एक्सपो 2023 दोहा में जब हम ग्रीन डेजर्ट बेटर एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे तो घाव वहाँ एक मिसाल बनकर उभरा था। यस, ये पेड़ हमें रेजिलियंस सिखाता है। रेजिलियंस का मतलब है हर मुश्किल के बावजूद टिके रहना। घाव की एक और खासियत है, इसकी सौंफ जैसी खुशबू है और इसके जो फल हैं पुराने वक्त में लोग अपने ऊँटों के लिए खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक गिवर है, ये लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है। कम पानी में गुजारा करता है लेकिन बदले में ऑक्सीजन, ठंडक और मिट्टी को हिफाजत देता है। हमें आज अपने आप से ना एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम घाव की तरह बन रहे हैं? क्या हम अपने इकोसिस्टम को कुछ दे रहे हैं या सिर्फ ले ही रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता, हम इस घाव ट्री की हिफाजत कैसे करें? यहाँ रोल आता है हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस का, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कतर फाउंडेशन के तहत जो पुरानिक बोटानिक गार्डन है वो इस पेड़ की बायोलॉजी पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। उनका मकसद है कि कैसे हम इस नेटिव स्पीशी को हर गली हर पार्क में वापस ला सकें। और जनाब, आपने वर्चुअल नर्सरी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसे कमाल का प्लेटफॉर्म है जो नेटिव कतरी फ्लोरा को प्रमोट करता है। जब हम अपने घरों में घाव लगाते हैं तो हम कतर की असली पहचान को जिंदा रखते हैं। हमें विदेशी पेड़ों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं, पानी पीते हैं। हमें चाहिए घाव जो कम में ज्यादा करना जानता है। हाँ जी, जब हम 10 मिलियन ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें घाव का किरदार सबसे बड़ा है। ये हमारा क्लाइमेट शील्ड है, हमारा ग्रीन गार्जियन है। तो जनाब, अब इस प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट का सबसे बड़ा सबक, हाँ, वो क्या है कि घाव की तरह बनो। हाँ जी, अपनी जड़ें इतनी गहरी रखो कि कोई भी मुसीबत आपको हिला ना सके और अपना वजूद, अपना प्रेजेंस ऐसा रखो कि आपके होने से चारों तरफ सुकून की ठंडक फैल जाए। घाव सिर्फ एक पेड़ नहीं है, कतर का एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। अगली बार जब आप रेगिस्तान का सफर करें तो एक घाव के पेड़ को देखें तो थोड़ा रुक के ना उसे सलाम जरूर करें, क्योंकि वो सदियों से हमारी मिट्टी का पहरेदार बना हुआ है। वेल, कतर ग्रीन बीट्स में अभी आगे हमारी बातों को हम और कंटिन्यू करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट।
0: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ और आज कतर ग्रीन बीट में हम बातें कर रहे हैं डेजर्ट शील्ड यानी घाव ट्री की। वेल, घाव ट्री की महानता के बारे में तो हमने काफी डिस्कशन किया, लेकिन सिर्फ तारीफ करने से या उसकी मजबूती के किस्से सुनने से बात नहीं बनेगी। घाव ने सदियों से हमारी हिफाजत की है, कड़कती धूप में साया दिया, हमारी मिट्टी को थामे रखा, लेकिन आज वक्त का पहिया ना घूम रहा है और आज हमारी बारी है कि उसकी हिफाजत हमें करनी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता, हम जो आम इंसान हैं, हम इस बड़े ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? पर बदलाव हमेशा बड़े

कदमों से नहीं बल्कि सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों से होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो रास्ते कौन से हैं जिससे आप कतर की इस ग्रीन लेगेसी के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो जनाब, कतर में हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, खुरानिक बोटैनिक गार्डन, जो कतर फाउंडेशन के तहत आता है। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है, ये एक नॉलेज का खजाना है और यहाँ अक्सर कम्युनिटी प्लांटिंग डेज आयोजित किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेरा यकीन मानिए, अपनी बिजी लाइफ से बस 2 घंटे निकाल लीजिए, ठीक है, और वहाँ जाइए। जब आप अपने हाथों से उस ठंडी मिट्टी को छूते हैं और छोटे से पौधे के लिए एक गड्ढा खोदते हैं और उसे बड़े प्यार से वहाँ लगाते हैं या कह सकते हैं रोपते हैं, तो वो एहसास शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहे हैं, आप कतर की हिस्ट्री में एक हिस्सा जमीन में बो रहे हैं। वो पौधा जब बड़ा होगा तो वो आपकी मेहनत की गवाही देगा। हाँ, तो अगली बार जब आपको कुरानिक बोटैनिक गार्डन का कॉल आए तो पीछे मत हटिए, मिट्टी में हाथ डालिए, क्योंकि वहीं से जिंदगी शुरू हुई है। हम अक्सर अपने घरों के गार्डन या बालकनी को सजाने के लिए कुछ विदेशी या यूं कहें एग्जॉटिक पौधे ले आते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कतर जैसे देश में जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहां हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। यहां रोल आता है वर्चुअल नर्सरी का। ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये लोग कतर के नेटिव फ्लोरा यानी यहाँ की अपनी मिट्टी के पौधों को प्रमोट करते हैं। जब आप अपने घर के लिए घाव, सिद्रा या कोई और लोकल पौधा चुनते हैं तो आप 2 बड़े काम करते हैं। पहला, आप पानी बचाते हैं क्योंकि इन पौधों को यहाँ के माहौल की आदत है, और दूसरा, आप यहाँ के लोकल इकोसिस्टम की मदद करते हैं। देसी पौधे लगाने का मतलब है हम मेहनत, कम पानी और एक खुशहाल पर्यावरण या एनवायरनमेंट, या फिर यूं कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, हाँ, उसे प्रमोट करते हैं। तो जब आप अगली बार नर्सरी जाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम पेड़ पौधों के बड़े शौकीन होते हैं, तो यहाँ के लोकल प्लांट्स को चुनें। और अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारे लिए एक अहम कदम भी हो सकता है कि रिस्पेक्ट द वाइल्ड घाफ। हाँ, सर्दियों का मौसम आते ही जब हम अपनी गाड़ियां उठाकर निकल जाते हैं कैंपिंग या ड्यून बैशिंग के लिए, तो ये हमारी लाइफस्टाइल का ना एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन एक चीज है जो मैंने अक्सर नोटिस की है, इस मस्ती के बीच हम अक्सर अपने साइलेंट गार्जियंस को ना भूल जाते हैं। याद रखिए, रेगिस्तान में खड़ा हर एक पुराना घाफ का पेड़ अपने आप में एक हेरिटेज साइट है। वो सदियों के एफर्ट्स, यूं कह सकते ना, तपस्या के बाद हमको मिला है। अब आप कैंपिंग करें तो ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को ना नुकसान ना पहुंचे, पेड़ के नीचे कचरा ना छोड़ें। ये प्लास्टिक की बॉटल्स, टीन के डिब्बे मिट्टी को ना बीमार कर देते हैं जिसने हमें सहारा दिया है, तो हमें थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। घाफ का वो शील्ड तभी मजबूत रहेगा जब हम उसकी इज्जत करेंगे। वो कतर की पहचान है, उसे मैला मत होने दीजिएगा, ठीक है? तो जनाब, हमारा जो कतर ग्रीन बीट है वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है, और जब आखिरी मुकाम पे पहुंचा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक पुरानी कहावत है, एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा वक्त अभी है। हाँ, आज आप जो घाव का पेड़ लगाएंगे वो शायद आज आपको फल ना दे, शायद आज आपको पूरी तरह से साया ना दे, लेकिन याद रखिए, वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए एक ताजी सांस बनेगा। ये एक वादा है जो हम अपने आने वाली नस्लों से करते हैं। हम उन्हें सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं देना चाहते, हम उन्हें एक ऐसा रेगिस्तान भी देना चाहते हैं जहां रेत का ढेर भी हो लेकिन जिंदगी से भरपूर हो। वेल, कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमें इस घाव के पेड़ से 3 बातें सीखनी है। रेजिलियंस यानी हर मुश्किल हालत में लड़ने की ताकत, डेप यानी अपनी जड़ों को अपने कल्चर से, अपनी बातों से, अपने पुरखों की चीजों से हमेशा जुड़े रखना, वो भी गहराई से, और करेज यानी हर तूफान के सामने मुस्कुरा कर खड़े रहना। वेल, अब वक्त हो गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं

0: चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी मिट्टी हाथ में लेते हैं, अपनी इस सरजमीन को और भी हरा भरा बनाते हैं, क्योंकि याद रखिए ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारी लेगेसी है। तो उम्मीद है कि आज का हमारा जो एपिसोड, जो कि घाफ ट्री के नाम था, द डेजर्ट शील्ड, आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो आप हमसे अपने व्यूज, अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, और आपके मैसेजेस को जरूर नोट किया जाएगा। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का। अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन बीट्स में एक नए नवेले एपिसोड के साथ, एक नए नवेले प्रॉमिस के साथ। तो फिर हमारे साथ बने रहना है, FM 107 सुनते रहना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं FM 107 की, और अपनी आर जमीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। फिलहाल अपना खूब सारा ख्याल रखें और स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Sameen kehte hai na ki bandar ko saath mein rakhoge to wo zarur tumhare kandhe par sawar hoga. कहावत का मतलब ये है कि अगर किसी खास मिजाज वाले शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हैं हम या इनके साथ उलझते हैं तो आपको इनसे होने वाले नुकसान या तकलीफ को जरूर बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ही इस किस्म की सूरत हाल का इंतखाब किया है। अरबी जबान की कहावत है, इल्ली यलअब मअल गतु यस्बर अला खराबीशह, यानी जो बिल्ली पालता है, बिल्ली के साथ खेलता है, उसे जरूर उसके नाखूनों को बर्दाश्त करना होगा। इल्ली यलअब मअल गतु यस्बर अला खराबीशह।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, आज हम दिमाग की सेहत और जहनी ताकत बढ़ाने के आसान जो रोज़ाना इकदाम किए जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग सेहतमंद रहे तो याददाश्त बेहतर होती है, फोकस ज़्यादा होता है और सोचने की सलाहियत तेज़ हो जाती है। हमारे ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और पानी की कमी की वजह से फिर ब्रेन फोग हो सकता है। और अगर जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उससे हमारे सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और जैसे हम एक्टिव होते हैं तो जो हमारा जो माइंड है वो स्टिमुलेट होता है। ऐसी खुराक जो अगर हम लें तो हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, अच्छी तरह से काम कर सकता है। जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, उसमें फिश है, फ्लेक्सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसमें बेरीज और डार्क चॉकलेट भी है। विटामिन बी रिच फूड्स बहुत ही अहम हैं, उसमें एग्स हैं और लेग्यूम्स हैं। और इसी तरह से जो हमें चीज़ें नहीं लेनी उनमें शुगर है, ज़्यादा आप शुगर से जो है वो दूर रहिए। जब हम शुगर ज़्यादा लेते हैं तो एकदम से आप एनर्जी महसूस होती है कि आप एनर्जेटिक हो गए हैं, मगर कुछ देर के बाद अपने आप को क्रैश भी महसूस करते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कुछ जो ब्रेन की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप कीजिए, जैसे कि पजल्स हैं और मेमोरी गेम्स हैं, वो अगर हम करेंगे तो ज़्यादा शार्प माइंड होगा। और इस तरह से रीडिंग करना और जो नए नए जो महारत है उसे सीखना, जो न्यू स्किल्स हैं उनकी तरफ जाना भी हमारे ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव कर देता है। इसमें जो ब्रेन का जो वर्कआउट है वो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि न्यूरो प्लास्टिसिटी कहते हैं, और शॉर्ट डेली जो मेंटल एक्सरसाइजेस हैं अगर आप 5 से 10 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत

0: ज़्यादा एक्टिव महसूस भी करेंगे और बहुत जल्द चीज़ों तक पहुंच जाएंगे। और नींद बहुत ज़रूरी है हमारी जो दिमागी सेहत है उसके लिए, 7 से 8 घंटे नींद जो है वो ज़रूरी होती है। और इसी तरह स्क्रीन जो है या स्क्रीन टाइम जो है, आप सोने से 1 घंटा पहले अगर आप बंद कर दें अपनी स्क्रीन्स, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और इसी तरह से आप जो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है तो उसमें मेडिटेशन है या जो डीप ब्रीदिंग है वो आप कीजिए। इसी तरह से आप वॉक कीजिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी वॉक हो, शॉर्ट हो सकती है। और इसी तरह से आप टाइम मैनेजमेंट जो है उस तरफ ज़रूर जाइए, और कोई भी काम कर रहे हैं तो टाइम को मैनेज कीजिए, उससे हमारे जो माइंड है उसमें क्लैरिटी आती है। तो हमारे दिमाग हमारे ब्रेन की सेहत के लिए बहुत छोटे छोटे जो रोज़ाना की जो हैबिट्स हैं वो हमें अपनानी है, और फिर अपने ज़हनी फोकस और याददाश्त को मजबूत बनाना है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

Assalamualaikum and welcome to Tech Innovation. देखो इनोवेशन की दुनिया ऐसी है कि हर टाइम कुछ ना कुछ बन रहा है, उसे स्क्रैप कर दिया जाता है, प्रोटोटाइप तैयार होते हैं, आगे जाते हैं, नहीं जाते हैं. टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसी है. मैं हमेशा से एक लाइन बोलता हूँ, दिस इज नॉट अ रेस, दिस इज अ मैराथन. और टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसी है, तो इसलिए भाई हमें मैराथन करते करते भागते भागते कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आपके आपको बताने लायक होती हैं. तो आज भी टेक इनोवेशन में वैसे कुछ होगा. आज का भी शो बहुत जबरदस्त है, काफी काम की वेबसाइट्स हैं. आज मैंने सोचा कि एप्स मैंने बहुत बताई हैं, क्यों ना मैं ऐसी वेबसाइट्स बताऊं जो क्लियरली आपका काम आसान कर सकती हैं. देखो कुछ चीजें होती हैं जो वेबसाइट्स के अंदर पेड होती हैं. आज चीजें फ्री भी होंगी, थोड़ी सी पेड भी होंगी, मगर आपका पैसा बचेगा, इस बात की पूरी गारंटी है. या बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह है. प्लीज गारंटी छूदा. सबसे पहले एप्स, जिस सेगमेंट में मैं एप्स और वेबसाइट बताता हूँ या AI टूल्स, उसके बाद गैजेट्स एंड देन द न्यूज फ्रॉम द टेक इनोवेशन, टेक इनोवेटिव वर्ल्ड. तो शुरू करेंगे सबसे पहले एप्स दिस वीक से. ट्रेंडिंग एप्स, ट्रेंडिंग एप्स. तो सबसे पहले बात करूंगा मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो बहुत बहुत बहुत बहुत इतनी सारी काम की है, मतलब बहुत ही ज्यादा. आप समझ लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ उसे 100x एग्जैजरेशन करने के बाद आप समझ लीजिए.

0: बट सिंस आई फाउंड इट, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं. सो इन केस यू आर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर या आप प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे जरा हेल्प चाहिए, मेरी थोड़ी आसानी हो जाए वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि क्या होता है आधे बंदे से रुके हुए हैं कि वीडियो तो बनानी आती है, एडिट करने में जो है एक तो आलस आता है अगर आता है तो, और या तो बनती ही नहीं है, एडिट हो ही नहीं पाता. मगर दिस वेबसाइट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. 123apps.com आप खोल के देखिए. अभी क्या फोन पे खोलिए, इतने सारे टूल्स भाई. मैं तो भाई साहब खेल गया, मैंने कहा ये अपने काम की है तो ये आपके भी काम आएगी. यूज इट एंड लेट मी नो कि आपके काम आई कि नहीं. ओके, मूविंग ऑन. अगला जो है ये एक एआई टूल है, इसका नाम है arena.ai. वेबसाइट ही है मगर आपको टाइप करना है arena.ai. सो arena.ai. इसमें आपको बहुत सारे AI जिनके लिए आप पेमेंट बहुत भारी भरकम कर रहे हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे. जैसे कि आप ग्रॉक चाहिए, आपको क्लिंग चाहिए, आपको चैट जीपीटी चाहिए, आपको क्लॉड चाहिए, आपको कोई सा भी AI चाहिए जो आप रन कर रहे हैं अपने फोन में, बट यू हैव टू अल्टीमेटली पे अ प्राइस. उसका सब्सक्रिप्शन आपको लगता है अरे माल नो चुनू इतना पैसा क्यों मांग रहा है ये, क्योंकि आजकल ग्रॉक भी 99 रियाल्स मांग रहा है, बताओ यार रद्द हो गई. बट ये जो है arena.ai, ये एक्चुअली में अरीना है बहुत सारे AI का. सो चूज योर फेवरेट्स. उनके ना सिर्फ AI है बल्कि AI के वर्जन्स भी मौजूद हैं कि 4.0 यूज करना है आपको, आपको 3.0 यूज करना है, कोई भी यूज करना है, सारे के सारे AI आपको arena.ai पे मिलेंगे. इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी रिसेंटली, क्योंकि मैंने ये इत्तफाकन डिस्कवर किया अपने लिए. मैंने कहा चलो जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं. सो arena.ai फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर लेस सब्सक्रिप्शन या एकदम फ्री AI टूल्स, आपके कती काम आने वाला है ये आप ध्यान में रखिएगा. आपको अगर लगे काम आ गया तो थोड़ी दुआएं भेज दीजिएगा, ठीक है. मूविंग ऑन. अगला जो है मेरे वीर बहुत काम की चीज है, इसका नाम है MrFreeTools.com. ध्यान से सुने, जो लोग कॉर्पोरेट की दुनिया में हैं, जो लोग मीडिया लाइन में हैं, किसी भी लाइन में हैं, आपको टूल्स वगैरह चाहिए, आप ऑफिस के टूल्स चाहिए, स्कूल का प्रोजेक्ट है, कॉलेज का प्रोजेक्ट है, कुछ भी है भाई, आपको मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट चाहिए, किसी भी चीज के लिए टूल चाहिए आपको, चले जाओ यहां MrFreeTools.com. ठीक है, MR मिस्टर साथ में चिपका हुआ फ्री, उसके साथ चिपका के टूल्स लिखना है TOOLS और .com. MrFreeTools.com. इसमें आपको मार्केटिंग का अगर तैयार करना है, आपने कोई प्लान है, कोई प्रोडक्ट आपके पास है, यू वांट टू प्लान आउट फॉर, दिस इज फॉर यू. स्टूडेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, आपका स्कूल प्रोजेक्ट है, कॉलेज प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी, विच एवर प्रोजेक्ट यू थिंकिंग राइट नाउ, This is your way to do it. And इसी के साथ कोई ऑफिस में है, कॉर्पोरेट दुनिया में है, जो भी है, आपको टूल्स चाहिए, ऐथे आ जाओ. आपको लगेगा पहले कि ये कबीर ने क्या रास्ता बता दिया, ये तो लग रहा है कि चोर बाजार में पहुंच गया मैं, ये मामला ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है भाई मामला, बिंदास यूज करो. मैंने यूज किए इसके टूल्स एंड इट्स डेफिनेटली वर्किंग एंड बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है. तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सीन है, मगर यू विल लव इट. सो मिस्टर फ्री टूल्स पे जरूर जाएं एंड गिव योर फीडबैक टू मी लेटर ऑन. ओके, अब बढ़ते हैं जरा निकल गया कुछ गैजेट्स की तरफ.
1: गैजेट्स.
0: तो गैजेट नंबर वन, मतलब रैंकिंग दे रहा हूं, मतलब पहला गैजेट बता रहा हूं, तो इसका नाम है ऑल इन वन बॉट, BOT वाला बॉट. ये 25 वॉट का वायरलेस चार्जर है, इसमें ब्लूटूथ स्पीकर है और एक स्लीप बडी भी है. ये एक बहुत ही चंगा सा, सोना सा, क्यूटी पटूटी सा छोटा सा रोबोट है, मगर इसके लुक पर मत जाना भाई, आपको लगेगा ये तो शोपीस सा लग रहा है. शोपीस ना है भाई, शोपीस को नहीं, कती काम का भाई. इस पे आप ऊपर फोन रख दीजिए, इसमें स्टैंड भी है, इसका आप एक बाहें फैला दीजिए वो आपकी घड़ी को चार्ज कर देगा, आप दूसरे बाहें निकाल लीजिए उस पे आप अपने जो कानों में आप लगाते हैं हेडफोन्स उनको लगा दीजिए चार्ज कर लीजिए. स्लीपिंग बडी भी है, आपको भाई साहब वाइट नॉइज देगा बढ़िया. जैसे मेरे ऐसे लोग हैं जो शोर शराबे में सोना पसंद करते हैं, आई नो हमारी तादाद थोड़ी कम है, बट यू गॉट माई पॉइंट राइट. सो ऑल इन वन बॉट जो है अवेलेबल है राइट नाउ ऑन फ्यू वेबसाइट्स, मगर मेरा सजेशन ये, इफ यू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम इंडिया उनको बोलिएगा वहां पे भाई बढ़िया चीप प्राइस पे मिल रहा है और बहुत ही सस्ता प्राइस है, बहुत ही ज्यादा नहीं है, 2500-2000 का होगा, रुपए की बात कर रहा हूँ, 2500-2000 रुपए मुश्किल बा मुश्किल आपको 100 रियाल का पड़ेगा. ये बहुत बहुत काम का है और अच्छा भी लगता है डेस्क पे और गिफ्ट भी करना चाहते हैं, दिस इज अ परफेक्ट गिफ्ट. सो ऑल इन वन बॉट नाम है इसका, ऑल इन वन बॉट. ओके, लेट्स मूव ऑन. अगला जो है भाई साहब, ये एक हेडफोन ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसका नाम है KZAN01।

मैं दोबारा नाम बताता हूँ बिकॉज नाम थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल है. सो KZAN01 ये टाइप कीजिएगा और ANC और फिर वायरलेस अडेप्टर फॉर IEMS टाइप कीजिएगा. ऑडियो क्वालिटी एक नंबर, ठीक है. साउंड क्वालिटी एक नंबर. ब्लूटूथ 5.4 ऑफर करेगा आपको. ये 15 मीटर रेंज देगा आपको. मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी है. इसके साथ साथ चार पे ध्यान दीजिएगा. चार इनबिल्ट माइक्रोफोन्स हैं फॉर एनहांस कॉल क्लैरिटी. एंड इसके अलावा यूनिवर्सल 0.75 mm QTC कनेक्टर है जो कंपेटिबिलिटी हर चीज के साथ देता है. इसके साथ टच कंट्रोल्स हैं सिंपली प्लेबैक और मोड स्विचिंग के लिए. तो इट इज वेरी हाई ऑन द लिस्ट. सो ये आपके काम आ सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर अमेजिंग गैजेट. भाई ये वाला जो गैजेट आपको बताने जा रहा हूँ ना, मुझे भाई बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा लगा. ये है टायर शेप्ड पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर. जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज आपको टाइप करना अगर आप ढूंढना चाहते हैं. टायर, वो जो गाड़ी वाला टायर होता है, टायर शेप्ड ब्लूटूथ स्पीकर. एक टायर के शेप में आपके सामने ब्लूटूथ स्पीकर आएगा और आप कहेंगे यार ये तो बड़ी सही चीज है, बड़ी सही चीज है. ये आप कहीं ले जाएंगे ना, लोग आपसे पूछेंगे भाई मुड़ मुड़ के कहां से ले यार, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है. ये वैसी वाली चीज है. और ये टायर के शेप में है, पोर्टेबल ब्लूटूथ है जैसे मैंने कहा. बहुत हैवी बेस देता है. LED लाइट्स लगी हैं इसमें. वायरलेस म्यूजिक सिस्टम है इसमें. HD साउंड है. लॉन्ग बैटरी बैकअप है. एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव कम अक्रॉस. ज्यादा महंगा भी नहीं है और सबसे अच्छी बात यह कि ये इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है. अमूमन क्या होता है, वो फटी सी आवाज आती है ना तो मजा नहीं आता. ऐसा लगता है वो पुराने पहले चाइना के 16 स्पीकर वाले फोन आते थे. नहीं, वैसी आवाज नहीं है. बहुत अच्छी क्वालिटी है. एंड ये भी इजिली अवेलेबल है मार्केट में. कतर में मिल जाएगा आपको, बाहर भी मिल जाएगा. बाहर थोड़ा और सस्ता मिल सकता है, चांसेस हैं, बिकॉज बाकी जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग भी है इसकी. सो फॉर एग्जांपल इंडिया इफ यू गो, इफ यू वांट टू बाय दिस, परफेक्ट प्राइस में आपको मिल सकता है. और इसका जो हिसाब किताब है वो ऐसा है कि ये आपको अच्छी खासी दूरी तक आवाज देगा. तो इफ यू वांट टू लुक कूल, यू वांट टू गिफ्ट इट टू समबडी, गो अहेड एंड डू इट. आपको सिंपल जो मैंने बताया बस वही टाइप कीजिएगा इफ यू सर्चिंग फॉर दिस गैजेट, टायर शेप्ड पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर. ठीक है जी, टायर के शेप का है और बहुत बहुत काम का है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू इनटेक न्यूज. सबसे पहली खबर है सैमसंग की, जिसने मुझे फैन बॉय बना दिया भाई. ये सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी Z Fold 8 और दो वेरिएंट में लॉन्च किया. एक जो नॉर्मल गैलेक्सी फोल्ड है वो तो है, दूसरा वाला भाई जो वाइड वाला बनाया उन्होंने, छोटा वाला, मेरा दिल आ गया उस पे यार. मैं एप्पल से हिलने को राजी नहीं था. मैं मानता हूं मैं ढीट हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एप्पल से हिलूंगा तो दूसरा फोन खराब ही है मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये मत समझिएगा एप्पल यूजर तो ऐसी बात करते हैं. बट ऑनेस्टली मुझे लगा चलो आई एम यूज्ड टू एप्पल एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट. मैं ज्यादा फोन चेंज करता भी नहीं हूं, मैं बड़ा इसमें सादा आदमी हूं. मगर इसने दिल ले लिया यार. सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 8 जो उसका एक दूसरा वेरिएंट है जो थोड़ा चौड़ा है, छोटा है, इतना क्यूट फोन, इतना बढ़िया फोन. क्रीज उसकी उन्होंने बहुत अच्छे से छुपाई है. स्क्रीन बहुत बड़ी लगती है. इट इज लाइक होल्डिंग अ स्मॉल टैबलेट इन योर फोन, इन योर हैंड, इन योर पॉकेट्स, एंड इट इज अमेजिंग. ऐसा कोई खास नहीं कर रहा हुआ, ऐसा नहीं कि वो कैमरा अचानक से इतना आ गया है कति जहर के आप कह रहे हो और भाई का कैमरा दे दिया. नहीं नहीं नहीं, ये जो वाइड फोल्डिंग वेरिएंट है ना बुक स्टाइल में, जैसे बुक को फोल्ड करते हैं, बंद करते हैं, ये मेन हाईलाइट इवेंट का भी रहा है. एंड दिस इज एन आइकॉनिक वर्जन ऑफ हाउ फोल्ड्स कैन बी डन. तो सैमसंग, आई डोंट नो, आपने मुझे बहका दिया है. आई माइट एज वेल गेट अ गैलेक्सी Z Fold इन द नियर फ्यूचर. अभी ये फोन यूज कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं मुझे दूसरा फोन लेने का, तो मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ. बस ये लालच मुझे दे दिया है सैमसंग ने. सो इफ एनीबडी आउट देयर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको किसी किस्म का डिफरेंट फोन चाहिए, फोल्ड चाहिए, फ्लिप चाहिए, तो फोल्ड में ये वेरिएंट बहुत बहुत बढ़िया है. वाइड फोल्डिंग बुक स्टाइल जो गैलेक्सी Z Fold 8 आया है, इट शुड डेफिनेटली बी ऑन द लिस्ट, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा. बाकी इट्स अप टू यू. अभी जो है एक यूनिक लाइनअप है. अभी आई थिंक 2 महीने रह गए, फिर एप्पल भी आने वाला है. सो अभी लोग ये लगा रहे हैं, हिसाब किताब, अनुमान लगा रहे हैं, अजम्पशंस हैं, रूमर हैं कि एप्पल भी फोल्डेबल फोन ला सकता है. डोंट कोट मी, आई एम जस्ट सेइंग रूमर है. तो अगर ऐसा हुआ, वैसे मुझे चांसेस कम लगते हैं, एप्पल डू नॉट रियली गो फॉर इट जब तक कि बाकी सारी जो कंपनीज हैं वो आइडिया को घिसना दे जब तक एप्पल उसे इस्तेमाल नहीं करता. आई डोंट नो, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ठीक है, बढ़ते हैं गेमिंग न्यूज की तरफ. गेम

0: and entertainment.
1: Recently, मैंने आपको बताया था, gamers, जाग जाओ. PlayStation की जब मैंने बात करी थी तो मैंने कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है. Rockstar Games ने कहा कि भाई अब हम physical CDs नहीं देंगे, आपको online games खरीदने पड़ेंगे, और अगर हम physical देंगे तो एक box देंगे जिसके अंदर code होगा, उस code से आप game को buy कर सकते हैं. And a lot of gamers like me are sad about it. मैं खुद बहुत उदास हूँ. मैं कहा क्या यार, अब आप लोग भी कहेंगे अरे सीडी नहीं मिली तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, क्या बुरा है. नहीं नहीं नहीं, वो फील नहीं आता ना, वो जो फिजिकल सीडी ओन करने का जो फील है, इट्स लाइक अ कलेक्टिबल एंड यू लव इट. मैं अपनी गेम की सीडीज को बहुत प्यार से, बहुत संजो के रखता हूँ, मुझे बहुत जरूरी हो जाता है वो लेना. इसके ऊपर बयान देते हुए बहुत बवाल हुआ है, और अभी जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA के और रेड डेड रिडेम्पशन के डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस बारे में आगे की बात करी है. एक सैन डिएगो में एक कॉमिक कॉन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है, और बड़ा ही अजीब सा उन्होंने बयान दिया. वो कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली कोट कर देता हूँ, I don't know what I care, but if people want that, I think companies should provide it. अरे तो तुम provide करते ना पहले, समझ रहे हैं आप. ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मुझे physical CDs या digital से कोई फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता. पहली बात तो ये अजीब सी लाइन है, paradoxical चीज है. उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो कंपनी देना चाहती है वो दे, पर आगे कहते हैं but I don't know what I personally care. अरे भाई तुमको केयर करना पड़ेगा, पर्सनली नहीं है मामला, इट इज आउट देयर. You are the guys who are producing physical or digital copies. तो ये थोड़ा सा hurtful है, because मतलब clear उसकी उम्मीद थी मुझे, और इनकी वजह से हो ही रहा है कि बाकी consoles जो हैं, Xbox है, उन्होंने भी कह दिया कि वो भी आने वाले वक्त में physical CDs को eliminate कर देंगे, which is a very sad story. But let's see what happens, because this is going to happen eventually. पर ये कितना होगा, किस तरीके से आगे तक जाएगी ये बात, it's up to you. Gamers and myself, all the best. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आ जाइएगा जरूर जरूर. FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज गेट इन टच विद अस, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो दोहा वाला कबीर KABIR स्पेलिंग रहेगी .FM 107. फाइंड मी ऑन सोशल्स एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप।
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आज हम बात करेंगे कि सफर के दौरान खुद को बीमारियों से कैसे महफूज रखा जाए। खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ आप साबुन से जरूर धो लीजिए और अगर पानी दस्तियाब ना हो तो फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। सफर में अक्सर नींद का मामूल मुतासिर हो जाता है, जिससे थकन और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इसलिए मुनासिब आराम कीजिए और अगर मुख्तलिफ टाइम जोन्स में जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नए वक्त के मुताबिक अपने सोने और जागने का मामूल बनाइए। बहुत ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक से परहेज कीजिए। अगर आप गर्म इलाके में सफर कर रहे हैं तो हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनिए, टोपी और सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। धूप में ज्यादा देर रहने से गुरेज कीजिए, खास तौर पर दोपहर के औकात में। और अगर खुदा नखास्ता सफर के दौरान तेज बुखार हो, मुसलसल कह हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, सीने में दर्द हो या आपको चक्कर आए, तो खुद इलाज करने की बजाय आप फौरन करीबी तिबी जो मरकज है वहाँ पर रुजू कीजिए। लिस्टनर्स, सेहतमंद सफर सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी नाम है। मुनासिब ग़िज़ा, पानी, आराम, सफाई और एहतियात आपके सफर को महफूज और यादगार बना सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज हम इस सेगमेंट में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के लिए हवा के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो बेहद जरूरी है, पानी, वाटर। हम हर रोज सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, नहाने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए और डेली लाइफ के हर काम में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन साफ पानी कम हो जाए, मतलब साफ पीने का पानी कम हो जाए, तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब आज हम इस फिलर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया जो है वो आज वाटर सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि पानी को आज इस तरह इस्तेमाल करना कि आने वाली जनरेशन भी, उनके लिए भी हम छोड़ सकें या उनके लिए पानी मौजूद रहे। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंसान खाने के बगैर

दिन रह सकता है लेकिन पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता. एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, घर हैं, सब पानी पर डिपेंड करते हैं. इस वक्त दुनिया की एक आबादी, बड़ी आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है और पानी पर बोझ बढ़ रहा है. जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा पानी की डिमांड भी होगी. इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती सोर्स बन जाएगा. दुनिया को वाटर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और उसकी बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे बड़ी और अहम वजह है क्लाइमेट चेंज. कुछ कंट्रीज में सूखा बढ़ रहा है, कुछ जगहों पर बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है. कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम हो रही है और इसी वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ रहा है. एक और बड़ी वजह है पॉपुलेशन. हर साल दोस्तों, हर साल दुनिया की आबादी जो है वो तेजी से कई गुना बढ़ जाती है और हर शख्स को साफ पीने का पानी चाहिए, खाने के लिए पानी चाहिए, सैनिटेशन के लिए पानी चाहिए. पानी तो हर वक्त ही चाहिए. और एक और चीज जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए वो है पानी का जाया किया जाना, यानी वाटर वेस्ट. ये भी एक बड़ी वजह है. बहुत सी जगहों पर लोग पानी की कदर नहीं करते. आपने देखा होगा कि टैप्स जो हैं वो खुले छोड़ देते हैं, पाइप्स जो हैं वो लीक कर रहे होते हैं, अननेसेसरी लोग जो हैं वो कई लीटर पानी यूं ही जाया कर देते हैं. लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना है. अच्छी बात ये है कि आज की दुनिया सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रही है. प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, गवर्नमेंट्स हैं, वो इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशंस भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी. गल्फ कंट्रीज की तरह कई कंट्रीज जो है वो समंदर के पानी को ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रही हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं डीसेलिनेशन. पहले ये प्रोसेस बड़ा महंगा हुआ करता था लेकिन नई टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस के चलते आज थोड़ा सा इफिशियंट हो गया है. 2030 यानी 2030 तक डीसेलिनेशन और एडवांस हो सकता है और भी ज्यादा लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकता है. अब समझना है कि स्मार्ट वाटर सिस्टम क्या है. आजकल स्मार्ट सिटीज हैं, सेंसर्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और ये सेंसर कहीं ना कहीं डिटेक्ट करते हैं कि पानी कहाँ लीक हो रहा है. इस तरह से पानी जाया होने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है. इमेजिन कीजिए कि एक शहर जहाँ हर पाइपलाइन इंटेलिजेंट सिस्टम से कनेक्टेड हो, जहाँ लीक का पता सेकेंड्स में चल जाए. ये है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का फ्यूचर. और एक और चीज वो है वाटर रिसाइकलिंग. क्या आप जानते हैं कि कुछ कंट्रीज यूज वाटर को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर रही हैं? जी हाँ, ट्रीटेड वाटर वेस्ट को गार्डन्स, एग्रीकल्चर, यू नो, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. इससे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर जो प्रेशर है, जो बिल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, वो थोड़ा कम हो जाता है. फ्यूचर में वाटर साइकिलिंग यानी वाटर रिसाइकलिंग हर मॉडर्न सिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा. नहीं, पर स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी तो बात करनी चाहिए. दुनिया का सबसे ज्यादा पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है. जी हाँ, ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत पानी जाया होता है लेकिन अब फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं. इस मेथड में पानी सीधा प्लांट्स के रूट्स तक पहुँचता है. कम पानी इस्तेमाल होता है और ज्यादा क्रॉप्स हासिल होती हैं. और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है. वहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया. और इस प्रोसेस में बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और सेव किया जाता है. बाद में यही पानी गार्डनिंग, क्लीनिंग और कई प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है. आजकल तो आपने देखा है कि स्कूल्स हों, ऑफिसेज हों या फिर रेजिडेंशियल कम्युनिटीज भी इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर रही हैं. तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने काफी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दिया है. AI सिर्फ रोबोट्स और कंप्यूटर्स तक महदूद नहीं है, अब AI पानी बचाने में भी मदद कर रहे हैं. यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट कर सकती है कितना पानी फ्यूचर में चाहिए होगा, कहाँ पर सूखे का खतरा है, कहाँ लीकेज हो सकता है, किस एरिया में ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है. यानी टेक्नोलॉजी फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है. वाटर सस्टेनेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है.

0: ये आपकी और हमारी भी है. यंग पीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. आज के स्टूडेंट्स फ्यूचर के लीडर्स हैं. अगर वो आज से वाटर कंजर्वेशन की हैबिट सीख लें तो कल की दुनिया ज्यादा सिक्योर होगी. छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं. जैसे ब्रश करते वक्त टैप बंद रखें, लीकिंग टैप्स की फौरन रिपोर्ट कीजिए, पानी सिर्फ जरूरत के मुताबिक यूज कीजिए, गार्डन्स में इफिशियंट वाटरिंग मेथड का इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को भी पानी की अहमियत समझाएं. 2030 तक दुनिया का गोल सिर्फ ज्यादा पानी हासिल करना नहीं होगा, असल गोल ये होगा कि हर ड्रॉप को स्मार्ट वे में यूज किया जाए. फ्यूचर सिटीज स्मार्ट वाटर ग्रिड यूज कर सकती हैं, बिल्डिंग्स अपने रेन वाटर कलेक्ट कर सकती हैं, होम वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है. ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं. एक थॉट जो हम सब के लिए है, अगर आज दुनिया का हर इंसान रोज सिर्फ 1 लीटर पानी बचाए तो 1 साल में कितना पानी सेव हो सकता है, कभी सोचा है आपने? डियर वाटर सस्टेनेबिलिटी जिस पर आज हमने बात की, सिर्फ एनवायरमेंट का इशू नहीं है, ये हेल्थ का भी इशू है, इकोनॉमी का भी इशू है, फूड सिक्योरिटी का भी इशू है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे फ्यूचर का इशू है. 2030 की फ्यूचर जब हम सोचते हैं कैसा होगा तो हमें याद रखना है कि कुछ रिसोर्सेज खत्म होंगे और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें अपनी लाइफ को गुजारना होगा. हम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे भाई, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है. हर ड्रॉप कीमती है, हर ड्रॉप की अपनी कहानी है. अगर आज हम इसे सेव करते हैं तो कल की जनरेशन भी क्लीन सेफ और सस्टेनेबल वाटर का फायदा उठा सकती है. पहले इसी बात के साथ अब वक्त आपसे इजाजत का. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन एवरीडे लाइफस्टाइल चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट असर डालती हैं। भाई आज का टॉपिक है रिड्यूसिंग मीट कंजम्पशन, यानी के अपनी डाइट में मीट की क्वांटिटी को कम करना। ये सिर्फ डाइट ट्रेंड नहीं है साथियों, बल्कि एक पावरफुल एनवायरमेंटल स्टेप भी है। साथियों बात यह है कि हम जो खाते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ पर नहीं होता, बल्कि पानी के यूजेज पर, लैंड यूज और ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर भी होता है। इको स्विच हमें याद दिलाता है कि कभी कभी प्लेट का छोटा सा डिसीजन प्लैनेट का बड़ा फ्यूचर डिसाइड करता है। चलिए एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सोचिए वीकेंड का बारबेक्यू का प्लान है, ठीक है? आपने क्या किया कि भाई नॉर्मली ग्रिल चिकन, कबाब्स, बर्गर्स और पता नहीं क्या कुछ सब एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? मैं भी, आप भी, हम हाँ भी करते हैं हम एंजॉय। लेकिन उस एक मील के पीछे जो रिसोर्सेज यूजेज होती हैं वो काफी लार्ज होती हैं साथियों। अगर अब हम कंपेयर करें कि भाई अगर एक हाउस होल्ड हर दिन गोश्त की, मीट की हैवी मील्स की जगह दो या तीन वेजिटेरियन मील्स इंक्लूड करे, तो मंथली बेसिस पर रिसोर्स कंजम्पशन ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई लेस मीट का मतलब होता है लेस एनवायरमेंटल प्रेशर। अच्छा, मीट कंजम्पशन का ग्लोबल फुटप्रिंट भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का लगभग 14.5% रिस्पॉन्सिबल है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी ज्यादा है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि 1 kg बीफ प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी यूज होता है। चिकन और लैम्प कंपेरेटिवली कम फुटप्रिंट रखते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट बेस्ड फूड्स के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 1 day per week अगर मीट अवॉइड करे ना, तो बिलियंस ऑफ लीटर वाटर और मासिव कार्बन इमिशन सेव हो सकती है एनुअली। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इको स्विच, यहाँ कॉन्सेप्ट इको स्विच का बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि डाइट को बैलेंस करना। जब हम मीट कंजम्पशन रिड्यूस करते हैं ना साथियों, तो हम इनडायरेक्टली वाटर

0: लैंड डिग्रेडेशन और मीथेन इमिशंस रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक शख्स वीकली 2 मीट फ्री डेज अडॉप्ट करे ना, तो वो अपना एनुअल कार्बन फुटप्रिंट नोटिसेबल लेवल पर रिड्यूस कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर वेजिटेरियन मील एक एनवायरमेंटल रीसेट बटन प्रेस करता है। देखें, यहाँ पर अगर सोचा जाए, एक रिलेटेबल एग्जांपल आपको दूं, तो सोचिए सुपरमार्केट में आपका ग्रोसरी कार्ट है, ठीक है, आपने वो जो होती है हमारी ट्रॉली होती है, एक साइड पर मीट प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी साइड पर वेजिटेबल्स और ग्रेन्स हैं। देखिए, मीट सेक्शन ना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और पैकेजिंग और रिफ्रिजरेशन डिमांड भी ज़्यादा होती है। अगर आप कार्ट का 30% भी प्लांट बेस्ड आइटम से रिप्लेस करें ना, तो ना सिर्फ हेल्थ इम्प्रूव होती है बल्कि एनवायरमेंटल बर्डन भी कम हो जाता है। इको स्विच कहता है भाई कि हर कार्ट एक एनवायरमेंटल चॉइस है आपकी। अच्छा, यहाँ पर चलते चलते मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी फॉलो करने को दे देती हूँ, जो मुझे लगता है हर कोई बहुत बहुत इजीली फॉलो कर सकता है। पहली ये कि मीटलेस मंडे या वीकली प्लांट बेस्ड डेज अडॉप्ट करें। दूसरा ये कि मील्स में वेजिटेबल्स, लैंटन्स और बीन्स का पोर्शन इंक्रीज करें। तीसरा ये कि मीट को डिश के बजाय साइड इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज करें ना। चौथा ये कि प्रोसेस्ड मीट की जगह फ्रेश प्लांट बेस्ड प्रोटीन चूज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू वेजिटेरियन रेसिपीज ट्राई करें और अपनी डाइट को इंटरेस्टिंग रखें। साथियों, देखिए, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मीट कंजम्पशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैलेंस क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग प्लांट रिच डाइट्स अडॉप्ट करते हैं ना, उनका ओवरऑल फूड वेस्ट भी कम होता है और ग्रोसरी प्लानिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। आखिर में आपसे ये कहना चाहूंगी कि इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि हर मील सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि इम्पैक्ट के लिए भी होता है। हर वेजिटेरियन चॉइस एक छोटा सा स्टेप है क्लीनर एयर, लेस वाटर यूजेज और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। तो भाई, अगली बार जब आप अपना मील चूज करें ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। कैन आई मेक दिस मील अ लिटिल बिट मोर प्लांट बेस्ड टुडे? कैन आई? आई थिंक सो, यस। तो भाई, इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर बाइट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक फ्यूचर का डिसीजन होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक, और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया एफएम 107 एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन। एक ऐसा शो जो डेडिकेट किया गया है उन लेडीज के नाम जो अपने काम, जज्बे और हिम्मत से दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनती हैं।
2: इंस्पायरिंग वुमेन, उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
1: दोस्तों, हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे इंस्पायरिंग वुमेन से जो अपनी फील्ड में कुछ नया कर रही हैं और कुछ इम्पैक्टफुल कर रही हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन जिनका नाम है ईमान सलामा। आप एक बहुत ही कमाल की ओरेटर और डिबेटर हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जो है इनके नाम है। धीरे धीरे जब इनसे बात करेंगे तो उन सब का डिटेल में जो है वो खुलासा भी करते जाएंगे, लेकिन बिफोर दैट वी वुड लव टू वेलकम ईमान सलामा ऑन एफएम 107। हाउ यू डूइंग?
3: Hi Nazia, good evening. I'm very happy that to be with you today, to be in FM 107.
1: Great, we are looking forward to have some exciting and interesting conversations with you.
3: Yes, let's go.
1: Inshallah. So Iman, we know you as a leader also. So how would you like to define your leadership journey?
3: A lot of challenge it's happened to me to be a better person of a better version of myself. The journey starts from 2017 and I think will never stop. Every day I learning a new experience. Every day I facing challenge make me more strong and how to behave as a leader and make me more strong.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
5: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
6: Iman, since you are an excellent orator, best speaker, communicator, which traits you believe are essential to be a good speaker, a good communicator?
7: See, I'm still learning the skill how to be a good speaker, because every time you speak in the stage, you learn different skills or different knowledge. The thing is, I learned from my Eckhart Tolle, my inspiration, that to be in the present. Because sometimes we lose our focus.
6: Okay.
7: When we are on the stage, when we go, sometimes we're not aware about our words, about our speech, about what we start. Sometimes we go far away in our minds. Uh-huh. When I start then to be in the present, then I start focusing my words, focusing my speech, focusing my steps, then I start transfer change to better speaker. And sometimes when some people are asking to make records for me to watch myself, how much I did, how my level, how to increase it in the best way, better.
6: Okay, so that one trait you say is the confidence. You have the confidence and the focus throughout your speech. Okay, what leadership lessons did you learn while serving as Division D director that you carry with you today?
7: Actually, I learned 10 things.
6: 10 things? 10.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाजे रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
3: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: सब के बीच में क्योंकि मोटापा है तो हम इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, तो बाकी चीजें खुद बहुत कवर हो जाएंगी।
1: जी ठीक है, तो रुख्सत थोड़ी शुरू में थोड़ी एग्जांपल देते चलें कि क्यों ऐसा है। जैसे हमने कहा आपने ये टॉपिक जो है बहुत यूनिक सा है
0: जी,
1: तो इस पर जो बात करनी है तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी ये है क्या।
0: जी इसका मैं इस तरह बताता हूँ आपको कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब ये टीवी स्क्रीन्स नहीं थी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नहीं थे, तो होता ये था कि लोग घर में खाना बनाते थे, पैदल चल के मस्जिद जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, और उसके अलावा अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, शाम को गैदरिंग्स होती थी। तो ये उनकी पूरी रूटीन में क्या क्या कवर हो गया, एक तो ये कि खाना हेल्दी हो गया क्योंकि घर पर बनाए, दूसरा ये कि वो चल के जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज आ जाती है, और तीसरा ये कि जब वो अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से रेगुलरली मिलते हैं तो उससे उनका स्ट्रेस कम होता है और उनको लगता है बेहतर फीलिंग होती है। और इसमें क्या कितना खर्चा हो गया, कोई खर्चा नहीं, कोई महंगाई नहीं है, लेकिन उस ज़माने में अगर आपको कोई भी बीमारी लगनी है तो इसका मतलब ये कि बहुत महंगी जाके कोई गजा कोई ले रहा है जो कि अच्छी नहीं है, या कोई बहुत महंगी गाड़ी ले ली और उसके ऊपर चल के उस पर बैठ के जाता है और वो ज़्यादा चलता नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे ये था कि सेहत सस्ती थी और बीमारी महंगी थी। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि जो जितना भी फास्ट फूड हमें अभी अवेलेबल हो गया है, जितनी शुगरी ड्रिंक्स हमें अवेलेबल हो गई हैं, टीवी एक ऐसी स्क्रीन जिसके आगे 8-8 घंटे लोग बैठे रहते हैं,
1: और अट्रैक्शन बहुत है,
0: अट्रैक्शन बहुत है इन चीज़ों की,
1: बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सबको कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये टीनेजर से ही शुरू हो रहा है काम, तो आप देखेंगे इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं और आपकी एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन बीमारी आपके पास आई जा रही है जो है, और लेकिन अब इसको अगर आपको आ जाती है बीमारी और अब आपने उसको ट्रीट करना है तो आप सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, आप उसके हैवी बिल्स देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके अलावा जब डॉक्टर आपको कहते हैं आप जिम ज्वाइन करें उसकी उसके अलहदा पैसे आप देते हैं, उसके बाद वो आपको कहता है कि आप ये फलानी जो है आप रिजीम फॉलो करें 3 महीने 6 महीने, उसके अलहदा आप पैसे देंगे, तो ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जबकि आप ये सब प्रिवेंट कर सकते थे, आप चाहते तो आप को ये सारा जो खर्चा है ये भी बच जाता, आपकी बीमारियाँ भी बच जाती अगर आप बेसिक्स पे रहते जैसे पहले ज़माने में होता था। तो ये दौर ऐसा आ गया है कि बीमारी आना बहुत सस्ता हो गया है और अपने आप को सेहतमंद रखना बहुत महंगा हो गया है।
1: जी ठीक, और ये छोटी छोटी ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं तो इससे जैसे जो बीमारी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। ठीक, और बिल्कुल सबसे जो पहली बात आपने ये कि फास्ट फूड या आजकल जो होम डिलीवरीज का चक्कर है, वो टाइमिंग्स का
0: जी मैं आपको बताता हूँ आजकल की क्या रूटीन आती है। तो सुबह उठ के जो सबसे पहले तो ये कि जो लोग सुबह उठते हैं इनकी रात की नींद ही नहीं पूरी हुई होती क्योंकि वो लेट नाइट सोए होते हैं और कोई ना कोई मेडिसिन लेके सोए होते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, उठते साथ वो कॉफ़ी पहले स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शुगर वाली कॉफ़ी पसंद करते हैं तो वो एक ऑलरेडी एक हाई कैलरी ड्रिंक हो जाती है। उसके बाद जब वो काम से वापस आते हैं तो सबसे पहले टीवी लगाते हैं और बैठ जाते हैं और शाम तक वो जो है ना टीवी और ये चल रहा होता है और उसमें जो है कोई मूवमेंट नहीं होती, उसके बीच में वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, वो उसी बेड के ऊपर जहाँ टीवी देख रहे हैं वहीं बैठ के खाते हैं और रात को फिर उसी बेड पे दोबारा ऑर्डर करते हैं और वही खाते हैं, उसमें उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद जब रात को सोने का टाइम आता है तो वो फिर रात भर जागते हैं, उस टाइम वो कहीं कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो उनको होता है कि सुबह काम पर भी जाना है, अब सोने के लिए वो नींद की मेडिसिन लेते हैं, तो इससे आपको आपकी बॉडी में मल्टीपल चेंजेस आती हैं, आपका सोने का रिदम भी ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी में अनहेल्दी जो है वो फूड जा रहा होता है, आपकी जो डाइट है वो तो ऑलरेडी ख़राब हो गई, नींद भी ख़राब हो गई, लेकिन ओवरऑल जो है ये आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करती है और स्लोली स्लोली उसको जो पता चलता है कि वो कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला होता जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्यों हम कहते हैं डिजीज़ जो है बहुत चीपर है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपने बता दी मगर ये कि जो बीमारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हमारे अंदर आ रही हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं?
0: जी तो सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम नॉर्मली हर रोज़ डिस्कस करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है कि बैठे रहना, हरकत ज़्यादा ना करना, जंक फूड खाना, और उसके इससे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है जो शुगर की जो है ना प्रोसेसिंग वो वीक हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उससे सबसे पहले आपको डायबिटीज होने का चांस होता है, और आजकल तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। उसके बाद आस्ता आस्ता ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी तो ब्लड

0: शुगर के साथ ब्लड प्रेशर अक्सर आप देखेंगे कि लोगों को होती है जी। उसके बाद क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है, ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको जॉइंट की प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। और स्क्रीन टाइम के साथ रिसर्च अब बता रही है कि जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है, उतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी के में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो ये तीन चार बीमारियाँ तो आपको उस इकट्ठी आने का चांस होता है।
1: और बिल्कुल सबसे पहले ये कि अब इसके जो मदर ऑफ डिजीज हैं वो तो ओबेसिटी है
0: जी।
1: और उस पर हम जरूर बात करेंगे, और स्पेशली जैसे कि आपके जो प्रोग्राम है, हमारे लिसनर्स जो हैं वो भी बहुत कहते हैं कि हमें उसी पर बात करनी है, क्योंकि जो मोटापा है या ओबेसिटी है उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जैसे एनजाइटी की आपने बात की
0: जी।
1: और जॉइंट्स की
0: प्रॉब्लम
1: वो सारी की सारी इसमें होती हैं। तो इसकी क्या मतलब, इसमें हम थोड़ा ऐड जरूर करना चाहेंगे कि किस तरह से ये तमाम जो डिजीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता
0: जी। तो सबसे पहले तो ये कि यूजुअली जो लोग इस लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं उनको तब तक अवेयरनेस नहीं आती जब तक कि उनको पहला अटैक नहीं आता, ठीक है।
1: अच्छा।
0: अटैक क्या होता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने करीबी दोस्तों को भी जानता हूँ, कल एक दोस्त से मिला तो उसको जो फर्स्ट अटैक होता है वो एक आता है एंग्जाइटी का अटैक। एंग्जाइटी अटैक ये होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना, सर में एक्सट्रीम दर्द हो जाना, और उसके अलावा एक फीलिंग आती है कि आप समझते हो कि आपकी दुनिया ख़त्म हो रही है। ये क्या हुआ, बैठे बैठे जी टी वी देख रहे थे तो हमें ये क्यों हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सारे ब्लड टेस्ट करते हैं जी। सारे ब्लड टेस्ट किया, आपने देखा शुगर बहुत हाई है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आया है, और हार्ट की जो एंजाइम्स हैं जिससे हार्ट अटैक होने का चांस वो भी हाई है। अब वो कहते हैं ये कैसे हो गया भाई, एकदम से मुझे ये सब कैसे हो गया। तो ये प्रोसेस तो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था ना, तो आपने नहीं नोट किया, आपको तो अब वो के अब उसका होता है कि अब मैं इसकी सारी ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, तो अब वो जो है ना एक महंगे ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल पे जाना शुरू हो जाएगा
1: जी। ठीक
0: ठीक है जी,
1: ठीक है। जैसे डायबिटीज जो है वो आपने कहा कि उसमें ज़्यादा शुगर एकदम से ज़्यादा आई है, या बाकी जो टेस्ट हैं वो भी, इसमें एज का बात हम करेंगे कि जो किस एज में क्या हो सकता है
0: जी।
1: या
0: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो वैसे ओबेसिटी और डायबिटीज़ है ना, इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जो 60% जो ओबेसिटी या मोटापा है ना, वो जेनेटिक रीज़न उसकी कही जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स में को मोटापा है तो वो आपको आएगा ही आएगा। और डायबिटीज़ के बारे में भी यही रिसर्च कहती है
1: जी।
0: ठीक है, तो जिनके अभी जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, जो बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को इंसुलिन लेते हुए या मेडिसिन लेते हुए, तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनमें चांस है आने का। और ऐसा होता है कि आजकल हम उनको 15-16 साल की उम्र में ही डायबिटिक देख रहे हैं, उनकी शुगर बहुत हाई है और उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि ये क्या हो गया एकदम से।
1: और इसमें टाइप 2 जो है, इतनी बहुत छोटी यंग एज में भी टाइप 2 डायबिटिक,
0: जी टाइप 2 की ही मैं बात कर रहा हूँ जी, कि टाइप 2 उनको होती है उनके लाइफस्टाइल की वजह से।
1: यही बिल्कुल यही स्टडीज थी, और वैसे भी कि जो यंग हैं, यंग जनरेशन, उसमें टाइप 2 होने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं।
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही,
1: और अब मेरा ख्याल है ज्यादा तो टाइप 2 है क्योंकि एनवायरमेंटल है।
0: देखिए टाइप 2 जब कोई भी हमारे पास बच्चा आ जाता है 15-16-17 साल का जो है, तो सबसे पहले उसका मैं क्या देखता हूँ, मैं उसका वेट देखता हूँ, तो वेट ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा होता है। और अभी मैं आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगी, ज्यादातर बच्चे जो है वो 100 kg प्लस है, ठीक है,
1: बच्चे
0: 100 kg प्लस हैं, लड़के लड़कियां, अगर कतर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अब उनको क्विक फिक्स चाहिए होता है
1: जी,
0: क्विक फिक्स के हमें जल्दी से पतला कर दें, जल्दी से हमें कोई ऐसा मैजिक सोल्यूशन दें, कोई ऐसी टैबलेट दें, हमें कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें, हमारी कोई ऐसी सर्जरी कर दें कि हम एक महीने में 50 kg कम कर दें, तो बहुत मुश्किल है
1: जी।
0: ठीक है, ये सब करना, लेकिन इनको हम यही बताते हैं कि देखो वजन आने में कितना टाइम लगा, 4 साल लग गए, 5 साल लगे ना, तब एक महीने में चला नहीं जाएगा, फिर भी हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स हैं
1: जी।
0: बट मैं समझता हूँ कि डायबिटीज
1: यंग एज में, जैसे हम यंगस्टर्स की बात करें, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अगर आप उन्हें बताते हैं कि अच्छा ये है, तो वो कहीं और जाके ट्रीटमेंट जो है वो भी शुरू कर देते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। मगर जी जो बेसिक इशू है उसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी है
0: जी। अब ये है कि देखें, हम इन बच्चों को ट्रीटमेंट दे देते हैं, विद इन 6 months उनका सारा वेट हम लोग रिड्यूस करवा देते हैं।
1: अच्छा।
0: वो बिल्कुल बिल्कुल विद इन 5 to 6 months उनका सारा वेट रिड्यूस हो जाता है, और वो बहुत खुश होते हैं अपने रिजल्ट्स के साथ, उनकी सारी डायबिटीज़ या जो भी इश्यूज है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर सब खत्म, वो कोई टैबलेट नहीं लेते। लेकिन 2 साल बाद वो हमारे पास वापस आ जाते हैं वही वेट लेके वापस, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा जो पहले था।
1: अच्छा।

0: तो इसका मतलब कि जो वजह हम जो उसकी वजह थी मोटापे की वो हमने नहीं ट्रीट की, हमने तो उसको पेशेंट को ट्रीट किया और वजह क्या थी उसका लाइफस्टाइल
1: जी।
0: अगर वो वापस अब उसी लाइफस्टाइल में जा रहा है जहां वो घर पे बैठा है बाहर से खा रहा है ठीक है तो उसका सारा वजन वापस आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि एजुकेशन भी दी जाए कि आप जब वजन कम कर लेंगे तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपको थोड़ी एक्सरसाइज अच्छा खाना खाना है तभी ये मेंटेन रहेगा। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैजिक पिल नहीं है
1: जी, मेहनत तो करनी है
0: जी, मेहनत आपको करनी है। हम आपकी सिर्फ इतना हेल्प कर रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस करवा देंगे ताकि आप इतने हो जाएं कि आप एक्टिविटी कर सकें, मेहनत कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें डाइट के बारे में। क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज होता है ना मुश्किल होता है उसके लिए एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जॉइंट पेन्स होती हैं और सांस जल्दी फूल जाती है। तो वज़न कम करवा दिया, अब अपनी लाइफ को खुद ही सेट करना है, लेकिन वो वापस उसी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं तो वापस आ जाते हैं हमारे पास।
1: ठीक, इसमें लोग सब जैसे ओबेसिटी की बात करें बाकी जो डिजीज़ हैं वो तो बिल्कुल उसे ही उसकी वजह से ही होती हैं, मगर जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात की तो आप किस तरह से जैसे आपने कहा 6 months में कम कर देते हैं उसमें सर्जरी है टैबलेट्स हैं या किस तरह से, और एज वाइज भी ज़रूर बताइएगा कि एज पर भी ये ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है।
0: जी बिल्कुल, देखें 14 साल से प्लस जितने भी बच्चे हैं हम उनको ट्रीट करते हैं
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 11 साल प्लस पे वो लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, 11 से 12 साल का बच्चा या बच्ची है तो वो वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होता है यूरोप अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे कतर में हम लोग 14 प्लस पे स्टार्ट करते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन ऐसा है कि हर प्रॉब्लम की एक रूट कॉज होती है, जैसे जेनेटिक कॉज है ना, अब एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक बच्चा है वो खाता है उसका पेट फुल नहीं होता, वो खा ही जाता है वो 200 किलो 250 किलो तक हो जाता है 16-17 साल की उम्र में।
1: अच्छा।
0: तो हम उन्हें फिर जो है जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं, जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बट ये रेयर केस है। ज़्यादातर जो है वो लाइफस्टाइल का ही इशू है। हम उन्हें सबसे पहले ऑफर करते हैं मेडिकेशंस, ठीक है, और उसके बाद मेडिसिंस में आपको पता है वेट लॉस इंजेक्शंस आजकल बहुत मशहूर हैं, सेलिब्रिटीज ले रही हैं और ज़ेम्पिक हो गई, मंजारो हो गई, उससे उनका काफ़ी हद तक वज़न कम हो जाता है और उसके बाद वो अपनी लाइफस्टाइल के साथ उसको मेंटेन करते हैं
1: जी।
0: और जब ये फेल हो जाए तो फिर हम उन्हें, हमारे पास बैलून है, एक बैलून ऐसी चीज़ है जो आप कैप्सूल लेते हैं आप स्टमक में चला जाता है, उससे आप फुल की फीलिंग रहती है आपको हर वक्त, आपको लगता है कि आपने हर वक्त खाना खाया हुआ है। 4 से 5 महीने वो बैलून आपके अंदर रहता है और आपका काफी 25 से 30 किलो वजन कम हो जाता है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हम रखते हैं वो सर्जरी है। सर्जरी कभी भी हम पहला ऑप्शन नहीं देते, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सर्जरी ही है आज तक।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो इसमें भी एज पर डिपेंड करता है कि नहीं?
0: जैसे
1: आपने कहा 14 प्लस को भी सर्जरी
0: जी,
1: अगर जरूरत पड़े तो कर
0: बिल्कुल,
1: देते हैं।
0: बिल्कुल 14 की हमने की है, 14-15 की हम कर रहे हैं रेगुलरली। देखें अगर बच्चा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है ना तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, ठीक है, उसके हार्मोन्स इफेक्ट होंगे, उसकी बोन्स इफेक्ट होंगी, तो हम उसका वेट लॉस जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो 20-25 साल की उम्र में पहुंचे तो उसकी कोई उसको कोई डिफॉर्मिटी ना हो, उसको कोई बीमारी ना रहे। अब हम उसको इग्नोर करेंगे या हम उसको कहेंगे 18 साल की उम्र में आना हमारे पास, तो 4-5 साल में तो उसका और बेड़ा गर्क हो जाएगा।
1: ठीक ठीक, कि इस वजह से ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने इंजेक्शंस की बात की, उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स की बहुत बात की जाती है बार बार, जैसे कि आपने नाम लिया ओज़ेम्पिक है, मंजारो, तो इसमें क्या ऐसा है आपके पास जो पेशेंट्स हैं या कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो आते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखें हर चीज़ का साइड इफेक्ट, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, इवन के पेनाडोल भी जो आप सर दर्द के लिए ले रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है अगर ज़्यादा ले लें। तो ये इंजेक्शंस बेसिकली, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपकी बॉडी में GLP रिसेप्टर्स होते हैं, GLP पेप्टाइड्स होती हैं जो ये मेडिसिन उनको इन्हेंस कर देती हैं, और इन्हेंस करने से क्या होता है कि दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है और दूसरा ये कि आपका जो दिमाग में एपेटाइट सेंटर है जो आपको बताता है कि आपने खाना खा लिया अब आप फुल हो गए अब आप छोड़ दें, ये उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है कि हर वक्त आपने हफ्ते में एक बार ये इंजेक्शन स्किन के नीचे ले लिया तो आपको ना भूख नहीं लगेगी, आप कुछ थोड़ा सा खाएंगे आप फुल हो जाएंगे, तो आप जो है ना आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप हमेशा फुल हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। तो इससे जो है इवेंचुअली 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, और इसके साथ आपको अच्छी डाइट, थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट और थोड़ी सी वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, तो आपका वज़न कम हो जाता है। साइड इफेक्ट्स वहाँ आते हैं जहाँ लोग डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं फॉलो करते, खुद ही से बाहर से इंजेक्शंस ले लेते हैं, कभी किसी से कहीं से, खुद ही से डोज बढ़ा लेते हैं।

0: अब ये जो इसकी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर इंडिकेशन है या जो कहेंगे कि जिस सूरत में ये इंजेक्शन हम नहीं देते जिनमें थायराइड कैंसर का या फैमिली हिस्ट्री हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो थायराइड के नोड्यूल्स हो तो क्योंकि ये एक जो है इसकी थायराइड की ना कैंसर करने में इसका कोई थोड़ा डाटा आया था अमेरिका में कि इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए लेकिन बाकी सब ले सकते हैं नौजिया वॉमिटिंग ये छोटे डेली बेसिस पे थोड़े से सिम्टम्स होते हैं पहले 2-3 दिन फिर वो रिजॉल्व हो जाते हैं और पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए तो आपको ये मेडिसिन स्टॉप करनी पड़ती है और उसके बाद वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेते हैं आप ठीक हो जाते हैं
1: ठीक
0: तो ये इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं
1: तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि बाकी भी जो कंप्लेंट करते हैं कि उनके जो थिनिंग ऑफ हेयर हो गई है या जैसे कि बहुत ज़्यादा उन्हें चक्कर आते हैं मतलब इस तरह से भी तो वो क्यों जैसे आपने कहा कि पानी ज़्यादा पिए या कुछ तो उसकी भी कोई खास वजह है
0: देखें आप किसी भी तरीके से अपना वज़न कम करेंगे ना वो डाइट हो गई वो एक्सरसाइज हो गई या आपने खाना छोड़ दिया और या आपने सर्जरी करा लिया आपने इंजेक्शन ले लिए तो ये बालों पर इफेक्ट आता है ठीक है इसमें ये इंजेक्शन की वजह से नहीं है ये सर्जरी की वजह से नहीं है ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है बॉडी जब वेट लूज करती है तो वो बालों की ग्रोथ को रोक देती है और बाकी बॉडी की तरफ ज्यादा तवज्जो देती है जिसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं बाल गिरना शुरू हो जाते हैं लेकिन ये रिवर्सेबल है जैसे ही आपका वजन रुक जाएगा आप वापस खाना खाना शुरू हो जाएंगे तो वो वापस आना शुरू हो जाते हैं ये टेम्परेरी होता है लेकिन इसमें किसी इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है ये आपका वेट लॉस का प्रोसेस है जिसकी वजह से होता है और दूसरी जो आप बता रही थी चक्कर आते हैं इसकी वजह है सिर्फ डिहाइड्रेशन
1: अच्छा
0: डिहाइड्रेशन क्योंकि जब आपको भूख नहीं लगती ना पानी भी नहीं पीते आपका ध्यान ही नहीं जाता कि पानी भी चाहिए मुझे प्यास नहीं लग रही तो इसलिए लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि एक पानी की बोतल 1 या 1.5 लीटर की अपने पास रखें उसका सिप लेते रहें पूरा दिन उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के तो वो अपना अपनी नमकियात पूरी रखें
1: ठीक है डॉक्टर इसमें जब डोज होती है जैसे जैसे वेट जो है वो एडजस्ट करते हैं
0: जी वो तो इंजेक्शंस की सबसे पहले जो डोज होती है वो बहुत छोटी होती है और वो होती है सेंसिटाइज करने के लिए आपको मतलब आपकी बॉडी को उसका आदत उसकी आदत लगाने के लिए तो हम जो फर्स्ट डोज 1 महीने की देते हैं ना वो बहुत छोटी होती है ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो पहले से ही पता चल जाए और उससे भी लोगों का वेट लॉस हो जाता है हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उससे ज्यादा वेट लॉस होगा लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उसी बेसिक छोटी सी डोज के ऊपर ही 3-4 महीने रहते हैं और उसी से उनका वेट लॉस हो जाता है हम हर जो है 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ना डोज जब देखते हैं कि वो उसका वेट रुक गया है और उसको भूख लगना शुरू हो गई इसका मतलब वो डोज जो है वो यूज टू हो गया उस डोज के तो हम उसकी डोज डबल कर देते हैं मतलब अगर 2.5 थी तो 5 हो जाएगी इसी तरह 0.5 थी तो 1 mg हो जाएगी तो हम ना उसकी डोज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम बढ़ा देते हैं
1: ठीक ठीक तो डॉक्टर जो डायबिटीज के लिए भी ये जो इंजेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं
0: जी
1: तो उसमें क्या उसकी रिजीम होती है किस तरह से आप
0: डायबिटीज के लिए जो हम ये जी देते हैं वेट लॉस इंजेक्शन जो दे रहे हैं
1: जी
0: अच्छा ये बड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है तो मैं नहीं चाहता कि लोग सुन के इसको कोई ट्राई करने की कोशिश करें हम देखते हैं कि डायबिटिक बंदे की
1: ये तो है कि अगर कंसल्ट कोई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो तभी
0: जी बिल्कुल नहीं आपको डॉक्टर को अपनी शुगर का ट्रेंड बताना है आपका 3 महीने के शुगर का टेस्ट का दिखाना है आपको ये भी बताना है कि आप इंसुलिन की कितने यूनिट्स ले रहे हैं उसके साथ टैबलेट्स कितनी ले रहे हैं क्योंकि जो वेट लॉस इंजेक्शंस है ना ये शुगर को इंसुलिन से भी ज़्यादा जल्दी कम करते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट्स को पहले हम ये वेट लॉस इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और साथ में उनकी शुगर की जो इंसुलिन है वो सेम रखते हैं लेकिन टैबलेट छुड़वा देते हैं ठीक है लेकिन उसके बाद हम उनकी ऐसी डोजिंग करते हैं एडजस्टमेंट्स करते हैं कि वो आस्ता आस्ता इंसुलिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ वेट लॉस इंजेक्शन रह जाता है और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब उसका वजन कम हो जाता है उसका जो HbA1c या शुगर नॉर्मल हो जाती है तो हम स्लोली उस वेट लॉस इंजेक्शन को भी लोअर डोज पे लेके आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इंसुलिन तो आपको रोज रात को लगानी है लेकिन डायबिटीज का जो वेट लॉस का इंजेक्शन है वो हफ्ते में एक बार लगाना है तो इस तरह जो है ना मैनेज करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है लेकिन सिर्फ एक स्पेशलिस्ट और अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट ही ये करते हैं हम लोग
1: ठीक ठीक डॉक्टर किस हद तक ये जो इंजेक्शन वगैरह हैं वो सक्सेसफुल हैं जैसे आप क्या समझते हैं कि बाकी हम आगे बैलूनिंग पर भी चलेंगे कि वो मगर इसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और यहाँ पर तो खास तौर पर ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में ही है मगर ये कि यहाँ पर भी जैसे फास्ट फूड और हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जी
0: देखें इन इंजेक्शंस का जो अभी टाइम शुरू हुआ है ना ये बहुत अर्ली है अभी इनके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सिर्फ वज़न नहीं इवन कैंसर

0: सर के अंदर और उसके अलावा पॉलीसिस्टिक जो औरतों में बेचारियों में प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोनल इश्यूज होते हैं बहुत सारे फायदे नजर आना शुरू हो गए इन इंजेक्शंस के क्योंकि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को ये बैक टू नॉर्मल करते हैं ठीक है तो आप जो है अभी हम बहुत अर्ली फेज में अभी तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन है ना अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है ना वो जब लॉन्च होगी तो वो ऐसे ही है कि समझे आपने वेट लॉस सर्जरी करा ली वो इंजेक्शन उस वेट लॉस सर्जरी के बराबर की वेट लॉस देगा आपको तो इवेंचुअली क्या होगा अब बहुत सारे लोग मैंने आपको बताया कि वो जिम जाते हैं डाइट करते हैं लेकिन महीने दो महीने बाद कहते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा तो इस इंजेक्शन के थ्रू हम उनको वेट लॉस इनिशिएट करवाते हैं और उसके बाद वो अपने लाइफस्टाइल के साथ वो बैलेंस कर लेते हैं और हमारे पास रश लगा हुआ है जो है ना पेशेंट्स का जितना फायदा हो रहा है उनको
1: जी
0: बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं
1: तो इसमें जो है यहाँ पर जो उसमें और भी मुख्तलिफ डिजीजेस के साथ आते हैं या सिर्फ मोटापे की वजह से ही आपके पास आते हैं
0: ऐसा है कि ज्यादातर लोग जो हैं डायबिटिक्स हैं ठीक है और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ मोटापे की वजह से क्योंकि जब आप यंग जनरेशन की बात करेंगे ना तो बहुत सारे लोग उनमें इतनी बीमारी नहीं है सिर्फ वो मोटापा है तो अब जो है ना वेट लॉस इंजेक्शन जो है एक फैशन बन गया
1: जी
0: मुझे चाहिए मुझे एक महीने में 20 किलो कम करना जी मुझे चाहिए फिर उनका सवाल होता है जी मेरा कितना वजन कम होगा इस महीने तो मैंने कहा मैं आपको नहीं बता सकता जो आइडियली 5-10-15 किलो कहा गया है हर बंदा डिफरेंट है उनका पहला सवाल यही होता है कि मुझे ये इंजेक्शन चाहिए और इसमें मेरा के एक महीने में कितना वजन कम हो जाएगा या मैं ये सर्जरी कर दें मेरा एक महीने में कितना वजन कम हो जाएगा तो हर तरह का पेशेंट हमारे पास है हमारे पास ऐसे पेशेंट भी है जिनकी शादी आ रही है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जी जी उनको चाहिए कि 3 महीने में हमारा वेट लॉस हो जाए बस है हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं और ये सब पॉसिबल है तो लेकिन आई थिंक के अभी जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है जब लोगों को इसकी ज्यादा अवेयरनेस आएगी उनको पता चलेगा आई थिंक बहुत सारे लोग जो है ना इसको अडॉप्ट करेंगे
1: जी डॉक्टर साहब इसमें ये है कि फिर उसे लगाते रहना है या कब उसको खत्म भी कर सकते हैं
0: जी आपको मिनिमम 6 महीने से लेके 8 महीने तक तो आपको लगाना है ठीक है
1: अच्छा।
0: उसके बाद आपको टेपर करना होता है टेपर ये है कि आप 10 दिन में एक लो डोज लगा ली महीने में 3 बार उसके बाद महीने में 2 बार करते करते आप 1 साल जब हो जाएगा ना फिर आप उसको स्टॉप कर देंगे ठीक है लेकिन तब जब आपका गोल वेट अचीव हो गया अब ये नहीं कि भाई मैं 3 महीने के लिए लूंगा उसके बाद मैं खुद ही कर लूंगा क्योंकि 3 महीने में तो मेडिसिन का जो है ना इफेक्ट टेम्परेरी होता है उसके बाद वेट का वापस आने का हाई चांस होता है
1: अच्छा ठीक ठीक
0: लोगों ने अपने पेरेंट्स को देनी शुरू कर दी है जिनकी ये मदर्स जो हैं वो डायबिटिक हैं इंसुलिन सुबह शाम लगा रही हैं अब उन्होंने वो 60+ हैं 65+ हैं 70+ हैं वो वेट लॉस इंजेक्शन यूज कर रही हैं और उनकी इंसुलिन छूट चुकी है अब और उनका वजन भी कम हो गया वो और हेल्दी हो गई
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
4: दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं।

0: मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: इसमें डॉक्टर साहब यही जब बिल्कुल एक टारगेट होता है कि अच्छा इतने टाइम में हमने काम करना है, तो उसकी वजह से कुछ और साइड इफेक्ट होते हैं बाकी पूरी बॉडी के जो हमारे सिस्टम्स हैं उन पर, क्योंकि इतनी जल्दी तेजी से वजन कम करना तो वैसे तो अनहेल्दी होता है। तो आप क्या कहते हैं
1: इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बहुत तेजी से वजन कम करने के। सबसे पहले तो ये कि विटामिन डेफिशिएंसीज, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि हम इंजेक्शन भी लें और हम खाएं भी ना, ठीक है, ताकि हमारा एक हफ्ते में अगर 2 किलो कम होना है तो हमारा 5 किलो एक हफ्ते में हो जाए। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना विटामिन्स की आस्ता आस्ता कमी होना शुरू हो जाती है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारा आयरन, जो जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है और उसकी वजह से भी डिजीनेस होती है क्योंकि ब्लड कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट विटामिन्स है, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, B12, ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में ना एक खास रोल प्ले करते हैं। कोई हमारी इम्यूनिटी में अच्छा काम करता है, कोई हमारी बॉडी की हेल्थ या एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, तो ये ना लेजी हो जाते हैं, फिर वो ऐसे एक सीट पर बैठते हैं और वैसे थके हारे कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे, आप ना विटामिन की। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, जितना फास्ट आप वेट लॉस करेंगे ना आपके पित्ते में पथरी बनने का चांस होता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, जिसके लिए बाद में आपको सर्जरी करानी पड़ जाती है क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे ना तो पित्ता जो है वो काम नहीं कर रहा होता, तो उसमें जितना भी बाइल पड़ा होता है वो आस्ता आस्ता पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं यही कहूंगा कि विटामिन्स की कमी लोगों को व्हील चेयर तक ले गई है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही है ना कि वो अनहेल्दी हम वेट जो है ना वो अपना कम कर रहे होते हैं और जैसे हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है और जो है ये जो काम हम कर रहे होते हैं इसमें बिल्कुल। अब हिस्ट्री भी लेते हैं तो उसमें ये भी है कि जो गॉल स्टोन्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी ये वेट लॉस की हिस्ट्री होती है
1: बिल्कुल ऐसे ही,
0: और डाइटिंग कर रहे हैं अन मतलब कुछ कवर नहीं है
1: जी, बिल्कुल
0: कंसल्टेशन नहीं है
1: बगैर नॉलेज के जब कोई भी आप काम करेंगे ना तो ऐसे साइड इफेक्ट्स आएंगे और बाद में डॉक्टर बताएगा आपको कि इस वजह से हो गया। तो हमेशा ये मोटापा भी ना इसको एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही कर लूंगा, अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को एक दफा दिखा लेंगे ना तो काफी नॉलेज मिल जाएगा आपको और आप अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं।
0: ठीक है, तो उसमें आपने देखा जैसे हम यंग एज की बात करें टीनेजर्स हैं क्योंकि उन्हें तो ये सारी चीज़ें जो फास्ट फूड है, तो क्या वो आप जैसे बताते हैं आपके पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं या नहीं?
1: सच्ची बात बताऊं तो नहीं करते।
0: अच्छा जी, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना
1: जी। तो इसलिए जो है ना अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि आखिरी हल हम सर्जरी होता है, फिर ज्यादातर हम सर्जरी ही करते हैं। ठीक है, अब सर्जरी में ना हम लोग जबरदस्ती वेट लॉस करवा देते हैं क्योंकि हम लोग आपके सिस्टम ही ऐसा बना देते हैं कि खाना खा ही नहीं सकते आप, ठीक है, वो आपका स्टमक छोटा कर देते हैं।

0: आप खा आप बर्गर मंगाएं, कोई चिप्स मंगवाएं, थोड़ा सा खाएं, पेट फुल हो जाएगा. और बाईपास में क्या होता है कि आप थोड़ा सा खा भी लें, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है, तो हमें, और लेकिन ये हम उन्हीं को ऑफर करते हैं जिनके मोटापे की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं.
1: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब ये मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि क्यों आप जो वेट लॉस है दूसरे तरीकों से भी जैसे कि कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज की और जो डाइट की या कुछ, मगर ये फौरन इस तरह के जो मेजर्स हैं क्यों किए जाते हैं
0: जी?
1: जैसे आपने बात की जो यंग जनरेशन है उसमें जो ग्रोथ है कम हो जाती है, ये ज़रा मैं पूछना चाहूँगी, पेरेंट्स सुन रहे हैं या टीन एजर्स के सब, तो क्यों ऐसा आप करते हैं
0: जी? तो हम क्यों इनको ऑफर करते हैं?
1: जी ऑफर करते हैं
0: क्योंकि एक तो ये कि मैं
1: वैसे भी हो जाता है या हो सकता है, हो जाता है तो नहीं, हो सकता है कि हम डाइट करें, हम एक्सरसाइज करें, हम ये करें, मगर ये जो शॉर्ट अपनाए जाते हैं वेस्ट, तो वो क्यों
0: जी? जब बेरियाट्रिक सर्जरी आई थी ना तो बिल्कुल ऐसे ही लोग हमें क्वेश्चन करते थे और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे. कहते थे क्यों आप लोग जब डाइट और एक्सरसाइज से हो रहा है काम. तो मैंने कहा अगर डाइट और एक्सरसाइज से काम हो रहा था तो ओबेसिटी 70% पे क्यों चली गई? तो हर दो में से एक बच्चा मोटा क्यों है? ठीक है,
1: हर साल बल्कि 10 years पे भी जो हो रहे हैं न्यू डेवलपमेंट्स ट्रीटमेंट के अलावा जो सारी चीजें हैं उसमें ये देखा जाता है कि फिर भी ओबेसिटी जो ज्यादा होती चली
0: नहीं. आप ओबेसिटी मोटापा ना एक ऐसी चीज है कि ये सारी जिंदगी ना ये ईमान की तरह आपको ना पकड़ के रखना पड़ता है. यानी आप थोड़े पतले हुए ना फिर आप मोटे हो जाएंगे, फिर आप थोड़े पतले होंगे फिर आप मोटे. अब मुझे जो 40 से 50 की उम्र में लोग मेरे पास आते हैं ना वो ये सब कर चुके हुए हैं, उन्होंने अपना वजन कम किया, वो बहुत पतले हो गए, वापस मोटे हो गए, फिर कहते मैंने दोबारा भी किया, मैं फिर वापस आ गया. ये ऐसी बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ही ट्रीट करना है. मैं इसलिए आपको कह रहा था. तो हम उसे, हम अब ये फील्ड बनी इसलिए कि हम उन लोगों को हेल्प कर सकें जो इसकी बीमारी के अंदर जो है ना वो बहुत गहरे फंस चुके हैं. क्योंकि जितनी देर मोटापा रहेगा ना, हार्ट अटैक का चांस रहेगा, किडनी का चांस डैमेज होने का चांस रहेगा, आपकी जो है लिवर, फैटी लिवर जो बहुत बड़ा मसला है जो पूरी बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल करता है, वो उसका चांस रहेगा. तो ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए बहुत बेहतर है कि एक छोटी सी सर्जरी करा लो जाके और खत्म कर दो ये सब कुछ.
1: ठीक है, मगर डॉक्टर साहब खत्म तो नहीं हो जाता ना, उसमें भी तो आपको केयर करनी जरूरी है. जैसे आपने कहा कि कुछ सालों के बाद वापस आते हैं और ये कि ओबेसिटी के साथ ही बार दफा उससे भी ज्यादा
0: 90% हम लोग एक पेशेंट को हेल्प कर देते हैं, लेकिन नथिंग इज 100%. जैसे मैंने कहा कोई मैजिक पिल नहीं है, हर चीज में 10-15% का एक मार्जिन रह जाता है. तो जब हम कोई भी वेट लॉस सर्जरी करते हैं, अब मैं आपको तो एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरी बहनें जो है ना सुन रही होंगी, तो स्पेनिश लाटे दिन की 3-3, 4-4 पीती हैं सर्जरी के बाद. ठीक है, अच्छा भला वेट लॉस हो रहा है, 10 किलो गिर गया एक महीने में, 20 किलो टोटल हो गया. अब जी फोन आता है कि वो भी मेरा वजन रुक गया, मैं डाइट पूछता हूँ तो मैं तो कुछ खाती नहीं. ठीक है, आप नहीं कुछ खाती, कुछ पीती होंगी. वो स्पेनिश लाटे पीती हैं जी, कितनी दिन की 3 पीती हूँ क्योंकि खाना नहीं खाया जाता. तो वो स्पेनिश लाटे जो है ना उसमें 1000 कैलोरी है. ठीक है, और अब आपने 2-3 पी ली तो आपने तो समझे कि आपने दिन में 6 रोटियां खा ली, एक अच्छे भले आदमी का खाना खा लिया ना आपने, तो कहाँ से वजन कम होगा? क्योंकि सर्जरी में खाया नहीं जाता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिया जाता है.
1: अच्छा,
0: आप पी सकते हैं.
1: ठीक है,
0: और वो स्लोली स्लोली सिप करते करते, इवन एक भी आपने स्पेनिश लाटे पी ना आपका वजन अफेक्ट होता है. उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, उसके अंदर जो दूध होता है उसके अंदर फैट होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना उसकी.
1: ठीक
0: तो मेरे पास बहुत मिसालें ऐसे दूसरी नेशनलिटीज की
1: भी, वो सिर्फ कैपुचिनो ले ली कुछ इस तरह से और कुछ खाया नहीं
0: जी. वो उसमें सिरप्स होते हैं, कैरेमल सिरप्स होते हैं, ये सारे सिरप्स हाई फ्रुक्टोज हाई कैलोरी होते हैं. वो कहती हैं हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन असल में कैलोरीज तो ले ली ना आपने, एनर्जी ले ली. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम 90% उनकी हेल्प कर देते हैं और बहुत सारे लोग बहुत अपने आइडियल वेट पे चले जाते हैं विद इन 3-4 months 60-65 kilos पे चले जाते हैं. लेकिन क्या करते हैं फिर वो, क्योंकि साइकोलॉजिकली आदत होती है ना पहले इतना खाने की, इतने अपनी क्रेविंग्स होती हैं, आपके टेस्ट बड्स वेट कर रहे होते हैं मैंने ये नहीं खाया बड़े अरसे से, तो इवेंचुअली आपकी आदतें वापस आना शुरू हो जाती हैं. लेकिन आप फिर भी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी शुगर के लोग इंजेक्शन छोड़ देते हैं, इंसुलिन छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट जाती हैं आपकी, जो है बहुत सेहत बहुत अच्छी हो जाती है. बहुत ज्यादा लोगों की सर्जरी तो सिर्फ हम लोग बैक पेन और जॉइंट्स की वजह से करते हैं, क्योंकि आप 1 किलो वजन कम करें ना तो आपके जॉइंट से 4 किलो वजन का स्ट्रेस कम होता
1: है.
0: इसका मतलब आपने 4 किलो अपने का प्रेशर हटा दिया अपने जॉइंट्स के ऊपर से.
1: ठीक है।
0: तो इस तरह जब वजन कम होता है ना तो वो चलना फिरना वॉक करनी आसान हो जाती है उन लोगों के लिए।
1: ठीक है। इसमें डॉक्टर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आप डाइट की बात करते हैं, अभी आप यहाँ के सिर्फ

0: ये कि हम फर्स्ट टू वीक्स या टू टू थ्री वीक्स में उनको लिक्विड डाइट पे रखते हैं। लिक्विड डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप योगर्ट है, सूप्स हैं, जूसेस हैं, तो जितनी जो आपकी आती है ना ड्रिंकेबल चीज़ें हैं, लबन है तो जेली बना के खा सकते हैं आप, तो ना उसका हमारा प्रोटोकॉल है, बुक्स बनी हुई हैं। तो उसके बाद जब टू वीक्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो हम उनको मैश डाइट एडवाइस करते हैं, जैसे कि आप जो भी खाएंगे ना आप मैश्ड खाएंगे, जैसे या कीमे की फॉर्म में खाएंगे, मैश पोटैटो हो गए, चिकन खाया तो उसको मैश कर दो, उसको बॉयल करके मैश कर दो, पका के मैश कर दो, फिश को मैश कर दो, क्योंकि वो स्वेलोइंग में आसानी होती है। उसके साथ आप सूप्स पी सकते हैं और फिर जब एक से डेढ़ महीना या सिक्स वीक्स गुजर जाते हैं ना, फिर हम उनको कहते हैं कि आप अब नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट रखनी है आपने, और उसके लिए भी हमारी जो है डाइट प्लान्स बने हुए हैं।
1: बिल्कुल, वो जो डाइट प्लान है, थोड़ा सा मैं अपने लिसनर्स के लिए, अपने लिए भी क्या है, जैसे हाई प्रोटीन है तो जैसे अपनी डाइट, जैसे एशियन हमारा जो वे ऑफ ये खाने का जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए हमारा ना सबसे, मुझे तो अपना जो वे ऑफ ईटिंग है ना उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये लगता है कि हम लोग ज्यादातर ना रोटी खाने वाले लोग हैं
1: जी,
0: ठीक है, और हमारे रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज है, और जो भी सालन जो तेल में बनते हैं वो भी हाई कैलोरी है, यानी एक टाइम पे रोटी सालन खा लिया ना तो पूरे दिन का एक किस्म का आपने ना ऑलरेडी एक टाइम पे खा लिया। तो इसलिए जब भी डाइटिंग करते हैं ना, आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैंने रोटी छोड़ दी, मैंने चावल छोड़ दिए, क्योंकि बेसिकली रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, डिपेंड करता है, इंडियंस की रोटी थोड़ी छोटी होती है, हमारी जरा बड़ी होती है ना, तो डाइटिंग में या प्लान्स में यही होता है कि हम सब कुछ रखते हैं उसके अंदर, लेकिन हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, हम नहीं चाहते कि उनको कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो या फिर वो ऐसी चीज़ को मिस करके बाद में उसकी तरफ दोबारा जाएं
1: जी।
0: तो अगर हम उनको रोटी अलाउ भी करते हैं ना तो हम कहते हैं एक छोटी एक ही रोटी खाएं, ठीक है, और राइस जो है वो उसके ग्राम्स बताते हैं 100-150 इतने का आप ले लें, और जो कुकिंग स्टाइल है वो हम वेरी लो ऑयल होना चाहिए और उसमें वर्जिन ऑयल
1: जी जी जी जी भून के,
0: आप सब खाएं, आप चिकन खाएं, मटन खाएं, आप फिश खाएं, लेकिन सिर्फ आपने ये चीजें कम करनी है कि उसके साथ आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने उसकी ऑयल कम रखनी है, उसके अंदर जो है चपाती अगर आप ले रहे हैं तो वो एक लें, छोटी लें, और पानी ज्यादा पिए, तो इस तरह की चीजें ना हमारी हर बंदे के स्टाइल के लिहाज से हम लोग टेलर करते हैं उसको,
1: ठीक है।
0: फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें, सैलड्स खाने से पहले सैलड, अरबी रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा आप जाके ऑर्डर करते हैं ना तो पहले सैलड आ जाता है, वो सैलड खाते हैं उसके बाद भूख ही नहीं होती आगे कुछ खाने की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये
1: मेन डिश है,
0: तो मेन डिश है अभी भाई, तो घर में भी ना मैंने यही किया हुआ है, मैं पहले सैलड का बोल रखता हूँ, सैलड खाता हूँ, उसके बाद जो भी खाना है वो थोड़ा सा खा के मैं उठ जाता हूँ।
1: ये तो बिल्कुल सही बात है, इसी तरह से ही होना चाहिए, मगर ये है कि फिर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि क्या
0: ना, मेहनत का काम है थोड़ा सा
1: जी। ठीक जी डॉक्टर साहब, इसमें बैलूनिंग की हम बात करेंगे कि क्या उसमें क्या करते हैं
0: जी।
1: जी
0: गैस्ट्रिक बलून जो है ना,
1: क्योंकि ज्यादातर जो है इंजेक्शन पे बहुत ही ज्यादा जोर है, क्योंकि हर एक रीचेबल है ना, तो को पहुंच सकते हैं वहां तक,
0: बिल्कुल,
1: इसलिए। मगर ये कि बलूनिंग, अब जैसे स्पेशलाइज आपकी फील्ड आ गई कि सर्जन जो हैं उनका काम है, एक तो ये आपने कहा, लिसनर्स आप भी सुन रहे हैं कि इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि जितना वजन हम एक साल में या सिक्स मंथ्स में हम कम करते हैं या कर सकते हैं, मगर इस तरह के जो तरीके हैं, सर्जरी है या इंजेक्शन है उसमें कम, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ जो इश्यूज हैं, लाइक क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसमें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह भी बहुत कम हो जाती हैं उसमें जी। डॉक्टर साहब बैलूनिंग का हमें बताइए कि वो क्या करते हैं।
0: डिफरेंट तरह के गैस्ट्रिक बैलून्स होते हैं, और इनको गैस्ट्रिक बैलून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टमक में छोड़ दिए जाते हैं, दो तीन तरीके होते हैं, या तो एंडोस्कोपी करके छोड़ दिया जाता है स्टमक में
1: जी।
0: या और उसके में जो है एक एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और आजकल नए बैलून्स आए हैं वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है, और वो कैप्सूल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो कैप्सूल आप स्वेलो करते हैं ऑफिस में, डॉक्टर के ऑफिस में, और उसके बाद वो स्टमक में हम उसकी, इसके साथ एक छोटी सी वायर होती है या रस्सी होती है, हम उसको खींचते हैं तो वो कैप्सूल खुल जाता है। उसके बाद हम उसके अंदर कोई 500 से 600 ml जो है ना पानी या कोई लिक्विड होता है हमारे पास, हर कंपनी हमें एक सेपरेट लिक्विड देती है,
1: अच्छा।
0: वो उसके अंदर फिल करते हैं, वो बैलून भर जाता है। अब ये बैलून हम आपके अंदर छोड़ देते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months। अब क्योंकि आपके आधे स्टमक में ये बैलून पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी बाकी स्टमक जो है वो आधा रह गया। मतलब पहले आप अगर एक पूरी प्लेट खाते थे तो अब आप आधी खाएंगे, ठीक है, पानी भी पियेंगे ना तो वो फुल ही आपको फुल की फीलिंग आएगी।

0: और इसका ये बेनिफिट है कि आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना, आपको कुछ इंजेक्ट नहीं करना, कोई नौजिया वॉमिटिंग साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, मसल लॉस नहीं हो रहा, आप अपने काम पे रोज जा सकते हैं, आपको कोई फटीग नहीं हो रही, डिजीनेस नहीं हो रही, क्योंकि आप खाएंगे सब कुछ बस थोड़ा खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन वेट लॉस की जहां बात है ना, उसमें इसका वेट लॉस इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू इंजेक्शंस, क्योंकि इसमें जो है बलून में फिर भी लोग कुछ ना कुछ स्क्वीज कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत वेट लॉस हुआ है और हर स्टोरी डिफरेंट है।
1: तो इसमें जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी है तो वो हमारे स्टमक में है, तो पेशेंट को फीलिंग नहीं आती या कुछ, क्या मतलब?
0: पहले जब ये बलून स्टार्ट हुए थे ना, तो उसमें आते थे बलून थोड़े हैवी होते थे, वो उन पेशेंट्स को फीलिंग आती थी कि कुछ पड़ा हुआ स्टमक में, लेकिन अब चेंज हो गया, अब नए जेल फॉर्म के बलून आ गए हैं, ये बहुत लाइट होते हैं, बल्कि लोग भूल जाते हैं कि बलून डाला हुआ, जब तक कि उनको खाना खा के फुल की फीलिंग नहीं आती। और इसी तरह ना 4 to 5 months में ये जेल डिसॉल्व हो जाती है, वो पानी अंदर ही स्टमक के अंदर खुल जाता है और वो जो है ना जिस्म से निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें इवेंचुअली जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हमने आज तक देखी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई थी भी तो बहुत बहुत रेयर, कोई माइनर होगी। और दूसरा ये कि पहले जो है वो एंडोस्कोपी करके निकालना पड़ता था, अब हम उसे वो खुद ही निकल जाता है।
1: अच्छा जी, वो कैसे?
0: वो डिसॉल्व हो जाता है ना,
1: डिसॉल्व
0: हो जाता है और स्टूल के जरिए निकल जाता है।
1: कि कितनी टाइम में? कितना?
0: 4 to 5 months में। और इतनी देर में लोगों का 30-35 kg कम हो जाता है।
1: आप किन लोगों को ये रिकमेंड करते हैं?
0: हम लोग देखें, ओबेसिटी में आपको पता है कि क्लास ऑफ ओबेसिटी होती है, ओवरवेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बीएमआई के मुताबिक, ठीक है जी। 29 प्लस है तो आपकी क्लास 1 ओबीज हो गए, बीएमआई 29 प्लस है, तो इसमें हम लोग इन्हीं लोगों को ऑफर करते हैं जो थोड़े लो बीएमआई है लेकिन ओबीज है, ठीक है। मतलब मॉर्बिड ओबेसिटी वो है जिसमें आप बहुत ज्यादा, यानी बीएमआई 35-36 प्लस है, यानी आपका वेट 140-150 है, तो उसमें ना हमें पता है वेट लॉस तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसको कम से कम 60-70 किलो कम करना है ना, तो उसके लिए हम बलून नहीं डालते। जिसने 10-20-25 किलो कम करना है हम उसको बलून डाल देते हैं। दूसरा ये जो लोग कहते हैं कि उनको थायराइड का इशू है, एक तो वो इंजेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, और वो कहते हैं हमने सर्जरी नहीं करानी, हमें डर लगता है, या हमें नहीं चाहिए हमें सर्जरी नहीं करानी, हमें नॉन सर्जिकल ऑप्शन चाहिए, तो उन लोगों के लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन आ जाती है।
1: ठीक ठीक। और वैसे तो सुनने में जैसे आप बता भी रहे हैं तो लग भी ऐसे रहा है कि शायद कुछ कम कॉम्प्लिकेशंस हैं।
0: जी जी,
1: सर्जरी की बात करें हम तो सर्जरी तो एक खुद जो है वो कट होगा, ये हो गई इस तरह से है।
0: सच्ची बात बताऊं तो सर्जरी में भी कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वैसे जो है हम लोग एक महीने में कम से कम 80-90 सर्जरीज करते हैं, ठीक है, 80-90 सर्जरीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं हमारे पास एक या दो पेशेंट ही वापस आता होगा पर मंथ, उसके अलावा हम अब इसका मतलब ये है कि 1% 200 में से एक आदमी को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी।
1: ठीक ठीक, इस तरह से। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं?
0: देखें, कॉम्प्लिकेशन जो में आती हैं माइनर और मेजर। माइनर यही है कि वो नौजिया वॉमिटिंग थोड़ी ज्यादा देर चल जाती है उनको, तो वो वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम उनको जो है वाइटामिन एडमिट करके देते हैं। कभी कभी उसमें चांस होता है कि आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कि वो स्टमक टाइट हो जाता है, ब्लॉकेज हो सकती है, वो बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो उसमें हम फिर उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं। रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कभी कभी होती है, कुछ लोगों का एसिडिटी बढ़ जाती है उसके बाद, क्योंकि स्टमक छोटा हो गया लेकिन एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है उनके अंदर, तो उसकी भी सेपरेट ट्रीटमेंट होती है। और क्यों बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन जब उनको होती है तो वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है उसमें ना, उसमें डीवीटीज और वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है, तो वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप पानी ज्यादा पिए। इस तरह की माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशन एक ही है, वो है लीक, और वो होता है फर्स्ट 1 month ऑफ सर्जरी में, और वो भी लेस देन 1% लोगों में होता है, इसका जो स्टेटिस्टिक्स है।
1: ठीक है,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

जी आज हम बात कर रहे हैं कि जो किस तरह से जो ओबेसिटी है उसके साथ साथ जो हम ज़्यादातर जो डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें कौन सी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो डॉक्टर साहब हमें डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से ये

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूर इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा

0: इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। अब्दुल्ला यासिन एम मूसा, या दोस्तों अब्दुल्ला यासिन एम मूसा रयान के नौजवान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और कतरी बास्केटबॉल के लिए मुस्तकबिल के रोशन सितारों में उनका नाम लिया जाता है। पॉइंट गार्ड की हैसियत से उनका बुनियादी किरदार बॉल को कंट्रोल करना, टीममेट्स के लिए स्कोरिंग के मौके पैदा करना और गेम की रफ्तार को मुनज्जम रखना होता है। दैट्स क्वाइट अ बिट। कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपनी स्किल, स्पीड और कोर्ट विजन से कोचेस की तवज्जो हासिल की है। दोस्तों अर्रयान जैसे मकबूल क्लब में खेलना उनके लिए कीमती तजुर्बा साबित हो रहा है और यहाँ उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ सीखने का मौका मिलता है। अब्दुल्ला कतर के यूथ डेवलपमेंट सिस्टम की एक मिसाल हैं, जहां नए टैलेंट्स को तरक्की का मौका दिया जाता है और नेशनल सेटअप में भी उनका नाम उभरते हुए गार्ड्स में शामिल किया जाता है और उनसे मुस्तकबिल में मजीद तरक्की की उम्मीद है। अगर वो मुसलसल मेहनत और ट्रेनिंग जारी रखें तो वो अर्रयान और कतर दोनों के लिए एक अहम प्लेमेकर बन सकते हैं। उनकी लगन और सीखने का जज्बा उन्हें आने वाले सालों में मजीद कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ministry of Interior ne public places mein pets ke liye kuch laws rakhe hain. Jaise dogs ko aksar public places jaise parks aur cornish mein allowed nahi hai. Aur permitted areas mein bhi leashed hona zaruri hai. Iske saath pet identification जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात करेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में और आज हम जानेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों और हमारे जो नौजवान हैं, हमारा फ्यूचर हैं, उनकी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। बच्चों और नौ उम्र अफराद का जिस्म और दिमाग अभी जो ग्रोथ है या नशो नुमा है उसके मराहल में होता है, इसलिए कैफीन और जो दूसरे मुहर्रिक या एक्टिव अज्जा हैं उन पर जो बड़ों की निस्बत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से बच्चों में बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और जो तवज्जो में कमी पैदा हो सकती है। बास बच्चों में दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है या नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नींद बच्चों और नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा और दिमागी कारकर्दगी के लिए नहायत अहम है और ज़रूरी भी बहुत है। अगर एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से नींद मुतासिर हो जाए तो उसका असर उनकी तालीमी कारकर्दगी पर, उनकी याददाश्त पर और उनके मिजाज पर पड़ सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ गेम्स में या खेलों में हिस्सा लेने वाले नौजवान बाज़ोकात एनर्जी ड्रिंक्स को खेलों के जो मशरूबात हैं वो समझकर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स एक जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में जिसमें पानी और नमकियात की कमी पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और इसी तरह से ऐसे अज्जा शामिल किए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म को एक्टिव रख सकें। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स के जो मुमकिन नुकसान से उन्हें ज़रूर आगाह कीजिए और सेहतमंद मुतबादिल जैसे कि पानी है, दूध है, ताज़ा फलों के जूस हैं, उनकी तरफ उन्हें रागिब कीजिए। इसी तरह याद रखिए कि बच्चों और नौजवानों के लिए क्वालिटी ऑफ स्लीप, मुनासिब नींद, मुतवाजन ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी ही हकीकी तवानाई का ज़रिया हैं, ना कि एनर्जी ड्रिंक्स।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
3: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ अमिता आपके साथ। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वेल, आज कतर ग्रीन बीट्स का ये जो एपिसोड है ना, ये काफी ग्रीन ग्रीन है। वेल, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे कतर में, और किस तरह से हर जगह और हर किसी को पानी आसानी से पहुंचाया जा रहा है, कैसे ये पानी को साफ किया जाता है, और वो सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने सारी जानकारी ली। लेकिन आज हम नजर उन ऊंची ऊंची इमारतों से हटा कर एक ऐसे मॉन्यूमेंट पर डालेंगे जिसे किसी कंस्ट्रक्शन क्रू ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। एक ऐसा साइलेंट गार्जियन जो सदियों से हमारी इस मिट्टी, हमारी इस रेत की हिफाजत, या यूं कहें प्रोटेक्शन कर रहा है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा जानदार जो सिर्फ सुबह की हल्की सी ओस, या यूं कहें मिस्ट पर जिंदा रहता है, और 50 डिग्री की झुलसती गर्मी में भी 100 साल से ज्यादा मुस्कुरा कर खड़ा रहता है। आज का एपिसोड उस अनडिस्प्यूटेड किंग के नाम है जिसे हम द घाफ ट्री कहते हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये कतर की विरासत, लेगेसी है, हमारा शील्ड है, और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद है। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम द डेजर्ट शील्ड की गहराइयों में उतरेंगे। तो जनाब, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने एक ऐसा टारगेट सेट किया है जो शायद सुनने में नामुमकिन लगे, पर हमारा डिटर्मिनेशन टोटली स्ट्रॉन्ग है, बुलंद है। प्लांट अ ट्री इनिशिएटिव के तहत साल 2030 तक पूरे कतर में 10 मिलियन पेड़ लगाने का विजनरी गोल रखा गया है। अब आप सोचेंगे कि अमिता, इतने सारे पेड़ आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पार्क्स को सुंदर बनाने के लिए है? क्योंकि ज्यादातर हमारा दिमाग वहीं दौड़ के जाता है। बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक जंग है डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ। जब हम अपनी मिट्टी में यहाँ के नेटिव स्पीशीज लगाते हैं तो हम सिर्फ ग्रीनरी नहीं बढ़ा रहे बल्कि कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं और अपनी नेशन की हवा को ठंडा कर रहे हैं। हर एक सैपलिंग, या यूं कहें हर एक पौधा जो आज मिट्टी में जा रहा है, वो हमारे क्लाइमेट के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनेगा। हम सिर्फ बीज नहीं बो रहे, हम आने वाली नस्लों के लिए एक सांस लेने लायक कतर तैयार कर रहे हैं। तो जनाब, आज के हमारे कतर ग्रीन बीट्स के इस स्पेशल सेगमेंट प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट में

0: निकलते हैं तो आपको दूर कहीं एक अकेला पेड़ खड़ा नजर आता है। तपती धूप है, चारों तरफ रेत है, ना कोई पानी का जरिया है, ना कोई सहारा है, फिर भी वो पेड़ वहां मुस्कुरा रहा होता है। कभी सोचा है कैसे? हाँ, तो आज हम इस डेजर्ट किंग की जो वो कहते हैं ना कि राज है, सीक्रेट्स, वो हम जानेंगे कि कैसे ये लिविंग लेजेंड अपने आप में एक लिविंग लेजेंड बना है।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। तो जनाब, अगर आप एक गाफ ट्री या गाफ का पेड़ इसे देखेंगे तो आप उसकी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं। यस, ऊपर से ये पेड़ शायद उतना बड़ा ना लगे, पर इसका असली जो एम्पायर है वो जमीन के नीचे छिपा होता है। यस, कुरानिक बोटानिक गार्डन और भी जो वर्चुअल नर्सरी के माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते हैं कि गाफ की जो जड़ें हैं वो जमीन में 30 मीटर्स तक नीचे जा सकती हैं। समझ रहे हैं? एक बार आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए, 30 मीटर्स कितना होगा, यानी एक 10 मंजिल, हाँ 10 स्टोरी जो इमारत होती है, 10 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है, उतनी गहराई जितना ये पेड़ ऊपर है उससे कहीं ज्यादा ये जमीन के अंदर समाया हुआ होता है। इन गहरी जड़ों का मकसद सिर्फ पानी ढूंढना नहीं है, बेशक ये उस गहराई से पानी निकाल लेता है जहाँ कोई और पौधा या पेड़ नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसका असली मकसद बहुत बड़ा है, दैट इज सॉइल स्टेबलाइजेशन। ये जड़ें कतर की मिट्टी को एक मजबूत पकड़ देती हैं, ये एक एंकर की तरह काम करती है ताकि रेगिस्तान की चलती हुई रेत हमारी सड़कों और हमारे शहरों को निगल ना ले। ये पेड़ हमें सिखाता है कि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो दुनिया का कोई भी तूफान आपका वजूद नहीं मिटा सकता। चलिए अब बात करते हैं कतर में उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत होती है, एंड दैट इज कूलिंग। जब जुलाई अगस्त की गर्मी अपने शबाब पर होती है और टेम्परेचर 50 डिग्रीज को छूने लगता है, तब हम सब अपने घरों में एसी फुल करके बैठ जाते हैं, लेकिन घाव तब भी रेगिस्तान में सीना तान कर खड़ा होता है। क्या आपको पता है कि घाव ट्री को नेचुरल एयर कंडीशनर कहा जाता है? इसके घने पत्तों की छांव, यस, इसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से कई डिग्री कम होता है। पुराने जमाने में जो बेडविंस होते थे वो इसी पेड़ के नीचे पनाह लेते थे। ये सिर्फ छांव नहीं देता बल्कि हवा को ठंडा भी करता है। इसके पत्ते सुबह की ओस को कैप्चर करते हैं और एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं जहाँ जिंदगी पनप सके। ये कुदरत की सबसे सोफिस्टिकेटेड, वो कहते हैं ना, डेजर्ट टेक है। हाँ, इंसान ने तो एसी अब बना लिया है, लेकिन गाफ तो सदियों से हमारे नेशन को कूल रख रहा है। वैसे गाफ सिर्फ एक बायोलॉजिकल अजूबा नहीं है, इसका एक गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल रिश्ता भी है हमारी सरजमीन से। एक्सपो 2023 दोहा में जब हम ग्रीन डेजर्ट बेटर एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे तो घाव वहाँ एक मिसाल बनकर उभरा था। यस, ये पेड़ हमें रेजिलियंस सिखाता है। रेजिलियंस का मतलब है हर मुश्किल के बावजूद टिके रहना। घाव की एक और खासियत है, इसकी सौंफ जैसी खुशबू है और इसके जो फल हैं पुराने वक्त में लोग अपने ऊँटों के लिए खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक गिवर है, ये लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है। कम पानी में गुजारा करता है लेकिन बदले में ऑक्सीजन, ठंडक और मिट्टी को हिफाजत देता है। हमें आज अपने आप से ना एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम घाव की तरह बन रहे हैं? क्या हम अपने इकोसिस्टम को कुछ दे रहे हैं या सिर्फ ले ही रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता, हम इस घाव ट्री की हिफाजत कैसे करें? यहाँ रोल आता है हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस का, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कतर फाउंडेशन के तहत जो पुरानिक बोटानिक गार्डन है वो इस पेड़ की बायोलॉजी पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। उनका मकसद है कि कैसे हम इस नेटिव स्पीशी को हर गली हर पार्क में वापस ला सकें। और जनाब आपने

0: वर्चुअल नर्सरी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसे कमाल का प्लेटफॉर्म है जो नेटिव कतरी फ्लोरा को प्रमोट करता है। जब हम अपने घरों में घास लगाते हैं तो हम कतर की असली पहचान को जिंदा रखते हैं। हमें विदेशी पेड़ों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं, पानी पीते हैं। हमें चाहिए घास जो कम में ज्यादा करना जानता है। हाँ जी, जब हम 10 मिलियन ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें घास का किरदार सबसे बड़ा है। ये हमारा क्लाइमेट शील्ड है, हमारा ग्रीन गार्जियन है। तो जनाब, अब इस प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट का सबसे बड़ा सबक, हाँ वो क्या है कि घास की तरह बनो। हाँ जी, अपनी जड़ें इतनी गहरी रखो कि कोई भी मुसीबत आपको हिला ना सके, और अपना वजूद, अपना प्रेजेंस ऐसा रखो कि आपके होने से चारों तरफ सुकून की ठंडक फैल जाए। घास सिर्फ एक पेड़ नहीं है, कतर का एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। अगली बार जब आप रेगिस्तान का सफर करें तो एक घास के पेड़ को देखें तो थोड़ा रुक के ना उसे सलाम जरूर करें, क्योंकि वो सदियों से हमारी मिट्टी का पहरेदार बना हुआ है। वेल, कतर ग्रीन बीट्स में अभी आगे हमारी बातों को हम और कंटिन्यू करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट।
0: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ, और आज कतर ग्रीन बीट में हम बातें कर रहे हैं डेजर्ट शील्ड यानी घास ट्री की। वेल, घास ट्री की महानता के बारे में तो हमने काफी डिस्कशन किया, लेकिन सिर्फ तारीफ करने से या उसकी मजबूती के किस्से सुनने से बात नहीं बनेगी। घास ने सदियों से हमारी हिफाजत की है, कड़कती धूप में साया दिया, हमारी मिट्टी को थामे रखा, लेकिन आज वक्त का पहिया ना घूम रहा है और आज हमारी बारी है कि उसकी हिफाजत हमें करनी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता, हम जो आम इंसान हैं, हम इस बड़े ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? पर बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं बल्कि सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों से होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो रास्ते कौन से हैं जिससे आप कतर की इस ग्रीन लेगेसी के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो जनाब, कतर में हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, खुरानिक बोटैनिक गार्डन, जो कतर फाउंडेशन के तहत आता है। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं है, ये एक नॉलेज का खजाना है, और यहाँ अक्सर कम्युनिटी प्लांटिंग डेज आयोजित किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेरा यकीन मानिए, अपनी बिजी लाइफ से बस 2 घंटे निकाल लीजिए, ठीक है, और वहां जाइए। जब आप अपने हाथों से उस ठंडी मिट्टी को छूते हैं और छोटे से पौधे के लिए एक गड्ढा खोदते हैं और उसे बड़े प्यार से वहां लगाते हैं या कह सकते हैं रोपते हैं, तो वो एहसास शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहे हैं, आप कतर की हिस्ट्री में एक हिस्सा जमीन में बो रहे हैं। वो पौधा जब बड़ा होगा तो वो आपकी मेहनत की गवाही देगा। हाँ, तो अगली बार जब आपको कुरानिक बोटैनिक गार्डन का कॉल आए तो पीछे मत हटिए, मिट्टी में हाथ डालिए, क्योंकि वहीं से जिंदगी शुरू हुई है। हम अक्सर अपने घरों के गार्डन या बालकनी को सजाने के लिए कुछ विदेशी या यूं कहें एग्जॉटिक पौधे ले आते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कतर जैसे देश में जहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहाँ हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। यहाँ रोल आता है वर्चुअल नर्सरी का, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये लोग कतर के नेटिव फ्लोरा यानी यहाँ की अपनी मिट्टी के पौधों को प्रमोट करते हैं। जब आप अपने घर के लिए घास, सिद्रा या कोई और लोकल पौधा चुनते हैं तो आप 2 बड़े काम करते हैं। पहला, आप पानी बचाते हैं क्योंकि इन पौधों को यहाँ के माहौल की आदत है, और दूसरा, आप यहाँ के लोकल इकोसिस्टम की मदद करते हैं। देसी पौधे लगाने का मतलब है हम मेहनत, कम पानी और एक खुशहाल पर्यावरण या एनवायरनमेंट, या फिर यूं कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, हाँ उसे प्रमोट करते हैं। तो जब आप अगली बार नर्सरी जाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम पेड़ पौधों के बड़े शौकीन होते हैं, तो यहाँ के लोकल प्लांट्स को चुनें। और अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारे लिए एक अहम कदम भी हो सकता है कि रिस्पेक्ट द वाइल्ड गाफ। हाँ, सर्दियों का मौसम आते ही जब हम अपनी गाड़ियां उठाकर निकल जाते हैं कैंपिंग या ड्यून बैशिंग के लिए, तो ये हमारी लाइफस्टाइल का ना एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा बन चुका है, हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन एक चीज है जो मैंने अक्सर नोटिस की है, इस मस्ती के बीच हम अक्सर अपने साइलेंट गार्जियंस को ना भूल जाते हैं। याद रखिए, रेगिस्तान में खड़ा हर एक पुराना घाव का पेड़ अपने आप में एक हेरिटेज साइट है। वो सदियों के एफर्ट से, यू कह सकते ना, तपस्या के बाद हमको मिला है। अब आप कैंपिंग करें तो ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को ना नुकसान ना पहुंचे, पेड़ के नीचे कचरा ना छोड़ें। ये प्लास्टिक की बॉटल्स, टीन के डिब्बे मिट्टी को ना बीमार कर देते हैं जिसने हमें सहारा दिया है, तो हमें थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। काफ का वो शील्ड तभी मजबूत रहेगा जब हम उसकी इज्जत करेंगे। वो कतर की पहचान है, उसे मैला मत होने दीजिएगा, ठीक है? तो जनाब, हमारा जो कतर ग्रीन बीट है वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है, और जब आखिरी मुकाम पे पहुंचा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक पुरानी कहावत है, एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा वक्त अभी है। हाँ, आज आप जो घाव का पेड़ लगाएंगे वो शायद आज आपको फल ना दे, शायद आज आपको पूरी तरह से साया ना दे, लेकिन याद रखिए वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए एक ताजी सांस बनेगा। ये एक वादा है जो हम अपने आने वाली नस्लों से करते हैं। हम उन्हें सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं देना चाहते, हम उन्हें एक ऐसा रेगिस्तान भी देना चाहते हैं जहां रेत का ढेर भी हो लेकिन जिंदगी से भरपूर हो। वेल, कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमें इस घाव के पेड़ से तीन बातें सीखनी है। रेजिलियंस यानी हर मुश्किल हालत में लड़ने की ताकत, डेप यानी अपनी जड़ों को अपने कल्चर से, अपनी बातों से, अपने पुरखों की चीजों से हमेशा जुड़े रखना, वो भी गहराई से, और करेज यानी हर तूफान के सामने मुस्कुरा कर खड़े रहना। वेल, अब वक्त हो गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी मिट्टी हाथ में लेते हैं, अपनी इस सर जमीन को और भी हरा भरा बनाते हैं, क्योंकि याद रखिए ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारी लेगेसी है। तो उम्मीद है कि आज का हमारा जो एपिसोड, जो कि घाव ट्री के नाम था, द डेजर्ट शील्ड, आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो आप हमसे अपने व्यूज, अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, और आपके मैसेजेस को जरूर नोट किया जाएगा। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का। अब अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन बीट्स में एक नए नवेले एपिसोड के साथ, एक नए नवेले प्रॉमिस के साथ। तो फिर हमारे साथ बने रहना है, FM 107 सुनते रहना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं FM 107 की, और अपनी आर जमीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। फिलहाल अपना खूब सारा ख्याल रखें और स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
5: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
6: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है फजील और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल स्कैम की दुनिया में एक नए स्कैम के बारे में। वेल, दोस्तों, ये स्कैम है टैप टू पे चैरिटी स्कैम। अर्बन एरियाज और क्राउडेड सिटी सेंटर्स में एक नया कॉन्टेक्ट लेस फ्रॉड सामने आया है जिसे टैप टू पे चैरिटी स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स शहर के बिजी लोकेशंस जैसे मेट्रो स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स पर खड़े होते हैं। ये लोग खुद को किसी फेक चैरिटी, ऑर्फनेज या एनिमल शेल्टर का वॉलंटियर बताते हैं। लोगों का इमोशनल ट्रस्ट जीतने के लिए इनके पास फेक वाउचर्स, बैनर्स और यूनिफॉर्म भी होती है। ये स्कैमर्स कैश मांगने के बजाय कहते हैं कि वो सिर्फ एक छोटी सी कॉन्टेक्ट लेस डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको ऐसे में लगता है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो आपके सामने एक हैंड हेल्ड पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन या स्मार्टफोन आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ एक टैप करने को कहते हैं। असल में ये मशीन्स प्रीसेट होती हैं जहां स्क्रीन्स पर छोटी अमाउंट दिखाकर बैकग्राउंड में मोटा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। कुछ केसेस में चोर इतने शातिर होते हैं कि क्राउडेड बसेस या ट्रेन्स में बिना आपके पूछे आपकी पॉकेट या बैग के पास अपनी RFID या NFC डिवाइस लाते हैं और आपके वॉलेट में रखे कार्ड से कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट चुरा लेते हैं। अर्बन फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग जल्दी में ट्रांजेक्शन थर्मल रिसीट चेक नहीं करते और बाद में बैंक अलर्ट देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सॉल्यूशंस

0: भी हैं। यूज RFID वॉलेट्स। कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट और RFID टेक्नोलॉजी का यूज करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखना है। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हमेशा एक RFID ब्लॉकिंग वॉलेट या पाउच में रखें ताकि कोई सिग्नल स्टील ना कर सके, और हमेशा कार्ड टैप करने से पहले रीडर स्क्रीन पर एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट जरूर चेक करें। किसी भी रास्ते पर खड़े अननोन वॉलंटियर को देने के बजाय हमेशा रजिस्टर्ड चैरिटी वेबसाइट पर डायरेक्ट डोनेट करें। उसके अलावा ट्रांजैक्शन की लिमिट भी रखें। अपने बैंकिंग ऐप में जाकर कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट की डेली लिमिट को लो सेट करें या उसे डिसेबल करें। दोस्तों, स्कैम से बचने के लिए ये था एक और एपिसोड, और इस तरह के नए स्कैम्स के बारे में मैं आपको हर हफ्ते आगाह करता रहूंगा। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी. One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
3: One Step to 2030.
2: आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट जनरेशन्स विजन फॉर 2030. अगर आज के बच्चों और यंग पीपल को कहा जाए कि आप दुनिया डिजाइन कीजिए, 2030 की दुनिया आपके हिसाब से कैसे होगी, क्या आप सोचते हैं, तो ये सवाल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना. आज की जो यंग जनरेशन है वो कल के साइंटिस्ट हैं, कल के लीडर्स हैं, कल के एंटरप्रेन्योर्स हैं और डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स भी. देखिए हर जनरेशन ना अपना मुस्तकबिल इमेजिन करती है, लेकिन आज की जनरेशन पहली ऐसी जनरेशन है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हो रही है, इसलिए उनका फ्यूचर विजन भी बिल्कुल अलग है. आज का स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देखता, वो क्लाइमेट इनोवेटर, एआई एक्सपर्ट, गेम डिजाइनर, स्पेस साइंटिस्ट या सोशल एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है. यंग पीपल की नज़र में 2030 की दुनिया ज्यादा स्मार्ट है, कनेक्टेड है और इंक्लूसिव होनी चाहिए. सबसे पहला विजन एजुकेशन का है. उनका मुस्तकबिल फ्यूचर क्लासरूम सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं होंगे. स्टूडेंट वर्चुअल रियलिटी के जरिए हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करेंगे. साइंस एक्सपेरिमेंट्स डिजिटल लैब्स में होंगे. एआई टीचर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करेंगे. हर स्टूडेंट अपनी स्पीड और अपने स्टाइल के मुताबिक सीखेगा, कोई प्रेशर नहीं. दूसरा विजन है हेल्थ केयर का विजन. यंग पीपल ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां डिजीजेस ना हो या हो तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए. वेरेबल डिवाइसेस हेल्थ मॉनिटर करेंगे और हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो. एक और विजन है एनवायरमेंट को लेकर. आज की जनरेशन क्लाइमेट चेंज के मसले को बड़ा सीरियसली लेती है और लेना भी चाहिए. उनका ख्वाब है कि 2030 तक ज्यादा ट्रीज लगाए जाए, प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो और क्लीन एनर्जी आम हो जाए. बहुत से यंग पीपल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को फ्यूचर का जरूरी हिस्सा समझते हैं. टेक्नोलॉजी उनके विजन का एक सेंट्रल पार्ट भी है. दोस्तों 2030 में एआई डेली लाइफ का हिस्सा होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें. जी हाँ, स्मार्ट असिस्टेंट घर चलाने में बड़ी मदद करेंगे. आपके घर में स्मार्ट असिस्टेंट्स होंगे, ट्रैफिक सिस्टम इंटेलिजेंट होगा और बोरिंग या फिर रिपीटेटिव टास्क मशीन संभाल लेंगी. लेकिन यंग जनरेशन ये भी चाहती है कि टेक्नोलॉजी इंसानी वैल्यूज के साथ डेवलप हो, यानी टेक्नोलॉजी पावरफुल हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी हो और एक इंटरेस्टिंग चीज सोशल कनेक्शन भी हो. आज के यंग पीपल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को इम्पोर्टेंस देते हैं. उनका विजन है कि लोग एक दूसरे के कल्चर्स और बैकग्राउंड्स का ज्यादा एहतराम करें. उनके नज़दीक फ्यूचर दुनिया ज्यादा कनेक्टेड और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जॉब्स भी बढ़ने वाली हैं 2030 में. दोस्तों कुछ जॉब्स होंगी जो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होंगी, लेकिन नई जॉब्स क्रिएट होंगी जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. इसीलिए यंग जनरेशन को अडैप्टेबिलिटी को समझना सीखना बहुत जरूरी है. वहीं कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये फ्यूचर के सुपर हीरोज होंगे. स्पेस, हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा होगा. आज के बच्चे मार्स मिशन और स्पेस टूरिज्म के बारे में सुनकर बड़े हो रहे हैं. हो सकता है 2030 तक स्पेस टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में और भी ज्यादा रोल बड़ा प्ले करे. देखिए यंग जनरेशन का एक और ख्वाब हैप्पीनेस का है. उनके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल हेल्थ, वर्क बैलेंस, फैमिली पर्पस, ये सब भी फ्यूचर की डेफिनेशन में शामिल है. अगर हम किसी 15 साल के स्टूडेंट से पूछें कि 2030 की दुनिया कैसी होगी तो शायद वो कहे, मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ या चाहती हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद करे, एनवायरमेंट साफ हो, हर बच्चे को एजुकेशन मिले और लोग एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आए. और शायद यही सबसे खूबसूरत विजन है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग्स और मशीन का नाम नहीं, फ्यूचर इंसानों का नाम है, फ्यूचर वैल्यूज का नाम है, फ्यूचर उम्मीद का नाम है और जब यंग जनरेशन इतनी पॉजिटिव और इनोवेशन के साथ सोचती है तो लगता है कि 2030 सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन है, एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां पहुंचने के लिए हम सबको मिलकर एक बड़ा अहम कदम उठाना होगा, क्योंकि मुस्तकबिल अचानक तो नहीं बनता, मुस्तकबिल आज के फैसलों से बनता है। तो आज आपने क्या फैसला लेना है, चलिए इसी सवाल के साथ मैं आपको यहाँ पर अलविदा कहूंगी। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं एफएम 107
3: एफएम 107
1: दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

This made me realize that I can do something with it. मैं try नहीं करूँगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिमाकत नहीं करूँगा. मगर जो लोग canvas painting करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके घर में बच्चे हैं, काफी interactive way है उनकी skills को train करने का.

0: क्लिपबोर्ड रिमोट, क्लिपबोर्ड रिमोट ये क्या करती है, ये बेसिकली आपके फोन से हर एक चीज को कनेक्ट कर सकती है। ये एंड्रॉइड यूजर्स पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा बिकॉज उनके काम की चीज है ये। आप मान लीजिए आपने कुछ फोन पे कॉपी किया, ठीक है, अब आपके फोन में कुछ कॉपी किया, अब आपको डायरेक्ट जो है वो पीसी पे देना है या लैपटॉप पे देना है। जरूरी नहीं है कि आपका जो फोन है वो iOS है, मतलब एप्पल यूज करें तो आप डेस्कटॉप पे नहीं दे सकते, आप एंड्रॉइड है तो आप मैक पे नहीं दे सकते। एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड, एवरीथिंग। हालांकि ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है इस पे एप्पल पे अगर आप जाके देखेंगे, बट स्टिल ये जो क्लिपबोर्ड रिमोट है ये बहुत काम की ऐप है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, सारी डिवाइसेज अगर सेम वाईफाई से चल रही हैं, कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। अब आप जो फोन में कॉपी करेंगे वो प्रॉम्प्ट आपके लैपटॉप पे पीसी पे आएगा एंड यू कैन सी इट राइट देयर। सो ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा है एंड इट इज सच अ यूजफुल टूल। जहां पर आपको काम में थोड़ी तेजी लानी है, मल्टीपल चीजों पे आप काम कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन यूज एंड मेरी बड़ी काम की है बिकॉज आई लव्ड इट। सो ये क्लिपबोर्ड रिमोट उन लोगों के लिए जो एक से ज्यादा डिवाइसेस पर एक साथ काम करते हैं एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहें, इट डजंट मैटर इवन इफ यू हैव अ मैक या फिर एक डेस्कटॉप या दोनों अलग अलग आई उस पर रन कर रहे हैं, एक iOS है एक एंड्रॉयड है, इट स्टिल वर्क्स। सो क्लिपबोर्ड रिमोट, ट्राई दिस आउट एंड मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा इस पे बिकॉज आई हैव ट्राइड इट ऑन एप्पल एंड अच्छा चलता है भाई, काम की चीज है। ठीक है, बस मेक श्योर करें कि आपके जितनी डिवाइसेज हैं वो एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं। दैट इज समथिंग यू नीड टू बी श्योर अबाउट। ठीक है जी, अब बड़े गैजेट्स की तरफ आ
1: जाओ।
0: सो गैजेट्स दिस वीक, एक गैजेट तो भाई बहुत काम का है, बहुत काम का है, नन्ना सा छोटो सा, बहुत ही क्यूटी पटूटी सा, लेकिन कति काम का भाई। इसका नाम है स्मार्टफोन IR रिमोट। स्मार्टफोन IR, आई एज इन आइसक्रीम, आर एज इन रेड, IR रिमोट। ये जब आप अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, जरा सी डिवाइस है ये और USB डिवाइस है, तो आपके फोन से कनेक्ट करने के बाद ये बहुत सारे अप्लायंसेस आप इससे यूज कर सकते हैं, चीजों को, डिवाइसेस को, आपका टीवी, आपका AC इजीली कंट्रोल होगा। अब आप मुझे पलट के बोलेंगे काउंटर आपका यही रहेगा, अरे ये तो बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, उस तरीके का नहीं है। उसमें क्या है, ऐप डाउनलोड करो, ये खरीदो, वो कार्ड लो, नहीं, ये बहुत ही सस्ता माल है भाई और बहुत ही कर्रा माल है। तो स्मार्टफोन IR रिमोट एक छोटी सी USB ड्राइव की तरह दिखता है, इसको आप अपनी कीचेन में लटका सकते हैं और आप इसको अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। सो इट कनेक्ट्स विद AC, विद TV एंड और कोई डिवाइस जिसके अंदर ब्लूटूथ के इसके फीचर होंगे, तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाएंगे। एंड वो NPC कार्ड होता था, वो NPC कहते, क्या कहते, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उस चीज़ से कनेक्ट होते थे पहले के ज़माने में। अभी आप इजीली अपने फ़ोन को ही रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं, यूनिवर्सल कंट्रोल टू यूज़ डिवाइसेस एंड अ लॉट ऑफ डिवाइसेस एट योर होम। सो ये जो स्मार्टफोन IR रिमोट है कतर में भी इजीली अवेलेबल है, यू कैन सर्च इट, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से है एंड काफ़ी सस्ता गैजेट है और उतना ही काम का है। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं भाई। अगला जो गैजेट इस लिस्ट में, ये है गिफ्ट देने लायक। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए किसी को, ये बहुत बहुत काम का, बहुत क्रिएटिव है एंड जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे, अपने लिए भी लेंगे, तो आपको उतनी खुशी मिलने वाली है। इसका नाम है सिंक पेन डिजिटल नोटबुक सेट। सिंक SYNC, सिंक पेन लिखने वाला पेन, डिजिटल नोटबुक सेट। ये बहुत कड़वी चीज है। आपके सामने एक डायरी होगी, इसमें से सेट में से निकालेंगे आप डायरी, डायरी इज वेरी नॉर्मल, आपको लगे नॉर्मली तो इसमें क्या है, फिर इसका डिजिटल पेन जब आप यूज करेंगे तो जो जो आप अपनी डायरी में लिखेंगे इन रियल टाइम वो आपके फोन में लिखा जाएगा, नोट्स डायरेक्टली इन योर फोन। नॉट जस्ट दैट, डायरी अभी खत्म नहीं हुआ तो उसमें क्या है, डायरी में नीचे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बोल्ड, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाटएवर कलर यू वांट टू चूज, एंड देन यू राइट इन द डायरी एज यू यूजुअली डू, उसके बाद लिखें, मिटाएं, जो मर्जी करें आप, और वो डायरेक्टली नोट आपके फोन में जाएंगे इन रियल टाइम। इट इज सच एन एक्यूरेट थिंग, और इतना एक्यूरेटली टाइप करता है इन रियल टाइम, मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत कमाल की चीज है। आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल इन कतर एज इफ नाउ, बट अगर कोई ट्रेवल कर रहा है स्पेशली इंडिया का, मैं बता सकता हूँ, तो इंडिया में अवेलेबल है ऑन Amazon एंड यू कैन चेक इट ऑन Amazon एज वेल, इट इज इजीली अवेलेबल। मैं नाम फिर से बता देता हूँ, सिंक पेन,

0: डिजिटल नोटबुक सेट भाई गिफ्टिंग के लिए एक नंबर और कोई महंगी डिवाइस नहीं है वन टाइम है और बहुत अच्छी स्पेशली जैसे मेरे ऐसे लोग हैं जिनके लिखने का काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं जस्ट वांट टू राइट एंड कीप इट इन योर फोन एज वेल आपको फोटो वोटो खींचने की जरूरत नहीं है बहुत बहुत अच्छे नोट्स आपके फोन में डायरेक्टली बन सकते हैं आपको फोन भी अपने हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है यू कैन कीप इट असाइड एंड देन यू कैन राइट इन योर नोटबुक और सीधा रियल टाइम में आपके फोन में टाइप कर देना मतलब हैंड राइटिंग में आपकी जो ऑब्वियसली आपने डायरी में लिखी है such a grateful grateful नहीं such a great device grateful great device okay समझ गए ना आप ठीक है आगे बढ़ते all right अगली डिवाइस मैं कीबोर्ड्स का बहुत फैन हूँ जो कीबोर्ड्स बड़े फैंसी से होते हैं उनका तो फैन हुई लेकिन वो कीबोर्ड्स जो काम के होते हैं उनका तो डबल ट्रिपल फैन हूँ जिस कीबोर्ड की मैं आज बात करने वाला हूँ इसके एड्स आपने आपके रील्स पर देखे होंगे क्योंकि कतर में भी अवेलेबल है इसका नाम है सैमसर्स SAMSERS सैमसर्स फोल्डेबल ब्लूटूथ कीबोर्ड और इसमें है टच पैड भी तो ये क्या करता है ये ना फोल्ड हो जाता है पूरा इसकी तीन तय होती हैं वो तीन क्या मतलब दो जगह से फोल्ड होता है और आपकी जेब में आपको आप रख सकते हैं घूम सकते हैं आपको कहीं पे कुछ टाइप करना है आपका फोन आप सामने रखिए कीबोर्ड उससे कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से एंड यू जस्ट टाइप अल्ट्रा सिम है भाई एकदम स्लिम पतला और ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए विंडोज के लिए iOS के लिए टैबलेट के लिए लैपटॉप के लिए बहुत बहुत अच्छा है हर किसी चीज से कनेक्ट हो जाता है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कीबोर्ड मतलब मोहब्बत है भाई ये और इतना ही नहीं इसमें कलर्स अवेलेबल है तो आपको गोल्ड चाहिए आपको रोज गोल्ड चाहिए आपको आई थिंक ब्लू भी है और इसमें ब्लैक भी है वाइट भी है हर रंग मिल जाएगा आपको और ज्यादा प्राइसिंग भी नहीं है इसके ऊपर तो बहुत बहुत अच्छे प्राइस टैग पे बहुत अच्छी डिवाइस है सो गो ऑन विद इट एंड आई थिंक आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाली डिवाइस है सो गो फॉर इट नाउ अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ क्योंकि खबरों में बहुत कुछ है ओके लेट्स मूव ऑन लेटेस्ट टेक न्यूज़ टेक न्यूज़ तो खबरों में छाया हुआ है अगेन एप्पल जाता ही नहीं है भाई खबरों से देखो इस साल जो है एप्पल मनाने वाला है 20th एनिवर्सरी आईफोन्स की और बहुत सारे रूमर्स बाहर आए हैं कि इस बार तो एप्पल कुछ ना कुछ अलग करके रहेगा या तो एज टू एज वो डिस्प्ले लेके आएगा जिसमें कर्व्ड ग्लासेस होंगे सारी तरफ या फिर वो कुछ विजुअली कुछ चेंज करेगा इस बार फोन में डेफिनेटली जो दिखे सामने और इस बार के आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स से बहुत बहुत उम्मीदें लोग कह रहे हैं कि इस बार जो फोन का साइज होगा वो बड़ा होगा पिछले तमाम फोन से सो उम्मीद की जा रही है 6.9 इंचेस साइजेस की भी आई एम नॉट श्योर कि एप्पल ये रिस्क लेगा इट्स नॉट रियली अ रिस्क मगर एप्पल ऐसा कुछ करेगा कह नहीं सकते बट फॉर नाउ यही खबर है तो अभी रूमर्स हैं जब पक्की हो जाएगी बता दूंगा बट फिलहाल 20th एनिवर्सरी सो कुछ तो उम्मीद है इतनी बड़े टेक जायंट से ओके अगली खबर गेमिंग की दुनिया से
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट
0: देखो भाई विचर 3 के फैंस वो जरा प्लीज असेंबल विचर 3 के डीएलसी के अनाउंसमेंट के बाद सबके सब ऐसे हो गए अरे भाई कब आ रहा है ये देखो विचर 3 के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 25 अगस्त को कुछ ना कुछ हो सकता है इनका नाम है जॉफ केली और इन्होंने कहा कि जो गेम अवार्ड्स होंगे समर गेम फेस्ट उसमें विचर 3 सॉन्ग ऑफ द पास्ट जो है वो दिखाया जाएगा और बहुत सारी चीज हो सकती है तो गेम्स कॉन की ओपनिंग नाइट लाइट 2026 इसी साल होने वाली है इट्स गोइंग टू बी समथिंग ह्यूज एंड मुझे ना सिर्फ विचर 3 के डीएलसी की उम्मीद है कंप्लीट रोल आउट की पर साथ में आई रियली होप रेजिडेंट इविल रिक्वियम की डीएलसी भी आ जाए सो गेमर्स हाई फाइव ब्रो देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हमें है वैसे भी पूरा साल लॉक्ड है On that note, social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar. इस नाम से हर जगह मौजूद हैं. Please get in touch with us. And for now, this is Doha Wala Kabir signing off. आप बेहद, बेहद जरूरी हैं. Maasalam.
2: आप सुन रहे हैं FM107.
3: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइकिलिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइकिलिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ, हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी जो पहली बार हुई, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिलें। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पे जहां कतर ने सितारों की तरफ रुख किया और लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट। मैं हूं सरवर मिर्जा, लेकर चलता हूं आपको एक ऐसे सफर पर जो इनोवेशन, एम्बिशन और नेशनल प्राइड का बाइस है। दोहा के रेगिस्तानों से लेकर स्पेस की गहराइयों तक आज हम एक्सप्लोर करते हैं मिशन, माइंड्स और मैजिक जो छुपी है सोहेल के पीछे या सोहेल वन के पीछे, कतर का पहला सैटेलाइट जो एक बोल्ड कदम था मुस्तकबिल की तरफ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जहां आज हम जानेंगे कि कैसे कतर ने एक बड़ी विजन के साथ अपना पैगाम ऑर्बिट में भेजा।
3: 1-0 इग्निशन लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ।
2: दोस्तों, 2013 से पहले कतर का कोई सैटेलाइट प्रेजेंस नहीं था। कम्युनिकेशन सिग्नल्स, ब्रॉडकास्टिंग और डेटा सब फॉरेन सैटेलाइट्स पर डिपेंड करते थे, लेकिन कतर नेशनल विजन 2030 का एक गोल था टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। ये सब शुरू हुआ था एक डिकेड से ज्यादा पहले एक सिंपल सवाल के साथ जो लेकर आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन कि कतर को दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट्स पर रिलाई क्यों करना चाहिए, अपना खुद का क्यों ना बनाए। उस वक्त कतर की टेलीविजन, रेडियो और डेटा ट्रांसमिशन इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स पर डिपेंड करती थी। ख्वाब था एक ऐसी चीज का जो पूरी तरह कतरी हो, हमारी रीजन के लिए बनाई गई हो, हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करती हो और हमारी कम्युनिकेशन फ्यूचर्स को सिक्योर करती हो। वो साल था दोस्तों 2010 और ये था असहेल सेट का जन्म, कतर की अपनी सैटेलाइट कंपनी। असहेल सेट द कतर सैटेलाइट कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर्स दोहा कतर में है, सैटेलाइट इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। 2010 में एस्टेब्लिश होने के बाद से ये कंपनी कतर की स्पेस प्रेजेंस को मैनेज और डेवलप करने में फोरफ्रंट पर रही है। कटिंग एज इनोवेशंस को लिवरेज करते हुए असहेल सेट एडवांस्ड सैटेलाइट सर्विस ग्लोबली प्रोवाइड करता है। एक विजन के साथ एक ट्रूली ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर बनने का और सर्विस प्रोवाइड करने का एसएलआर सेट ने मॉडर्न एडवांसमेंट को इम्प्रेस किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हर्नेस करके ये कंपनी इंडिपेंडेंट हाई क्वालिटी सैटेलाइट सर्विस ऑफर करती है जो ब्रॉडकास्टर बिजनेसेस और गवर्नमेंट की इवॉल्विंग नीड्स को केटर करती है अक्रॉस मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका और उससे भी आगे। दोस्तों साइंटिस्ट इंजीनियर्स और ड्रीमर्स इकट्ठा हुए एक ऐसी चीज इमेजिन करने के लिए जो कतर में पहले कभी नहीं हुई थी एक सैटेलाइट जो अर्थ

डिजाइन किया गया, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बनाया गया और ग्रेटनेस के लिए डिस्टाइंड था। ये सैटेलाइट 6 टन से ज्यादा वेट करता था और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपॉन्डर्स लगाए गए थे ताकि ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और डेटा सर्विसेज को रीजन में इनहेंस किया जा सके। महीनों तक टीम्स ने टायरलेसली काम किया, टेस्ट, सिमुलेशंस और सेफ्टी चेक्स रन किए गए। उन्हें पता था कि जब वो मोमेंट आएगा, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जब कतर के इंजीनियर्स ने अपनी क्रिएशन को पीस बाय पीस जिंदा होते देखा, वहीं एक और चीज बिल्ड हो रही थी और वो था दोस्तों कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कि कतर कम्पीट कर सकता है, इनोवेट कर सकता है और स्पेस अरेना में लीड कर सकता है। वो दिन था 29 अगस्त साल 2013। क्वारो स्पेस सेंटर फ्रेंच गियाना में एक जाइंट अरेना 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर रेडी था। उसकी नोज कोन के अंदर केयरफुली टग्ड था SHAL-1। कतर का ख्वाब अब मेटल और प्रिसिशन में तब्दील हो चुका था। जल्द ही सैटेलाइट ने ट्रांसमिशन से शुरू कर दी, हाई क्वालिटी टेलीविजन और डेटा डिलीवर करते हुए अक्रॉस मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और उससे आगे तक। वो चैनल्स जो पहले फॉरेन सैटेलाइट पर डिपेंड करते थे, अब कतर की अपनी सैटेलाइट का यूज कर रहे थे। असहेल वन बन गया एक नई वॉइस इन द स्काई, स्ट्रॉन्ग, क्लियर और प्राउडली कतरी। घरों में, ऑफिसेज में और स्कूल्स में सैटेलाइट की इनविजिबल वेव्स ने लोगों को ऐसे कनेक्ट किया जैसे कोई जादू हुआ हो। लेकिन ये सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, ये थी कनेक्शन एक होम के विजन की अपनी डेस्टिनी के साथ। असहेल वन सिर्फ टीवी चैनल्स और डेटा के बारे में ही नहीं था, ये सिंबलाइज करता था कुछ और भी बड़ा, इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी और इनोवेशन। दोस्तों अपना सैटेलाइट कंट्रोल करके कतर ने इंश्योर किया सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर नेशनल नीड्स। ब्रॉडकास्टिंग से लेकर इमरजेंसी कंडीशंस तक, एजुकेशन से लेकर ग्लोबल इवेंट्स तक। जब दुनिया ने अपनी नजर कतर पर डाली, वर्ल्ड कप जैसे मेजर इवेंट्स के दौरान असहेल सेठ ने अपना रोल अदा किया। इंश्योरिंग फ्लॉलेस ट्रांसमिशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। अब कतर की वॉइस कहीं भी पहुंच सकती थी, सुकवाकिफ से साओ पॉलो तक, अलवाकरा के ड्यून से न्यूयॉर्क की स्काई स्क्रैपर्स तक। तो दोस्तों सक्सेस सिर्फ एक लॉन्च पर ही नहीं रुकी, कुछ साल बाद आया SHAL-2, कतर का दूसरा सैटेलाइट, ज्यादा एडवांस, ज्यादा पावरफुल, जो कवरेज और कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करता गया। ये दोनों सैटेलाइट्स मिलकर बन गई कतर का ब्रिज टू द फ्यूचर। अर्थ के ऊपर 36,000 किलोमीटर दूर, लेकिन अपनी कौम से गहरे तौर पर कनेक्टेड। तो दोस्तों आज असहेल सेठ की कहानी इंस्पायर करती है स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स को अक्रॉस द कतर। ये दिखाता है कि एम्बिशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और अगला बड़ा कदम डिस्कवर हो सकता है यहीं से। आज यूनिवर्सिटीज स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। यंग माइंड्स रोबोटिक्स, डेटा साइंस और एरोस्पेस एक्सप्लोर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि क्या मुमकिन है जब आप स्काई से भी आगे का सोचते हैं। रेगिस्तान के दिल से लेकर कॉस्मोस की गहराइयों तक कतर का सफर स्पेस की तरफ ये साबित करता है कि विजन को रियलिटी में बदला जा सकता है और छोटी कौमें भी बड़ा ख्वाब पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। चलिए साहब, आप बात करते हैं कवरेज मैप्स के बारे में। असहेल सेट का सैटेलाइट कवरेज एक वाइड जियोग्राफिक एरिया में फैला हुआ है जिसमें कतर, गल्फ कंट्रीज, लेवेंट और नॉर्थ अफ्रीका शामिल हैं। ये सर्विसेज सिर्फ लैंड एरियाज तक लिमिटेड नहीं है बल्कि गल्फ और मेडिटेरियन सी के आसपास के समुद्री इलाकों में भी कवर करती हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एसएल सेट को एक आइडल प्रोवाइडर बनाता है टेलीकम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए अक्रॉस मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका यानी मीना रीजन में। अपनी कवरेज का एक्सटेंट विजुअलाइज करने के लिए एसएल सेट डिटेल्ड कवरेज मैप्स प्रोवाइड करता है। ये मैप्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं उन एरियाज की जो सैटेलाइट से कवर होती हैं और हाईलाइट करते हैं पावर लेवल्स अक्रॉस द कवरेज फुटप्रिंट। इस विजुअली इंफॉर्मेटिव अप्रोच के जरिए सुहेल सेट यूजर्स को ये समझाने में मदद देता है कि सर्विसेज किन स्पेसिफिक एरियाज और पावर लेवल्स पर एक्सेसिबल हैं। दोस्तों, जमीन और समंदरी दोनों पर एक्सटेंसिव कवरेज ऑफर करके और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैप्स के जरिए सुहेल सेट इंश्योर करता है कि कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए। क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमिटमेंट के साथ ये कंपनी रिलायबल और इफेक्टिव सैटेलाइट

सर्विसेज डिलीवर करने के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, सुहेल सेठ ने अपना सेकंड सैटेलाइट ऑन 15 नवंबर 2018 को लॉन्च किया। यह हाई पावर्ड एडवांस सैटेलाइट ने ब्रॉडबैंड डिलीवरी, ब्रॉडकास्टिंग और ग्लोबल कनेक्टिविटी को और ज्यादा बूस्ट किया है कतर में, पूरे मीना रीजन में और उससे भी आगे। सुहेल सेठ 2 जापान में मेलको यानी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के जरिए मैन्युफैक्चर किया गया है। सुहेल सेठ 2 में के यू बैंड और के ए बैंड कैपेबिलिटीज हैं, जो सपोर्ट करती हैं टीवी डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम्स, मोबिलिटी और गवर्नमेंट सर्विसेज उन स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर्स और कमर्शियल कस्टमर्स के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग इंडिपेंडेंस, इंटरफेरेंस रेजिलियंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस और वाइड जियोग्राफिकल कवरेज को वैल्यू देती हैं। तो दोस्तों, ये सैटेलाइट एंटी जैमिंग प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है और सुहेल 1 के लिए रिडंडेंसी और बैकअप भी। सुहेल 2 पहली रेडियो अमेचर सैटेलाइट कॉरपोरेशन एमसेट की जीईओ कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये एमसेट कम्युनिटी को अलाउ करता है कि वो अपनी डीवीबी स्टैंडर्ड को वैलिडेट और डेमोन्स्ट्रेट करें एक सिग्नल हॉप में, रियल टाइम में अक्रॉस द विजिबल ग्लोब। तो दोस्तों, फ्यूचर की बात करें तो सुहेल सेठ का एम है कि आने वाले सालों में अपनी सैटेलाइट फ्लीट को एक्सपेंड करें। सुहेल सेठ अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर कमिटेड है, जिसमें नई सैटेलाइट्स का डिप्लॉयमेंट शामिल है अक्रॉस ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स। ये स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट सुहेल सेठ को फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी सैटेलाइट सर्विसेज में। सैटेलाइट फ्लीट को एक्सपेंड करके सुहेल सेठ अपनी कैपेसिटी और कवरेज कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है, ताकि वो अपनी डाइवर्स कस्टमर बेस की ग्रोइंग डिमांड को मीट कर सके। अपनी सैटेलाइट फ्लीट के अलावा सुहेल सेठ ने लीडिंग रीजनल और इंटरनेशनल सैटेलाइट ऑपरेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की है। ये कोलैबोरेशन सुहेल सेठ को वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट्स पर सर्विस प्रोवाइड करने में मदद देती हैं। पार्टनर्स की एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करके सुहेल सेठ अपनी सर्विस कवरेज को प्राइमरी ऑपरेशनल एरिया से बियॉन्ड एक्सटेंड करता है और ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए सुहेल सेठ अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म करता है फ्लेक्सिबल, रिलायबल और ग्लोबल सैटेलाइट सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, जो कस्टमर्स की इवॉल्विंग नीड्स को मीट करें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करके और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करके सुहेल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करता जा रहा है। तो दोस्तों, रेगिस्तान के दिल से लेकर कॉस्मोस की गहराइयों तक कतर का सफर स्पेस की तरफ ये साबित करता है कि विजन को रियलिटी में बदला जा सकता है और छोटी कौमें भी बड़े ख्वाब पूरे कर सकती हैं। सुहेल 1 सिर्फ एक सैटेलाइट ही नहीं था, ये एक सिंबल था, एक याद दहानी के हर बड़ा कदम इमेजिनेशन से शुरू होता है। जब ये आज रात हमारे ऊपर हाई ऑर्बिट में घूम रहा है, साइलेंटली ट्रांसमिशन कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब, ये एक पैगाम लेकर जा रहा है कतर से यूनिवर्स तक कि वी आर हियर, वी आर कनेक्टेड एंड द स्काई इज ओनली द बिगनिंग। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-22-107। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर स्वस्थ से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो हमेशा हमारी मदद के लिए दस्तयाब हो, तो हम खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 का मतलब है कि अगर आप किसी भी खौफनाक या खतरनाक हालत में फंस गए हैं, तो आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 की अहमियत को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो, आपको बस ये नंबर डायल करना होता है। इस नंबर से आप बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी जानो माल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और याद रखिए, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हर किस्म के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स और कोई खौफनाक सिचुएशन जो आपके लिए खतरा बन सके। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात करेंगे एक एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में और आज हम जानेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों और हमारे जो नौजवान हैं, हमारा फ्यूचर हैं, उनकी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। बच्चों और नौ उम्र अफराद का जिस्म और दिमाग अभी जो ग्रोथ है या नशोनुमा है उसके मराहल में होता है, इसलिए कैफीन और जो दूसरे मुहर्रक या एक्टिव अज्जा हैं उन पर जो बड़ों की निस्बत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से बच्चों में बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और जो तवज्जो में कमी पैदा हो सकती है। बास बच्चों में दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है या नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नींद बच्चों और नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा और दिमागी कारकर्दगी के लिए नहायत अहम है और ज़रूरी भी बहुत है। अगर एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से नींद मुतासिर हो जाए तो उसका असर उनकी तालीमी कारकर्दगी पर, उनकी याददाश्त पर और उनके मिजाज पर पड़ सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ गेम्स में या खेलों में हिस्सा लेने वाले नौजवान बाज़ूकात एनर्जी ड्रिंक्स को खेलों के जो मशरूबात हैं वो समझकर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स एक जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में जिस्म में पानी और नमकियात की कमी पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और इसी तरह से ऐसे अज्जा शामिल किए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म को एक्टिव रख सकें। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स के जो मुमकिन नुकसान से उन्हें ज़रूर आगाह कीजिए और सेहतमंद मुतबादिल जैसे कि पानी है, दूध है, ताज़ा फलों के जूस हैं, उनकी तरफ उन्हें रागिब कीजिए। इसी तरह याद रखिए कि बच्चों और नौजवानों के लिए क्वालिटी ऑफ स्लीप, मुनासिब नींद, मुतवाजन ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी ही हकीकी तवानाई का जरिया हैं, ना कि एनर्जी ड्रिंक्स।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावश खान और शो है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल भेजे। इन बरगजीदा हस्तियों में हजरत दाऊद अलैहि सलाम भी शामिल हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत दोनों अता फरमाई। आपका जिक्र कुरान मजीद में मुतादद मकामात पर आया है और आपको ज़ुबल अय्यद, ताकतवर और मजबूत कहा गया। हजरत दाऊद अलैहि सलाम का ताल्लुक हजरत याकूब अलैहि सलाम की नस्ल से था। आपका सिलसिला नस्ब तकरीबन 11 वास्तों से हजरत याकूब अलैहि सलाम तक पहुंचता है। आपका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीले यहूदा से था और आपकी विलादत बैतुल्लहम में हुई, जो आज फलस्तीन का हिस्सा है। हजरत दाऊद अलैहि सलाम के ज़ुहूर से पहले बनी इसराइल मुसलसल फितनों, शिकस्तों और गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अल्लाह ताला ने तालूत को उनका बादशाह बनाया ताकि वो उनको दुश्मनों से निजात दिलाए। तालूत एक बहादुर और आदिल बादशाह थे, लेकिन इनके मुकाबले में जालूत नामी एक जालिम और कवियुल जस्सा सरदार खड़ा था, जिसके पास एक अजीम फौज भी मौजूद थी। जब तालूत अपनी फौज के साथ जालूत के खिलाफ निकले तो अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। एक दरिया आया तो तालूत ने अपनी फौज से कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाने वाला है, जो कोई उसमें से जी भर के पी लेगा वो मेरा साथी नहीं, और जो कोई सिर्फ एक चुल्लू पिएगा वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पानी पी लिया और आजमाइश में नाकाम हो गए। यूं थोड़ी सी जमात बाकी रह गई जो सच्चे मोमिन और सब्र करने वाले थे। जालूत का कदो कामत और ताकत ऐसी थी कि बनी इसराइल की फौज उसका नाम सुनकर ही कांप जाती। जालूत ने ऐलान किया कि कोई एक मुझसे आकर मुकाबला करे, लेकिन बनी इसराइल के किसी भी सिपाही में हिम्मत ना हुई। तालूत ने ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को शिकस्त देगा मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा और उसे दरबार में आला मकाम दूंगा। उसी वक्त एक नौजवान चरवाहा हजरत दाऊद अलैहि सलाम आगे बढ़े। सबने हैरानी से देखा कि ये नौमर लड़का इतने बड़े पहलवान का मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पे निकलता हूँ, मैंने अपने बाप की बकरियों को शेर और रीत से बचाया है, अल्लाह ने मेरी मदद की, वही अल्लाह आज भी मेरी मदद करेगा। तालूत ने आपको जरा और तलवार दी मगर आपने ये सब उतार दिया क्योंकि ये बोझ महसूस हो रहा था। आपने अपनी खुलैल और चंद पत्थर लिए और मैदान में निकल आए। जब जालूत ने हजरत दाऊद अलैहि सलाम को देखा तो हंसा और मजाक उड़ाया और कहा कि क्या तुम मेरे मुकाबले के लिए खेलने आए हो, मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूंगा। हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने पुरजोश अंदाज में कहा, तू तलवार और ढाल के साथ आया है, लेकिन मैं अल्लाह के नाम के साथ आया हूँ जो तमाम जहानों का रब है। फिर आपने अपनी गुलैल में एक कंकरी डाली और अल्लाह के हुक्म से वो कंकरी सीधी जालूत के माथे पे लगी और वो जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। जालूत की फौज भाग निकली और बनी इसराइल को फतह हासिल हुई। जालूत की हलाकत के बाद बनी इसराइल خوشی سے جھوم اٹھے۔ تالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی اور آپ کو دربار کا اہم مشیر بنا دیا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حکمت، بہادری اور عبادت گزاری کے چرچے عام ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب تالوت جنگ میں مارے گئے تو عوام نے متفقہ طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ منتخب کیا۔ یوں آپ ایک ہی وقت میں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ یہ اعزاز بہت کم انبیاء کو ملا ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں قیادتوں کے مالک ہوں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت دی، اور انہیں وہ سکھایا جو چاہا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تین عظیم نعمتیں عطا ہوئیں: بادشاہت، بنی اسرائیل کی سلطنت کے حاکم بنائے گئے، حکمت، عقل و فہم، عدل و انصاف میں غیر معمولی بصیرت دی گئی، علم، دینی اور دنیاوی علوم، اور خاص طور پہ اللہ کی کتاب زبور کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل کی۔ یہ کتاب قرآن، انجیل اور تورات کی طرح الہامی کتاب تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ زبور میں زیادہ تر اللہ کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، نصیحتیں اور دعائیں شامل تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو آپ کی آواز اتنی دلکش اور پر اثر ہوتی کہ پہاڑ، درخت اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگتے۔ قرآن میں ہے، ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ مسخر کیا کہ وہ تسبیح کرتے رہے۔ یہ یقیناً ایک عظیم معجزہ تھا کہ غیر ذی شعور مخلوقات بھی آپ کی آواز کے زیر اثر اللہ کی تسبیح میں شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو موم کی طرح نرم کر سکتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ آپ نے اس صلاحیت کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے جنگی زرہیں یعنی آہنی قمیصیں بنائیں جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی فوج زیادہ محفوظ ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ دیا گیا کہ آپ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत दाऊद अलैहि सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी और आदिल हुक्मरान भी थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आपको खलीफा फिल अर्द करार दिया और फरमाया, ऐ दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया है, बस तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो, वरना ये तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। ये आयत जाहिर करती है कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहि सलाम को खास तौर पे अदल इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी दी। कुरान मजीद सूरह सौद में एक वाकया बयान करता है। एक दिन हजरत दाऊद अलैहि सलाम अपने मेहराब पे इबादत में थे कि अचानक दो आदमी दीवार फैलाम के अंदर आ गए और कहने लगे, हम दोनों में झगड़ा है, फैसला कर दो। मेरा भाई कहता है कि उसके पास 99 बकरियां हैं और मेरी एक, फिर भी वो यही चाहता है कि ये एक भी उसके हवाले कर दो। हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने फौरन फैसला सुनाया, इसे तुम पे जुल्म किया कि तुम्हारी एक बकरी भी अपने 99 में मिलाना चाहिए। अक्सर शरीक एक दूसरे पे ज्यादती करते हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं। फिर दोनों अफराद गायब हो गए। हजरत दाऊद अलैहि सलाम समझ गए कि यह असल में अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी कि उन्होंने एक फरीक की बात सुने बगैर फैसला दे दिया। फौरन सजदा किया और अल्लाह से तौबा की। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसाफ करने से पहले दोनों फरीक की बात सुनना जरूरी है। एक और वाकया तफासीर की किताबों में आता है कि एक दफा एक शख्स ने हजरत दाऊद अलैहि सलाम के पास आके शिकायत की कि फलां की बकरियां मेरे खेत में दाखिल होकर सारा खेत तबाह कर गई। हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने फैसला दिया कि चूंकि नुकसान ज्यादा है लिहाजा बकरियां खेत वाले को दे दी जाए। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जो उस वक्त कम उम्र थे कहने लगे, अब्बा जान, बेहतर फैसला यह है कि बकरियों से फायदा उठाने के लिए वक्ती तौर पे खेत वाले को दे दी जाए, लेकिन बकरियों का मालिक उस वक्त तक खेत को दुरुस्त करे, जब खेत वापस अपनी हालत में आ जाए तो बकरियां असल मालिक को वापस कर दी जाए। हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने बेटे के फैसले को पसंद फरमाया और उसी के मुताबिक फैसला नाफिज किया। ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की हिकमत और हजरत दाऊद अलैहि सलाम की वसअत कल्बी को जाहिर करता है। कुरान मजीद हजरत दाऊद अलैहि सलाम को कुव्वत वाला, तौबा करने वाला, अल्लाह का बरगजीदा नबी करार देता है। इसे मालूम होता है कि अंबिया की असमत मुस्लिम है और वो बड़े गुनाहों से पाक होते हैं। हजरत दाऊद अलैहि सलाम की जिंदगी से बहुत से इसबाक मिलते हैं, जैसे इंसाफ में जल्दबाजी नुकसानदेह है

फैसला हमेशा दोनों तरफ से सुनकर करना चाहिए। हसद तबाही लाता है, तालूत के हसद ने उनकी हुकूमत कमजोर कर दी। आपने अपनी जिंदगी को हिस्सों में तकसीम किया, कुछ वक्त रोजगार के लिए, कुछ इबादत के लिए, कुछ रियाया के लिए और कुछ आराम के लिए, और साथ ही कुरान ने वाजे किया कि अंबिया से बड़े गुनाह सरजद नहीं हो सकते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कई दिहाइयों तक बनी इसराइल पर हुकूमत की। आपकी हुकूमत इंसाफ, इल्म और रूहानियत से मुजयन थी। जब आपका वक्त वफात करीब आया तो अल्लाह ताला ने आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत दोनों अता फरमाई। कुरान कहता है, और दाऊद को हमने सुलेमान अता किया, क्या ही बेहतरीन बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। आपकी वफात पे बनी इसराइल खमजदा हो गए, क्योंकि वो एक ऐसे नबी और बादशाह से महरूम हो गए जिन्होंने दीन और दुनिया दोनों में बेहतरीन कयादत की थी। आपकी हुकूमत की खसूसियात ये थी कि अदल इंसाफ था, रियाया के दरमियान बगैर किसी इम्तियाज के फैसले करते थे। कुव्वत और बहादुरी नौजवानी में ही जालूत जैसे ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। रूहानियत थी, इबादत, रोजा और जिक्र में अपनी मिसाल आप थे, और बावजूद बादशाह होने के आप जरहे बनाकर अपनी रोजी कमाते थे। जालूत जैसे अजीम पहलवान को शिकस्त देना इंसानी ताकत का काम नहीं था, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे भरोसा किया और छोटे से पत्थर के जरिए बड़े दुश्मन को जेर किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में अल्लाह पे भरोसा ही असल कुव्वत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही, लश्कर, इल्म, सबूर और मौजज़ात दिए गए, लेकिन आपके दिल में आजिज़ी थी, कभी तकब्बुर ना किया। यह हमें सबक देता है कि नेमत मिलने पर इंसान को गुरूर नहीं बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। आपकी रातों की नमाज और दिन के रोजे हमें बताते हैं कि दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ रूहानी जिंदगी भी जरूरी है। तालूत का अंजाम इस बात की इबरत है कि हसद इंसान को इज्जत से महरूम कर देता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माफी को तरजीह दी, और यही किरदार एक नबी के शयाने शान है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खास तौर पे अदल की जिम्मेदारी दी गई। एक छोटी सी जल्दबाजी पर भी अल्लाह ने आपको मुतवज्जो किया ताकि उम्मत को सिखाया जाए कि इंसाफ कितना नाजुक और अहम मामला है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और आज की दुनिया का हम अगर तकाबली जायजा लें तो आज के मुसलमान हुक्मरानों और अवाम दोनों के लिए आपकी जिंदगी में रोशन स्पार्क है। ताकतवर भी अल्लाह के सामने आजिज़ है, इसीलिए गुरूर नहीं करना चाहिए। अदल के बगैर कोई रियासत या माशरा कायम नहीं रह सकता। इबादत, जिक्र और अल्लाह की हम से दिलों को सुकून मिलता है, जैसे कि जबूर की तिलावत से पहाड़ और परिंदे भी शामिल होते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम, कामयाबी का राज अल्लाह पर तवक्कुल है। इंसाफ से बढ़कर कोई हुकूमत मजबूत नहीं होती। मालो ताकत वक्ती है, असल दौलत ईमान और अमले सोले है। हसद और कीना बर्बादी की जड़ है। शुक्रगुजारी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी, हुक्मरान, जंगजू और अल्लाह के वली थे। आपकी जिंदगी हमें बताती है कि अल्लाह जिसे चाहे कमजोर से कमजोर को भी फाते बना देता है, बशर्ते कि वो अल्लाह पे भरोसा करे। आपने दिखाया कि बादशाहत के साथ साथ इबादत, मेहनत और इंसाफ को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल की गई, और ये एक इल्हामी किताब थी। कुरान मजीद में इरशाद है, हमने दाऊद को जबूर अता की। ये किताब इब्रानी जबान में नाजिल हुई। बाइबल के मुताबिक जबूर को साम्स कहा जाता है, और आज भी ईसाई और यहूदी सहाइफ में मौजूद है। कुरान और मुफस्सिरीन के मुताबिक जबूर में बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें शामिल थीं। अल्लाह की हम्द सना, जबूर में ज़्यादातर अल्लाह की बड़ाई, हम्द, तस्बीह और शुक्रगुजारी के गीत हैं। पहाड़, परिंदे और जानवर भी इनकी तिलावत के वक्त अल्लाह की तस्बीह किया करते थे। जबूर में कई दुआएँ, इस्तग़फ़ार
और आजी के कल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी विरासत उनकी नबुवत है। आप पे नाजिल होने वाली आसमानी किताब ज़बूर आज भी इल्हामी सहाइफ में शामिल है। उनकी जिंदगी कुरान में एक मुस्तकिल रहनुमाई का जरिया है, जहां आपको सब्र, शुक्र, इबादत और अदल की अलामत बताया गया। दुनिया भर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक आदिल बादशाह के तौर पर याद किया जाता है। कुरान ने आपको खलीफा फिल अर्थ करार दिया, यानी जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा। कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद दिखाई गई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे पहुँच कर वो थोड़े ठटक गए और रुक के कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र का कुछ हिस्सा इनको अदा किया जाए। और एक बड़ी खूबसूरत मुमासलत है कि कुरान ने दो जगह पर अल्लाह ताला ने अंबिया के लिए खलीफा फिल अर्थ का लकब इस्तेमाल किया, एक हज़रत आदम अलैहि सलाम के साथ और दूसरा हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के साथ। हज़रत दाऊद अलैहि सलाम को अपनी औलादों में हज़रत आदम अलैहि सलाम को अपनी औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहि सलाम से कुछ अनोखी वाबस्तगी महसूस हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के फ़ैसलों की हिकमत आज भी कानून और अदलिया के मैदान में मिसाल के तौर पर दी जाती है। आपकी दिलकश आवाज और ज़बूर की तलावत ने इंसानों, पहाड़ों, परिंदों को भी अल्लाह की तस्बीह में शामिल कर दिया। आपका जिक्र और इबादत का तरीका उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन नमूना है। आपका रोज़ा और क़यामुल्लैल आज भी सबसे महबूब इबादत कहलाती है। लोहे को नरम करने का मौजज़ा ना सिर्फ आपकी ताकत बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में रहनुमाई है। अपने जहरें ईजाद करके इंसानों को जंगी तहफ़ फराहम किया, जो दिफाई टेक्नोलॉजी यानी डिफेंसिव टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनी। आपकी हुकूमत ने बनी इसराइल को एक मजबूत सल्तनत बनाया। आपने मजहब, सियासत और मईशत को एक साथ जोड़ा। आपकी हुकुमरानी आज के हुक्मरानों के लिए नमूना है कि ताकत के साथ इंसाफ, इबादत और शरीयत नज़रअंदाज ना करें। आपकी ज़िंदगी से हमें सब्र, शुक्र, आजजी और अल्लाह पे तवक्कुल का सबक मिलता है। हसद से बचने, दुश्मन को माफ़ करने और इंसाफ कायम रखने की तालीम आपकी सबसे बड़ी अखलाकी विरासत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके जानशीन बने, जिन्होंने आपकी मिरास को मज़ीद वसअत दी। इस्लामी तहजीब में अदल दाऊदी एक ज़िरबुल मसल बन गया। आपकी इबादत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे महबूब इबादत करार दे के उम्मत के लिए मयार बना दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए केस ये है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने नबूवत के ज़रिए दीन को मजबूत किया, हुक्मरानी के ज़रिए इंसाफ कायम किया, इबादत के ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा और अपनी ज़िंदगी को शरीयत, सियासत और अखलाक का हसीन इम्तिज़ाज बना दिया। इसीलिए वो सिर्फ बनी इसराइल के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल है। लिसनर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और अंबिया कराम की कहानी के साथ मैं हाज़िर होंगी और नेक्स्ट वीक हम सुनेंगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी। तो सुनते रहें FM 107 दिल से देसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे इसी एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: सिर्फ FM 107 पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जिनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक साथियों, मैं हूँ सफा। आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हम बात करते हैं उन सिंपल डेली हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को खामोशी से लेकिन पावरफुली इम्पैक्ट करती हैं। आज का टॉपिक है अवॉइडिंग डिस्पोजेबल कटलरीज, यानी कि प्लास्टिक स्पून्स, फोक्स, नाइव्स और ये जो स्ट्रॉ वगैरह होते हैं ना, इनसे बचना और रीयूजेबल ऑप्शंस अडॉप्ट करना। ये चीज इतनी कॉमन है कि हम नोटिस भी नहीं करते इसे साथियों, लेकिन हर टेक अवे मील, कॉफी कप या डिलीवरी ऑर्डर के साथ जो डिस्पोजेबल कटलरी आती है, वो मिलकर एक मैसिव वेस्ट स्ट्रीम बन जाती है। साथियों, इको स्विच हमें याद दिलाता है कि जो चीज 5 मिनट यूज होती है, वो एनवायरमेंट में 500 साल तक रह सकती है। अच्छा, एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सोचिए आप दोहा में किसी अच्छे से कैफे या रेस्टोरेंट से शवरमा, बिरयानी या कॉफी ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर के साथ ऑटोमेटिकली प्लास्टिक स्पून आ जाता है, फोक आ जाता है, स्ट्रॉ आ जाता है और नैपकिन पैकेट्स आ जाते हैं। चाहे आपको उनकी जरूरत हो या ना हो, भाई वो तो आ ही जाते हैं। आपका खाना पीना खत्म होता है और कटलरी सीधा बिन में चली जाती है कि नहीं? अब इमेजिन करें कि अगर ये डेली हैबिट बन जाए तो सिर्फ एक इंसान से ही साल भर में हजारों प्लास्टिक कटलरी पीसेस वेस्ट हो सकते हैं। कतर जैसे फास्ट पेस डिलीवरी कल्चर वाली सोसाइटी में ये छोटा सा हैबिट एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है साथियों। अच्छा, अगर आपको सोचने पर मजबूर करूं तो आपको कुछ फन फैक्ट्स बताती हूं, डिस्पोजेबल कटलरी के हिडन इम्पैक्ट्स बताती हूं। देखिए भाई, दुनिया में हर साल बिलियंस ऑफ प्लास्टिक कटलरी आइटम्स यूज और डिस्कार्ड किए जाते हैं। एक प्लास्टिक स्पून या फोक को डिग्रेड होने में 200 से 500 साल लगभग लग ही जाते हैं। सिर्फ फूड डिलीवरी सेक्टर से ही जनरेटेड जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेस्ट होता है ना, वो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर डिस्पोजेबल कटलरीज रिसाइक्लेबल होती ही नहीं है, क्योंकि ये लाइट वेट और कंटेमिनेटेड होती हैं। देखिए भाई, कतर में फूड डिलीवरी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेस्टोरेंट्स, कैफेज और ऐप से डेली थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। हर ऑर्डर के साथ अगर डिस्पोजेबल कटलरी इंक्लूड हो तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो एक सिटी लेवल पर ह्यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। इको स्विच यहाँ हमें याद दिलाता है कि भाई, स्मॉल रिक्वेस्ट यानी के नो कटलरी नीडेड, ये भी एक पावरफुल एनवायरमेंटल एक्शन है। साथियों देखिए, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट सिंपल है, यानी के अननेसेसरी डिस्पोजेबल आइटम्स को एलिमिनेट करना। जब हम कटलरी रिफ्यूज करते हैं तो रीयूजेबल कटलरी कैरी करते हैं, तो भाई हम डायरेक्ट प्लास्टिक प्रोडक्शन और वेस्ट दोनों रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर सिर्फ 20% कस्टमर्स नो कटलरी ऑप्शन सेलेक्ट करें और डिलीवरी ऑर्डर्स दें, तो भाई थाउजेंड्स ऑफ टन्स प्लास्टिक वेस्ट एनुअली अवॉइड किया जा सकता है, वो भी ग्लोबली। भाई देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर रीयूज्ड स्पून एक छोटी सी एनवायरमेंटल विक्ट्री हो। जरा सोचिए ना, ऑफिस लंच ब्रेक में आप अपना होममेड फूड लेकर आते हैं, लेकिन साथ में कैफेटेरिया से प्लास्टिक स्पून ले लेते हैं जस्ट इन केस। अच्छा, अब थोड़ा सा फ्लिप करते हैं। अब इमेजिन करें अगर हर एम्प्लॉय ये हैबिट करे तो ऑफिस बिन्स प्लास्टिक कटलरी से भर जाते हैं, है कि नहीं? देखा है हमने, हाँ भर जाते हैं। इको स्विच अप्रोच कहती है कि अगर आप अपना रीयूजेबल स्पून या फोक

0: कैरी करें तो ये डेली वेस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकता है। अच्छा भाई, डिस्पोजेबल कटलरी अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ अच्छी सी टिप्स भी दे देती हूँ ताकि वो प्रैक्टिकली आप फॉलो कर सकें इजीली। पहला तो ये, अपना रीयूजेबल कटलरी सेट जो स्टील या बैम्बू से बना होता है बैग में कैरी किया करें। दूसरा, फूड ऑर्डर करते वक्त नो कटलरी नीडेड ऑप्शन सेलेक्ट करें। तीसरा, ऑफिस या स्कूल ड्रॉअर में बैकअप रीयूजेबल स्पून रखें। चौथा, कैफेज और रेस्टोरेंट्स में पोलाइटली कटलरी रिफ्यूज करें अगर जरूरत ना हो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को भी रीयूजेबल हैबिट्स सिखाएं ताकि फ्यूचर जनरेशन वेस्ट कॉन्शियस हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना जरूरी है। डिस्पोजेबल कटलरीज ईजी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्टली होती है, एनवायरमेंट के लिए बहुत कॉस्टली। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग नो कटलरी हैबिट अडॉप्ट करते हैं वो जनरली ओवरऑल लेस सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। साथियों, आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर स्पून, फॉक या स्ट्रॉ सिर्फ एक आइटम नहीं होता बल्कि एक एनवायरमेंटल डिसीजन होता है। देखिए भाई, हर बार जब हम डिस्पोजेबल कटलरी रिफ्यूज करते हैं हम प्लैनेट को एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। तो भाई, अगली बार जब आप ऑर्डर प्लेस करें ना तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। डू आई रियली नीड डिस्पोजेबल कटलरी टुडे? डू यू? तो भाई, इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर बाइट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे अमानतदारी की अहमियत के बारे में। अमानतदारी एक बहुत अहम सिफत है जो इंसान की सच्चाई और जिम्मेदारी को जाहिर करती है। जब कोई शख्स किसी चीज का जिम्मेदार बनाया जाता है तो उसका फर्ज होता है कि वो उस अमानत को ईमानदारी से निभाए। ये अमानत सिर्फ माल तक महदूद नहीं बल्कि हर जिम्मेदारी, हर वादा और हर रोल भी अमानत है। चाहे काम हो, घर हो या रिश्ते, हर जगह अमानतदारी जरूरी है। जब इंसान अमानतदार होता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत बढ़ती है। यह आदत सोसाइटी में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पैदा करती है। आज का पैगाम ये है कि जो भी जिम्मेदारी आपके पास है उसे पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अदा करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट जनरेशन्स विजन फॉर 2030. अगर आज के बच्चों और यंग पीपल को कहा जाए कि आप दुनिया डिजाइन कीजिए, 2030 की दुनिया आपके हिसाब से कैसे होगी, क्या आप सोचते हैं, तो ये सवाल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, है ना. आज की जो यंग जनरेशन है वो कल के साइंटिस्ट हैं, कल के लीडर्स हैं, कल के एंटरप्रेन्योर्स हैं और डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स भी. देखिए हर जनरेशन ना अपना मुस्तकबिल इमेजिन करती है, लेकिन आज की जनरेशन पहले ऐसी जनरेशन है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हो रही है, इसलिए उनका फ्यूचर विजन भी बिल्कुल अलग है. आज का स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देखता, वो क्लाइमेट इनोवेटर, AI एक्सपर्ट, गेम डिजाइनर, स्पेस साइंटिस्ट या सोशल एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है. यंग पीपल की नजर में 2030 की दुनिया ज्यादा स्मार्ट है, कनेक्टेड है और इंक्लूसिव होनी चाहिए. सबसे पहला विजन एजुकेशन का है. उनका मुस्तकबिल फ्यूचर क्लासरूम सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं होंगे. स्टूडेंट वर्चुअल रियलिटी के जरिए हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करेंगे. साइंस एक्सपेरिमेंट्स डिजिटल लैब्स में होंगे. AI टीचर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करेंगे. हर स्टूडेंट अपनी स्पीड और अपने स्टाइल के मुताबिक सीखेगा, कोई प्रेशर नहीं. दूसरा विजन है हेल्थ केयर का विजन. यंग पीपल ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां डिजीजेस ना हो या हो तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए. वेरेबल डिवाइसेस हेल्थ मॉनिटर करेंगे और हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो. एक और विजन है एनवायरमेंट को लेकर. आज की जनरेशन क्लाइमेट चेंज के मसले को बड़ा सीरियसली लेती है और लेना भी चाहिए. उनका ख्वाब है कि 2030 तक ज्यादा ट्रीज लगाए जाए, प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो और क्लीन एनर्जी आम हो जाए. बहुत से यंग पीपल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को फ्यूचर का जरूरी हिस्सा समझते हैं. टेक्नोलॉजी उनके विजन का एक सेंट्रल पार्ट भी है. दोस्तों 2030 में AI डेली लाइफ का हिस्सा होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें. जी हाँ, स्मार्ट असिस्टेंट घर चलाने में बड़ी मदद करेंगे. आपके घर में स्मार्ट असिस्टेंट्स होंगे, ट्रैफिक सिस्टम इंटेलिजेंट होगा और बोरिंग या फिर रिपीटेटिव टास्क मशीन संभाल लेंगी. लेकिन यंग जनरेशन ये भी चाहती है कि टेक्नोलॉजी इंसानी वैल्यूज के साथ डेवलप हो, यानी टेक्नोलॉजी पावरफुल हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी हो और एक इंटरेस्टिंग चीज सोशल कनेक्शन भी हो. आज के यंग पीपल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को इम्पोर्टेंस देते हैं. उनका विजन है कि लोग एक दूसरे के कल्चर्स और बैकग्राउंड्स का ज्यादा एहतराम करें. उनके नज़दीक फ्यूचर दुनिया ज्यादा कनेक्टेड और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जॉब्स भी बढ़ने वाली हैं 2030 में. दोस्तों कुछ जॉब्स होंगी जो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होंगी, लेकिन नई जॉब्स क्रिएट होंगी जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. इसीलिए यंग जनरेशन को अडैप्टेबिलिटी को समझना सीखना बहुत जरूरी है. वहीं कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये फ्यूचर के सुपर हीरोज होंगे. स्पेस, हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा होगा. आज के बच्चे मार्स मिशन और स्पेस टूरिज्म के बारे में सुनकर बड़े हो रहे हैं. हो सकता है 2030 तक स्पेस टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में और भी ज्यादा रोल बड़ा प्ले करे. देखिए यंग जनरेशन का एक और ख्वाब हैप्पीनेस का है. उनके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल हेल्थ, वर्क बैलेंस, फैमिली पर्पस, ये सब भी फ्यूचर की डेफिनेशन में शामिल है.

अगर हम किसी 15 साल के स्टूडेंट से पूछें कि 2030 की दुनिया कैसी होगी, तो शायद वो कहे, मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ या चाहती हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद करे, एनवायरमेंट साफ हो, हर बच्चे को एजुकेशन मिले और लोग एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आए। और शायद यही सबसे खूबसूरत विजन है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग्स और मशीन का नाम नहीं, फ्यूचर इंसानों का नाम है, फ्यूचर वैल्यूज का नाम है, फ्यूचर उम्मीद का नाम है। और जब यंग जनरेशन इतनी पॉजिटिव और इनोवेशन के साथ सोचती है, तो लगता है कि 2030 सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन है, एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां पहुंचने के लिए हम सबको मिलकर एक बड़ा अहम कदम उठाना होगा। क्योंकि मुस्तकबिल अचानक तो नहीं बनता, मुस्तकबिल आज के फैसलों से बनता है। तो आज आपने क्या फैसला लेना है? चलिए इसी सवाल के साथ मैं आपको यहाँ पर अलविदा कहूंगी। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। सिर्फ एफएम 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज के एपिसोड में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ इमरजेंसी फंड के हवाले से। भाई अक्सर लोगों के जहन में इमरजेंसी फंड के कंसेप्ट को लेकर काफी कंफ्यूजन है। इस एपिसोड में मैं आपसे इमरजेंसी फंड के हर पहलू पर बात करने जा रहा हूँ। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसे कैसे बिल्ड करना चाहिए, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इसे संभालने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए और हर छोटी बड़ी डिटेल। भाई जब हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो कंटिंजेंसी फंड से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कंटिंजेंसी फंड का मतलब है एक ऐसी रकम जो आपने अनएक्सपेक्टेड इवेंट या खर्चे के लिए रिजर्व करके रखी हो। लेकिन इमरजेंसी फंड वो होता है जो आपको अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से चलाने की सहूलत देता है, अगर आपकी इनकम वगैरह बंद हो जाए, या अगर आप काम ना करने का फैसला करें, या अगर आप अपनी जॉब खो दें। कोशिश ये रहती है कि कम से कम 2 साल तक अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलती रहे। ये है इमरजेंसी फंड का कंसेप्ट। कंटिंजेंसी फंड कहाँ से आता है? ये इमरजेंसी फंड का एक हिस्सा होता है, लेकिन इमरजेंसी फंड का पूरा हिस्सा नहीं होता। ये सिर्फ एक पोर्शन है इमरजेंसी फंड का, इसको ऐसे समझ। तो अमूमन हम अपने दोस्तों और रिलेटिव्स की जिंदगियां देखते हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप्स वगैरह में, मुख्तलिफ इकोनॉमिक स्ट्रेटा में। भाई हमने देखा है कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं आता, लोग क्या महसूस करते हैं और क्या गलत हो सकता है।
0: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे, बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 666-22-107, या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से है FM 107। तो दोस्तों कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। भाई सबसे पहले जानिए सेविंग रेट्स के बारे में। ये वो परसेंटेज है जो लोग अपनी इनकम में से सेव कर लेते हैं। अगर सेविंग्स रेट ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि लोग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए पैसा साइड में रख रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि किसी रेनी डे के लिए आप सेफ्टी अम्ब्रेला तैयार रखें। नंबर 2 पे है हाउस होल्ड लिक्विडिटी रेशियो। ये इंडिकेटर बताता है कि अगर किसी घर की इनकम अचानक बंद हो जाए तो वो अपनी सेविंग से कितने अरसे तक गुजारा कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करना चाहिए। अगर आपका रेशियो इससे कम है तो आपको अपनी सेविंग स्ट्रेटेजी दोबारा सोचनी चाहिए। और साहब नंबर 3 पे है फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडेक्स। ये इंडेक्स ऐसे डेटा को कंबाइन करता है जैसे कि हाउस होल्ड डेट्स, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि ये बताया जा सके कि लोग फाइनेंशियल प्रेशर में कितने हैं। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो लोग अक्सर अपनी इमरजेंसी फंड का सहारा लेते हैं, या फिर उनके पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि कितना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, क्या फॉर्मूला आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं और किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए जब आप ये डिसाइड करते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। आपका टोटल इमरजेंसी फंड एक सिंपल फंक्शन है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का। आप ए एंड बी और सी को ऐड कर लीजिए, जो टोटल फिगर आएगी वो आपका इमरजेंसी फंड होगा जो आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका इमरजेंसी फंड है तो ए बी और सी का मतलब क्या है? तो आइए दोस्तों अब जरा इसे ए बी सी को तोड़ मरोड़ के समझते हैं। भाई पहले तो ये जानिए कि ए का मतलब है आपके दो साल की लिविंग एक्सपेंसेस प्लस दो साल की लाइबिलिटीज प्लस दो साल की कमिटमेंट्स। लिविंग एक्सपेंसेस जो समझना आसान है वो ये पैसा है जो आपको अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए चाहिए होता है, जैसे ग्रोसरीज, फीस की पेमेंट्स और रोजमर्रा के खर्चे। ये सब आपकी लिविंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज का मतलब है अगर आपके पास होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है या कोई और फाइनेंशियल जिम्मेदारी है तो अगले दो साल में इन सब पर जो पैसा आप देने वाले हैं वो भी ए में ही शामिल।

रियाल लाइबिलिटीज और जो आखिर में हमने निकाला था 12,000 रियाल कमिटमेंट। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 12, 36 और 12 168,000 कतरी रियाल। ये सिर्फ एक मिसाल है, ये फिगर आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकती हैं। आप रुपीस, डॉलर्स, दिरहम्स या जो भी करेंसी यूज करना चाहते हैं उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई अब यहाँ पर एक चीज आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये 2 साल के लिए ही क्यों होना चाहिए। जवाब सिंपल है भाई, जैसा कि आपने देखा कि पेंडेमिक के दौरान 2 साल के करीब लोगों का काम नहीं हुआ। ये सिर्फ अनफोर्सीन इवेंट नहीं होता, कभी कभी प्लान्ड एक्टिविटी भी हो सकती है। आजकल कई लोग अपने करियर से ब्रेक लेते हैं या हायर स्टडीज परस्यू करते हैं जिसमें वो सैलरी अर्न नहीं करते। अगर आपके पास सफिशियंट इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपकी जिंदगी नॉर्मल नहीं चलेगी। इसलिए 2 साल का इमरजेंसी फंड प्लान करना एडवाइजेबल है, या आपको काफी वक्त देगा अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए तैयार रहने के लिए। अनफोर्सीन इवेंट्स सिर्फ पेंडेमिक नहीं होते, क्रिटिकल इलनेस, फैमिली इमरजेंसी या हस्बैंड वाइफ में से एक मेंबर का इनकम बंद हो जाना, ये सब चीजें होती रहती हैं। और मैंने अपने कैरियर में कई लोगों की जिंदगियों में ये सब होते देखा है जहां परेशानियां बढ़ती हैं। तो दोस्तों यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: अब चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला में बी का क्या रिप्रेजेंटेशन है। बी का मतलब है वो प्लान्ड वन टाइम एक्सपेंस जो आप अगले दो साल में करने का इरादा रखते हैं। ये एक्सपेंसेस रिपीटेटिव नहीं होते जैसे SIP, रिटायरमेंट प्लान या होम EMI, बल्कि ये वो चीजें होती हैं जो आप एक बार करना चाहते हैं और प्लान कर चुके हैं। अगर आपकी इनकम किसी वजह से रुक जाए लेकिन आप फिर भी ये काम करना चाहते हैं तो इसका प्रोविजन आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप वेकेशन पर जाना चाहते हैं और अगले दो साल में प्लान किया है, आप अपने घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं या आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं और मार्जिन मनी साइड में रखना चाहते हैं, ये सब वन टाइम प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं। आपकी जिंदगी में कोई और चीज भी हो सकती है जो आपने प्लान की हो अगले दो साल के लिए। इनकम रुकने की वजह से ये प्लानिंग रुकनी नहीं चाहिए। तो जो भी आप अगले दो साल में प्लान कर चुके हैं वो सब बी में शामिल होगा और आपकी इमरजेंसी फंड का हिस्सा बनेगा। तो अब मैंने आपको बी का मतलब समझा दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं सी की जानिब। सी क्या है? सी का ताल्लुक है कंटिंजेंसीज से। ये वो चीजें हैं जिनको लोग अक्सर इमरजेंसी फंड समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये इमरजेंसी फंड का छोटा सा हिस्सा होता है। भाई अगर जिंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, जैसे कोई दोस्त आपसे मदद मांग ले, खुदा ना खास्ता पेरेंट्स की हेल्थ इशू वगैरह हो जाए, आपको किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़े या आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए, ये सब एक्सपेंसेस हैं जो कंटिंजेंसी कहलाती हैं। अब चलिए वापस चलते हैं ओरिजिनल एग्जाम्पल की तरफ, जहां पर ए 1,56,000 कतरी रियाल लिविंग एक्सपेंसेस प्लस लाइबिलिटीज प्लस कमिटमेंट्स, बी 30,000 कतरी रियाल प्लान्ड वन टाइम एक्सपेंसेस इन नेक्स्ट टू इयर्स, और सी 15,000 कतरी रियाल यानी कंटिंजेंसी।

दिला दूं ताकि आपको याद रहे ये. तो टोटल इमरजेंसी फंड होगा ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 156,000, 30,000 और 15,000, यानी दिस इज इक्वल्स टू 201,000 कतरी रियाल. तो भाई ये है वो तरीका जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए जिंदगी में. तो दोस्तों अब जब हम इस फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं, एक डाउट आपके जहन में आ सकता है कि भाई सर्कमस्टांसेस बदलेंगी, लाइफ स्टाइल बदलेगा, मैं करियर में आगे बढ़ूंगा, एक्सपेंसेस भी बदलेंगे, तो इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करूं. तो याद रखिए इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन एक वन टाइम काम नहीं है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है. जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी के करियर पाथ में आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रायोरिटीज, एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल नीड्स बदलती हैं. इसलिए हर साल आपको बैठकर अपने इमरजेंसी फंड का रीकैलकुलेशन करना चाहिए और नई सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक एडजस्टमेंट्स करनी होंगी. इमरजेंसी फंड बनाना एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार कर ली और भूल गए भाई, हर साल आपको इसे रिविजिट करना चाहिए. हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खास बात कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो फॉर्मूला में जो ए का पार्ट है जिसमें मैंने कहा था कि 2 साल की लिविंग एक्सपेंसेस होनी चाहिए, वो आपके लिए 5 साल होना चाहिए. क्योंकि आपके पास रेगुलर इनकम नहीं होती, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है और आपका कैश फ्लो सिक्योर होना चाहिए, आपको अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहिए. इसलिए सीनियर सिटीजन्स के केस में ए इज इक्वल्स टू 5 साल की लिविंग एक्सपेंसेस प्लस कमिटमेंट्स प्लस लाइबिलिटीज होना चाहिए, ना कि 2 साल की. तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ. आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107.

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों वो डाउट जो मैं आपको बता रहा था कि आपके जहन में आ सकता है, मैं अपने करियर का बिगिनर हूं भाई, मिसाल के तौर पे जब मैं ये सब कैलकुलेट करता हूं तो फिगर काफी बड़ा लगता है, तो क्या मुझे इमरजेंसी फंड पूरा बिल्ड होने तक इंतजार करना चाहिए बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने के लिए? चलिए इस बात को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग को रोकने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इमरजेंसी फंड बनाना एक डायनेमिक और कांस्टेंट प्रोसेस है। आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना चाहिए। करियर की शुरुआती दौर में आपको ज्यादा फोकस इमरजेंसी फंड पर देना चाहिए और ज्यादा अमाउंट इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में लगाना चाहिए, जबकि छोटी अमाउंट बाकी लाइफ गोल्स जैसे इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग में लगनी चाहिए। लेकिन जब आप एक साइजेबल इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा फोकस बाकी लाइफ गोल्स पर देना चाहिए। ये एक लॉजिकल स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए। अब आप जानते हैं कि इमरजेंसी फंड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और कैसे इसे कैलकुलेट करना चाहिए और कैसे इसे अपनी जिंदगी के मुताबिक एडजस्ट करते रहना चाहिए। तो भाई चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट बात जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, या ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि इमरजेंसी फंड कैलकुलेट तो कर लिया लेकिन इस पैसे का क्या करूं, क्या इसे बैंक के सेविंग अकाउंट्स में आइडल रखूं? तो भाई ये जानिए दोस्तों कि जब आप इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करते हैं तो ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है और आप इसे सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में आइडल नहीं रख सकते। तो अगर आप इसे आइडल नहीं रख सकते तो ये अच्छा सवाल है कि ये पैसा कहां पार्क करना चाहिए। देखिए, जो पैसा आपने इमरजेंसी फंड के लिए डेजिग्नेट किया है वो जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जब आप इसे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ कॉशन लेना जरूरी है। मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताता हूं जो हर इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट में मीट होनी चाहिए। पहला, इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी वॉलेटाइल। भाई आप जिस इंस्ट्रूमेंट में इमरजेंसी फंड पार्क कर रहे हैं वो वॉलेटाइल

0: स्टाइल नेचर का नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने 40,000 रियाल किसी इंस्ट्रूमेंट में पार्क किए और अगले महीने उसकी वैल्यू मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से 35,000 या 30,000 कदरे रियाल हो जाए तो ये सही नहीं है। भाई इंस्ट्रूमेंट को लीस्ट वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वैल्यू 1-2% की रेंज में मूव करती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्टॉक मार्केट की तरह बिहेव करे जहां वैल्यू 10%, 20% या 30% तक गिर सकती है तो वो इमरजेंसी फंड के लिए सुटेबल नहीं है। आप इस पैसे को किसी लैंड पार्सल में भी पार्क नहीं कर सकते जो बाद में लिक्विड हो जाए। तो पहली कंडीशन ये है कि इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टेबल एंड नॉट वोलेटाइल। दूसरा, इट शुड बी लिक्विड एट ऑल टाइम्स। आपको जब पैसे की जरूरत हो तो क्लिक ऑफ बटन पर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। भाई मिसाल के तौर पर अगर आपको पैसा चाहिए तो 3-7 दिन के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट इमरजेंसी फंड के लिए सुटेबल है ना। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो आप उस इंस्ट्रूमेंट में इमरजेंसी फंड पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ ऐसे सवालात के जवाब देता हूं जो आपके जहन में हो सकता है मजीद आ रहे हो और कुछ सवालात आपके लिए छोड़ता भी हूं जिनका जवाब आप खुद दीजिएगा। आप स्टॉक्स खरीद कर नहीं कह सकते कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं। आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप में पैसा नहीं लगा सकते इमरजेंसी फंड के लिए क्योंकि वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप ALS स्कीम में पैसा पार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप लैंड या बिल्डिंग खरीद कर नहीं कह सकते कि ये इमरजेंसी फंड है क्योंकि वो इलिक्विड असेट्स हैं। तो अब जब आप समझ गए हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट को चूज नहीं करना चाहिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके नजदीक कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिफाई करती हैं इमरजेंसी फंड को होल्ड करने के लिए? मैं फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूं। तो शेयर कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-222-107। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको इमरजेंसी फंड के कंसेप्ट को समझने में मददगार साबित हुआ होगा या हो उम्मीद करता हूँ। क्या चीजें इमरजेंसी फंड में शामिल होती हैं, कैसे इसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और कहाँ पार्क करना चाहिए और कहाँ पार्क नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 101.3।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
0: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: एब्सोल्यूट सिनेमा,
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। ये शो एक बार फिर से लेकर आपके लिए आ गया हूँ जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक। हर हफ्ते एक ऐसी मूवी के बारे में हम बात करते हैं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में वो मशहूर हो, और आज एक ऐसी ही मशहूर मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो भीड़ करने वाले भी हैं। उसका दो रीज़न है, पहले ये मूवी अच्छी हो या ना हो, रिलीज़ होने के बाद इसके फैंस ही सिर्फ थिएटर पहुंच जाएंगे और थिएटर पहुंचने के बाद ही लाइन लग जाएगी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाइप बना चुकी है कि इस मूवी को जो बहुत पहले ना भी देखे हों, इस मूवी के फैन ना भी हों, वो भी आसानी से इस मूवी को देखने के लिए चले जाएंगे। टिकट के पैसे इकट्ठा कर लीजिए, बिल्कुल सही वक्त पे ये मूवी रिलीज होती है क्योंकि तब तक सैलरी भी आ जाती है। 35-40 कतरे रियाल अगर खर्च करके आप एक मूवी देख पा रहे तो बढ़िया है। अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं तो आसानी से आप जा सकते हैं। बच्चों के साथ मत जाना यार, जो बच्चे 3-4 साल के लेकर जाते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई ऐसे लोगों पर कि अरे क्यों आए यार, उनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ। अरे घर पे रह लो ना भाई, किसी के घर छोड़ के बच्चों को तब आ जाओ मूवी देखने। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता ऐसे मामलों में। लेकिन हम जरा बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में जिसका नाम है स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे।
2: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy. But it's the truth.
3: You're the Spider-Man.
4: I can't tell anybody about this. Gotta keep it a secret.
3: Okay.
4: Thank you.
1: ये ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी है जो बहुत ज़्यादा, यू नो, हाइप पर चल रही है। हर जगह इसका प्रीमियर हुआ है ना, उसके अलावा प्रेस टूर में इसके क्लिप्स भी दिखाई गई। बहुत लोगों ने, क्रिटिक्स ने तभी इसको अच्छी खासी रेटिंग्स कह ले तो दे दी, या कहें क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की पुल जो है वो बांध दी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं FM 107 के इस शो यानी कि रिव्यू ऑफ द वीक में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। और सबसे पहले अगर हम बात करें इस फिल्म के मूड के बारे में, तो इस फिल्म का मूड शुरू से आखिर तक बहुत ज़्यादा गमगीन, सीरियस और बिल्कुल डार्क है, जो कि पुरानी फिल्मों से बहुत अलग लगता है।

0: जब आप फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में बैठते हैं तब आपको एक ऐसा दबाव एहसास होता है इस मूवी को देखते हुए जो पीटर पार्कर के दिमाग और दिल पर चल रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि यार ये फिल्म शुरुआत में ही इतनी तगड़ी बना दी है और आपको शुरुआत से बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी लगेगा और आप पीटर पार्कर से कनेक्ट कर पाएंगे। पीटर पार्कर के दिमाग और दिल में बहुत कुछ चल रहा है ये आप मूवी में देखेंगे, शुरुआती वक्त में देखेंगे। अब उसके पास कोई दोस्त या सहारा भी नहीं है, हर एक फ्रेम में एक अजीब सन्नाटा और तन्हाई साफ झलकती है इस मूवी में शुरुआत में ही, जो ऑडियंस को अंदर से हिला कर रख देती है। इस फिल्म में कोई हंसी मजाक या हल्ला फुल्ला हरकतें नहीं है जबरदस्ती की, है ना, वो माहौल देखने को नहीं मिलता है, बल्कि एक टूटे हुए इंसान के दर्द, उसके वल्नरेबिलिटी, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है और बहुत ही रॉ लगती भी है ऑडियंस को। अगर हम इस मूवी के हाइप की बात करें तो मार्केट में इसका क्रेज पूरी दुनिया में एक तूफान की तरह चल रहा है। प्रेस टूर से ही इसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया था और जब से लोगों को पता चला है कि ये मूवी नो वे होम के मेमोरी वाइप इवेंट के बाद पीटर पार्कर की बिल्कुल अकेली जिंदगी को दिखाएगी, तब से हर फैन इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था।
1: We used to know each other. We were together. But something bad was going to happen.
0: मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के फेज 6 को शुरू करने वाली इस फिल्म ने एडवांस टिकट बुकिंग में ही सारे पुराने रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं और सोशल मीडिया पे हर तरफ सिर्फ इसी के चर्चे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म की कमाल या इस फिल्म के सिनेमेटिक एक्सपीरियंस को देखते हुए, इवन ट्रेलर को देखते हुए, मैं कह दूं भाई इसको तो मैं 4.5 दे दूंगा 5 में से, और क्योंकि ये मूवी बगैर किसी फालतू मल्टीवर्स के तमाशे के सिर्फ एक कैरेक्टर की असली कहानी पर फोकस करती है जो दिल को छू लेती है। इस फिल्म का हर सीन जस्टिफाइड लगता भी है और ये फैंस को एक ऐसी इमोशनल राइड पर ले जाती है जहां हर कोई खुद को पीटर पार्कर के दुख से, दर्द से, सैडनेस से, पीड़ा से जोड़ पाता है और ये फिल्म की सबसे जरूरी चीज भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होना चाहिए कि कैरेक्टर से अपन कनेक्ट तो कर पाए उस तरह से। लेकिन अब तो हमने मूड के बारे में बात कर ली, मूवी के हाइप के बारे में बात कर ली, स्टार रेटिंग के बारे में बात कर ली, अब जरा शुरू करते हैं फन फैक्ट से। अब नेक्स्ट सेगमेंट में, यानी कि अब हम बात करेंगे फन फैक्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे डायरेक्टर का विजन क्या रहा इस मूवी को बनाते हुए, फिल्मिंग लोकेशन क्या रही, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बगैर साउंड के फिल्म अधूरी है क्योंकि हर फिल्म चार्ली चैपलिन थोड़ी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में और फिर डिस्कशन होगा परफॉर्मेंस को लेकर कि क्या इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी है कि ये मूवी वर्थ इट है पैसे लगाने के लिए, और फिर क्रिटिक्स का क्या कहना है, एंड देन फाइनल हम वर्डिक्ट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोडक्शन को लेकर क्या फन फैक्ट्स रहे इस मूवी की, प्रोडक्शन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प फन फैक्ट्स हैं जो हर फैन को हैरान कर देंगे और फिल्म की मेहनत को जाहिर भी करेंगे। पहला जो फन फैक्ट है वो ये है कि इस फ्रेंचाइजी के पूरे विजुअल लुक और पुराने स्टाइल्स को बदलने के लिए डायरेक्टर जॉन वॉट्स की जगह अब डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने डायरेक्शन का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर, अपने हाथों पर लिया, जिससे फिल्म को एक नया इंडी ड्रामा फील मिला।
2: You're gonna forget who I am.
3: What?
2: What are you talking about?
3: I'm gonna come and find you, and I'll explain everything.
2: You better. I love you.
0: दूसरा जो फैक्ट है वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल प्रोडक्शन फैक्ट ये है कि मार्वल के प्रोड्यूसर्स ने शुरू से ही ये टारगेट सेट कर रखा था टॉम हॉलैंड को इस बार किसी एडवांस्ड टेक सूट या टोनी स्टार्क के पुराने गैजेट के बगैर एक आम स्ट्रीट लेवल हीरो की तरह लड़ते हुए दिखाया जाए ताकि उनका स्ट्रगल रियल भी लगे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा सैड है, बहुत अकेला है, तो अकेला आदमी बहुत ज्यादा ताकत से भरा हुआ, पावरफुल, एनर्जेटिक नहीं होगा। तो ये चीज का भी, बड़ी मतलब छोटी छोटी डिटेल्स का भी एमसीयू ने खास ख्याल रखा है। एक और मजेदार फैक्ट ये है कि कास्टिंग के वक्त ही जॉन बर्थल का फ्रैंक कासल यानी पनिशर और मार्क रुफालो का ब्रूस बैनर यानी हल्क का नाम सीक्रेटली लॉक कर दिया गया था ताकि उन्हें कैरेक्टर से मूवी के डार्क थीम को मजीद बूस्ट दिया जा सके उनके कैरेक्टर से। एक और फैक्ट ये कि लीक्स के बारे में है, लीक्स और स्पॉयलर्स से बचने के लिए पूरी फिल्म की शूटिंग बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ अगस्त से दिसंबर 2025 के दरमियान एक जबरदस्त ही या कहें नहायत ही खुफिया स्केड्यूल्ड में मुकम्मल की गई थी। एक और फैक्ट ये है कि इस फिल्म की

0: इसलिए भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि 2008 की ब्रांड न्यू डे कॉमिक बहुत फेमस भी थी और ऑब्वियसली ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये कॉमिक्स के ही हैं और एक ज़माने में यू नो अठन्नी के एक एक रुपए के ये कॉमिक बुक्स जो हैं वो हमें मिला करती थी। क्या ही दिन थे यार, उनको पढ़ने में भी मज़ा आता था कि आप इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाते थे। और साबू के बाद अगर किसी कॉमिक ने सबसे ज़्यादा छोटी जनरेशन्स को, छोटे बच्चों को लुभाया है तो वो इन सुपर पावर वाले इंसानों ने ही लुभाया है। वेल, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विजन के बारे में, जो डायरेक्टर का विजन था। डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन है, जो कि आपको पता है। उनका आसान लफ्जों में अगर विजन कहें तो ये है कि वो इस बार एक आम सुपर हीरो मूवी नहीं बल्कि एक ऐसी इंसानी कहानी बनाना चाहते थे जहां जज्बात को सबसे ऊपर रखा जाए। उनका साफ एक मकसद था कि दर्शकों को, ऑडियंस को सिर्फ एक्शन या तबाही ना दिखाई जाए बल्कि पीटर पार्कर के दिमाग में चल रहे या दिमागी ट्रॉमा और उसके अंदर के दुख को भी बहुत ही गहराई से स्क्रीन पर लाया जाए ताकि हर इंसान उसकी तकलीफ को महसूस करे। क्रेटन जो डायरेक्टर हैं वो चाहते थे लोग देखें कि जब एक मशहूर हीरो अपना सब कुछ खो देता है तो वो बिना किसी मदद के खुद को दोबारा कैसे खड़ा करता है। और ये एक मैसेज भी है क्योंकि हर बार बॉलीवुड तो अलग है, हॉलीवुड एक मैसेज के साथ आता है, वो सोसाइटी के मैसेज के साथ आता है, वो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में भी कभी कभार एक यू नो छोटा सा मैसेज छोड़ देता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर ये काम करता है। और ये मैसेज के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये साफ दिखता भी है इस मूवी में, और कैसे यू नो जब एक मेन लीड को आप यानी कि ऑडियंस खुद कनेक्ट करता है और जब मेन लीड कुछ करके दिखाता है तो ऑडियंस भी ये समझती है, उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि अपन भी कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो जाए हम भी कुछ कर सकते हैं। खैर, मूवी पर आते हैं। जब दोबारा से बेहतर इंसान बनता है या बेहतर एक पावरफुल स्पाइडरमैन बन के उभरता है न्यूयॉर्क के खतरनाक गलियों से, कैसे सरवाइव करता है वहां पर ये दिखाता है। और उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने सभी फाइट सीन्स को डिजाइन करते हुए बहुत ही रॉ वॉयलेंस और हाथ से लड़ने वाले फिजिकल कॉम्बैट का भी यूज किया है ताकि हीरोज की वल्नरेबिलिटी भी साफ नजर आए। उनका डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर था कि स्केल को छोटा रखा जाए और साइकोलॉजिकल प्रेशर को फ्रंट लाइन पर लाया जाए ताकि लोग स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे छुपे असली पीटर पार्कर से कनेक्ट हो सके।
1: Like a coffee. Is there anything else?
2: Maybe I'll never read this to you.
1: No.
2: Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility to live alone with the truth.
0: उन्होंने मल्टीवर्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को साइड पर रखा कि बस बहुत हो गया भाई, और फिर एक आम लड़के की इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की जंग को दुश्मन बनाया जो इस फ्रेंचाइजी को एक बहुत ही बेहतरीन और नई पहचान देता है। उनका ये अलग और बेहतरीन विजन ही इस फिल्म को पूरे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में सबसे यूनिक और एक क्लासिक स्टैंड अलोन मास्टरपीस बनाता है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। And now let's talk about the filming location. इस मूवी की फिल्मिंग लोकेशन क्या रही? दोस्तों, एक हाई स्टेक मूवी है और इस हाई स्टेक मूवी का रियल और ऑथेंटिक स्ट्रीट लेवल सीन्स की मेजर प्रोडक्शन शूटिंग ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड के बहुत ही क्राउडेड और पुराने अर्बन लैंडस्केप्स पर कंट्रोल की गई हैं जो न्यूयॉर्क की ग्रिटी मूड को टेक्सचर वाइज बहुत सपोर्ट करती हैं। ऑब्वियसली डायरेक्टर ने ग्लासगो को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ की सड़कों, ऊंची बिल्डिंगों और पुरानी इमारतों में एक ऐसी डार्क एस्थेटिक वाइब्रेशन भी है जो न्यूयॉर्क के आम मोहल्लों को बिल्कुल रियल लुक देती है। इसके अलावा बहुत सारे अहम चेजिंग सीक्वेंसेस और इंटेंस एक्शन पार्ट्स भी इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं जो पूरे इंग्लैंड के अलग अलग रियल

0: जो फिल्म में रियलिज्म का एक नया लेवल भी जोड़ता है, बाकी का जो भी जितना भी हाईली कॉम्प्लेक्स ग्रीन स्क्रीन वर्क है, डिफिकल्ट इंडोर फाइट्स जैसे हैवी स्पेशल इफेक्ट्स का काम था, वो यूनाइटेड किंगडम के बहुत से अलग अलग स्टूडियोज में हुआ है, जैसे मशहूर पाइनवुड स्टूडियोज के बड़े साउंड स्टेजेस पर मुकम्मल भी किया गया है, ताकि बाहर ये सब शूट ना करना पड़े, क्योंकि कुछ कुछ सीन तो ऐसे होते भी हैं जो इंडोर ही शूट हो पाते हैं ग्रीन स्क्रीन पर, ताकि टेक्निकल क्वालिटी में भी कोई कमी ना रहे। ये जो हैवी लोकेशन स्ट्रक्चरल प्लानिंग मूवी को एक अलग लुक भी देता है, ग्राउंडेड फील देने में भी पूरी तरह मदद करती है, जहां बैकग्राउंड्स हमेशा थोड़े डल, मेटेलिक और पुराने लगते हैं। हर एक सेट पीस न्यूयॉर्क की डायनामिक स्ट्रीट वाइब्स को एग्जैक्ट ऑथेंटिक डेप्थ देता है, जिससे स्पाइडरमैन का वेब स्विंगिंग रियल फिजिकल लेआउट के अंदर बहुत ही टाइट और कन्विंसिंग फील होता है, जिसे देखकर ऑडियंस हैरान भी रह जाती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में, दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में इस फिल्म ने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये तब्दीली सिर्फ लुक्स तक महदूद नहीं है, बल्कि एक्टर्स की एक्टिंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ महसूस भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड की, जिन्होंने इस रोल के लिए अपना पुराना चॉकलेटी बॉय वाला जो इमेज है ना, वो कंप्लीटली खत्म कर दिया है। अब उनको पूरा, जैसे अभी इवन आप एंड गेम में देख लो, इन्फिनिटी में देख लो, तो कैसे वो ऐसा बात करते हुए, चिल्लम चिल्ली करते हुए, हाई करते हुए और फनी वे में आपको पीटर पार्कर दिखेंगे, वो स्पाइडरमैन फनी दिखेगा, लेकिन अगर आप इस मूवी में देखेंगे वो पूरा उलट हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि यार एक यूनिकनेस होनी चाहिए, कि एक जिस कैरेक्टर को मैं जानता था जो फनी था वो सीरियस हो गया, अरे क्या हो गया, पहले तो अडेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन अगर सही एक्टिंग की हो तो फिर ऑडियंस ना अडेप्ट कर भी लेती है, और ये काम पीटर पार्कर ने, टॉम हॉलैंड ने करके दिखाया इस मूवी में। जब वो स्क्रीन पर आते हैं ना, तो कैसे कनेक्ट करना है लोगों से, ये बहुत ही अंदाज से उन्होंने किया है, बहुत ही लाजवाब तरीके से किया। उन्होंने इस रोल की डिमांड के मुताबिक अपना फिजिकल वेट भी काफी लूज किया है, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा है वो बहुत ही ब्रोकन, फिजिकली वीक लगता है, उनकी आंखों में एक परमानेंट थकान साफ कैप्चर होती है जो पहले कभी दिखी नहीं। उनके कैरेक्टर में हमेशा फन था, लेकिन वो फन इस बार नहीं दिखा, तो ऑडियंस के लिए सबसे पहली चीज थी चौंकना, है ये क्या हो गया इसको, फिर यहां से मूवी शुरू होती है। उसके अलावा दूसरी तरफ सैडी सिंह है, कंप्लीटली डार्क परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी का उनका सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड शॉकर एलिमेंट भी बनकर सामने आता है। सैडी जो दूसरी मेन लीड है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सैडी ने अपनी पुरानी मासूम लड़की वाली स्क्रीन इमेज को पूरी तरह तोड़कर एक पावरफुल, मिस्टीरियस और स्पाइन चिलिंग मेंटल मैनिपुलेटर एंटागनिस्ट का रूप जो है वो अपनाया, जो स्क्रीन पर बिल्कुल जबरदस्त है, उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पर बिल्कुल लाजवाब है और वो डोमिनेट करती हुई नजर आई है। तो ये कभी कभार टॉम के लिए भी हो गया कि यार ये तो मुझसे ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग कर रही है, तो इसलिए दोनों बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, दोनों का काम जबरदस्त है, लाजवाब है। अच्छा, इन लोगों ने बहुत लंबे वक्त तक क्लासेस भी ली हैं एक्टिंग की। बाकी सैडी का जो फेशियल एक्सप्रेशन शिफ्ट है, डर पैदा करने वाली बॉडी लैंग्वेज जो उनकी है, वो इतनी टेरिफाइंग है कि वो हॉलैंड के कैरेक्टर पर इजली

0: डार्क शेडो कास्ट कर देती है। दोनों ही मेन जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल और फिजिकल डायनेमिक्स को इतने गहरे तरीके से चेंज किया कि जिससे स्क्रीन पर चलने वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो आर्टिफिशियल लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सच में ये हो रहा है, वो आप कनेक्ट कर पाए।
1: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
0: जो थ्रेटनिंग और जो डीपली स्ट्रक्चरल एक इंटेंस परफॉर्मेंस होती है, हैवी एसेट बन जाती है ना, वो देखने को मिला है और जिससे जो ऑडियंस है वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएगी उनके काम से और कनेक्ट बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मूवी का जो साउंड है, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो इस मूवी को और भी ज़्यादा ऊपर पहुंचा देता है और यही वजह है कि इस मूवी को 5 में से 4.5 रेटिंग मिलती है। दोस्तों सिनेमाटोग्राफी और साउंड के डिपार्टमेंट में इस फिल्म ने एक बिल्कुल नया और अनोखा बेंचमार्क सेट किया है जो ऑडियंस को हैरत में डाल देता है। सिनेमाटोग्राफर है ब्रेट पॉलक। उन्होंने फिल्म के विजुअल्स को स्टैंडर्ड ब्राइट और कलरफुल एमसीयू स्टाइल से दूर रखकर काम किया और ज्यादा कंट्रास्टिव टाइट और क्लास्ट्रोफोबिक पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैकिंग कैमरे शॉट में लॉक किया है उन्होंने, जो फ्रेम्स को बहुत ऑथेंटिक बनाते हैं। उसके अलावा कैमरा हमेशा पीटर के इतने पास में रहता है, इतने करीब में रहता है चेहरे के, कि आप उसकी सांस लेने की रफ्तार को भी स्क्रीन पर आसानी से फील कर सकते हैं और हर एक शेडो ऑडियंस को तनाव का एहसास करवाता है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप ऐसा समझें कि आप कार में चल रहे हैं, आपको सिर्फ आपकी कैबिन की आवाज़ थोड़ी आती है, जो बगल से गुजर रही कार है उसके टायर की भी आवाज़ है, उसके हॉर्न की भी आवाज़ है। फिर कभी कभार जब कोई साइकिल दूर से गुजर रही होती है उसकी भी आवाज़ है, उनकी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ है, किसी बाइक की आवाज़ है। तो छोटी छोटी डिटेलिंग आपके कार के कैबिन में आ रही होती है। लेकिन बॉलीवुड में अगर आप देखें या आम मूवीज़ में देखें जिसमें शॉर्ट डिटेलिंग नहीं रखी जाती है, उसमें सिर्फ कार के केबिन की आवाज़, कार के चलने की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ और कार में ही बैठे लोग जो बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ होती है। तो जब ये डिटेलिंग मिस हो जाती है ना, तो साउंड और सिनेमा थोड़ा हल्का पड़ जाता है। लेकिन इस मूवी में बिल्कुल नहीं। सिनेमाटोग्राफर ब्रेट पॉलक ने और माइकल ने जबरदस्त काम करके दिखाया। कैमरा हमेशा पीटर पार्कर के बहुत करीब रहता है, सांस भी आपको एहसास होती है। म्यूजिक ब्लॉक की जो बात करें तो वेटरन जो कंपोजर हैं माइकल, उनका जो स्कोर लेआउट है वो कम्प्लीटली लाजवाब है, मतलब उस पर तो कोई शक भी नहीं है। रॉ और स्लो पेस्ड रखा गया है उनकी तरफ से। बाकी माइकल का बैकग्राउंड ट्रैक और ओवरऑल जो साउंड डिज़ाइन है वो ज़बरदस्त है। लो फ्रिक्वेंसी साउंडस्केप्स और मिनिमल स्ट्रिंग एलिमेंट्स का बेहतरीन यूज़ किया गया है, जो डार्क स्ट्रीट एक्शन को एक हैवी रियलिस्टिक डेंसिटी और सीरियस डेप्थ डिलीवर करता है। अल्टीमेट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जब आप मूवी देखेंगे तो एक एक डिटेल आपको समझ में आने लगेगी, अगर आप छोटी छोटी डिटेल देखते हैं। बाकी आप वो वाले अगर हैं, कई बार मैं ऐसे मूवी देखता हूँ कि बस मेरे को दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, मूवी देख रहा हूँ तो देखने दो, वो छोटी छोटी डिटेलिंग ना अपने आप कनेक्ट होती रहती है। बट क्रिटिक्स ऐसे देखते हैं कि हाँ मूवी में ये भी डिटेलिंग है, ओ किनारे वो भी है, अच्छा ये नई चीज़ है, अच्छा ये भी इसमें टीज कर दिया गया है अगली फिल्म को लेकर। तो क्रिटिक्स ऐसे देखते हैं, कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ। बाकी हर एक ऑडियो क्यू जो सीन के मेंटल प्रेशर को डबल एम्पलीफाई भी करता है और वेब स्विंगिंग सेगमेंट्स में डायनेमिक विंकर्ट्स बिल्डिंग के बीच होने वाला नेचुरल इको और रियलिस्टिक सिटी नॉइज ऑडियो, ये सारे विजुअल्स एक्सपीरियंस आपको लाजवाब लगेंगे। हाईली इमर्सिव और थ्रिलिंगली डीप जो है मूवी को बनाते हैं, सिनेमाटोग्राफी को बनाते हैं, सिनेमा को बनाते हैं। जब स्पाइडरमैन इमारतों के बीच से तेजी से गुजरता है तो साउंड डिजाइन की वजह से आपको सच में ऐसा लगता है कि आप उसके साथ हवा में मौजूद हैं और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी टेक्निकल कामयाबी है जो थिएटर्स में मजा दिलाती है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में ऑडियंस इंतजार कर रही होती है, और ये है शॉर्ट छोटा सा स्पॉइलर फ्री प्लॉट कि मूवी तो हम देख लेंगे। भाई साहब ये बताइए मूवी की कहानी है क्या, हवा हवा में बात कर लेते हैं मूवी की कहानी क्या है। शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में अगर हम बात करें तो कहानी नो वे होम के उन बड़े और दर्दनाक सेक्रीफाइस इवेंट के एग्जैक्ट 4 साल बाद शुरू होती है, जब सब लोग पीटर पार्कर को भूल चुके हैं। अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कोई भी सिंगल इंसान उसके ट्रू एग्जिस्टेंस या उसके पास्ट को

0: नहीं जानता और वो बिना किसी फैमिली स्टार टेक या सपोर्ट सिस्टम के एक एब्सोल्युटली बेसिक और छोटी सी अपार्टमेंट में जिंदगी अपनी गुजार रहा है। स्पाइडी ड्यूटीज उसकी लाइफ में फुल टाइम चल रही हैं, पर मैसिव ऑनगोइंग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और सीवियर मेंटल एग्जॉशन की वजह से पीटर की फिजिकल बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव आने लगता है। उसकी बायोलॉजिकल पावर्स के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड और टेरिफाइंग म्यूटेशन ट्रिगर हो जाता है जो उसकी खुद की जान को बड़े खतरे में डाल देता है और उसे बिल्कुल हेल्पलेस कर देता है। सिचुएशन तब कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड हो जाती है जब एक एक्सट्रीमली डेंजरस और इनविजिबल क्रिमिनल पार न्यूयॉर्क के स्ट्रक्चरल फैब्रिक पर डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, जिसे नॉर्मल मीन से कॉम्पैक्ट करना नॉर्मल हीरोज के लिए भी एंटायरली इम्पॉसिबल हो जाता है। पीटर के बिना किसी एडवांस रिसोर्सेज, बिना किसी टेक सूट और बिना किसी दोस्त की मदद के इस भयानक और दिमागी खेल खेलने वाले दुश्मन से अकेले ही लड़ना पड़ता है पीटर को। कहानी में हर मोड़ पर यह देखना बड़ा मजेदार दिलचस्प होता है कि कैसे एक अकेला लड़का अपनी गर्मियों की रातों में बिना सोए पूरे शहर को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, जबकि शहर को पता भी नहीं कि एक उनका रखवाला कौन है, ये कौन बंदा है जो उनके लिए लड़ रहा है। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए परफॉर्मेंस पर भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर अगर डिस्कशन किया जाए तो टॉम हॉलैंड ने अपने पूरे करियर का एब्सोल्यूट फाइनेस्ट और डीपेस्ट परफॉर्मेंस इस फिल्म में डिलीवर किया है, जो उनकी एक्टिंग लिमिट्स को नए लेवल पर ले जाता है। उनका हाईली फ्रेगमेंटेड एक्टिंग पोस्चर, उनकी आंखों का दर्द और उनका टूटा हुआ बिहेवियर देखकर स्ट्रक्चरल मार्वल फैंस थिएटर में इमोशनल ब्रेकडाउन्स फेस करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप ये इस मूवी के ट्रेलर भी देखेंगे ना तो उसमें फर्क दिखाया गया कि पहले वाला पार्कर कैसे है। बार बार वो दिखाना जरूरी होता है ना कि ये जो इस मूवी में चेहरा है पार्कर का, वो टूटा हुआ थोड़ा दुबला लड़का है, थोड़ा परेशान हाल है, थोड़े से बाल बड़े हैं, लेकिन पहले वाला पार्कर देखो कितना यार फनी जॉली नेचर था। तो वो फर्क ट्रेलर में भी ऑब्वियसली दिखाया गया है क्योंकि उनका काम सच में दिल को छू लेने वाला है। दूसरी तरफ जॉन बर्थल का फ्रैंक कासल यानी कि पनिशर उनके एग्जैक्ट कंट्रास्ट में एक रूथलेस वायलेंट और हाई ऑक्टेन रॉ पावर स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे दोनों के बीच का फिजिकल इंटरेक्शन कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो जाता है। दोनों लेजेंड्स फ्रेम में जब भी आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन प्ले की टेक्स्ट वैल्यू और पूरे सीन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा शूट अप हो जाती है और उनकी आपसी बहस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाती है। इसके साथ ही जिंदा का शॉट पर हाईली टेक्टिकल और इमोशनल स्क्रीन प्रेजेंस बिना किसी पुरानी मेमोरी कनेक्शन के भी उनके और पीटर के बीच के डायनेमिक रिलेशनशिप को काफी हैवी प्योर और कंप्लीटली हार्ट ब्रेकिंग एलिमेंट बना कर मेंटेन करता है। जब भी एमजे स्क्रीन पर आती हैं तो पीटर को पहचान नहीं पाती। हाँ ये है कि टॉम हॉलैंड के फेस पर जो एक्सप्रेशन आते हैं वो सच में एक्टिंग का एक अनमैचेबल लेवल पेश करते हैं जो हर किसी को रोने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब रोने का एहसास हो जाता है कि दिल का यार ये तो कनेक्शन था इन दोनों में। फिल्म का आखिरी संघर्ष और पीटर पार्कर का अकेले बिना किसी एडवांस स्टार टेक के अपनी जंग खुद जीतना ये साफ प्रूफ करता है कि फ्रेंचाइजी को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ एक मजबूत इमोशनल कोर और बेहतरीन स्क्रीन प्ले की ही जरूरत होती है। अगर आप स्टैंडर्ड मार्वल एक्शन के साथ साथ एक सच्ची दर्द भरी और एक्टिंग हैवी आसान कहानी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच मास्टर क्लास है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ओवरऑल बात यही है कि इस मूवी को देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसका सिनेमा, जिसका साउंड, जिसकी एक्टिंग आपको लाजवाब लगने वाली है। और वैसे भी एमसीयू की बात है तो ये तो बस उन लोगों के लिए है, उन 10% लोगों के लिए है जो मूवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि आज का रिव्यू ऑफ द वीक आमतौर पर 90% लोगों ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि यार मूवी तो मैं देखने जाऊँगा ही जाऊँगा। रिव्यू आए नहीं आए, अच्छा है बुरा है खराब है वो बात की बात है, अपन तो स्पाइडरमैन के फैन है तो अपन तो जाएंगे ही जाएंगे। और फिर 90% इसलिए भी क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो आप कहें ना कहें उन्होंने कभी भी ना देखी हो, फिर भी वो स्पाइडरमैन के फैन। तो अगर ये बच्चे जो 10 साल के 12 साल के हो गए, जिनको स्पाइडरमैन मूवी से मोहब्बत प्यार होने लग गया 15 17 18 साल के, तो ये तो मूवी देखने जाने ही वाले हैं। तो आप भी इसमें शामिल हो लीजिए। आज का रिव्यू ऑफ द वीक स्पेसिफिकली उन 10% को कन्विंस करने के लिए है जो मूवीज को ज्यादा पसंद पसंद नहीं करते हैं, बस अगर आ गई तो देख लिया थोड़ा बहुत। लेकिन असली मूवीज क्या होती हैं, असली मूवी क्या होती है, सिनेमाटोग्राफी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, डायरेक्टर का विजन क्या है, ये समझाने के बाद आपको इस मूवी को इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि ये कुछ अलग आपको एक्सपीरियंस कराती है, एक्सपीरियंस दिलाती है। सो ऑब्वियसली मतलब ये तो अगर आपने नहीं देखी तो आप 35 रियाल भले बचा ले 40 रियाल, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ यूनिक देखते हैं, आप कुछ नया देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यार इस तरफ अपन कभी लौटे क्यों नहीं, इस तरफ अपन कभी आए क्यों नहीं। वो 2000 की मूवीज़ या अपने बचपन में जो मूवीज़ देख ली उसके बाद हमने मूवी देखी क्यों नहीं। अगर आप मूवी के फ़ैन नहीं भी हैं तो भी इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए, क्योंकि वो मूवी भी होगी लाजवाब अगर उस मूवी ने इतना कुछ करके दिखाया जितना MCU के इस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने करके दिखाया है, तो ऑब्वियसली उस मूवी के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज बहुत बातें हो गई क्योंकि ये मूवी ने तो धमाल मचाया हुआ है हर तरफ, और स्पाइडरमैन जिसको 4.5 रेटिंग मिल गई है 5 में से, हमने फन फैक्ट के बारे में बात करा, डायरेक्टर के विजन के बारे में, फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी से लेकर एक स्पॉइलर फ्री प्लॉट, और फिर क्रिटिक्स के साथ साथ वर्डिक्ट के बारे में भी बात किया। सुनते रहे FM 107। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। दिल से तैसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने

0: करने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है। क्रिकेट हो
1: and he's hooked that away. That's four runs.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। अब्दुल्ला यासिन एम मूसा, या दोस्तों अब्दुल्ला यासिन एम मूसा रयान के नौजवान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और कतरी बास्केटबॉल के लिए मुस्तकबिल के रोशन सितारों में उनका नाम लिया जाता है। पॉइंट गार्ड की हैसियत से उनका बुनियादी किरदार बॉल को कंट्रोल करना, टीममेट्स के लिए स्कोरिंग के मौके पैदा करना और गेम की रफ्तार को मुनज्जम रखना होता है। दैट्स क्वाइट अ बिट। कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपनी स्किल, स्पीड और कोर्ट विजन से कोचेस की तवज्जो हासिल की है। दोस्तों अर्रयान जैसे मकबूल क्लब में खेलना उनके लिए कीमती तजुर्बा साबित हो रहा है और यहाँ उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ सीखने का मौका मिलता है। अब्दुल्ला कतर के यूथ डेवलपमेंट सिस्टम की एक मिसाल हैं, जहां नए टैलेंट्स को तरक्की का मौका दिया जाता है और नेशनल सेटअप में भी उनका नाम उभरते हुए गार्ड्स में शामिल किया जाता है और उनसे मुस्तकबिल में मजीद तरक्की की उम्मीद है। अगर वो मुसलसल मेहनत और ट्रेनिंग जारी रखें तो वो अर्रयान और कतर दोनों के लिए एक अहम प्लेमेकर बन सकते हैं। उनकी लगन और सीखने का जज्बा उन्हें आने वाले सालों में मजीद कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक आपने डिजिटल स्कैम के बारे में सुना है, लेकिन अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि फिजिकल स्कैम। आपके सामने वो आते हैं, आपसे QR कोड, लिंक या फिर आपसे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बनकर बात करते हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आजकल एक नया स्कैम चला है जिसे कहते हैं फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस कम होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने अब एक नया तरीका ढूंढा है, जिसे फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या अफसर बताते हैं, और ये लोग आम या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये लोग घरों पर अचानक आते हैं और दावा करते हैं कि उनके स्मार्ट मीटर खराब है या उनका पिछला बिल बाकी है। लोगों को डराने के लिए ये स्कैमर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। रूरल एरियाज में लंबा पावर कट किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स तुरंत पैसे डिमांड करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि मामला अभी खत्म करने के लिए फिजिकल कैश दे दें, या फिर उनके पास मौजूद एक फेक POS मशीन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को भी आपसे कहते हैं। कार्ड स्वाइप करते ही आपके अकाउंट का सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है और अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। ये पूरा फ्रॉड बिना किसी ऑफिशियल पेपर या नोटिस के सिर्फ डर और झूठ के दम पर किया जाता है। सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी इस तरह अचानक आकर तुरंत कैश या ऑन द स्पॉट कार्ड पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। हमेशा किसी भी एम्प्लॉय का या ऑफिशियल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जरूर मांगे। इसके अलावा एक और आसान तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, जो है नो कैश ऑन स्पॉट। सरकारी रूल्स के मुताबिक कोई भी टेक्नीशियन घर आकर कैश या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जब आपके पास कोई बिल आए या कोई शख्स आपको बिल दे, तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी ऑफिशियल यूटिलिटी ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस चेक करें। उसके अलावा आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सोच की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बोर्ड के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कंफर्म करें कि क्या किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉय आपके घर भेजा है या नहीं। इस तरह की होशियारी से आप हमेशा खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैम होने से बचा सकते हैं।
2: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जूनियर जनाब सफा के साथ और ये है वो शो जहां हम मिलाते हैं आपको उन छोटे छोटे स्टार्स से जो अपनी मेहनत से बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी से सबको इंस्पायर करते हैं। भाई छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे भाई, ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं माशाल्लाह से। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे शो की एक छोटी सी सुपर स्टार हैं जिनका नाम है दुआ। भाई दुआ के बारे में आपको क्या बताऊं, दुआ को सबसे ज्यादा पसंद है आर्ट, जो कि सारे बच्चों को पसंद होता है, कहीं ना कहीं हम बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो कई आर्ट कॉम्पिटिशन्स की विनर रह चुकी हैं और अपनी क्रिएटिविटी से सबको ऑलरेडी इम्प्रेस कर चुकी हैं। भाई और गेस व्हाट, दुआ सिर्फ आर्ट में ही नहीं बल्कि स्कूल की को करिकुलम एक्टिविटीज में भी फुल ऑन एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। उनका मानना ये है कि भाई ये सारी चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हैं। तो भाई दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे फुल ऑन फन ट्रिप पे जाने के लिए दुआ के साथ, जहां हम दुआ के साथ शेयर करेंगे उनकी स्टोरी कि उनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या ना पसंद है, कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु।
3: वालेकुम अस्सलाम,
2: कैसी हैं, ठीक ठाक हैं?
3: ठीक अल्लाह का
2: शुक्र। नर्वस चर्विस तो नहीं हो रही हैं?
3: नहीं, मुझे नर्वस ही नहीं, मैं होती
2: मैं नर्वस ही नहीं, जब बात ही खत्म कर दी ना, ये नर्वस किस चिड़िया का नाम है। अच्छा दुआ ये बताएं कि पहले तो अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना कि दुआ कितने साल की हैं, कौन से स्कूल में हैं, कौन से ग्रेड में हैं।
3: मेरी एज 13 है और मैं PIS में, अभी मेरा रिसेंटली एडमिशन हुआ है, मतलब 7th ग्रेड में हुआ है। और काफी अच्छा स्कूल है, मतलब सारे कोऑपरेटिव है और काफी अच्छा स्कूल है।
2: अच्छा ये बताएं कि दुआ आपको आर्ट में

0: कब इंटरेस्ट हुआ? मैंने मैंने ये आपसे सुना कि भाई आपको आर्ट बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये बताएं कि कैसे, हाउ हाउ डिड यू, और या ये बताएं कि कौन सी एट से आर्ट पसंद है आपको?
1: मेरी कजन है ना, वो बैठ के करती थी तो मैं उसको देखती थी और काफी मतलब कैलीग्राफी उसने स्केचिंग भी करती थी तो मैं उससे सीखती थी थोड़ा थोड़ा, उसने सिखाना तो मैं फिर, और मेरी एज आई थिंक 10 या 11 12 की होगी तब सीखा था थोड़ा थोड़ा, अभी भी मुझे मतलब कभी कभार जब छुट्टी हो ना तो मैं कर लेती हूँ.
0: अच्छा, कैलीग्राफी का आपने बोला, कैलीग्राफी मुझे बहुत मुश्किल लगती है, पेन उसका होल्डिंग जो है ना वो कुछ ट्रिकी है. मैं आज तक सीखने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने गिवअप कर दिया. आपने गिवअप किया कि नहीं किया?
1: गिवअप करना नहीं चाहिए, हर चीज करनी चाहिए,
0: करनी चाहिए. आपके पास टाइम है अभी, आपको गिवअप नहीं करना चाहिए. मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुझे मेरे घर वालों ने कहा बेटा दीवारों की और पेपरों की बस हो गई है, तुमसे ना हो पाएगा. देखो हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन आई एडमायर यू कि आपकी अभी एज है, करें जो चीज आपको अच्छी लगती है ना. मुझे अच्छी लगती थी लेकिन मुझसे ना हो पाई, आई फाउंड डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आपको अच्छी लग रही है, आई बिलीव यू कैन डू बेटर इन इट.
1: ये भी है, सबकी कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है, हर चीज इंसान की परफेक्ट नहीं होती.
0: बिल्कुल, नॉट एवरीबॉडी कैन डू एवरीथिंग. चलिए भाई, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है. अच्छा ये बताएं कि आप जब आर्ट में आपको आपकी सबसे ज्यादा अच्छी वाली क्रिएशन कौन सी, किस चीज की है?

0: उस पर सर्च करके कभी कभार कर लेती हूँ, या फिर स्कूल में जो फ्री लेक्चर होता है उसमें कर लेते हैं तो हो जाता है.
1: अच्छा, मतलब ये बताएं कि आपका जो काम है, जो आप मतलब आपका जो आर्ट है, उसको आप क्या कहेंगी, किस किस से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है? ये अपनी क्रिएटिविटी है. कुछ होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ भाई हमने सोशल मीडिया से देखा, हमें वो पेंटिंग अच्छी लगी थी तो आई रिक्रिएटेड इट. वो भी एक इंस्पायरेशन है. आई सॉ इट समवेयर एंड आई, या जैसे आप बोल रही थी आपकी कजन सिस्टर हैं तो उनको आपने देखा, वो भी एक इंस्पायरेशन. या अम्मी अबू में से कोई ऐसा होता है जिसको पेंटिंग ड्राइंग का किसी चीज का शौक होता है, आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं. मैं तो भी अपनी अम्मी से इंस्पायर थी, मेरी अम्मा की बहुत अच्छी ड्राइंग थी, आई वॉज फैसिनेटेड बाय इट. तो आप किससे इंस्पायर
0: हैं? मतलब कि अपनी फ्रेंड्स से हूँ. मतलब मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनाती हैं और मैं उनको अभी देखती हूँ ना तो बैठ के मैं मुझे कहती है करो, मैंने कभी कभी

0: फील मोटिवेटेड विद योर फ्रेंड्स. अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुआ अपने पास से ना एक वर्ल्ड क्रिएट करें, अपनी इमेजिनेशन का वर्ल्ड अपने आर्ट में, तो वो कैसा दिखता होगा? रिगार्डलेस अब जैसे हमें एक चीज सिखाई जाती है ना कि ट्रीज शुड बी ग्रीन, सन शुड बी येलो. अब बच्चों की कुछ गेम्स हैं उसके अंदर ना, जैसे प्रैक्टिकली अगर देखें तो सन शुड बी राउंड लेकिन उसके अंदर स्क्वायर है. देयर डिफरेंट थिंग्स, मेनी डिफरेंट थिंग्स ना. अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से कोई चीज बनाएं तो वो कैसी दिखती होगी, जरा मुझे बता सकती हैं?
1: पहली बात तो कह लो कि उसको ऐसा बनाना चाहिए, मैं ये बिलीव करती हूँ कि

0: चीजें पसंद आती हैं ज्यादातर
1: नेचुरल
0: यस उसमें अच्छा लगता है कलरिंग करना
1: अच्छा आपको स्पेस बनाना ज्यादा पसंद है या लैंड की चीजें
0: स्पेस ज्यादातर मतलब लैंड ठीक है लैंड अच्छे से बन जाती है वो इजी भी है
1: सही अच्छा मुझे स्पेस ज्यादा इजी लगता है बनाना आई लाइक ड्राइंग स्पेस अच्छा ये बताएं कि वो कौन सी चीज अभी तक आपने कोई ऐसी बनाई है अब उसके से अगर आपसे डिस्क्राइब कर सकें थोड़ा बहुत कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनानी आती है जिसमें आप कहें कि मेरा बेस्ट वर्क था
0: बेस्ट वर्क तो मेरा एक था मेरा स्कूल में था उन्होंने कहा था कि अर्थ के ना पोल्यूशन वगैरह का तो उसका मैंने काफी अच्छा मुझे लगता है ऐसा और मेरी क्लास के बच्चों को भी और वो बहुत मुझे पसंद था और वो अभी भी मेरे पास है और वो उसपे मुझे पोजीशन फर्स्ट मिली थी
1: अरे वाह कंपटीशन में हिस्सा लिया अच्छा था मेरे ख्याल से वो एनवायरमेंट का होता है ना कोई
0: पोल्यूशन का टाइप था
1: पोल्यूशन वर्ल्ड पोल्यूशन डे या कुछ होगा ऐसा कुछ उसके ऊपर था ठीक है इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ जूनियर जनाब विद आरजे सफा
1: आप ये बताएं कि रिगार्डलेस आर्टिस्ट तो वही होता है भाई हम कहते हैं कि आर्टिस्ट तो वो होता है जो हर चीज बना लेता है ना तो एज एन आर्टिस्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई कार्टून कैरेक्टर अगर आप बनाएं तो बना लेंगी
0: अगर पिक्चर हो तो इजीली बना सकते हैं हेल्प लेके भी और इजीली
1: अच्छा ठीक है अच्छा मतलब आप वो कर लेती हैं उसे कॉपी कर लेती हैं अच्छा
0: नाइस कर लेते हैं
1: अच्छा अच्छा सही है अच्छा ये बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा मजेदार चीज ना अभी आप स्कूल जा रही है ना आजकल तो अपने स्कूल में आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है स्कूल जब आप जाती हैं तो आप क्या मजा देती हैं
0: स्कूल में एक तो स्कूल में काफी अच्छा एनवायरनमेंट है रोज न रोज कुछ सीखने के लिए मिलता है नया और फ्रेंड्स के साथ तो स्कूल पहली बात तो अच्छा ही होता है हर स्कूल अच्छे होते हैं और मुझे मेरी टीचर्स बहुत अच्छी लगती है वो हर हेल्प करती है और कोई चीज मुझे कहती है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही पूछो तो मेरे लिए इजी है मैं ट्यूशन ना भी लूं तो लेकिन काफी अच्छा स्कूल है

0: बेटा मैथ के ऊपर दुनिया टिकी हुई, मैथ गुम कर देनी है इन्होंने। अच्छा मैथ गुम कर देंगी, चलें ये सब्जेक्ट्स में से गुम करेंगी। yes. अच्छा कोई अगर मैं कहूँ डिसिप्लिन में से कोई एक चीज निकालनी हो तो
1: ये होता है ना कि छुट्टी का बड़ा मसला होता है कि दो दिन छुट्टी है सबकी, मेरी भी ये विश है कि
0: हम छह दिन छुट्टी कर देंगे, एक दिन स्कूल।
1: ये भी अच्छा है, सबका प्रॉब्लम होती है।
0: ये भी अच्छा है। अच्छा भाई छह दिन छुट्टी और एक दिन स्कूल, ये अच्छा है, चले भाई ठीक है। अच्छा मुझे पहले भी मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा, किसी बच्चे से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था हम सबसे पहले यूनिफॉर्म निकालेंगे, यूनिफॉर्म नहीं पहनना हमने, हमें बहुत जहर लगता है। अच्छा चले इन्होंने कहा स्कूल ही एक दिन होना चाहिए। अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट खाने में फेवरेट चीज़ कौन सी है,

0: कंफर्ट फूड है.
1: अच्छा गुड गुड गुड. अच्छा ये बताएं कि अभी आपने मुझे बताया था कि आपने पोल्यूशन वगैरह के ऊपर ना ड्राइंग बनाई थी, इट वाज. तो ये बताएं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए ये अपॉर्चुनिटी दी जाए आपको कि आप इस वर्ल्ड में से, यूँ समझ लें जैसे

0: उससे भी काफी होते हैं। तो लोग हर जगह ऐसे कहीं भी बार पब्लिक पे गन फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया, और ये बहुत ज्यादा गंदा करता है अर्थ को, और अर्थ साफ नहीं रहने देते कुछ लोग।
1: अच्छा ये बताएं कि गाड़ियां खत्म कर देंगी तो हम लोग इतना इतना खोर तक कैसे जाऊंगी मैं? इतना 50 मिनट तो मेरे घर से जाने में लगते हैं बेटा खोर तक, तो फिर मैं पैदल खोर कैसे जाऊंगी? ख्वाब में जाऊंगी?
0: फिर आप जाइएगा ही नहीं।
1: जाइएगा ही नहीं। इंसान बोल देता है मेट्रो यूज कर लीजिएगा या कुछ कर लीजिएगा या कुछ, चलो कुछ तो नहीं, उन्होंने कहा जाना ही नहीं, उस गली जाना ही नहीं, दुनिया को क्या एक्सप्लोर करना, सारी दुनिया एक जैसी। अच्छा ये बताएं कि आप स्कूल के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पसंद करती हैं या आप ये कहती हैं कि नहीं मैं इंडिविजुअली काम करूँ?
0: ग्रुप का अच्छा होता है।

0: स्कूल में एक्टिविटीज वगैरह जब पीटी का लेक्चर होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है. उसमें हम बाहर जाते हैं, हम लोगों ने बैट बॉल खेलना, तो उसमें मुझे मजा आता है, वरना
1: सही. अच्छा ये बताएं कि आपने कभी कोई प्राइसेस वगैरह जीते?
0: प्राइसेस हाँ, मतलब जीते हुए हैं काफी.
1: जीते हुए, तो वो मोमेंट मुझे डिस्क्राइब करें ना, वो आपको कैसा लगा, किसने आपको कैसे ग्रीट किया और किस चीज में था?
0: मेरा था, एक दफा मेरी फाइव्थ की थी और मुझे ट्रॉफी दी थी और मैं, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बुलाना है स्टेज पे. मैं बातें कर रही थी, उन्होंने मेरा नेम कॉल किया, मुझे लगा किसी और क्लास का होगा, मैं गई नहीं. मुझे इतना उन्होंने बाद में कहा कि, उन्होंने कहा कि द्वार इसवी आए, मैं फिर गई. मैं नर्वस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी. और मेरी फ्रेंड्स, एक तो ये होता है ना कि आप लोग देखते हैं जब अपने फ्रेंड्स को, तो मुझे वहाँ पे इतनी ज्यादा वो हंसी आने लगी थी और मुझे इतनी ज्यादा शर्म आई थी. और बाद में स्टेज से जाकर भी मैं बिल्कुल ही चुप करके बैठी थी, मैंने बोला ही नहीं कुछ भी. और मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि आपको ट्रॉफी मिली है, कुछ खुश हो, कुछ करो, मुझसे नहीं हुआ.
1: नर्वस हो गई थी. जब हम नर्वस हो जाते ना तो ये होता है, हमें समझ, दिमाग जो ना हमारा फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता कि इमोशंस को कैसे रेगुलेट किया जाए.
0: ये होता है सबके साथ,
1: ये हम सब बड़ों के साथ भी होता है अक्सर का. जब सरप्राइजिंगली हमारा कोई नाम ले लेना, तो हम लगे हुए बातों में दूसरों से, अरे तीन दफा टीचर ने बुला लिया, मुझे तो एक्सपेक्टेशन ना थी कि मुझे कुछ मिलेगा. अच्छा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि लाइफ में जब इंसान कोई मिस्टेक करता है तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट.

0: ऑफ आवर लाइफ, और अगर लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों इम्पोर्टेंट लगती है?
1: क्योंकि मिस्टेक्स करने से ही आप परफेक्ट बनते हैं, कोई भी पहले नहीं होता, और करना जरूरी है, उससे हम सीखते हैं।
0: सही सही सही सही। तो आपके अगर पेंटिंग में अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या करती हैं?
1: पेंटिंग से
0: छोड़ देती हूँ, नहीं मैं नहीं करूंगी, जाओ मैं दूसरा पेपर लूंगी, ऐसा होता है?
1: मैं हाँ, मेरा यही है, मुझे गुस्सा आता है।
0: आय हाय, मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ आप जो आर्ट में मिस्टेक्स करते हो ना, वो मिस्टेक्स नहीं होती, मेरा मानना है ये, वो मिस्टेक्स नहीं होती, यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट।
1: हाँ ये भी है कि अगर जैसे हमने ड्राइंग बनानी हो, कोई आपको दिया हो, आपसे गलत बन जाए, तो आप उसको ठीक करो, ना कि गुस्सा करो। लेकिन मेरे में ऐसा ही है कि मैं गुस्सा कर लेती हूँ बहुत जल्दी, इसलिए भी।
0: अच्छा, अगर आपने अपनी किसी बेस्ट अचीवमेंट को डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सी अचीवमेंट होगी?
1: अचीवमेंट मेरी वही थी कि मुझे फिफ्थ में जब था, और मेरी अब मुझे है सहमत में कि अल्लाह करे कि मैं फर्स्ट आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं वो सारी कह रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ती हो, आप इंशाल्लाह फर्स्ट आओगी। तो मुझे अगर अल्लाह करे मैं फर्स्ट आऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता खुशी।
0: अच्छा, अचीवमेंट, ठीक है, ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा होता ये, द मोर हार्ड वर्क यू पुट इन टू इट, देयर इज नथिंग लाइक लकी। कुछ लोग कहते हैं भाई ये बड़ा लकी सा बच्चा है, ये हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है पोजीशंस में। तो आपको क्या लगता है, लकी होना इज समथिंग या इट्स योर हार्ड वर्क विच रिफ्लेक्ट्स?
1: हार्ड वर्क, क्योंकि लकी तो होता नहीं, अपनी मेहनत से सब कुछ बनता है इंसान, वरना

0: खुद पता होती है।
1: अच्छा ये बताएं, अगर मैं फ्यूचर में कहूँ कि कोई एक ऐसी, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो ये बताएं कि अगर आपको लाइफ में सीखने का मौका मिले और भी ज्यादा, कोई एक ऐसी स्किल जो आपको सीखने का बहुत शौक हो, तो वो स्किल क्या होगी? इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न।
0: मेरी जो है, मुझे ना जैसे

0: डेड.
1: अच्छा, मेरे साथ ये था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ज्वाइन द नेवी. आई लव नेवी. मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जब एक लेडी को देखा था, शी वॉज वेयरिंग अ वाइट, पाकिस्तान में ना वाइट ड्रेस है लेडीज का, इट्स अ सारी काइंड ऑफ थिंग, दे वेयर इट इन नेवी.

0: इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए. बट इट्स ओके, मैं हाइट में थोड़ा सा, उनका हाइट का क्राइटेरिया अलग है, तो मेरी हाइट का मसला था तो मुझे नहीं उसके अंदर लिया जा सका. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इफ यू लाइक समथिंग गो फॉर इट, डोंट गिव अप योर ड्रीम्स सो इजीली. इजीली नहीं छोड़ना, एटलीस्ट ट्राई फॉर इट.
1: ट्राई करना चाहिए, बार बार ट्राई करने से हो सकता है. ये नहीं कि एक दफा नहीं हुआ मैं नहीं कर रहा, जाओ मुझे नहीं करना. करना चाहिए, करने से ही हर चीज होती है.
0: अगर अगर पॉसिबिलिटी है उसके अंदर. अब तो मेरा तो हाइट का प्रॉब्लम था कुछ, तो वो तो नहीं फिगर आउट. मैं अपने आप को खींच कर लंबा कर तो नहीं सकती थी तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गया. लेकिन लेकिन अगर कुछ और है जिसको आप कवर अप कर सकते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस मांग रही है चीज, सो डोंट गिव अप सो इजीली. इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक.
2: आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urdureadio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.

0: मैं आपसे बोलूं, आपका लाइफ का कोई अभी तक का कोई गोल सेट किया है आपने?
1: मेरा गोल तो अभी मतलब सिर्फ है कि स्टडी पे फोकस करें और बाकी एक्टिविटीज पर.
0: अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताएं कि स्कूल में सबसे फेवरेट वाली अभी तक की टीचर कौन सी है, कौन सा सब्जेक्ट?
1: मेरे सर है मैथ के, वो बहुत अच्छे हैं. मतलब मैथ नहीं अच्छी, सर अच्छे हैं मेरे.
0: बेटा आपको सब्जेक्ट तब अच्छा लगेगा जब टीचर खुद अच्छे होते हैं. द वे टीचर एक्सप्लेन्स इट ना, इट्स नॉट द सब्जेक्ट विच यू हेट, इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली वो टीचर्स प्रोवाइड नहीं हुए होते हमें, जो हमें राइट मेथड समझा दें चीज का. ये मैंने बहुत बाद में अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में जब मैंने BBA किया था तब मैंने जाके बात सीखी थी कि इट वॉज नेवर मैथ्स विच आई हेटेड, इट वॉज नेवर द मैथ्स. जब मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी तो मुझे जाके पता चला कि इट वॉज एक्चुअली द टीचर जो के जिसने मेरी हेल्प नहीं की कॉन्सेप्ट क्लियर करने में.
1: सर तो मेरी बहुत जैसे कहते हैं ना समझाते भी हैं, लेकिन
0: तो वो इंशाल्लाह आपका मैथ्स का फोबिया खत्म हो जाएगा.
1: मुझे नहीं समझ आती, मैं बातें करती रहती हूँ या अपनी लगे रहते हैं. वो जब सर समझा देते हैं उसके बाद में कहती हूँ मैंने तो समझना था.
0: तो वो आपका प्रॉब्लम हो गया ना. फोकस फोकस फोकस फोकस नहीं मिस किया करें. बातें बात के लिए रख लिया, पूरा दिन होता है बातों के, 6 घंटे होते हैं स्कूल में. देखो इनको चैटर बॉक्स बनी हुई है और फिर इल्जाम किसको दे रही, मैथ्स को और टीचर्स को इल्जाम दे रही है. वेरी बैड. मैं तो ऐसी ना थी, मैं तो सोती रहती थी क्लास. मेरा सोने का प्रॉब्लम था. मेरा सोने का प्रॉब्लम था.
1: मुझे नींद का कोई मसला नहीं है. मुझे बस ये है कि मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठने से मसला होता है टीचर्स की नजर, तो मैं नहीं बैठ सकती.
0: मैं खुद बैक बेंचर रही हूँ बेटा. हम खुद बैक बेंचर हैं. जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले. और मैं पॉजिटिव नोट बता रही हूँ.
1: लेंस कर लिया पीछे बैठ के, आगे बैठो ना तो वो जैसे कहते हैं सर देख रहे हैं.
0: मुझे
1: अपनी मतलब होती थी कि जैसे सर जाते थे मैं पीछे बैठ जाती थी.
0: जो आगे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना उनका हाल ही होता है कि जो काम हमने नहीं भी किए होते ना गलत वो भी हमें याद आ रहे होते हैं. तो ये आगे बैठने वाले बच्चों का ये प्रॉब्लम है. अच्छा भाई ये बताएं, जाने से पहले आपको अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को, जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको.
1: अच्छा कि स्टडी कभी भी बुरी नहीं होती अगर उसे अच्छे से समझो. मेरा ये है, मुझे भी यही है कि स्टडी करनी चाहिए. अगर नहीं होती तो बार बार करो, इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी कल को practice. आगे जाकर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए.
0: So the thing is, दुआ हमसे कह रही है कि never give up. Things might be difficult, but they're not impossible. It depends on your devotion. अब आज से दुआ ने भी यही कहा है कि दुआ कह रही हैं कि आज से दुआ भी क्लास में जब जाएंगी तो फुल फोकस करके बैठेंगी मैथ्स की क्लास में, ना कि ची ची ची ची चिड़िया की तरह जो ना दोस्तों से बातें कर रही होंगी जो किसी को समझ में नहीं आ रही होगी. दरख्त बैठी चिड़िया होती है ना, ची ची ची ची ची ची एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, वैसे तो ना करेंगी. करेंगी
1: नहीं, अब नहीं,
0: अब नहीं. पक्का
1: जी? कोशिश तो करूंगी.
0: रेडियो में बोलकर जा रही है, फिर टीचर को मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग पकड़ा दूंगी. टीचर से कहूंगी टीचर ये बार बार चलाएं इसके लिए. किसने पूरी दुनिया के सामने बोलता अब ना करूंगी. चले भाई खुश रहें, याद रखें जैसा दुआ ने कहा है. साथियों दुआ ने हमें ये समझाया, क्या समझाया दुआ, के कभी भी गिव अप नहीं करना. थिंग्स माइट बी
1: डिफिकल्ट
0: बट दे आर नॉट इम्पॉसिबल. द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल. अगर कोई मुश्किल होती है, मुश्किल हमेशा अपने साथ सोल्यूशन भी लेकर आती है, वो आपका काम बनता है. नन्हे मुन्ने साथियों सुपरस्टार की तरह शाइन करना है ना, तो फिर आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव होकर थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करके अपना लोहा मनवाना पड़ेगा. तो भाई आपकी लर्निंग है जे, लर्न करते रहे. अपनी क्यूरियोसिटी की और लर्निंग की विंडो को कभी भी बंद मत कीजिएगा. हमेशा याद रखें अपने आप को खुश रखें, स्ट्रेस आउट नहीं करें. हाँ मैं कहूँगी कि थोड़ा टाइम ले लेके ना, गैप्स ले लेकर, जो चीज़ आपको अपनी वीकनेस पता है ना कि जैसे दुआ कहती थी उनको मैथ्स नहीं पसंद, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें. यू विल गेट ओवर इट. अरे इतना कुछ तो कर रही हैं, कॉम्पिटिशंस जीत रही हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छी हैं, आर्ट में भी अच्छी हैं, तो व्हाई टू डीमोटिवेट योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगलिंग विद मैथ्स एंड उर्दू. इट्स ओके, यू कैन डू इट. ब्रीद, मुश्किल है लेकिन कर लेंगे. थोड़ा थोड़ा गैप ले लेकर कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे ना.
1: जी
0: कर लेंगे,
1: आगे जाकर इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह आगे. तो भाई साथियों मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मेरा और आपका मुलाकात का वक्त खत्म हुआ. याद रखें बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है दुआ, सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है?
1: अपना.
0: हाँ
1: अपना रखोगे तो दूसरों का खुद ही ऑटोमेटिकली कर लोगे.
0: जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. अपना

0: कप भरा हुआ रखो ना, चाहे कोल्ड ड्रिंक से चाहे ठंडे पानी से, जो आपको पसंद हो. तो फिर जब मेहमान आएंगे घर के ऊपर तो फिर उनको भी सर्व कर देना बाद में, ठीक है. तो भाई मेरी तरफ से साइनिंग आउट, सफा को दीजिए इजाजत. फ्रॉम जूनियर जनाब, सुनते रहे एफ एम 107 से
1: देसी
0: देसी चीता बच्चा. अल्लाह हाफिज.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो एफएम 107 पर. दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों. 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है. और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है. मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं. आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है. एफएम 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए.
5: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
5: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107.
5: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
6: आप सुन रहे हैं एफएम 107.
3: दिल से देसी.

0: ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहर भर में दर्जन से ज़ायद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हालिया महीनों के दौरान रूस ने कीव पर ड्रोन और मिज़ाइल हमलों में शिद्दत पैदा करती है, जबकि यूक्रेन को बैलिस्टिक मिज़ाइलों को रोकने के लिए फिजाई दिफाई निज़ाम की मुसलसल कमी का सामना है। स्पेन ने ऐलान किया है कि शेंगेन जोन की सालमित मुकम्मल तौर पर महफूज है। जब मराकश से स्पेन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके सियोता में जुमेरात के रोज़ 50,000 से ज़ायद तारकीन वतन दाखिल हुए, स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जॉस मैनुअल अल्बारीज़ ने बयान में कहा कि शेंगेन निज़ाम के तहत आज़ादाना नकल व हरकत मुकम्मल तौर पर यकीनी है। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी तौर पर सियोता में दाखिल होने वाले ज़्यादातर तारकीन वतन रज़ाकाराना तौर पर वापस मराकश जा चुके हैं। स्पेन की वजारत दाखिला के मुताबिक 50,000 से ज़ायद अफराद में से तकरीबन 48,300 तारकीन वतन वापस जा चुके हैं, जबकि सियोता में 2,000 से कम अफराद बाकी रह गए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े किया कि शुमाली अफ्रीकी इलाकों सियोता और मलेला से सरजमीन स्पेन जाने वाले अफराद को पुलिस शनाख्ती जांच से गुजरना पड़ता है। उन्होंने यूरोपीय मुल्क ममालिक में पाए जाने वाले इन खदशात को मुस्तरद किया कि स्पेन गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए यूरोपीय यूनियन में दाखिले का रास्ता बन सकता है। दूसरी जानिब इटली ने सियोता बहरान के रद्द अमल में स्पेन के साथ शेंगेन माहदे के तहत आज़ादाना सफ़र की सहूलत को एक माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इस इकदाम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई और बहरी सफ़र के लिए पासपोर्ट चेक दोबारा नाफिज होंगे। इटली ने यह भी कहा कि उसने फ्रांस के साथ मिलकर सरहदी निगरानी मज़ीद सख्त करने पर इत्तफाक किया है, ताकि बग़ैर दस्तावेज़ात वाले तारकीन वतन को दाखिल होने से रोका जा सके। यूनानी हुकाम ने दारुल हुकूमत एथेंस और उसके गिरदोनवा को जंगलाती आग के इंतहाई ख़तरे के पेश नज़र कैटेगरी 5 यानी बुलंद तरीन अलर्ट पर रख दिया है, जबकि तेज़ हवाओं के बायस आग मुसलसल एथेंस की जानिब बढ़ रही है। फायर फाइटिंग टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। सबसे ख़तरनाक आग एथेंस से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में लगी हुई है, जहाँ धुएँ के घने बादल दारुल हुकूमत से भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हुकाम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतासरा इलाकों के करीब कई देहात खाली करा लिए हैं, जबकि साहिली मुहाफिजों ने पोर्टो जर्मेनो के साहिल से 12 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक कम से कम 10 मकानात आग की लपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। दूसरी जानिब फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, तुर्किया और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक भी वसी पैमाने पर जंगलाती आग का सामना कर रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीली ऐसे वाकयात की शिद्दत और तादाद में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। सामीन, खबरों के इस मरहले में एक मरतबा फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। साहिब सुमू अमीर ने अवामी जमहूरिया अल्जज़ायर के सदर को बस हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरकी पैगाम भेजा और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से कल इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी ब्यूरो के चेयरमैन ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। रियासत कतर ने खलीज तआवुन कौंसिल के रुकन ममालिक का डायरेक्टर्स जनरल पासपोर्ट्स के 41वें इजलास में शिरकत की, जो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जीसीसी जनरल सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ। और कतर की दाखला सलामती फोर्स लखविया से वाबस्ता कतरी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ने स्पेन में फैली हुई शदीद जंगलाती आग पर काबू पाने के लिए फील्ड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माउन जासिम और न्यूज स्टूडियो से इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
2: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107, Dil Se Desi।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद। और ये यादें ही देती हैं।

0: हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सबका आपके अपने प्रोग्राम में, दिल से जुड़े प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है। और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के करीब लाती हैं। ये है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जिंदगी हॉकी फील्ड के इर्द गिर्द घूमती है और जिनका सफर मेहनत, जज्बे और कामयाबी की एक खूबसूरत मिसाल है। अदनान सुहेल साहब का ताल्लुक पंजाब के शहर गोजरा से है, जो पाकिस्तान में ओलंपिक विलेज के नाम से मशहूर है और हॉकी के लाजवाब विरसे का मरकज माना जाता है। उन्होंने अपना हॉकी का जो सफर है इस्लामिया हाई स्कूल से शुरू किया, जहां 4 साल तक अपनी सलाहियतों को निखारा और इसके बाद लाहौर में पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल करते हुए डिपार्टमेंटल हॉकी में कदम रखा और सुई सदन गैस और पाकिस्तान कस्टम्स जैसी नुमाया टीम्स की नुमाइंदगी की। साल 2011 में उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ आया जब वो कतर मुंतकल हुए। यहां से उनका सफर कतर नेशनल हॉकी टीम के इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर शुरू हुआ, जिसने उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल हॉकी और यूरोपियन लीग्स में खेलने का मौका दिया। खिलाड़ी से कोच बनने तक का उनका सफर भी इंतहाई दिलचस्प रहा। आज अदनान सुहेल साहब कतर हॉकी नेशनल टीम और यूथ डेवलपमेंट के असिस्टेंट कोच के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और आने वाली नस्ल के हॉकी सितारों की तरबियत और रहनुमाई कर रहे हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं अदनान सुहेल साहब को और उनका इस्तकबाल करते हैं। अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में।
1: अहलन वसहलन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब कि आपने वक्त निकाला अपने जरूरी टाइम में से कि हमारे साथ जुड़ सके।
2: जरूर, क्यों नहीं सर, आपने मुझे इनवाइट किया है तो बनता है टाइम निकालना।
1: चलिए तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। अदनान साहब, अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगी?
2: मैं अगर 3 अल्फाज में बयान करूँ तो उसमें जुनून, इस्तकामत और शुक्र।
1: वाह क्या बात।
2: जुनून मुझे जो सुबह मैदान में खींच के लेके जाता है, इस्तकामत जो मुझे मुश्किल वक्त में साबित कदम रखती है,
1: वाह,
2: शुक्र जो अल्लाह ताला का हर हाल में करना चाहिए।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छे अदनान साहब। एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और असिस्टेंट कोच के तौर पर आप अपनी पहचान को कैसे देखते हैं?
2: ये अल्लाह ताला का बहुत ही करम है कि हम मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और हर हाल में मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही करता हूं।
1: आज जब आप अपने सफर को देखते हैं तो सबसे ज्यादा फख्र किस बात पर होता है?
2: सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस बात पर ही होता है कि मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रहा हूं और कंटिन्यूसली अभी भी कतर की नेशनल टीम से खेल रहा हूं और अल्लाह ताला ने और मैंने साथ मेहनत करता रहा हूं। प्लेयर के साथ साथ मैं कोचिंग का जो होता है कोर्सेज वगैरह करता रहा हूं, सीखता रहा हूं और अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुकाम दे दिया मुझे कि अब मुझे असिस्टेंट कोच की प्रॉपर जॉब मिल गई है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं प्रोफेशनल हेड कोच भी बन सकता हूं अगर मैं अपनी कंटिन्यूसली स्टडी स्टार्ट रखूं, जैसे पहले मैंने अपने ग्राउंड गेम के दौरान कोचिंग को भी साथ रखा सीखते रहे, उसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि हमें कोचिंग के साथ साथ हमें खेलना भी आ जाता है, कुछ चीजें पॉइंट्स जो होती हैं जो बाद में एक बड़ी उम्र के बाद पता चलती हैं, वो छोटी उम्र में पता चल जाता है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये हिम्मत और सलाहियत दी कि मैं सीखता हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ।
1: क्या बात है अदनान साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और इसी तरीके से आप नई जनरेशन की भी रहनुमाई करते रहें, यही दुआ है। अदनान साहब, आपकी पैदाइश गोजरा तौबा टेक सिंह में हुई, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए।
2: जी मैं गोजरा तौबा टेक सिंह, एक छोटा सा तहसील है तौबा टेक सिंह की पंजाब की, उधर पैदा हुआ और मैं वो स्कूल में पढ़ता था तो एक चीज मुझे मिस करता था कि मैं कुछ चीज है जो मिसिंग है मेरी लाइफ में, क्या है वो समझ नहीं आ रही थी, पढ़ रहा था बस पढ़ रहा था और कुछ नहीं। तो सेवन क्लास में जब था ना तो कुछ एक असम्बली होती है, असम्बली में कुछ प्लेयर्स को लिए अनाउंसमेंट हुई कि ये हॉकी प्लेयर्स हैं, नेशनल टीम हमारी जो स्कूल की टीम है ये जी सिल्वर मेडल लेकर आई है। तो उनको मैंने जब देखा बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो मैंने कहा ये जब प्रोटोकॉल इनको मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा
1: है।
2: फिर मैंने सोचा, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने ना कुछ करना है पढ़ाई के साथ साथ, एक तो उसमें एक फिटनेस बन जाती है, एक इंसान बुरे चीजों से बच जाता है, स्मोकिंग ये दूसरी ऐसी वैसी चीजों से माहौल से। तो मैंने अपनी पढ़ाई और उसके बाद स्पोर्ट्स दोनों पे फोकस किया और फिर मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं हॉकी खेलूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने फिर उधर से अपने जो सर थे उनसे बात की, सर मैंने भी ये हॉकी खेलनी, मुझे मोटिवेट किया उन्होंने, तो मैं हॉकी स्टार्ट कर दी थी फिर नेक्स्ट डे से।
1: क्या बात है भाई, तो ये तो आपने बता दिया कि हॉकी से पहला तारुफ कैसे हुआ। क्या ये बचपन का शौक था या किसी ने इंस्पायर भी किया, जैसा कि आपने अर्ज किया कि कहीं ना कहीं आपने ये सोचा कि भाई हमें भी कुछ इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, तो कभी ऐसा भी हुआ कि हॉकी वगैरह किसी को खेलते देखा या किस तरीके से इंस्पिरेशन मिली आपको?
2: एक्चुअली मेरे एक अंकल थे वो पाकिस्तान पीआईए से खेलते थे, तो उनको भी देख के सोचता था, लेकिन घर का कुछ सिस्टम ऐसा था कि उस वक्त नहीं माहौल बना खेलने का, नहीं चांसेस बना जब, लेकिन स्कूल में था। और उसके अलावा मैं क्रिकेट खेलता था हॉकी से पहले, क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही हॉकी का ग्राउंड था, तो अक्सर हम क्रिकेट खेलते हुए हमारी बॉल उधर चली जानी हॉकी वाले ग्राउंड में, तो वो कोच हमें फिर बॉल देता था और साथ कहता था यार क्या खेलते हो, इधर आओ हमारे सिटी में जो है हॉकी ज्यादा फेमस है, आप क्रिकेट छोड़ो इधर आ जाओ। जब भी होना यही चीज सुनने को आनी, ये चीजें भी थी। उसके बाद स्कूल में जो टीम को देखा तब ये चीजें, ये दोनों चीजें को मिक्सअप करके और साथ मेरे अंकल जो खेलते थे, फिर उनको मैंने फोन किया, उनसे रहनुमाई ली, उनसे हेल्प उन्होंने मेरी बहुत की। तो इधर से करते करते ये चीजें थोड़ी सी सोच समझ समझ के मैं हॉकी में।
1: क्या बात है, आपने पहली बार कब महसूस किया कि हॉकी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकती है?
2: मैंने उसी वक्त जब मैंने प्लेयर्स को प्राइजेस देखे और उनको रिस्पेक्ट देखा कि नॉर्मल एक स्टूडेंट को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितनी वो प्लेयर्स जो हॉकी खेलते भी थे और साथ पढ़ते भी थे। तो फिर उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैंने भी इंशाल्लाह इस तरह प्रमोट करना
1: है, आगे बढ़ाना है अपने आप को।
2: जी जी।
1: कतर आने का फैसला कैसे हुआ और उस वक्त आपके जहन में क्या ख्याल थे?
2: कतर आने का फैसला इस तरह हुआ कि हम हॉकी खेल रहे थे पंजाब में, पाकिस्तान में कस्टम्स और ये दो तीन डिपार्टमेंट मैंने खेले हैं, तो लेकिन उधर सैलरी बहुत कम थी, तो लेकिन मैं एक अच्छा प्लेयर था टैलेंटेड, और मेरे साथी जो कुछ थे वो पहले ही कतर आ गए थे हम उससे कुछ तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले। तो मैंने देखा कि अगर वो कतर को भी जरूरत थी कि एक ग्रुप मिल जाए, हमारा एक ग्रुप था आठ लड़कों का बहुत अच्छा, हमारे उस्ताद थे ताहिर जमान ओलंपियन जो 94 के चैंपियन है, तो वाइस कैप्टन थे और शहबाज सीनियर के साथ, तो उन्होंने फिर हमें ये कतर के साथ, उनके साथ अच्छे लिंक्स थे उसके इधर की फेडरेशन के साथ, तो उनको ऑफर आई थी कि आप हमें कुछ प्लेयर चाहिए जो बहुत ही अच्छे हों और एक ग्रुप हो जो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि हम अगर टीम बनाएं तो कुछ उनको सेटल करने के लिए आपस में क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुश्किल हो। तो फिर हमारा एक पूरा ग्रुप स्टेप बाय स्टेप, चार लड़के पहले आए थे फिर पांचवा मैं आया था मेरे बाद फिर तीन आए, एक दो महीने के अंदर अंदर हम आठ लड़के जो कतर की नेशनल टीम ज्वाइन कर चुके।
1: क्या बात है भाई, जब आप पहली बार दोहा पहुंचे अदनान साहब तो पहला इम्प्रेशन क्या था?
2: पहला इम्प्रेशन एक तो पहले बहुत खुश थे और उस वक्त मैं जब उतरा सबसे पहले दोहा एयरपोर्ट था ये पुराना, तो इधर उतरे हैं तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो थे मुझे उन्होंने पिक किया, सब इकट्ठे आए, बहुत खुशी हुई कि यार इधर एक माहौल बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, कम्युनिटी मतलब उनके साथ वो एक दूसरे की केयरिंग थी, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी।
1: क्या बात है, शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और एक नए कल्चर में एडजस्ट करना कैसा रहा आपके लिए?

0: एक्चुअली ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान में भी पूरे पाकिस्तान में जाता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ हर डिफरेंट सिटीज में, कैंप्स और अकेडमी में तकरीबन दो दो दो तीन तीन महीने बाहर रहना, आउट ऑफ सिटी रहना फैमिली से दूर एक ग्रुप फ्रेंड के साथ, तो एक इतना मुश्किल नहीं हुआ था इधर आके भी। और इधर की जो मैनेजमेंट थी बहुत ही नाइस थी, हमारे सर नासिर थे वो इंडिया के थे और वो हमारे सेक्रेटरी थे हॉकी फेडरेशन के उस वक्त, और उन्होंने उनकी वजह से उनकी हेल्प उन्होंने बहुत ज़्यादा की हमारी, हमें समझाते थे बताते थे हर चीज़, और जो चीज़ें हमें बाद में बहुत टाइम से बात पता चलनी थी वो पहले बता देते थे, तो इसकी वजह से हमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई।
1: बहुत अच्छे। शुरू के दिनों में एक नए मुल्क में और एक नए कल्चर में एडजस्ट करना कैसा रहा?
0: बहुत इजी था, मुश्किल नहीं था, इसलिए कि इधर स्पोर्ट्स जो एटमॉस्फेयर था ना बहुत अच्छा था, तो हमें अकोमोडेशन अच्छी मिली, रहना खाना पीना सब अच्छा मिला, और ग्राउंड फैसिलिटीज अच्छी हुई क्योंकि हम स्पोर्ट्स मैन थे, हमें सबसे मेन चीज़ होती है हमें स्पोर्ट्स मिलती रही, वो हमें मिलती रही है, खेलते रहे हैं बिजी रहे हैं, तो कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ।
1: अच्छा,
0: तो
1: ये भी जान सकता हूँ अंदान साहब कि स्पोर्ट्स करियर को कंटिन्यू रखना कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जिम्मेदारियां तो होती हैं घर की भी काम की भी?
0: चैलेंजिंग जब तक पाकिस्तान में थे तब तक तो काफी मुश्किल था, तो लेकिन जब कतर आ गए तो इधर ये था फिक्स सैलरी एक मिलने लग गई थी, अकोमोडेशन घर वगैरह सब कुछ, मेडिकल फैसिलिटीज, जो इंसान को मुश्किल होती है वो सारी इधर कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई।
1: क्या बात।
0: और साथ तो इस वजह से कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हमारा कतर इसी तरह हर किसी का हर एक का ख्याल रखता है और रखता आया है, अल्लाह ताला मजीद कामयाबियां दे हमारे कतर को भी और हम सब को भी। क्या कभी आपने सोचा कि ये सफर इतनी दूर तक ले जाएगा?
0: नहीं, कभी नहीं सोचा था मेरा, एक्चुअली मेरा कतर आने से पहले कुछ भी नहीं सोचा था कभी बाहर जाएंगे, बस ये था कि पाकिस्तान में रहेंगे, अपने पाकिस्तान की तरफ से हॉकी खेलेंगे या डिपार्टमेंटल हॉकी खेलेंगे, तो कुछ सोच नहीं थी, लेकिन जब हालात ऐसे आए, कुछ मुश्किलात ऐसी आई, तो फिर सोचा कि नहीं इधर से निकलना थोड़ा सा बनता है, चलो कुछ नहीं तो सीखेंगे। एक्चुअली हमें भी इधर भी हम एक महीने के लिए आए थे, एक लीग थी इधर कतर में, तो वो खेलने के लिए उन्होंने कहा था उसमें ट्रायल होंगे आप देखेंगे हम, अगर हमें पसंद आए तो, हमने भी कहा चलो ठीक है चलते हैं, क्या बात है क्या मुश्किल है, एक महीना रहेंगे वापस आ जाएंगे। जब इधर आए इधर का माहौल अच्छा था, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, तो कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ, तो फिर हमने भी डिसाइड किया कि नहीं जाना, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि आपको वापस नहीं भेजना, तो हम फिर इधर अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गए।
1: भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सख्त दिन और स्ट्रॉन्ग डेज की बात करते हैं। हर एथलीट की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं जैसे आपने भी अभी फरमाया, तो आपका सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा, जो चीजें परेशानी के हिसाब से बात करें तो?
0: परेशानी कुछ नहीं थी, एक बार एक हमारा कोच आया था मलेशियन,
1: ओके,
0: तो वो अच्छा कोच था, लेकिन उसको एक इन द एंड एक हमारी चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी कुछ, तो उसमें उसने एक तीन प्लेयर को ड्रॉप किया था, एक लड़का था इंडिया का जुनेद, एक तारिक और एक मैं, और मैं हमारी जगह उन्होंने एक उसके कोई दोस्त थे मलेशियन ही, एक मेरे का 35 एज और एक कोई 32 ऐसे कुछ था, उन्होंने रिप्लेस करके हमें टीम से ड्रॉप कर दिया था। तो उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अब छोड़ के जा रहा हूँ, ये 2012 के एंड की बात है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकंड जो असिस्टेंट कोच था ना, वो मैं ऑफिस में बैठा था, वो आया मेरे पास, क्या हुआ? मैंने कहा ये इशू है, इसने कोच ने ऐसे ऐसे ये गलत चीज़ की है, उसने कहा टेंशन नहीं लो, तो मैंने उसको सारा बताया, उसने फिर सेक्रेटरी से बात की, सारा कुछ मैनेज हुआ, तो लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं हम खेले थे, उसके बाद ये है कि हम कंटिन्यूसली रुके भी हैं खेले भी हैं, लेकिन ये है वो कोच की गलत पॉलिसी की वजह से वो कोच नेक्स्ट ईयर फारग हो गया था कुछ मंथ में, क्योंकि उसकी पॉलिसी वो गलत थी, जो जिस प्लेयर को उन्होंने हमारे साथ रिप्लेस किया था वो एक्चुअली एक्स इंटरनेशनल थे मलेशिया के, और वो पहली मैच में अनफिट हो गया था एक प्लेयर को।
1: भाई ये तो हमारे कतर की खासियत है कि हर किसी के साथ इंसाफ होता ही है। अदनान साहब, दोहा इतनी खूबसूरत जगह और हर किसी का ख्याल रखने वाला मुल्क हमारा कतर, क्या कभी होम सिकनेस महसूस हुई या फैमिली से दूर रहने का एहसास हुआ आपको दोहा?
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं। और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और شدید गर्मी का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں ایسی سیچویشن میں صحیح فیصلہ لینا آپ کی زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے اس لیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کریں اور آگ لگنے کی صورتحال میں لفٹ سے ہر صورت پرہیز کریں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں
4: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: चलिए अब फैमिली के हवाले से भी जान लेता हूँ कि आपकी फैमिली का आपकी स्पोर्टिंग जर्नी में क्या रोल रहा है
0: मेरा एक्चुअली फादर का बहुत रोल था मेरे इसमें खेलने में स्टार्ट में मुझे कोई भी अलाउ नहीं कर रहा था घर में भाई मदर तो लेकिन फादर जो थे वो उन्होंने अलाउ किया उन्होंने कहा जो आपको जो दिल करता है करो लेकिन अपनी स्टडी का साथ कंटिन्यूस रखो कंटिन्यू तो उसके उन्होंने उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मजे की बात मुझे पता चला है बाद में कि मेरे फादर भी बचपन में हॉकी खेलते रहे हैं मुझे तकरीबन 10 साल बाद पता चला कि वो भी हॉकी खेलते रहे हैं
1: तो ये बात शायद कहीं ना कहीं उन्होंने छुपाई रखी और आपको भी एक बेहतरीन हॉकी प्लेयर बनना देखना चाहते होंगे मगर शायद उन्होंने वक्त का इंतजार किया
0: जी जी हमें बिल्कुल उन्होंने वक्त का इंतजार किया और उन्होंने मुझे 10 साल बाद पता चला कि हैं आप भी हॉकी खेलते रहे हो कहता जी मैं खेलता रहा हूँ क्योंकि हमें ग्राउंड में आते थे मुसलसल हमें देखने ग्राउंड की गेम्स वगैरह देखने हमारा सिटी जो है ना टाउन जो है ना हॉकी के हिसाब से ओलंपिक विलेज के नाम से फेमस है और अभी भी हम उधर मॉर्निंग 4 o'clock हॉकी स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन 9-10 बजे तक चलती है और शाम को फिर 2 बजे दोपहर को शुरू हो जाती है और शाम को 6-7 बजे तक जब तक के सूरज ग्रूब नहीं हो जाता उस वक्त तक हॉकी चलती रहती है
1: क्या बात है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का सफर जो रहा इनमें जाहिर बात है बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी होंगी तो इसके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं
0: इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए कुर्बानियां तो बहुत दी हैं बहुत लंबी दास्तान है तो लेकिन हम ये है कि हम हार्ड वर्कर थे और कंटिन्यूसली ग्राउंड में जाना नहीं छोड़ा था मुश्किल वक्त आए थे एक दो बार छोड़ी हॉकी फिर वापस आए फिर छोड़ी फिर वापस आए मुझे हमेशा शुरू से अच्छे उस्ताद मिले थे और मैं वो मुझे पसंद करते थे मेरी एक चीज़ अच्छी थी कि मैं हार्ड वर्कर था मतलब कि चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता था पॉजिटिव लेता था कभी मुश्किल आनी शेयर करनी उस्तादों से कोचिज से तो जब अच्छी रहनुमाई मिलती थी और अपने वाला साहब से अच्छी रहनुमाई मिलती थी फिर मोटिवेट होकर वापस हमें वापस ग्राउंड में आना पड़ता था तो इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सिस्टम
1: राइट आज पीछे देखते हुए सबसे बड़ी सीख कुछ ऐसी मिली जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं
0: पीछे देखते हुए सीख यही मिली है कि आप कुछ भी मुश्किल वक्त हो कोई भी कभी कोई परेशानी हो अपने पेरेंट्स अपने उस्ताद और अपने जो वेल विशर्स हैं उनके साथ शेयर करें और उसको कोशिश करें उसका हल निकालें और परेशानी कोई भी हमेशा के लिए नहीं होती इसको बस हार्ड वर्क और अच्छे से टैकल कर लो तो वो परेशानी दूर हो जाती है
1: क्या बात है भाई अदनान साहब चलिए अब अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं और कुछ मेमोरीज इकट्ठा करते हैं कुछ माइलस्टोन्स की बात करते हैं कुछ ग्लोरी की बात करते हैं और अब हमें हमारे लिसनर्स जानेंगे भी मजीद आपके बारे में 2017 इंडोर एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतना कैसा एहसास था
0: माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त था एक्चुअली हम ब्रॉन्ज मेडल की जगह सिल्वर और सिल्वर मेडल भी जीत सकते थे तो क्योंकि हमारा हरीफ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हरीफ था वो था ईरान इंडोर हॉकी में ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग है सेकंड पे जो उस वक्त गोल्ड मेडल ईरान हुआ था और ब्राउन मेडल सिल्वर मेडल जो हुआ था ओमान हुआ था और ब्राउन मेडल कतर हुआ था तो उस वक्त सबसे प्रॉब्लम एक मैच में एक फ्रैक्चर ऑफ सेकंड में एक ऐसा गलती हो गई थी हमारे कोच से कि हमारा गोलकीपर चेंज कर रहे थे उस टाइम में हम 1-1 ड्रॉ जीत रहे थे 1-0 से तो 1-0 से जीत रहे थे वो एक गलती से एक फ्रैक्चर ऑफ सेकंड्स में हमें एक गोल हो गया बराबर हो गया उसके बाद प्लेंटी शूट आउट लगे प्लेंटी शूट आउट पे हम ओमान से हार गए थे ओमान फिर फाइनल में पहुंच गया था हम सेमीफाइनल मतलब कि हम ब्राउन मेडल की इसमें मैच में चले गए थे ये सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ तो उस वजह से ये بہت ایشو ہونا تھا تو لیکن الحمد للہ اگر ہم اس وقت فائنل میں پہنچ جاتے تو ہماری ٹیم انڈور ورلڈ کپ کھیلتی.
1: کیا بات ہے, انشاءاللہ اب یہ جو آپ کا خواب ہے آگے اللہ تعالیٰ خیر سے پورا کرائے گا. میڈل جیتنے کے بعد سب سے پہلا خیال عدنان صاحب کس کا آیا ذہن میں؟
0: سب سے پہلا خیال تو اپنے والد کا ہی آیا, ماشاءاللہ ان کے بہت خوشی وش تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ اچیو کریں. تو اور اس کے بعد قطر نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, تو ہم نے اپنی جان لگا کے, اس وقت براؤن میڈل بھی ایزی نہیں تھا لینا, تو کیونکہ ہمارا میچ ملیشیا کے ساتھ تھا, ملیشیا ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ہے ایشیا میں, تو ہم نے اپنی جان پوری لگا کے یہ براؤن میڈل حاصل کیا تھا کہ ہم نے قطر کو کچھ نہ کچھ دینا ہے.
1: واہ,
0: کیونکہ قطر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے.
1: واہ,
0: تو ہم نے اس کو براؤن میڈل حاصل کیا.
1: کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, کیا جذبہ ہے اور کیا خوب بات کہی ہے. کوئی ایسا میچ جو آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ والا جو آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟
0: ایک میچ ہمارا سنگاپور میں تھا, سنگاپور میں ساتھ ہم میچ سیریز کھیل رہے تھے.
1: اچھا,
0: فائیو میچز کی سیریز کھیل رہے تھے. تو پہلے دو میچ تو ہم جیت گئے تھے, تیسرے میچ میں ایسا ہوا کہ ہم نا تھوڑا سا ایزی لے لیا ٹیم کو, ہم 3-0 سے ہار رہے تھے. تو ہمارا کوچ جو تھا وہ ناراض ہو کے گراؤنڈ سے باہر چلا گیا. تو ہاف ٹائم میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا لڑکوں نے, یار یہ کیا ہو گیا کہ یہ کوچ تو ناراض ہو گیا, اب کیا کرنا ہے. اور ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی تھی, ہم نے بہت ایزی لیا ہوا تھا ٹیم کو. تو آپ مانو گے کہ وہی میچ ہم 5-3 سے جیت کے باہر آئے.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
0: تو یہ کرنے کی بات کہ اس وقت پھر ہم نے سوچا کہ اتنا ایزی ہو رہا ہے میچ, کیوں ہم اس ٹیم سے پہلے دو جیتے ہوئے, اب کیوں ایسا ایشو ہو رہا ہے. تو وہ پرابلم یہ تھا, انڈیویجول کھیل رہے تھے, یہ پھر ٹیم ورک کیا, وہ کوچ کو دیکھا کہ کوچ اینگری ہے, پھر ہمیں فیل ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے پھر اتنا ہارڈ ورک کیا اسی میچ میں, اتنا کہ زور لگایا کہ وہ ٹیم بھی سرپرائز ہوئی, ہمارا کوچ بھی سرپرائز ہوا اور ہم خود سرپرائز ہوئے کہ ہم ایک ٹیم کو 3-0 سے ہارنے والے سے ہم 5-3 پہ جیت کے باہر نکلے.
1: کیا بات ہے بھائی, قطر کی نیشنل ریپرزینٹیشن کرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آج دنیا بھر میں ہمارا قطر مشہور ہے ماشاءاللہ, اور اس میں اتنے بڑے عہدے پہ ہونا تو کیسا محسوس ہوتا ہے عدنان صاحب؟
0: آئی ایم پراؤڈ ٹو مائی سیلف کہ میں قطر کی نیشنل ٹیم سے کھیلا ہوں. اٹس ناٹ ایزی ٹو پلے فار قطر نیشنل ٹیم, تو آئی آلویز پراؤڈ ٹو بی اے نیشنل ٹیم پلیئر آف قطر اینڈ آلسو اسسٹنٹ کوچ آف یوتھ ہاکی قطر.
1: کیا بات ہے, پلیئر سے اسسٹنٹ کوچ بننے تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟
0: پلیئر سے اسسٹنٹ کوچ بننے کا سفر تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن 2013 میں میں نے ایف آئی ایچ کا سب سے پہلے ہائی کوالیفائیڈ کورس کیا. اس سے فیل ہوا کہ یہ کام بہت ضروری ہے کہ میں نے اپنا فیوچر پلان بھی کر لوں, کیونکہ پلیئر جو ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے پلیئر نہیں رہتا, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا ڈلنا بھی ہوتا ہے. اس نے پھر اس کا فیوچر پلان کے حساب سے میں نے سوچ کے پھر اسی وقت کوچنگ شروع کر دی تھی. تو میں کرتے کرتے ہارڈ ورک کرتے 13-14-15 میں لیول 1-4 ایسے کرتے کرتے ہائی کوالیفائی تک ہم نے کورسز کیے ہیں, کیونکہ ہاکی کی کمپنی ایف آئی ایچ کی اسٹڈی ہوتی ہے. تو میرے جو ایکس انٹرنیشنل اولمپئن طاہر زمان ہیں وہ ایف آئی ایچ کے ایجوکیٹڈ ہیں, بہت بڑے, ان کی رہنمائی رہی, اور ان کے ساتھ طیب اکرام ایف آئی ایچ کے پریزیڈنٹ ہیں, اب ان کی رہنمائی رہی, بڑے بڑے جو استاد تھے ان کی رہنمائی رہی. تو کوچنگ سیکھتے رہے, تو ایک وقت آیا اب کہ ہمیں انہوں نے اپوائنٹ کوچ اپوائنٹ کر لیا, کیونکہ ہم ایک تو لینگویج ادھر کا ماحول جانتے ہیں, ادھر کے اسکولس کو جانتے ہیں, ادھر کے لوکل پلیئرس کو, ماحول کو, تو اس وجہ سے ہمیں انہوں نے پہلے پریفر کیا کہ ہم آپ کو ہی لیں گے تو کوچز, کیونکہ آپ زیادہ بہتر ادھر ہاکی کا ہو.
1: آج جب آپ ینگ پلیئرس کو ٹرین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کیا کوالٹیز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں؟
0: سب سے پہلے تو ہم ان میں کوالٹی جو ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں, ان کی وش ہو کہ یہ اسپورٹس آپ نے کرنی ہے, وہ ہیپی ہوں اسپورٹس میں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ فٹنس, تھوڑی سی فٹنس اتنا ہو کہ وہ کھیل سکیں, اتنا مشکل نہ ہو, ہمیں ہارڈ ورک نہ کرنا پڑے کہ اس کو پہلے اس کی فٹنس پہ کام کریں پھر اس کو ہاکی سکھائیں. تو ہمیں کوشش کرتے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں تو ادھر سے ہم بچوں کو پک کرتے ہیں, تو جو دوسری اسپورٹس میں ملٹی اسپورٹس میں کرتے ہیں, اور ہاکی میں اس لیے ہم لے کے آتے ہیں ان کو کہ ہاکی میں زیادہ چانسز ہیں بچوں کو, کیونکہ جلدی وہ ادھر سے اگر قطری پاسپورٹ ہے, قطری نیشنل ہے, تو وہ جلدی ٹیم میں آ سکتا ہے, بہ نسبت کہ وہ ہم انڈین پاکستانی یا دوسرے ہوں, وہ ان کے لیے کم از کم ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ پرمیشنز لینی پڑتی ہیں, پھر جا کے ان کا پاسپورٹ بنتا ہے, پھر وہ کھیلتے ہیں. اس سے اب ہم جو اب جب وقت چل رہا ہے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں قطری بچوں پہ, اور قطر سے نان قطریوں میں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہو پھر ہم اس کو پک کرتے ہیں پلیئرس کو, اور ان کی ایک اکیڈمی بن گئی ہے, اکیڈمی کے اس کا پروسیجر ہے, उसमें बना बुला के उनको अंडर 12, 14, 16, 18, फिर अंडर 21,

0: ओपन जो भी प्लेयर्स है, जितनी भी एज का कोई नहीं है, यंग हो, तो उनको फिर उनका एक नेटवर्क सिस्टम बना दिया है, ऐसे चल रहा है अब। और इंशाल्लाह 2030 हमारा जो गोल है 2030 एशियन गेम्स है, उस तक हमने बहुत परफेक्ट टीम बनानी है।
1: क्या
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब मोर देन 50 कतरी प्लेयर्स हैं और तकरीबन 15-20 नॉन कतरी प्लेयर्स भी हैं। उस पर एक हमारी पूरी टीम, एक चैनल, एक सिस्टम चल रहा है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 2030 तक हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी।
1: क्या बात है अदनान साहब। ड्रेसिंग रूम या ट्रेनिंग सेशन की कोई यादगार बात जो लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो, कोई मजाहिया या कोई तफरी वाली बात भी शेयर कर सकते हैं लेटर नोट पे?
0: जी, ये तो ड्रेसिंग रूम में इधर उधर फंक्शन होता रहता है, तो वो तो नहीं है, लेकिन एक ये था, मैच खेल के हम जा रहे थे एक दिन, यूरोप में था हमारा कैंप, तो टीम में ना मैं सबसे थोड़ा सा शरीफ सा बच्चा था कोच की नजर में, मुंह तो नोटी लेकिन उसकी नजर में। तो वो ना लड़के एक दूसरे को बर्फ मार रहे थे, आइस स्नोफॉल हुई भी थी तो बर्फ मार रहे थे। तो मैं बिल्कुल कोच के साथ चल रहा था, बिल्कुल कोच के साथ, तो मैंने देखा ये सब मार रहे हैं, मैं कोच के साथ बड़ा डिसेंट सा बन के चल रहा हूँ। मैंने देखा मेरा कोच भी ना बना के मार रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा किसने मारा। तो मैं कोच के साथ चलते चलते मैंने बर्फ उठाई, उसको नहीं पता चला, एक स्टेप पीछे होके मैंने बर्फ कोच के सर पे मारी, कमर पे, तो मार के बिल्कुल बराबर में आ गया। तो कोच परेशान, किसने मारी, उसने सबसे पूछ लिया, तो कोई भी माने ना, सबको पता था मैंने मारी है। और कोच खुद ना मानने के होगा तो यार शरीफ सा बच्चा ये नहीं मारेगा। तो उसे तकरीबन एक साल बाद पता चला, तो वो जो बर्फ मारी थी ना लगी भी जोर के थी उसके।
1: अब आपको चला कि ये
0: मारने वाले, मारने वाले
1: खुद कोच है, तो तैयार रहिए, अभी आपको काफी
0: ये फन और ये चीजें चलती हैं, आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड
1: चलती हैं, यंग टैलेंट आपको सुन रहा है इस वक्त, तो आप भी तैयार रहिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं,
0: छोटा मोटा फन है,
1: बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अदनान साहब, दोहा के हवाले से बात अगर हम करें, हमारा प्यारा दोहा, तो आप एक लफ्ज में कैसे बयान करेंगे दोहा को?
0: दोहा इज मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी एंड कतर इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं अराउंड अबाउट 20-21 कंट्रीज घूमा हूँ, जो सुकून, जो इत्मीनान और आप फ्रेश फील करते हो ना कतर के अलावा, मुझे कहीं भी इतना रिलैक्स फील नहीं हुआ, तो
1: क्या बात,
0: कतर इज द बेस्ट, दोहा इज द बेस्ट।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कतर हमारा बेस्ट है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। जो यंग एथलीट्स हॉकी में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है अदनान साहब?
0: जो यंग एथलीट हॉकी में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको एक सोच के समझ के आना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स है, ये मैंने करनी है। एक स्पोर्ट्स को चूज करें और उसमें देखें कि इसमें फ्यूचर किस में है। जैसे कि हमने स्टार्ट की थी बचपन में, हमें पता था हमारी सिटी में हॉकी ही सबसे फेमस है और इजी है, इजी टू गेट अ चांस टू हाई लेवल। तो अगर आप भी कुछ स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हो या देखते हो, तो आपको भी पहले चूज करना चाहिए कौन सी स्पोर्ट्स अच्छी है, इसमें फिटनेस भी है और उसके अलावा आगे अपॉर्चुनिटी भी है। तो जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर खेल रहे हैं, और गेम्स हैं उसमें अपॉर्चुनिटी। इस वक्त हॉकी ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिस सबसे ज्यादा इधर कतर में, जिसमें आप अगर 3-4 साल अच्छे से मेहनत करते रहते हो तो आपको नेशनल टीम में चांस मिल सकता है।
1: क्या बात है भाई, आपके नजदीक सक्सेस टैलेंट से आती है या कंसिस्टेंसी से?
0: दोनों से।
1: ओके ओके, गुड वन। आखिर में अदनान साहब क्या कहना चाहते हैं, दोहा ने आपकी जिंदगी को किस तरह से शेप किया या बदला है?
0: दोहा ने हमें बहुत बहुत बदला है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक्चुअली कतर के लोग बहुत ही नाइस हैं, मैं हमारे जो दोस्त हमारे कतर के नेशनल हैं वो खेलते थे, बहुत ही पॉजिटिव हैं और हमेशा उन्होंने हमारे साथ मदद की है हर हाल में, हर परेशानी में, और हमारे साथ एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर चले हैं। तो इस वजह से हमें, मैं एक जो दो बार कतर छोड़ के भी गया हूँ, यूरोप में खेला हूँ, तो लेकिन जो सुकून और जो रिलैक्सेशन इधर है वो कहीं नहीं मिली।
1: क्या बात है भाई अदनान साहब, इसी के साथ प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी कहानी और स्टोरी अपने साथ शेयर करी।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों, ये थे अदनान साहब, और जिन्होंने बहुत अच्छी बातें एक नई पीढ़ी के लिए हमारे साथ शेयर करी। आप सबसे भी इतना कहना है कि जिंदगी के हर सफर में, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर ही नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक

0: और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।

हाँ भाई, एफएम 107 सुनने वाले जवानों अटेंशन, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। इस हफ्ते भी बहुत कर्री लिस्ट बनाई है हमने, एकदम कर्री लिस्ट भाई साहब। इतनी रिसर्च तो हमने अगर असल जिंदगी में कर ली होती तो चांद पे पहुंचने के 2-3 और रास्ते निकाल लेते, पर गानों की लिस्ट तैयार है, बहुत शानदार लिस्ट है। इस बार भी कुछ ऐसे गाने हैं जो आए मार्केट में, आए बिल्कुल, आई एग्री, पर वो लिस्ट में जगह नहीं बना पाए क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी बहुत सॉलिड है। मगर फिर भी आप जो है जो सुन रहे हैं, आप भी बता सकते हैं कोई ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि लिस्ट में आना चाहिए और नहीं आया, प्लीज बताइएगा। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं कि अरे तुमने तो ये वाला गाने नहीं डाला। वो क्या है कि कई मरतबा हमसे भी गलती हो जाती है, मैं कोई दुआ के 12 हाथ थोड़ी हूँ, तो कई मरतबा मिस हो जाते हैं गाने। मगर फिलहाल ये लिस्ट थोड़ी सी रिफ्रेश करी है और ये एकदम फ्रेश लिस्ट आपके सामने है। जो नए नए गाने इस हफ्ते आए हैं वो भी इसमें इंशाल्लाह आने वाले लिस्ट में अपडेट मिलेंगे आपको, खूब मजा आएंगे आपको, ठीक है जी। मैं आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ भाई, हमारे उस पे क्या कहते हैं, उस पे फेसबुक पे और इंस्टा पे और टिकटॉक पे, सो FM 107 कतर, FM 107 कतर, इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज हमसे जुड़िए। लिस्ट शुरू करते हैं सबसे पहले 10, 9, 8 और उसके बाद हम इस सांप सीढ़ी की सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएंगे। कोई सांप नहीं है, सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी। सो 10, 9, 8 तो शुरू करते हैं गाना नंबर 10 से। तो ये गाना जो है फिसल के 9 से 10 पे आ गया है। इसे पता नहीं कब तक मैं रख पाऊंगा लिस्ट में, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा इंप्लॉय हो गया कि मैं उसे बार बार कह रहा हूँ, देखो ज्यादा दिन में तुम्हें रख नहीं पाऊंगा, मुझे तुम्हें रिलीज करना ही पड़ेगा। तो अभी 10 पे आ गया 9 से, पता नहीं कि अगले हफ्ते ही लिस्ट में होगा नहीं होगा। फिलहाल इट इज एट नंबर 10, वेलकम टू जंगल का ये गाना, क्योंकि इसका म्यूजिक थोड़ा पैपी है, मैं क्या करूं। हालांकि गाना रीमेक है, 2.0 है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ऊंचा लंबा कद अभी भी लिस्ट में बना हुआ है, गाना नंबर 10। दो तीन रीजन है इसके 10 पे बने रहने की जो वजह है, उसमें से एक वजह है कि गाना थोड़ा पैपी है, बढ़िया म्यूजिक है, नॉस्टैल्जिया है, वापिस अक्षय कुमार है, तो ये सब की वजह से इसको यूँ समझ लीजिए कि एफर्ट के मैंने नंबर दे दिए हैं। तो अभी इस बार मुझे लगता है कि लिस्ट में शामिल रहेगा, अगले हफ्ते की कोई गारंटी नहीं है। तो ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी नी तो हद अभी भी है लिस्ट पे एट नंबर 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला गाना जो नंबर 9 पे आ चुका है, इस गाने को मैं लिस्ट से निकालना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी दिन आ रहे हैं, पर गाना जब भी अच्छा है। ये गाना लिस्ट में इसलिए नहीं है कि बस मुझे कोई गाना रखना था रख दिया, नहीं, वजह है इसकी बड़ी सिंपल कि गाना एवरग्रीन है, ये आगे भी चलता रहेगा, ये उन गानों में है जो अगले आने वाले 2-3 सालों तक तो लोगों को याद रहेगा। ये गाना एट नंबर 9 इसलिए आया है, आप कहेंगे इतनी तारीफ करके 9 पे क्यों रखा, तो उसकी भी वजह है क्योंकि ऊपर इससे बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आ चुके हैं जो फ्रेश हैं। तो गाना नंबर 9 जो है आरजू, जिसको गाया असीम अज़हर साहब ने। ये बहुत टाइम से हमारे लिस्ट में है, एक टाइम पे 5 पे भी रहा है, 6 पे भी रहा है, 7 पे भी रहा है, सो सारी रैंकिंग इसने देख ली है, मतलब सारे दिन देख लिए हैं, घाट घाट का पानी पी लिया है और अब 9th पोजीशन पे आ चुका है। बट आई डोंट थिंक कि लिस्ट से बाहर होगा, अभी भी इसकी वैल्यू, अभी भी इसकी कदर है। आसिम अजहर साहब की आवाज में आरजू एट नंबर 9। एंड अगेन, मैं क्योंकि इनके गाने का जिक्र कर रहा हूं तो मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, मैंने पिछले सारे एपिसोड्स में करा है, अगर आप भी एक सिंगर हैं, अगर आप अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी की कोई जरूरत नहीं है कि आप ढूंढे तलाशें, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाइए, जाइए गानों के कवर बनाइए। भाई साहब, ये जो ट्रेंड शुरुआत में चला था कि हम गानों के कवर अपलोड करेंगे, लोगों ने वो बंद कर दिया और अब इसीलिए मार्केट ओपन है। आई वुड सजेस्ट जितने लोगों की आवाज अच्छी है, गाते अच्छा है, सिर्फ महफिलों में बर्थडे पार्टी से मत गाओ, अपना गाना कवर गा के डालो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। और आसिम अज़हर से जुड़ी हुई क्यों बात करी मैंने, क्योंकि इनका करियर ग्राफ बहुत बहुत मेहनत दिखाता है, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। ऐसे आर्टिस्ट से इंस्पायर होना चाहिए। और असीम अजहर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरी बात उन तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी वो दूसरी तीसरी बात है, बट आई होप कि पॉप सिंगर्स भी एल्बम निकालें, क्योंकि एक टाइम था जब ऐसा हो रहा था, शान की एल्बम आती थी, के साहब की एल्बम आती थी, सोनू निगम साहब की एल्बम आती थी, तो वो एल्बम का दौर चला गया है। अभी तो रैपर्स की तो भर भर के एल्बम्स आती हैं, ईपीज आती हैं, एलपीज आती हैं, मगर पॉप सिंगर्स की एल्बम नजर नहीं आ रही है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि एक आसिम अज़हर की एल्बम भी आ जाए। बट क्योंकि गाना है, गाना बहुत शानदार है, आसिम अज़हर की आवाज में आरजू एट नंबर 9 ऑन आवर लिस्ट। ओके जी, अगला गाना नंबर

0: आठ। ये गाना भी एक 2.0 मूवी का है, पता नहीं कब बॉलीवुड बाज आएगा, मगर फिलहाल धमाल 4 जिन्होंने देखी है उन्हें पता है कि धमाल कितना मचा है कितना नहीं मचा है। आई वुड नॉट गेट इनटू इट क्योंकि मूवी के रिव्यूज मैंने सिर्फ पढ़े हैं, तो मैं ऐसे जज नहीं करूंगा। हालांकि रिव्यू कुछ खास नहीं है, गाने ठीक ठाक गए, बहुत सारे गाने हैं जो लिस्ट में हो सकते थे, लेकिन ये वाला गाना, ये अभी जो आठ नंबर पे बताने जा रहा हूँ, कहर गुरु रंधावा का।
1: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़े कहर कुड़े।
0: कहर स्पेशली भी है क्योंकि गुरु रंधावा के इस गाने ने अभी तक रीलों पे भाई साहब मचा दिया। कोरियोग्राफी इतनी जबरदस्त है कि जो हुक स्टेप है उसकी पता नहीं कितनी रीलें बन चुकी हैं। और ये खासियत है गुरु रंधावा की, कहने को वो सिंगर हैं लेकिन उनके वजह से कोरियोग्राफर्स की दुकान में और जाना जाती है। और कहर कड़े नैन कड़े बहुत बढ़िया गाना है, एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट, काफी पैपी नंबर है। मुझे इसके बारे में सिर्फ ये लगता है कि आने वाले वक्त में जब कहर कहीं चलेगा तो लोग ये नहीं याद रखेंगे कि धमाल का गाना है, लोग यही याद रखेंगे कि गुरु रंधावा का गाना है। तो ये अपने आप में इसकी एक बहुत बड़ी तारीफ है, एंड कुडोस टू गुरु रंधावा। बट उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई, ये परफेक्ट ऐसे गाने मत बनाओ, ये वाला बनाओ, ये बढ़िया बनाया है आपने, ये बढ़िया बनाया है। सो ये है कहर एट नंबर 8। बिफोर आई प्ले दिस ट्रैक मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ। सो नंबर 10 पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल, नंबर 9 पे है आरजू आसिम अजहर की आवाज में, और नंबर 8 पे है कहर धमाल 4 से। बाकी लौट के आएंगे उसके बाद फिर लिस्ट में आगे बढ़ेंगे 7, 6 और 5। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, FM 107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज हमसे जुड़िए। एंड अगर आपके पास कोई लिस्ट है, कोई गाना है जो आपको लगता है कि FM 107 पर आपने सुना है और वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो बता सकते हैं, प्लीज बताइए। आप भाई सब इक्वल क्या ज्यादा भागीदार हैं हमारे इस शो में, एंड 80-90% ये आपका ही शो है, 10% हमारी आवाज है, यूं समझ लीजिए। सो आई नीड योर हेल्प विद दिस। आपके जहन में कोई गाना है जो लिस्ट में जगह बना सकता है, सेंड मी योर लोकेशन, मैं गाना भेज देना, ठीक है? मिलते हैं कुछ देर में, जाना नहीं, स्टे ट्यून्ड।
2: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

FM 107 Top 10, number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे. This is Top 10 this week. तो अभी तक हमारी लिस्ट जो है वो आठवें नंबर पे तक पहुंची है, तो हमने अभी टोल नाका क्रॉस नहीं किया, यूं समझ लीजिए भाई साहब. तो नंबर 10 पे है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल से. नंबर 9 पे है आरजू आसिम अजहर की शानदार आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स दिस डेज. और नंबर 8 पे है कह

0: रिकड़ी के रिकड़ी।
1: गुरु रंधावा फ्रॉम द मूवी धमाल फोर। अब आगे बढ़ेंगे 7, 6 और 5 की तरफ। नंबर 7 पे जो गाना है मेरा थोड़ा दिल ऐसा दुख रहा था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सो रख देते हैं नंबर 7 पे। बट आई थिंक दिस सॉन्ग विल क्लाइंब दिस लिस्ट, मुझे ऐसा लगता है। गाने की डिमांड भी आ रही है, गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास पर्सनली अब मेरे शाम वाले शो में भी आ चुकी है। बट फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट एट नंबर 7, सेफ खेल रहा हूं मैं। गाना नंबर 7 है डांडा न्योली वाला का और गाने का नाम है दिल दे बैठी। भाई इसकी हुक लाइन, इसकी हुक लाइन बहुत प्यारी, बड़ी सोनी है भाई, बहुत सोनी हुक लाइन है। दिल दे बैठी एक छोरे ने। तो दिल दे बैठी जो गाना है इसके बारे में मैंने इंटरव्यू देखा था ढांडा न्यूली वाला का, और उन्होंने कहा कि वो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक क्लब के लिए गाना बनाया जाए, एक EDM म्यूजिक पे ट्रैक पे तैयार किया जाए, और वो बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे। सो सिंस ही हैज डेवलप्ड एन अमेजिंग EP जो इन्होंने लॉन्च करी, आई थिंक 4 या 5 गाने हर हफ्ते वो वीडियो के साथ ड्रॉप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लाजवाब है। उसी EP का ये भी गाना हिस्सा है दिल दे बैठी, एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ ट्रैक मैन, क्या गाना है भाई। एंड इसीलिए मुझे लगता है ये लिस्ट पे चढ़ेगा। आई लव्ड इट। मुझे ना सिर्फ गाने का ऑडियो पसंद आया, लिरिसिज्म पसंद आया, मगर गाने का जो वीडियो है वो भी बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का है। स्पेशली जो उनकी शायरी है डांडा न्यूली वाला की, जो एज एन हिप हॉप आर्टिस्ट अपने गानों में रखते हैं, वो बड़ी कमाल की है। समटाइम्स यू नो व्हाट, जब लोग रैप करते हैं तो क्या होता है उसमें कि अपनी तारीफ कर देते हैं उसमें रैप में, या थोड़ा फ्लैक्स कर देते हैं कि वेरी गाढ़ी ऊंची काले शीशे वाली, वो सब ठीक है, इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग रैप। मगर जब रैप में राइमिंग चल रही हो, राइमिंग के साथ साथ स्टोरी चल रही हो, या इमोशंस बिल्कुल ट्रैक पे बैठ रहे हो, और कोई ऐसी लाइन आ जाए कि आप बोले भाई यार रिवाइंड करो यार क्या बोल दिया यार, दैट इज हाउ ढांडा न्यूली वाला इज गोइंग इन दिस हिप हॉप कल्चर। एंड बहुत जबरदस्त जा रहा है उनका करियर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट रैपर्स फॉर श्योर। एंड दिल दे बैठी इज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक। अगर आपको हरियाणवी समझ में आती है तो आपको ये गाना बहुत ही बढ़िया लगेगा, और नहीं समझ में आती है तो आप समझ लेंगे, इतनी मुश्किल है नहीं। 2-3 वर्ड्स हैं जो आप किसी से पूछ सकते हैं, आपको कोई जाट दोस्तों मेरे से पूछ लेना, कोई टेंशन को नहीं भाई। दिल दे बैठी ढांडा न्योली वाला एट नंबर 7 ऑन द लिस्ट। अब नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 पे आसिम अजहर फिर से आ गए हैं। आसिम अजहर जो है इस लिस्ट पे 6 पे बने हुए अपने एक शानदार गाने की वजह से, क्योंकि इस गाने के कुछ बोले हैं जो मैं बोलूंगा नहीं, वो आपको गाने में मिल जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि वो वायरलिटी की वजह से गाना टिका हुआ है, और सिर्फ वायरलिटी क्यों, गाना है भी अच्छा। तू है वही गाने का नाम है, आसिम अजहर की आवाज है। गाने के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि बस प्यार मोहब्बत दिखा दिए कि हाँ हो गया चलो, बट गाने के अंदर कहानी है, कहानी बड़ी खूबसूरत है। इसका जो आर्ट वर्क कहते हैं, यस आर्ट वर्क, तो वो भी बड़ा कमाल का है, एंड यू विल एब्सोल्युटली लव। तो ये गाना अगर आपकी कभी होता ना, कभी आप ऑक्स केबल लगा के सुनते हैं, या आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा अकेला हूँ तो मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, एंड यू काइंड ऑफ रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट समवन, दिस इज द ट्रैक जो आपको गाड़ी में प्ले करना चाहिए। ये गाना क्या है, ये अकेले सुनने वाला गाना है, ऐसा ही बता रहा हूँ मैं। ये हालांकि है प्यार मोहब्बत गाना, बोलेंगे यू आर पार्टनर हो तो चल, नहीं वो ठीक है, वो पार्टनर्स का सुनने वाले अलग गाने, इससे पहले वाला जो गाना दिल दे बैठी वो पार्टनर के साथ सुनो बढ़िया, लेकिन ये जो गाना ना भाई तू है वही आसिम अजहर की आवाज में, दिस इज अ ट्रैक आप लेट नाइट ड्राइव कर रहे हैं, यू वांट टू प्ले समथिंग जो आपको याद भी कराए, जो आपको नॉस्टैल्जिक भी फील कराए, जो आपको आज में भी रखे, और जो आपको एक कहानी भी सुनाए। ये गाना टोटल पैकेज है, तू है वही आसिम अजहर की आवाज में, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली रिटन ट्रैक। सो ये है गाना नंबर 6 ऑन आवर लिस्ट दिस वीक। अब गाना नंबर 5 पर जाते हैं, जो हमारी लिस्ट को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी कि इस गाने को नीचे रखे, ना जी ना, यो गाना ना माने भाई, गाना बहुत बढ़िया है, और गाने को गाया है चरणप्रीत ने, मेरे लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, ये उनके करियर का बेंचमार्क है। प्रॉब्लम क्या है विद बेंचमार्क म्यूजिक, जब आप एक ऐसा ट्रैक दे देते हैं कि इंसान मजबूर हो जाए उसी को सुनता रहे। आपको यू रिमेम्बर रियार नाम उनका, रियार जो डिवाइन के ग्रुप के हैं, उन्होंने एक गाना बनाया था गड्डियां ऊंचियां रखियां, उसके अलावा दूसरा गाना बताओ उनका, नहीं बता पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, अंडर अनलेस यू रिसर्च ऑन हिम। ये होता है प्रॉब्लम क्या है, गाना बहुत बढ़िया है, रियार साहब बहुत बढ़िया है, यार साहब, और उसके अलावा उन्हें अगर अगला गाना बनाना है तो वो गड्डियां ऊंचियां रखी हैं, ऑब्सेस जो गाना है उससे ऊपर ले जाना पड़ेगा, एंड ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। अब आर्टिस्ट चाहता भी है कि बेंचमार्क सेट करे, वैसा ही सीन चरणप्रीत के साथ अभी बन चुका है। जो गाना है बन जा तू मेरी बन जा बन, सॉरी फॉर माय सिंगिंग, आई एम रियली रियली बैड एट इट, लेकिन यू गेट द जिस्ट राइट। तो चरणप्रीत और बादशाह ने मिलकर इस गाने को बनाया है और बादशाह भाई ने रैप किया है इसमें। ये गाना चरणप्रीत के लिए इट्स लाइक अ बेंचमार्क। अब चरणप्रीत को अगला गाना हल्का नहीं डालना चाहिए, बिकॉज अगर वो अगला गाना हल्का डालेंगे तो भी लोग इसी गाने के पास आएंगे और फिर उनको बोलने लग जाएंगे, अरे ये वाला सिंगर है बन जा तू मेरी। तो जब आपके ऊपर ये वाला टैग लग जाए कि आप एक ही गाने से पहचाने जाए तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है कि यार क्या लेजेंडरी ट्रैक दिया, पर फिर बाद में चुभने लगती है बात हो कि यार एक ही चीज के लिए थोड़ी जानता हूं मैं तो जाना जाता हूं, और भी गाने दिए मैंने, वो आर्टिस्ट को बहुत चुभती है बात। सो आई रियली होप कि चरणप्रीत जो अगला गाना लेकर आए वो उतना ही बड़ा हो जितना ये वाला गाना हुआ है। I'm not saying he's not consistent, but I just hope कि उनके करियर में अगला गाना भी उतना ही बड़ा हो जितना ये गाना हुआ है। Because ये गाना lyrically amazing, choreography अति उत्तम, इसमें जो जो मॉडल है आसी उन्होंने जो बढ़िया भाई साहब डांस किया है, इसके कोरियोग्राफर जो है दिव्या गोयल नाम है शायद उनका, she has outdone herself, उनका भाई करियर रॉकेट हो लिया रॉकेट। उन्होंने अपने कोरियोग्राफी का डांस का जो पूरा स्टूडियो है वो तैयार किया था, उसमें स्टूडेंट्स जाके ये वाला डांस स्टेप सीख रहे हैं जो इस गाने में है, ना सिर्फ वहां पे जाके सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस गाने के वजह से काम मिला है। आई एम नॉट किडिंग, आप जाके देखिए, कई सारे लोग स्लो मोशन में सिखा रहे हैं स्टेप कैसे करना, बिकॉज वो डांस का जो हुक है वो बहुत मशहूर हो चुका है। सो बन जा तू मेरी फॉर ऑल द गुड रीजंस इज एट नंबर 5 and I think it's going to make it far in our list aur aage bhi chalta rahega. So Charanpreet Badshah with this amazing banger of a track at number 5. Ab dekho aage badhne se pehle kya hai, main aapko bata dun ki list mein kaun kaun se gaane hain. So number 10 pe hai Uncha Lamba Kad, Welcome to Jungle, number 9 pe hai Arzu Asim Asar ki awaaz mein, number 8 pe Kehar Dhamal 4 se by Guru Randhawa, number 7 pe hai Dil De Baithi Dhanda Neoli Wala, aur number 6 pe hai bhaiyo gana तू है वही आसिम अज़र की आवाज, और नंबर 5 पे है बन जा तू मेरी बादशाह और चरणप्रीत की आवाज में। अगर लौटेंगे तो फिर बहुत बहुत मुश्किल पड़ाव आने वाला है, 4-3-2-1, ये जो पोजीशंस हैं बाबा बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है मामला। तो क्रिटिकल मामला कुछ देर में सुनाते हैं, बाकी सोशल मीडिया हैंडल जैसे मैं रिमाइंड कराता रहता हूँ, प्लीज हमसे जुड़िएगा FM 107 Qatar, और मुझे भी ढूंढ सकते हैं आप दोहा वाला कबीर FM 107, कबीर की स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं, आप जरा ध्यान रखिएगा प्लीज, EER नहीं भाई, KABIR, ठीक है, जाना नहीं लौट के आते हैं, 4-3-2-1 ये वाली सीढ़ी बाकी है, सीढ़ियां सॉरी स्टे ट्यून्ड FM 107 Top 10 Number 7।

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. मैं दुहा वाला कबीर and this is Top 10. सिर्फ FM 107 पर और पर हम आ चुके हैं चार पर, तीन पर, दो पर और एक पर. अब ये जो गाने हैं टॉप फोर सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक, ये बड़े क्रिटिकल हैं भाई. इसमें रैंकिंग पे किसी भी गाने को रखना बिल्कुल आसान नहीं होता हमारे लिए. तो मैं रिवीजन करा दूंगा कुछ देर में, अभी तक कहाँ पे आ चुके हैं. लेकिन नंबर चार पे जो गाना है, ये गाने ने हलचल मचाई है भाई. इस गाने ने हलचल मचाई. ये जिस पिक्चर का गाना है उस मूवी से बड़ा हो गया भाई, उस पिक्चर से बड़ा ये गाना बन चुका है. गाना है कॉकटेल 2 से, माशूका गाने का नाम है. और बिना किसी हुक स्टेप, कैसे नहीं, आजकल गाने वायरल तभी होते ना हुक स्टेप होता है ना जी. ना गाना वायरल हो रहा है अपने लिरिक्स की वजह से, अपने हुक स्टेप की वजह से नहीं, अपनी हुक लाइन की वजह से. जिस तरीके से माशूका बोला गया भाई, भाई साहब आग ला दी, गति आग ला दी. तो कॉकटेल 2 से यो गाना भाई माशूका, यो है हमारे लिस्ट में नंबर चार पे. बहुत बढ़िया गाना भाई, और मौज आ जाएगी आपको जब सुनेंगे आप. तो ये गाना फॉर ऑल द गुड रीजंस एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों को, जेंजीज को, इवन मिलेनियल्स को मौका मिला है कि अब जब वो सुंदर सुंदर बन के अपनी फोटोज डालें, अपलोड करें, तो बैकग्राउंड में ये गाना लगा सकें. सो ये गाने ने बहुत बहुत लोगों के सेल्फ लव को बूस्ट किया है. सो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. देखो जब गाना मूवी से बड़ा हो जाए तो अल्टीमेटली हेल्प मूवी की ही होती है. तो एटलीस्ट मूवी को याद रखने की वजह ये गाना जरूर बने, क्योंकि मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है याद रखने लायक. आई डोंट नो व्हाई दे मेड पार्ट 2 ऑफ कॉकटेल, दैट देयर वाज नो नीड ऑफ मेकिंग अ सीक्वल टू कॉकटेल. बट इवेंचुअली मैं कोई प्रोड्यूसर, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मैं कोई नहीं होता, बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ. बट द सॉन्ग फ्रॉम कॉकटेल इज अ बैंगर ब्रो. तो माशू का कॉकटेल का ये गाना एट नंबर 4 ऑन आवर लिस्ट. अब आ जाते हैं जी नंबर 3 पे भाई. नंबर 3 पे ये तो मेरा फेवरेट है. मैं भाई बायस हूँ, आप मेरे को जितना क्रिटिसाइज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है. लोग गाने को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग कह रहे थे अरे वो वाली बात नहीं, वो वाली बात. भाई है बात, आप ध्यान तो दीजिए. अब आप सोचें कि आपको वही वाले गाने मिले तो मेरा तेरा मेरा रिश्ता, वो हमेशा नहीं होगा ना. पर इस बार भी जो फ्रेशनेस है गानों में, जो लिरिसिज्म है, जो आवाजें हैं, बड़ी कमाल की हैं. नंबर 3 पे आप समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूं, आवारा पन 2. इमरान हाशमी, सबसे पहले तो वीडियो में क्या लग रहा है भाई, यार क्या लग रहा है भाई, जबरदस्त लुक है, जबरदस्त लुक. आई कैन नॉट वेट टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स भाई. रात पहले दिन का लास्ट शो, रात वाला या पहले दिन का पहला शो, मेरा तो बुक है, डन है मामला. ये गाना जब रिलीज हुआ तो मुझे नाम लिखा आया आगे, अरिजीत सिंह ने गाया. वो कहा भाई साहब ये गाना तो फटेगा, और गाना सच में बहुत बढ़िया गाया है यार. क्या गाता है अरिजीत यार, मैं सिंगर नहीं भी हूं तब भी मुझे जलन हो जाती है, ये बंदा यार कैसे करता है. आवारापन गाने का नाम है, और आवारापन 2 से ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में. क्या गाया है भाई, मजा आ जाएगा आपको. सो लिसन टू दिस वन, इट्स एट नंबर

number 3 on the list. आज ही आ गए हम टॉप टू पे. अब गाना नंबर दो. गाना नंबर दो, ये गाना डिस्पाइट नॉट बीइंग फ्रॉम अ बॉलीवुड मूवी, कोई पॉप गाना नहीं, और ये गाने को लेके मुझे बायस होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि गाने ने हलचल मचाई है. ये गाना बहुत जल्दी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज पा रहा है अभी भी यूट्यूब पर, एंड इट इज गेटिंग ऑल द प्रेजेस दैट इट डिजर्व्स. वीडियो बहुत चंगा सीगा और गाना कति चंगा सीगा, बहुत बढ़िया गाना है. ढांडा न्यूली वाला की आवाज में भाई साहब जगाने मारे कोई ना ठिकाने, बढ़िया गाना भाई. नंबर दो पे भाई ने आग ला दी. इसमें बहुत सारी लाइनें हैं जो कैप्शन के तौर पे यूज किया सकती हैं, स्पेशली द लाइन विच इज वन ऑफ माय फेवरेट के बेटी चाहे दुश्मन की हो मारे घर महफूज मिलेगी. भाई वो लाइन जो इस गाने में जिस टाइम पे आती है एंड द वे ही हैज स्ट्रक्चर्ड द ट्रैक, कमाल है भाई. देखो गाने का ना एक स्ट्रक्चर होता है, जो हुक लाइन होती है उसका कोई मतलब होना चाहिए, जो हुक लाइन होती है वो बिल्कुल ब्लेंड होनी चाहिए लिरिक्स के साथ, तब मजा आता है. और हिप हॉप में ये करने वाले लोग बहुत कम है. ढांडा न्यूली वाला हैज डन इट अगेन, जगाने एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट बाय ढांडा न्यूली वाला. अब नंबर 1 पे लिस्ट पे बरकरार रहते हुए सिंहासन पे गद्दी पे ये गाना, वो जो धीरे धीरे लोगों के जहन पे चढ़ा है, ये धीरे धीरे गाना जो है लोग जा जाके चुपके चुपके सुन रहे हैं और किसी को याद कर रहे हैं. नहीं, आई विल नॉट ट्रिगर यू, बट अवारापन 2 से जो ये गाना है, वे जुनू भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई, बहुत खूबसूरत गाना है. शुरुआत में आपको लगेगा नहीं यार मजा सा नहीं आ रहा, फिर आप दो बार सुनेंगे, तीन बार सुनेंगे, बोलिए कुछ तो हो रहा है मुझे, फिर चौथी मरतबा सुनने से पहले पहले आपको लगेगा भाई हमारा पंडू का वो गाना लगा दो. तो वे जुनू हैज वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट लिरिक्स एवर. सईद कादरी साहब आपको सलाम, क्या लिखते हैं आप. तो ये गाना लिखा बहुत बढ़िया गया है, फिल्माया बहुत बढ़िया गया है. लोगों को शिकायत, दिशा पाटनी क्या कर रही है इसमें, भाई मौका दो ना उसको, ही मौका दो. हम तो भाई इमरान भाई के लिए देखेंगे पिक्चर. बाकी वे जुनू फ्रॉम अवारापन 2, ये है हमारे लिस्ट का गाना नंबर 1. तो ये गाना सुनिए, बाकी इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. गाने के जो मैं बता रहा था आपको कि लिस्ट में आप भी अपना गाना शामिल करवा सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर प्लीज हमें मैसेज कर सकते हैं या आप सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जुड़िए. FM107 कतर, FM107 कतर इस नाम से हर जगह मौजूद है. और मुझसे जुड़ना चाहें तो दोहा वाला कभी FM107 एंड कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. Ma salam. FM 107.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: FM 107 Top 10 Number 3।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, मैं हूं सफा, आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल डेली हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को खामोशी से लेकिन पावरफुली इम्पैक्ट करती हैं। आज का टॉपिक है अवॉइडिंग डिस्पोजेबल कटलरीज, यानी कि प्लास्टिक स्पून, फोक्स, नाइव्स और ये जो स्ट्रॉ वगैरह होते हैं ना, इनसे बचना और रीयूजेबल ऑप्शंस अडॉप्ट करना। ये चीज इतनी कॉमन है कि हम नोटिस भी नहीं करते इसे साथियों, लेकिन हर टेक अवे मील, कॉफी कप या डिलीवरी ऑर्डर के साथ जो डिस्पोजेबल कटलरी आती है वो मिलकर एक मैसिव वेस्ट स्ट्रीम बन जाती है। साथियों, इको स्विच हमें याद दिलाता है कि जो चीज 5 मिनट यूज होती है वो एनवायरनमेंट में 500 साल तक रह सकती है। अच्छा, एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। देखें, सोचिए आप दोहा में किसी अच्छे से कैफे या रेस्टोरेंट से शवरमा, बिरयानी या कॉफी ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर के साथ ऑटोमेटिकली प्लास्टिक स्पून आ जाता है, फोक आ जाता है, स्ट्रॉ आ जाता है और नैपकिन पैकेट्स आ जाते हैं। चाहे आपको उनकी जरूरत हो या ना हो, भाई वो तो आ ही जाते हैं। आपका खाना पीना खत्म होता है और कटलरी सीधा बिन में चली जाती है कि नहीं? अब इमेजिन करें कि अगर ये डेली हैबिट बन जाए तो सिर्फ एक इंसान से ही साल भर में हजारों प्लास्टिक कटलरी पीसेस वेस्ट हो सकते हैं। कतर जैसे फास्ट पेस डिलीवरी कल्चर वाली सोसाइटी में ये छोटा सा हैबिट एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है साथियों। अच्छा, अगर आपको सोचने पर मजबूर करूं तो आपको कुछ फन फैक्ट्स बताती हूं, डिस्पोजेबल कटलरी के हिडन इम्पैक्ट्स बताती हूं। देखिए भाई, दुनिया में हर साल बिलियंस ऑफ प्लास्टिक कटलरी आइटम्स यूज और डिस्कार्ड किए जाते हैं। एक प्लास्टिक स्पून या फोक को डिग्रेड होने में 200 से 500 साल लगभग लग ही जाते हैं। सिर्फ फूड डिलीवरी सेक्टर से ही जनरेटेड जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेस्ट होता है ना, वो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर डिस्पोजेबल कटलरीज रिसाइक्लेबल होती ही नहीं है, क्योंकि ये लाइट वेट और कंटेमिनेटेड होती हैं। देखिए भाई, कतर में फूड डिलीवरी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेस्टोरेंट्स, कैफेज और ऐप से डेली थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। हर ऑर्डर के साथ अगर डिस्पोजेबल कटलरी इंक्लूड हो तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो एक सिटी लेवल पर ह्यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। इको स्विच यहाँ हमें याद दिलाता है कि भाई, स्मॉल रिक्वेस्ट यानी के नो कटलरी नीडेड, ये भी एक पावरफुल एनवायरमेंटल एक्शन है। साथियों देखिए, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट सिंपल है, यानी कि अननेसेसरी डिस्पोजेबल आइटम्स को एलिमिनेट करना। जब हम कटलरी रिफ्यूज करते हैं तो रीयूजेबल कटलरी कैरी करते हैं, तो भाई हम डायरेक्ट प्लास्टिक प्रोडक्शन और वेस्ट दोनों रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर सिर्फ 20% कस्टमर्स नो कटलरी ऑप्शन सेलेक्ट करें और डिलीवरी ऑर्डर्स दें तो भाई थाउजेंड्स ऑफ टन्स प्लास्टिक वेस्ट एनुअली अवॉइड किया जा सकता है, वो भी ग्लोबली। भाई देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर रीयूज्ड स्पून एक छोटी सी एनवायरमेंटल विक्ट्री हो। जरा सोचिए ना, ऑफिस लंच ब्रेक में आप अपना होममेड फूड लेकर आते हैं लेकिन साथ में कैफेटेरिया से प्लास्टिक स्पून ले लेते हैं जस्ट इन केस। अच्छा, अब थोड़ा सा फ्लिप करते हैं। अब इमेजिन करें अगर हर एम्प्लॉय ये हैबिट करे तो ऑफिस बिन्स प्लास्टिक कटलरी से भर जाते हैं, है कि नहीं? देखा है हमने, हाँ भर जाते हैं। इको स्विच अप्रोच कहती है कि अगर आप अपना रीयूजेबल स्पून या फोक कैरी करें तो ये डेली वेस्ट कम्प्लीटली एलिमिनेट हो सकता है। अच्छा भाई, डिस्पोजेबल कटलरी अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ अच्छी सी टिप्स भी दे देती हूँ ताकि वो प्रैक्टिकली आप फॉलो कर सकें इजिली। पहला तो ये, अपना रीयूजेबल कटलरी सेट जो स्टील या बैम्बू से बना होता है बैग में कैरी किया करें। दूसरा, फूड ऑर्डर करते वक्त नो कटलरी नीडेड ऑप्शन सेलेक्ट करें। तीसरा, ऑफिस या स्कूल ड्रॉअर में बैकअप रीयूजेबल स्पून रखें। चौथा, कैफेज और रेस्टोरेंट्स में पोलाइटली कटलरी रिफ्यूज करें अगर जरूरत ना हो तो।

0: जनरली ओवरऑल लेस सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। साथियों आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर स्पून फॉक या स्ट्रॉ सिर्फ एक आइटम नहीं होता बल्कि एक एनवायरमेंटल डिसीजन होता है। देखिए भाई हर बार जब हम डिस्पोजेबल कटलरी रिफ्यूज करते हैं हम प्लैनेट को एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। तो भाई अगली बार जब आप ऑर्डर प्लेस करें ना तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। डू आई रियली नीड डिस्पोजेबल कटलरी टुडे? डू यू? तो भाई इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 जहाँ हर बाइट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस होता है। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। अब्दुल्ला यासिन एम मूसा, या दोस्तों अब्दुल्ला यासिन एम मूसा रयान के नौजवान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और कतरी बास्केटबॉल के लिए मुस्तकबिल के रोशन सितारों में उनका नाम लिया जाता है। पॉइंट गार्ड की हैसियत से उनका बुनियाद

0: बुनियादी किरदार बॉल को कंट्रोल करना, टीममेट्स के लिए स्कोरिंग के मौके पैदा करना और गेम की रफ्तार को मुनज्जम रखना होता है। दैट्स क्वाइट अ बिट। कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपनी स्किल, स्पीड और कोर्ट विजन से कोचेस की तवज्जो हासिल की है। दोस्तों, अर्रयान जैसे मकबूल क्लब में खेलना उनके लिए कीमती तजुर्बा साबित हो रहा है और यहाँ उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ सीखने का मौका मिलता है। अब्दुल्ला कतर के यूथ डेवलपमेंट सिस्टम की एक मिसाल है, जहाँ नए टैलेंट्स को तरक्की का मौका दिया जाता है और नेशनल सेटअप में भी उनका नाम उभरते हुए गार्ड्स में शामिल किया जाता है और उनसे मुस्तकबिल में मजीद तरक्की की उम्मीद है। अगर वो मुसलसल मेहनत और ट्रेनिंग जारी रखें तो वो अर्रयान और कतर दोनों के लिए एक अहम प्लेमेकर बन सकते हैं। उनकी लगन और सीखने का जज्बा उन्हें आने वाले सालों में मजीद कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: आज के

0: इस सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट जनरेशन्स विजन फॉर 2030. अगर आज के बच्चों और यंग पीपल को कहा जाए कि आप दुनिया डिजाइन कीजिए, 2030 की दुनिया आपके हिसाब से कैसे होगी, क्या आप सोचते हैं, तो ये सवाल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना. आज की जो यंग जनरेशन है वो कल के साइंटिस्ट हैं, कल के लीडर्स हैं, कल के एंटरप्रेन्योर्स हैं और डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स भी. देखिए हर जनरेशन ना अपना मुस्तकबिल इमेजिन करती है, लेकिन आज की जनरेशन पहली ऐसी जनरेशन है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हो रही है, इसलिए उनका फ्यूचर विजन भी बिल्कुल अलग है. आज का स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देखता, वो क्लाइमेट इनोवेटर, एआई एक्सपर्ट, गेम डिजाइनर, स्पेस साइंटिस्ट या सोशल एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है. यंग पीपल की नजर में 2030 की दुनिया ज्यादा स्मार्ट है, कनेक्टेड है और इंक्लूसिव होनी चाहिए. सबसे पहला विजन एजुकेशन का है. उनका मुस्तकबिल फ्यूचर क्लासरूम सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं होंगे. स्टूडेंट वर्चुअल रियलिटी के जरिए हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करेंगे. साइंस एक्सपेरिमेंट्स डिजिटल लैब्स में होंगे. एआई टीचर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करेंगे. हर स्टूडेंट अपनी स्पीड और अपने स्टाइल के मुताबिक सीखेगा, कोई प्रेशर नहीं. दूसरा विजन है हेल्थ केयर का विजन. यंग पीपल ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां डिजीजेस ना हो या हो तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए. वेरेबल डिवाइसेस हेल्थ मॉनिटर करेंगे और हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो. एक और विजन है एनवायरमेंट को लेकर. आज की जनरेशन क्लाइमेट चेंज के मसले को बड़ा सीरियसली लेती है और लेना भी चाहिए. उनका ख्वाब है कि 2030 तक ज्यादा ट्रीज लगाए जाए, प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो और क्लीन एनर्जी आम हो जाए. बहुत से यंग पीपल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को फ्यूचर का जरूरी हिस्सा समझते हैं. टेक्नोलॉजी उनके विजन का एक सेंट्रल पार्ट भी है. दोस्तों 2030 में एआई डेली लाइफ का हिस्सा होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें. जी हाँ, स्मार्ट असिस्टेंट घर चलाने में बड़ी मदद करेंगे. आपके घर में स्मार्ट असिस्टेंट्स होंगे, ट्रैफिक सिस्टम इंटेलिजेंट होगा और बोरिंग या फिर रिपीटेटिव टास्क मशीन संभाल लेंगी. लेकिन यंग जनरेशन ये भी चाहती है कि टेक्नोलॉजी इंसानी वैल्यूज के साथ डेवलप हो, यानी टेक्नोलॉजी पावरफुल हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी हो और एक इंटरेस्टिंग चीज सोशल कनेक्शन भी हो. आज के यंग पीपल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को इम्पोर्टेंस देते हैं. उनका विजन है कि लोग एक दूसरे के कल्चर्स और बैकग्राउंड्स का ज्यादा एहतराम करें. उनके नज़दीक फ्यूचर दुनिया ज्यादा कनेक्टेड और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जॉब्स भी बढ़ने वाली हैं 2030 में. दोस्तों कुछ जॉब्स होंगी जो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होंगी, लेकिन नई जॉब्स क्रिएट होंगी जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. इसीलिए यंग जनरेशन को अडैप्टेबिलिटी को समझना सीखना बहुत जरूरी है. वहीं कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये फ्यूचर के सुपर हीरोज होंगे. स्पेस, हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा होगा. आज के बच्चे मार्स मिशन और स्पेस टूरिज्म के बारे में सुनकर बड़े हो रहे हैं. हो सकता है 2030 तक स्पेस टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में और भी ज्यादा रोल बड़ा प्ले करे. देखिए यंग जनरेशन का एक और ख्वाब हैप्पीनेस का है. उनके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल हेल्थ, वर्क बैलेंस, फैमिली, पर्पस, ये सब भी फ्यूचर की डेफिनेशन में शामिल है. अगर हम किसी 15 साल के स्टूडेंट से पूछें कि 2030 की दुनिया कैसी होगी तो शायद वो कहे, मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ या चाहती हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद करे, एनवायरमेंट साफ हो, हर बच्चे को एजुकेशन मिले और लोग एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आए. और शायद यही सबसे खूबसूरत विजन है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग्स और मशीन का नाम नहीं, फ्यूचर इंसानों का नाम है, फ्यूचर वैल्यूज का नाम है, फ्यूचर उम्मीद का नाम है. और जब यंग जनरेशन इतनी पॉजिटिव और इनोवेशन के साथ सोचती है तो लगता है कि 2030 सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन है एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां पहुंचने के लिए हम सबको मिलकर एक बड़ा अहम कदम उठाना होगा क्योंकि मुस्तकबिल अचानक तो नहीं बनता मुस्तकबिल आज के फैसलों से बनता है तो आज आपने क्या फैसला लेना है चलिए इसी सवाल के साथ मैं आपको यहाँ पर अलविदा कहूँगी मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
1: फजील के साथ
3: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
1: दिल से देसी।
4: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहाँ आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
5: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है फजील और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल स्कैम की दुनिया में एक नए स्कैम के बारे में। वेल, दोस्तों, ये स्कैम है टैप टू पे चैरिटी स्कैम। अर्बन एरियाज और क्राउडेड सिटी सेंटर्स में एक नया कॉन्टेक्ट लेस फ्रॉड सामने आया है, जिसे टैप टू पे चैरिटी स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स शहर के बिजी लोकेशंस जैसे मेट्रो स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स पर खड़े होते हैं। ये लोग खुद को किसी फेक चैरिटी, ऑर्फनेज या एनिमल शेल्टर का वॉलंटियर बताते हैं। लोगों का इमोशनल ट्रस्ट जीतने के लिए इनके पास फेक वाउचर्स, बैनर्स और यूनिफॉर्म भी होती है। ये स्कैमर्स कैश मांगने के बजाय कहते हैं कि वो सिर्फ एक छोटी सी कॉन्टेक्ट लेस डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको ऐसे में लगता है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो आपके सामने एक हैंड हेल्ड पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन या स्मार्टफोन आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ एक टैप करने को कहते हैं। असल में ये मशीन्स प्रीसेट होती हैं, जहां स्क्रीन्स पर छोटी अमाउंट दिखाकर बैकग्राउंड में मोटा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। कुछ केसेस में चोर इतने शातिर होते हैं कि क्राउडेड बसेस या ट्रेन्स में बिना आपके पूछे आपकी पॉकेट या बैग के पास अपनी RFID या NFC डिवाइस लाते हैं और आपके वॉलेट में रखे कार्ड से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट चुरा लेते हैं। अर्बन फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग जल्दी में ट्रांजैक्शन थर्मल रिसीट चेक नहीं करते और बाद में बैंक अलर्ट देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सॉल्यूशंस भी हैं। यूज RFID वॉलेट्स। कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट और RFID टेक्नोलॉजी का यूज करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखना है। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हमेशा एक RFID ब्लॉकिंग वॉलेट या पाउच में रखें ताकि कोई सिग्नल स्टील ना कर सके, और हमेशा कार्ड टैप करने से पहले रीडर स्क्रीन पर एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट जरूर चेक करें। किसी भी रास्ते पर खड़े अननोन वॉलंटियर को देने के बजाय हमेशा रजिस्टर्ड चैरिटी वेबसाइट पर डायरेक्ट डोनेट करें। उसके अलावा ट्रांजैक्शन की लिमिट भी रखें। अपने बैंकिंग ऐप में जाकर कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट की डेली लिमिट को लो सेट करें या उसे डिसेबल करें। दोस्तों, स्कैम से बचने के लिए ये था एक और एपिसोड, और इस तरह के नए स्कैम्स के बारे में मैं आपको हर हफ्ते आगाह करता रहूंगा। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। समाज का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड RJ सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात करेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में और आज हम जानेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों और हमारे जो नौजवान हैं, हमारा फ्यूचर हैं, उनकी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। बच्चों और नौ उम्र अफराद का जिस्म और दिमाग अभी जो ग्रोथ है या नशोनुमा है उसके मराहल में होता है, इसलिए कैफीन और जो दूसरे मुहर्रिक या एक्टिव अज्जा हैं उन पर जो बड़ों की निस्बत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से बच्चों में बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और जो तवज्जो में कमी पैदा हो सकती है। बास बच्चों में दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है या नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नींद बच्चों और नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा और दिमागी कारकर्दगी के लिए नहायत अहम है और ज़रूरी भी बहुत है। अगर एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से नींद मुतासिर हो जाए तो उसका असर उनकी तालीमी कारकर्दगी पर, उनकी याददाश्त पर और उनके मिजाज पर पड़ सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ गेम्स में या खेलों में हिस्सा लेने वाले नौजवान बाज़ूकात एनर्जी ड्रिंक्स को खेलों के जो मशरूबात हैं वो समझकर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स एक जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में जिसमें पानी और नमकियात की कमी पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और इसी तरह से ऐसे अज्जा शामिल किए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म को एक्टिव रख सकें। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स के जो मुमकिन नुकसान से उन्हें ज़रूर आगाह कीजिए और सेहतमंद मुतबादिल जैसे कि पानी है, दूध है, ताज़ा फलों के जूस हैं, उनकी तरफ उन्हें रागिब कीजिए। इसी तरह याद रखिए कि बच्चों और नौजवानों के लिए क्वालिटी ऑफ स्लीप, मुनासिब नींद, मुतवाजन ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी ही हकीकी तवानाई का जरिया है, ना कि एनर्जी ड्रिंक्स।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? Generation Talk, दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान है। इनसे इंट्रोडक्शन में जब बातचीत करी तो जाना कि इनका कनेक्शन चलिए दिल्ली से थोड़ा बहुत अच्छा खासा। 10 साल बहुत होते हैं दिल्ली में बिताने के बाद, तो दिल्ली की हवा थोड़ी बहुत तो लगी होगी। और साथ में दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो सबसे पहले वेलकम टू द स्टूडियो अमित भाई, कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत अच्छा हूं कबीर भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे आके।
2: मुझे भी बहुत अच्छा लगा अमित भाई। होता है ना कि फोन पे बात करके पता लग जाता है कि आदमी बोलने वाला होगा, अच्छे से बोलने
3: टोन से समझ में आ जाता है।
2: अच्छा, तो आपके दो बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर हैं। बेटा आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम आरना है।
2: आरना नाम है आपका, बड़ा यूनिक नाम रखा अमित भाई। हाँ, ये किसका आइडिया था?
3: ये मेरी वाइफ का आइडिया था। मुझे पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई, लेकिन ढूंढ के वही लाई है।
2: क्या मतलब क्या है इस नाम का? वैसे
3: आरना का वैसे मतलब होता है घर की लक्ष्मी।
2: अरे वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम, बड़ा यूनिक नाम है। आई एम प्रीटी श्योर सुनने के बाद बहुत सारे लोग उसको कॉपी करना चाहेंगे। और आपको क्या नाम है?
4: चैतन्य मिश्रा।
2: चैतन्य, वैसे आपकी कार्बन कॉपी लग रहे हैं।
3: अरे ऐसा मुझे कई लोग कहते हैं।
2: ये बिल्कुल कार्बन कॉपी है, मतलब ये बिल्कुल जैसे वो AI से कर देते ना कि अगर ओल्ड दिखेंगे तो कैसे आप जैसे दिखेंगे।
3: वैसे बचपन में ये दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी लगते थे।
2: अच्छा, कितना गैप है दोनों के?
3: 4 साल का गैप।
2: 4 साल का गैप है माशाल्लाह। ओके, तो अमित भाई आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये तो जनरेशन है बड़ी कमाल की है। आप और हम उस जनरेशन से आते हैं जहाँ पे काफी जो था ना बीच में टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन ये सब था, लेकिन अलग किस्म का था।
3: I agree.
2: अभी थोड़ा ऑन द फेस टाइप का डिस्ट्रैक्शन। तो आप ऑब्वियसली इनको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो क्या आपको मुश्किल आई है चीज इस जनरेशन से डील करना?
3: देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो डिवाइस को लेके है। इनका जो डिवाइस को लेके एक्सेस लगाव जो है वो इतना ज्यादा है जितना लगाव हमें अपनी मोटरसाइकिल से नहीं रहा होगा।
2: अच्छा,
3: तो ये लगाव के कारण क्या होता है, आप इनको इससे कितना भी बचाने की कोशिश करो बट ये पता नहीं कैसे पासवर्ड देख ही लेते हैं।
2: स्मार्ट इनफ। तो बेटा क्या क्या सीन है आपका? आप कितने टाइम आपको पापा यूज करने देते हैं, क्या रहता है डिवाइसेस के साथ?
4: एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप है वो यूजुअली मैं लैपटॉप पे स्टडी भी करती हूँ, बट होता ये कि पापा और मम्मी दोनों ही फोन का पासवर्ड नहीं बताते हैं। पर मैं और चैतन्य कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं और देख लेते हैं।
2: वो रास्ता बताना भी नहीं है जब तक कुछ। अच्छा, तो ऐसा था कि खाना नहीं खाएंगे जब तक वो सामने कुछ डिवाइस नहीं होगा, ऐसा था?
3: नहीं, एक्चुअल में मुझे शुरू में समझ में आया था कुछ लोगों को देख के कि अगर शुरू से इनकी आदत पड़ गई डिवाइस को यूज करने की, कि खाना खाते टाइम भी चाहिए, रो रहे हैं तो भी चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो मैंने थोड़ा शुरू में लिमिट रखा था।
2: अच्छा, ओके।
3: और जैसे हर चीज का थोड़ा थोड़ा एक्सेस कुछ कुछ टाइम के लिए दिया, तो इनको एक ये है कि हमें एक्सपीरियंस भी हो गया लेकिन लत भी नहीं लगी है। वो अभी तक मैंने बचा के रखा है, लेकिन अब आप देखिए आजकल पीयर प्रेशर बहुत होता है। बच्चे कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए क्योंकि हमारे दोस्तों के पास में,
2: ऑफ कोर्स,
3: और वो बड़ा मुश्किल है कब तक बच के रहेंगे, बट अभी तक तो बचे हुए हैं।
2: अभी तक चलिए बहुत बढ़िया है, मैं उम्मीद करता हूँ बचे रहे। अच्छा बेटा, आप चैतन्य ये बताओ, घर पे जो है किसका कंट्रोल ज्यादा लगता है, मम्मी या पापा का कंट्रोल ज्यादा है, किससे ज्यादा डर है आपको?
4: पापा।
2: अच्छा, पापा सामने इसलिए कह रहे हो कि सच में ऐसा है?
4: नहीं, सच में ऐसा ही है।
2: अच्छा, do you agree ऐसा ही?
4: पापा से तो कम डर लगता है पर मम्मी से थोड़ा ज्यादा लगता है।
2: तो ये बैड कॉप गुड कॉप आप अच्छे से खेल पा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या यूजुअली आप बचाने वालों में से है कि कुछ परमिशन दोनों को लग रही है, या फिर क्या है, भाभी का इसमें ज्यादा हाथ रहता है?
3: आई थिंक माँ के साथ बच्चे ज्यादा समय बिताते हैं, तो माँ को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा छूट देता हूँ।
2: अच्छा, ओके।
3: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा
2: सख्ती से
3: पेश आता हूँ। बट कहीं ना कहीं कुछ ये लोग देख के समझ जाते हैं और कुछ हम लोग फिर हाथों से समझा लेते हैं।
2: अच्छा, पहले आंखों का डर बहुत हुआ करता था ना आपके हमारे टाइम
3: में? आंखों से कोई नहीं डरता,
2: आंखों से अब कोई डर, कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिद्दी इनमें से कौन ज्यादा है वैसे?
3: जिद्दी वैसे वो ज्यादा है।
2: अच्छा, मुझे लगा चैतन्य का नाम आने वाला है।
3: नहीं नहीं,
2: क्या
3: चैतन्य मान जाता है।
2: अच्छा मान जाता है।
3: वो हाथों की नरमी गर्मी बहुत अच्छे से जानता है।
2: अच्छा तो क्या क्या जिद करने के लिए सबसे पहले अप्रोचेबल ज्यादा कौन है, कि पापा के पास जाती हूँ जिद करने के लिए या मम्मी के थ्रू जाना पड़ता है?
4: पहले तो मैं पापा के पास ही जाती हूँ।
2: अच्छा ओके।
4: बट अगर ऐसा हुआ कि मैं पहले मम्मी के पास चली गई, तो अगर मम्मी ने मना किया तो मैं उसके बाद पापा के पास जरूर जाऊंगी।
2: हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी ना, पहले उधर से जाके उधर जाना पड़ेगा। ये बड़ा यूजुअल ऐसा कॉम्बिनेशन, कभी कभार ना कहना कितना मुश्किल होता है बच्चों को आज की जनरेशन।
3: देखिए, एक तो ये भी बच्चे समझते हैं कि हम लोग अकेले एक छोटी फैमिली में रहते हैं, और छोटी फैमिली में रहने के कारण दिक्कत ये होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आखिर अभी नहीं तो कल तो मान ही जाएंगे।
2: एक भरोसा है,
3: एक भरोसा है कि आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। और वो भरोसा क्या है, कहीं आपके लिए अच्छा, कहीं आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको उनकी हर बात पे कुछ ना कुछ बातों पे ज्यादा तौर पे हाँ कहना ही पड़ता है।
2: कभी सॉरी कहना पड़ा है इनमें से किसी को?
3: बड़ा कठिन प्रश्न है
2: ना ये। आई थिंक है, आजकल तो कहना पड़ रहा है बहुत माँ बाप को कि चलो बेटा सॉरी।
3: हाँ, जब आप थोड़ा कुछ सख्ती से पेश आए।
2: क्योंकि पहले अगर माँ बाप विलन बन भी गए हैं तो सॉरी का तो नामो निशान नहीं।
3: अरे नहीं, संभव नहीं था। और बच्चों से ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि वो माँ बाप से कहेंगे सॉरी, मुझे सॉरी बोलो।
2: बोलना पड़ता है सॉरी, बोलना पड़ता है या फिर नाराज होकर चुप बैठ जाती हूँ? कह रहा था
4: ऐसा कम होता है कि वो उनको सॉरी बोलना पड़े, क्योंकि हम पहले मान जाते हैं।
2: हाँ, मानना ही पड़ेगा।
4: मैं मान जाती हूँ, उसका नहीं पता मुझे।
2: अच्छा, That's true,
4: मान हाँ, नहीं, उसको तो बोलना पड़ता है काफी बार सॉरी।
2: अच्छा, ओहो, चैतन्य क्या लगता है कि सही कह रही है बहन, सही कह रही है?
5: कुछ सिचुएशंस में डिपेंड होता है।
2: अच्छा।
5: जैसे जब एक्सट्रीम चला जाता है तो मानना पड़ता है, पर अगर छोटी बात होती है तो अगर मैं नहीं भी मानता हूँ तो वो बड़ी हो जाती है, तो सॉरी बोलना ही पड़ता है।
2: ओके, बड़ा ही आर्टिकुलेट आंसर था। मार्शल आप कहें।

0: जैसे होता है ना कि मम्मी पापा जो है उनसे कुछ जिद्द करना तो अलग चीज है, मगर कुछ नई चीजें सिखाने का मन करता है. आपकी जनरेशन ऑब्वियसली इज फास्ट फॉरवर्डेड एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो कुछ सिखाया है ना कि ये भी सीखो, ये भी दुनिया में आया है अभी.
1: हाँ ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है जो नई चीजें सोशल मीडिया पे भी आती हैं, जैसे मीम्स या कुछ भी और एनीथिंग. जैसे आपका रेडियो भी जब हम सुनते हैं तो अगर कोई मीम आई तो वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या है. जैसे बीच में मोए मोए आया था, तो वो मैंने उनको बैठ के समझाया था कि मोए मोए क्या होता है. और जैसे मतलब कुछ फोन में कोई नया अपडेट भी आया हो तो उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं.
0: अच्छा, हेल्प लगती है. ओपन आ रही हूँ कि अगर ये जब नई चीजें आपके साथ लेके आते होंगे, ऑब्वियसली कि आप ये देखो वो देखो.
2: कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा हो, अब ऐसे तो इंटरनेट पे ढूंढ के आप समझ सकते हो, पर थोड़ा देर इंगेज करने के लिए इन लोगों को, बात करने के लिए कि चलो किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, हम पूछ ही लेते हैं यार ये कैसे होगा. सो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और बातचीत भी हो जाती है थोड़ी देर.
0: हाँ ये तो है कि चलो बात इसी बहाने से हो जाए. पर आपकी जनरेशन की तरफ से कई सारे ऐसे शोज सीरीज वो सब होता है ना कि हम दिखाना चाहते हैं और बड़ा बेटा ये देखो दिलीप कुमार. डू यू ट्राई दैट इस तरीके से?
2: कई बार कोशिश की जाती है और कुछ कुछ चीजें इन्हें पसंद आती हैं जब उनके साथ में, लेकिन उन्हें बैठना पड़ता है और वो एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, वो क्यों ऐसा कह रहा है, वो सब पृष्ठभूमि इनको समझानी पड़ती है. अगर आप वो पृष्ठभूमि नहीं समझ में आए तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. और कहते हैं नहीं नहीं पापा हमें नहीं जम रहा. लेकिन अगर आप लगातार उनसे बात करते हैं कि बेटा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये किस कारण से ऐसा होता है, उस टाइम पे क्या होता था, तब इनका थोड़ा इंटरेस्ट आता है. लेकिन हिस्टोरिक बातें समझने के लिए छोटा वाला ज्यादा इंटरेस्टेड है.
0: अच्छा ओके.
2: आर्ना का थोड़ा इंटरेस्ट नए जमाने में है.
0: तो आर्ना कुछ याद है, पापा ने कुछ दिखाया तुम्हें काफी अच्छा लगा हो?
1: जैसे पुरानी कॉमेडी फिल्में जो होती थी वो मुझे बहुत पसंद आती, क्योंकि आजकल की कॉमेडी फिल्मों में इतना मजा नहीं आता.
0: That's true, agree,
1: क्योंकि मैंने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी कॉमेडी वाली, जैसे हेरा फेरी और
0: मेरे
1: लिए तो ओल्ड ही है.
0: वो हमें एहसास हो रहा है ना, अलग किस्म का एहसास होता है. चंदन, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग कुछ पापा ने दिखाया हो, कुछ याद है?
3: जैसे पुराने गाने हो या फिर वही फिल्म्स हो.
0: हाँ
3: तो वही.
0: अच्छा, तुम्हें याद रहती है चीजें देखते हो, और तुम क्या देखते हो वैसे ये बताओ?
1: मम्मी पापा को दोनों को ही मतलब पुराने गानों का बहुत शौक है, तो वो किसी ना किसी बात पर वो गुनगुनाते रहेंगे. उसकी वजह से मुझे इतने सारे पुराने गाने याद हैं, और अगर उन्हें टीवी पे चला दिया बाय एनी चांस तो मुझे लिरिक्स पता होंगी. फिर ये मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें लिरिक्स कैसे पता है.
0: गाड़ी में अक्सर आप चलाने की कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा इन्फ्लुएंस करूंगा गाने में?
2: हाँ, गाड़ी में हमारा काफी स्ट्रगल होता है. बच्चे थोड़ा कभी अंग्रेजी गाने सुनने की कोशिश करते हैं, हम हिंदी गाने सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदी गानों में भी इनको आज के नए गाने पंजाबी गाने चाहिए होते हैं. फिर हमारा थोड़ा इंटरिम लेवल जब खींचतान हो जाती है तो थोड़ा 90s-2000 के भी बीच में कुछ गाने लग जाते हैं.
0: तो बीच में इनका तो रखना पड़ेगा.
2: हाँ, इनका रखना.
1: नहीं, मुझे 2000s के गाने तो बहुत अच्छे से याद हो गए हैं.
0: राइट, ओके.
1: हाँ, बट पंजाबी गाने मुझे इतने पसंद नहीं है. बट चैतन्य को बहुत पसंद, बहुत शौक है.
0: क्या बात है चैतन्य, कौन सा गाना पसंद है आजकल, कौन सा सुनते हो, कोई ऐसा गाना है अभी तुम्हारा फेवरेट चल रहा है आज के टाइम में, कुछ याद करने की कोशिश करो, हो सकता है तुमने आसपास कभी सुना हो कोई गाना बढ़िया लगता हो.
3: I mean, बहुत सारे गाने
0: of course,
3: तो बता नहीं सकते,
0: पर तुम्हें पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं. आप ना डांस वांस करते हो उन गानों पे अकेले में?
3: नहीं.
0: ओके. तुम्हारी जो जनरेशन है बड़ी कमाल की है ना, as you were mentioning के कई सारी चीजें सिखानी पड़ती है ना, you know memes, you know everything out and out. सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तुम्हारी? नहीं अभी.
1: नहीं अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि मुझे अभी फोन नहीं मिला है.
0: अच्छा, वेरी गुड भाई साहब, बहुत बढ़िया काम. तो कब तक का प्लान है इन्हें फोन देने का?
2: देखते हैं, हमने तो सोचा कि जब कॉलेज में जाएंगे अभी देंगे, लेकिन अब देखिए कब तक कब तक चलता है.
0: सही है आपका आइडिया, आई थिंक उसमें क्योंकि बहुत बहुत खाली टाइम उसमें जाएगा इनका, और फालतू का ही टाइम जाएगा,
2: समय खराब होता है,
0: समय खराब होता है. यूट्यूब देखना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड बीइंग ऑन सोशल मीडिया बहुत अलग चीज हो जाती है. तुम्हारे दोस्तों के पास है, मतलब डू दे यूज?
1: यस, मेरी क्लास में सबके पास फोन है, बट मतलब ऐसे एक दो लोग होंगे जिनको मैं जानती हूँ कि उनके फोन में मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं है, बट वो कॉन्टेक्ट कर सकते. बट फिर एटलीस्ट उनके पास फोन है.
0: ये पिच है, ये सेल्स पिच है, समझ रहे हैं? ये हिडन सेल्स पिच है. बहुत

0: फोन नहीं मांगना, बस और कुछ जो करना है कर लेना।
1: हाँ पर बस सही राय नहीं, you know, ये तुमको ना बाद में समझ में आएगा, बिकॉज ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा जो तुम्हारे जो जो पेयर प्रेशर में आ जाता है ना उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दैट इज वन डिस्ट्रैक्शन जो बहुत लंबा तुम्हारा टाइम खींच सकता है। सो ये फादरली एडवाइस जो जो रखा हुआ है, जो गाड़ी लाइन खींची हुई है, बहुत अच्छी लाइन है, परफेक्ट लाइन खींची हुई है।
2: मैं और चाचा ना वैसे भी इतना ज्यादा फोन का नहीं करते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जब तक वैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा।
3: हाँ बोलो। जो भी जो दोस्त है उनके पास पेरेंटल कंट्रोल है, पर मेरे क्लास में भी एक दो बच्चे है जिनके कोई भी पेरेंटल कंट्रोल नहीं है।
1: हाँ देखो, एक और सेल्स पे चाहिए आपको विद पेरेंटल कंट्रोल।
0: विद पेरेंटल कंट्रोल एक थोड़ा रिलैक्सेशन है, आप पेरेंटल कंट्रोल के साथ दे सकते हो।
4: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन एफएम 107।
1: अच्छा क्या तुम दोनों में से अभी कुछ सपने बुने होंगे, कुछ बनने की चाहत है, कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसा प्रोफेशन लगता है कि ना बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे?
2: मैं अभी भी सोच रही हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। नॉट रियली।
1: अच्छा, अभी कोई इंटरेस्ट?
2: मतलब मुझे सब सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है, बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है।
1: चलो वो आ जाएगा जहन में। चेतन है कुछ, कुछ जहन में, कुछ माइंड में बनना है कुछ?
3: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखकर बहुत मन करता है क्रिकेटर बनने का।
1: क्या बात है।
3: और क्या साइंस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मन जो साइंटिस्ट करते हैं वो।
1: दोनों बहुत ही अलग अलग फील्ड में इनका मन है।
2: मेरा जैसे मतलब वो हर क्लास चेंज होता रहता है, क्योंकि आई थिंक जब तक मैं सिक्स में थी, जब इसकी एज की थी, तब तक मुझे भी साइंस बहुत पसंद था। उसके बाद से साइंस थोड़ा सा बिगड़ने लग गया। फिर मुझे थोड़ा मैथ्स पसंद आया, फिर मैथ्स भी बिगड़ने लग गया। तो अभी तक जो चल रहा है स्ट्रेट स्ट्रीक में वो है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मैं काफी अच्छी हूँ मुझे लगता है।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़ा ये ऐसी फील्ड है ना लैंग्वेज की, अभी बहुत ओपन हो चुकी है, इसका मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, एंड आई थिंक इसमें कंपेटिटिवनेस भी इजीली हो जाती है। आपका कितना इन्फ्लुएंस है, डू यू नॉट फोर्स देम बट इन्फ्लुएंस देम टू सम एक्सटेंट? के
0: देखिए शुरू में मैं बहुत विरोधी था कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर दो चीज नहीं, बच्चों को नहीं पुश करना चाहिए बनने के लिए।
1: राइट।
0: और मैं इनको शुरू से कहता था कि बेटा बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में काम करने के लिए। आप हिस्ट्री देखो, आर्कियोलॉजी देखो, मरीन साइंस देखो, बहुत कुछ देखो, एंड बहुत विस्तृत है, आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं वो जब आप देखते हो उनके बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार कहीं हम डिसीजन गलत तो नहीं ले रहे। तो पीयर प्रेशर उधर नहीं, इधर भी है।
1: हाँ ऑफ कोर्स, ये जो कतर में जो न्यूक्लियर फैमिली है, इसका जब मीटिंग होती है, जब फैमिली फ्रेंड्स बनते हैं, तो एक अलग ही किस्म का पीयर प्रेशर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ पे लगता है कि इनका इनका बच्चा ये कर रहा है, तो मैं कहीं
0: हम कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं यहाँ।
1: या बट मैं आपको बताऊं अमित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, एक बच्चा था सिर्फ, हार्डली आई थिंक दो, जो मास कम्युनिकेशन वाले थे, बाकी सब के सब इंजीनियर और मेडिकल फील्ड के थे। बट कंसिडरिंग द फैक्ट, मुझे लगता है कि कोई बुरा नहीं है, मतलब जो उसमें भी जा रहा है मास।
0: बट आप ये देखिए ना, बहुत सारे आजकल जो बच्चे, मेरे जमाने के भी बच्चे जो है जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग किया था, बाद में वो लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग करके अपने अपने एरिया में नहीं गए, स्पेशलाइजेशन उन्होंने किसी और एरिया में किया है।
1: राइट,
0: क्यों? और मेडिकल इंजीनियरिंग उन्होंने एज ए बेसिक डिग्री यूज किया है।
1: हाँ।
0: तो पीयर प्रेशर में या पेरेंटल प्रेशर में लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते, फिर वो कुछ और काम करते हैं।
1: हाँ, वो दिल भी तो होना चाहिए ना,
0: दिल होना चाहिए।
1: और मेरे ख्याल में 10 में से किसी एक दो का दिल होता है जो एक्चुअली में वो करना चाहता है।
0: और कई बार आपको बहुत देर से वो मैच्योरिटी आती है कि यार मुझे ये करना चाहिए था, वो समझ में नहीं आता। आप प्रेशर में कर तो लेते हो लेकिन समझ में नहीं आता।
1: कितने ही लोग इंजीनियरिंग करने के बाद MBA कर रहे होते हैं और मार्केटिंग में चले जाते हैं, वो HR बन रहा होता है, उनकी पहली डिग्री देखो तो वो इंजीनियर होता
0: है। I agree.
1: तो ये बड़ा कमाल का है। And what do you like the most about your family gathering, family trip? कोई ऐसी ट्रिप याद है तुम्हें जो मम्मी पापा की वजह से तुम्हें मिली है, ऐसा कुछ मौका याद है?
2: ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट जैसे एक बात मुझे बहुत पसंद आती है कि हम हर हफ्ते वीकेंड कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली पूरे हफ्ते घर में रहना इस बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि मतलब हम घर में बंद रह जाते हैं, मतलब कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। और यूजुअली क्या है, हमारी वीक में और वीकेंड में दोनों टाइम इवनिंग में क्लासेस रहती हैं, जैसे क्रिकेट या स्विमिंग। तो वीक के टाइम हमारी स्विमिंग क्लासेस रहती हैं।
1: वेरी नाइस, ये अच्छा है।
2: तो वैसे तो वो दो ही दिन रहती हैं, बट बाकी दिन भी शाम को बस इसी में निकल जाते हैं कि होमवर्क

0: और एग्जाम आ रही है उसके लिए पढ़ना है, तो इसीलिए वीकेंड पे ही टाइम मिलता है बाहर निकलने के लिए। वेरी नाइस,
1: ये अच्छी बात भी इन्वॉल्वड इन सो मेनी थिंग्स। बट आप एक एक टॉपिक है जो भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बाहर कंट्रीज में बहुत सारे आपने नोटिस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग हैज कम, है ना, और लोग इसको पहले सीरियसली लेते बट नाउ इट हैज बीन टेकन रियली रियली सीरियसली और उसके बहुत सारे रास्ते हैं। क्या आप इसके हक में हैं या हाउ अगेंस्ट आर यू विद दिस कॉन्सेप्ट?
2: देखिए मैं जो है इसके बारे में काफी सोचा था मैंने बीच में, और मेरा ये पर्सनल सोच है कि बच्चों को थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्शन चाहिए। अगर आप होम स्कूलिंग पे कर देंगे तो वो कम्प्लीटली कट जाएगा। और मैं अपनी खुद की पर्सनल बात बताता हूँ, मेरे बच्चे जब यहाँ रहते हैं उनका स्कूल बिरला है तो आने जाने में उनको टाइम लगता है, तो बाकी टाइम घर पे रहते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। तो कुछ क्लासेस हमने ज्वाइन कराई इनको, स्पोर्ट्स क्लासेस, क्रिकेट हो गया, स्विमिंग हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, कि एटलीस्ट ये एक दो घंटा जाके दूसरे बच्चों के साथ कुछ तो इंटरेक्ट करेंगे। और वो इनके बौद्धिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
1: हाँ, बहुत
2: ज्यादा जरूरी है। तो व्यावहारिक जो विकास होता है वो भी बहुत जरूरी है। तो होम स्कूलिंग में बच्चों को एकदम कट हो जाना ठीक नहीं है। या अगर आप ये कहें कि भाई आप 3 दिन होम स्कूलिंग करो, 4 दिन आपको स्कूल आना है, तो बच्चों से
1: ऑनलाइन स्कूलिंग के टाइम पे, ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे,
2: कोविड के टाइम पे देखा, और वो फिर काफी मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों का ध्यान लग पाना, देखिए पूरे टाइम तो कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे पाता। तो अगर आप कहेंगे आप घर पे ऑनलाइन पढ़ेंगे या किताबों से पढ़ेंगे तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो जब थोड़ा इंटरेक्शन होता है, कुछ कुछ बातचीत से क्लू निकलते हैं, आपको चीजें याद होती है, आपको मजा आने लगता है, तो वो जो ह्यूमन एलिमेंट है आप उसको निकाल नहीं सकते। मतलब मुझे लगता है कि इंटरेक्शन चाहिए।
1: तो अभी क्या होता है, ये लोग कैसे जाते हैं, हाउ डू दे कम्यूट?
2: स्कूल का बस से जाते हैं स्कूल, और बस में थोड़ा टाइम आधा घंटा के करीब लगता है, तो थोड़ा वहाँ चिल मारते हुए, कभी सोते हुए, कभी गाते हुए आते जाते हैं।
1: व्हाट डू यू थिंक, तुम दोनों बता सकते हो, चेतन तुम बताओ पहले, तुम्हें लगता है कि बस की जगह पापा ड्रॉप करें तो ज्यादा बेहतर है? व्हाट डू यू प्रेफर, क्या प्रेफर करोगे?
3: आई मीन बस में अपने दोस्तों के साथ जाते तो उनसे बात करते हैं या फिर स्टडीज के बात करते हैं, तो पर इन अ मैटर ऑफ फैक्ट आप थोड़ी धीरे जाते हो क्योंकि बच्चों को पिक करना होता है।
1: ऑफ कोर्स,
3: पर जब पापा ड्रॉप ऑफ करते हैं तो कोई बात करने को नहीं होता।
1: अच्छा, राइट।
3: तो बस सोना ही होता है और पठन जल्दी पहुँच जाते हैं।
1: राइट, राइट।
3: तो वो इट वेरीज। और मुझे लगता है कि बस में जाना सबसे बेस्ट है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब नहीं, आज पापा आप छोड़ दो, आज बस में जाने का मन नहीं है। तो जैसे वंस इन वन एकेडमिक ईयर कम से कम 2 बार तो होता ही है, या दोपहर को कि पापा आप जल्दी पिक करने आ जाना, क्योंकि जब स्कूल से कोई जल्दी जाता है तो बाकी सब बच्चे देख के बाकी सब बच्चों को बहुत जलन होती है, अरे हमें भी जाना चाहिए था।
1: हाँ, ये बंद तो करता ही होगा वैसे। तो कभी यूजुअली यू पिक देम अप, क्या कुछ ऐसा रहता है या बस?
2: कभी कभी साल महीने में एक आध बार, कभी जब ये लोग बहुत जिद करते हैं तो
1: एक बार
2: ले लेते हैं। बट जहां तक मुझे समझ में आया कि मतलब मेरे फोर्स ना करने के बाद भी ये लोग खुद भी प्रीफर करते हैं कि बस में जाएं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बच्चों के साथ खेलने को, बात करने को मिलता है।
1: और बस एकदम वो जो यहाँ पे टाइम भी ज्यादा है क्योंकि बसेस में, तो आई थिंक वो टाइम बड़ा जरूरी है इनके सोशल इंटरेक्शन का। वहाँ से थोड़ा सा इनको और बात करना आता है, और कुछ चीज ऐसी होती है कि वहाँ से समझ में आएंगी जो क्लासरूम से और घर से पल्ले नहीं पड़ेंगे। राइट, तो दैट इज ऑल्सो देयर। अच्छा, पीटीएम से डर लगता है जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है? हाउ ऑफन आर यू स्केयर्ड ऑफ इट?
0: नहीं लगता मुझे, पीटीएम से डर नहीं लगता।
1: वेरी नाइस। अच्छा,
0: क्योंकि मतलब एग्जाम्स में मैं अच्छा कर ही लेती हूँ, बट एक वो है कि क्लास के टाइम, मतलब ड्यूरिंग द क्लास, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लास खत्म हुई और उसका कुछ 2 सेंटेंस भी बचे होंगे नोट्स लिखने को, और अगर मैंने नेक्स्ट क्लास में लिखना शुरू कर दिया तो मतलब मैं उस क्लास में कुछ और कर रही थी, और मतलब क्लास के बीच बीच में अगर कोई बात हो गई तो क्लास के बीच में बातें करती है, क्लास को सुनती नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पीटीएम में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुई होती हैं।
1: अच्छा।
0: बट उसके अलावा पढ़ाई में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मुझे पीटीएम से डर नहीं लगता।
1: वेरी नाइस। हाउ डू यू डील विद इट? शुरुआत में भी आपने जाना शुरू किया होगा, अभी पीटीएम में जाने का एक नर्वसनेस आजकल माँ बाप को खुद हो जाती है, क्या रहता है आपका?
2: मुझे याद है हमारे टाइम पे जब छात्र अध्यापक सम्मेलन होता था, अच्छा नाम था,
1: बड़ा अच्छा नाम लगता है,
2: तो हमारी बड़ी बैंड बजती थी।
1: हाँ, बहुत ज्यादा।
2: उस हिसाब से मैं देखता हूँ इनकी पीटीएम में दम नहीं लगता मुझे। बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं और बड़े सलीके से बताते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं, ये क्लास में बात करती है, ये भला करते हैं, ये डिमका करते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत झेलना होता है,

0: जाती और पापा और मामा देखते।
1: ये तो बहुत बड़ी प्रिविलेज है, आपको ही लगता?
2: हाँ।
1: बहुत बड़ी प्रिविलेज है, हमें तो नहीं मिली वाली प्रिविलेज के निकल जा रहे हैं उधर, बात चल रही है आराम से। बहुत अच्छा, ये एक एक आखिरी सवाल है मेरा, एक और अभी कल्चर शुरू हुआ है स्लीप ओवर्स का, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे?
2: मैं तो इसे किसी दूसरी दुनिया का शब्द मानता हूँ। अभी तक हमने इसमें
1: एक्सेप्ट नहीं कर सकते,
2: अभी तक हमने इसमें वेंचर नहीं किया, शायद ही हम इसमें वेंचर करें।
1: नहीं नहीं हो पाएगा हमसे।
2: नहीं, और दूसरी बात ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में दिन भर आप चाहे जहाँ भी घूमते रहे, नींद अपनी खटिया में ही आती है।
1: हाँ, ये तो अपने साथ है। होटल भी आपको
2: नींद नहीं आती, आपको लगता है वही चलो होना ठीक है अपना।
1: अच्छा, तुम दोनों के बच्चों क्या क्या सीन है, स्लीप ओवर का भी पिचिंग करी है घर?
3: एक्चुअली स्लीप ओवर का तो मैंने मूवीज में ही सुना है,
1: क्योंकि
3: हमारे हमारे घर में उसके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं होती और हम ज्यादा परस्यू भी नहीं करते उसको, मतलब मुझे भी ऐसा स्लीप ओवर का कॉन्सेप्ट इतना पसंद नहीं आता।
1: ओके, वेरी गुड।
3: लाइक अगर आप मुझे पूरे दिन मेरे दोस्त के घर छोड़ दो तो फिर मैं रात को घर आके सो लूंगी।
1: हां, नहीं सही है, सही है, सही है। चेतन, क्या क्या ख्याल है तुम्हारा?
0: सेम, बस चले जाओ वीकेंड पे उनके साथ, पूरे दिन खेलो, बट लाइक 9 o'clock या 10 o'clock तक वापस आ जाओ, उधर स्लीप ओवर नहीं करना।
1: अब 5 star देने पड़ेंगे आपको, क्या बात है अभी परवरिश में बैंग हो। तो ये आखिरी बात है अमित भाई, आप अपनी ही जनरेशन को क्या एडवाइस देंगे टू डील विद दिस जनरेशन, क्या एडवाइस है?
2: मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों के साथ ज्यादा ओपन होना चाहिए, छुपाना नहीं, साफ साफ बताना कि अपनी भी कमियां बतानी चाहिए कि हाँ हम गलत थे, हमने अपने जमाने में ये गलत किया।
1: हाँ।
2: तो बच्चों को समझ में आता है कि यार ये हमारे पेरेंट्स ये रास्ता जा चुके हैं,
1: क्योंकि हमने बहुत पहले होता ना कि परसीव इस तरह किया था कि हम बहुत बढ़िया काम करके आए हैं बेटा,
2: ये थोड़ा गलत तरीका है मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को बहुत महान बता देना थोड़ी गलती होती है। आप शुरू से अगर सच्चाई बताइए और अपनी कमियां और अच्छाइयां दोनों बताइए, और आप बताइए कि कमियों को दूर कैसे किया जाए, अच्छाइयों पे कैसे अमल किया जाए, तो मुझे लगता है बच्चे थोड़ा इधर उधर अगर बहकेंगे भी, लेकिन बाद में वो रास्ता सही तय करते हैं फिर वो।
1: नाइस, ओके। क्या एक्सपीरियंस है, कैसा लगा बच्चों को स्टूडियो में आके? चेतन, कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके बताओ?
0: इट्स वेरी कलरफुल, बहुत अच्छा है। आई मीन मैं ऐसा सेटअप पहली बार देख रहा हूँ।
1: हाँ, थैंक यू, एंड यू मोस्ट वेलकम, तुम कभी भी आ सकते हो। तो क्या कहना चाहते हो आप?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि लाइक द सेटअप इज सो कूल, और ऑनेस्टली मुझे ये प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी मुझे।
1: थैंक यू सो मच अमित भाई। क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे भाई?
2: मैं एक ही बात कहूंगा, सेटअप तो खैर बच्चों ने बोला, ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है,
1: जी,
2: बट क्या एनर्जी है यार, कमाल है यार। जिस तरीके से आपको मैं देखता हूँ, कुछ आरजे फ्रेंड्स को जानता हूँ, क्या एनर्जी अंदर से आती है। आप एक क्षण आप बैठे होंगे, आपको लगेगा सामान्य है, और दूसरे क्षण वो जो एनर्जी और जोश आता है काबिले तारीफ है,
1: है ना, वो हो जाता है। ये चार दीवारें बात करने का मजा ही कुछ और है, तुम दोनों इस करियर को भी देख सकते हो आज। नहीं, पर थैंक यू सो मच, मुझे दिल से बहुत मजा आया बात करके, बहुत अच्छी परवरिश करी है आपने माशाल्लाह इनकी। तो दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, तो ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। अस्सलाम।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और हमारा शो है हदीस टू हैबिट। और जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा शो है जो हम हर हफ्ते लेकर आते हैं और इस उम्मीद के साथ लेकर आते हैं कि इस शो में जो कुछ भी हमारी बातें होंगी उसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर करेंगे। तो आज भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तहारत यानी सफाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम रोजाना अपनी जिंदगी में देखते हैं लेकिन अक्सर इसकी असल अहमियत को महसूस नहीं करते। इस्लाम में सफाई सिर्फ एक आदत नहीं, सिर्फ अच्छी अपीयरेंस नहीं, बल्कि ये ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी आधा ईमान है। सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को ईमान के साथ जोड़ा। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान की जिंदगी में सफाई सिर्फ ऑप्शनल चीज नहीं बल्कि उसकी शख्सियत, इबादत, इखलाक और रूहानियत का हिस्सा है। आज की दुनिया में हम सब बहुत मसरूफ हैं। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को स्टडीज की, किसी को घर की जिम्मेदारियां हैं, किसी को फ्यूचर की फिक्र है। इतनी मसरूफियत में अक्सर इंसान का कमरा बिखड़ जाता है, डेस्क गंदा हो जाता है, कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं और कभी कभी दिल भी वैसा ही बिखरा हुआ महसूस होने लगता है। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपका कमरा साफ होता है, बेड तरतीब से लगा होता है, मेज ऑर्गेनाइज्ड होती है तो दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जब इर्द गिर्द गंदगी या बिखराव हो तो इंसान जल्दी इरिटेट होता है, गुस्सा बढ़ता है, दिल बेसुकून रहता है। इस्लाम चूंकि फितरत का दीन है इसलिए उसने इंसान के इनर पीस को भी अहमियत दी है और यही वजह है कि दीन हमें जिस्म की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई, हत्ता के रास्तों की सफाई तक सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो हर जगह हमें सफाई का एहतमाम नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू पसंद फरमाते थे, मिसवाक किया करते थे, साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, वजू पूरी तवज्जो के साथ करते थे। यहां तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाने को भी सदका फरमाया। जरा सोचिए, हम अक्सर इबादत को सिर्फ नमाज, रोजा या कुरान तक महदूद समझ लेते हैं लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि अगर आप अल्लाह की रजा की नियत से अपने घर को साफ करते हैं, अपने कपड़े साफ रखते हैं या अपने वर्क प्लेस को टाइडी करते हैं तो ये भी इबादत बन सकती है। आज एक और मसला ये है कि हमारी जिंदगियों में सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं बल्कि डिजिटल क्लटर भी बहुत बढ़ गया है। मोबाइल में बेशुमार गैर जरूरी यूजलेस एप्स, पिक्चर्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया का शोर, ये सब इंसान के जहन को थका देता है। इंसान जिस्मानी तौर पर भी टायर्ड होता है और मेंटली भी एग्जॉस्टेड फील करता है। इसीलिए सफाई सिर्फ झाड़ू लगाने का काम नहीं, ये अपने माहौल को पुरसुकून बनाने का काम है, अपने दिल को हल्का करने का नाम है। अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन देने का नाम है। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि मेरे पास वक्त नहीं है सफाई के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि जब माहौल साफ हो तो वक्त बचता है, चीजें जल्दी मिलती हैं, जहन बेहतर काम करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सबसे बढ़कर घर में सुकून आता है। हमारे घरों में कई दफा अननेसेसरी आर्गुमेंट्स भी सिर्फ बेतरतीबी की वजह से होते हैं। चीजें अपनी जगह ना होना, सफाई ना होना, माहौल का बोझल होना, ये सब इंसान के मिजाज पर असर डालते हैं। लेकिन जब घर साफ हो, खुशबू हो, तरतीब हो, तो दिल भी नरम होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है। सफाई का मतलब परफेक्शन नहीं। ऐसा नहीं कि घर हमेशा मैगजीन्स की तरह लगे, बल्कि असल मकसद कंसिस्टेंसी है। रोज थोड़ा सा एहतमाम, रोज छोटे छोटे क्लीन हैबिट, यही हैबिट्स आहिस्ता आहिस्ता शख्सियत बन जाती हैं। लिसनर्स, इस हफ्ते हम सिर्फ क्लीनिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम सफाई को एक रूहानी हैबिट बनाएंगे। जब आप वजू करेंगे तो ये सोचेंगे कि सिर्फ चेहरा नहीं धुल रहा, बल्कि दिल भी नरम हो रहा है। जब आप अपना कमरा साफ करेंगे तो नियत करेंगे कि या अल्लाह, मैं अपने माहौल को बेहतर बना रहा हूँ ताकि मेरा दिल भी सुकून में रहे। और याद रखें, अल्लाह पाक खूबसूरती और पाकीज़गी को पसंद फरमाते हैं। एक साफ इंसान, एक साफ घर, एक साफ दिल, ये सब अल्लाह के करीब ले जाने वाली चीजें हैं। तो आइए आज से हम सफाई को बर्डन नहीं बल्कि ब्लेसिंग समझते हैं। इसे सिर्फ हाउस होल्ड चोर नहीं बल्कि सुन्ना समझते हैं और छोटे छोटे अमाल के जरिए अपने जिंदगी में सुकून, डिसिप्लिन और बरकत पैदा करते हैं। हमारे साथ रहिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन खूबसूरत अहादीस की जो हमें तहारत और पाकीज़गी की असल रूह सिखाती हैं। लिसनर्स, हदीस टू हैबिट के इस खूबसूरत सफर में

अब वक्त है हमारे आज के मौजू की बुनियाद को समझने का, यानी वो अहादीस जिनसे हमें सफाई और तहारत की असल अहमियत मालूम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी आधा ईमान है। ये हदीस, इसके अंदर बहुत ही गहरा पैगाम मौजूद है। जरा गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को आधा ईमान फरमाया। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में ईमान सिर्फ दिल के अकीदे का नाम नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी, आदतों और रोजमर्रा के अंदाज से भी जाहिर होता है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान की पूरी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। यही वजह है कि इस्लाम ने इबादात के साथ साथ सफाई, तरतीब, खुशबू और पाकीज़गी को भी अहमियत दी। जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं और पहले वजू करते हैं, अगर जिस्म या कपड़े नापाक हों तो नमाज दुरुस्त नहीं होती। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा जाहिरी और बातनी दोनों तरह पाक होकर उसके सामने खड़ा हो। वजू सिर्फ हाथ धोने का नाम नहीं, ये रूहानी ताजगी भी देता है। जब इंसान थका हुआ हो, परेशान हो, जहनी दबाव में हो, तो ठंडे पानी से वजू दिल को सुकून देता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि वजू के बाद दिल हल्का महसूस होता है। ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सफाई का बेहद एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े साफ होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू पसंद फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को भी सफाई की तलकीन करते थे। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद फरमाता है, अल्लाह साफ है और सफाई को पसंद फरमाता है। जरा इस हदीस की खूबसूरती देखिए, अल्लाह ताला खुद पाक है और वो अपने बंदों में भी पाकीज़गी पसंद फरमाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम सफाई इख्तियार करते हैं तो हम अल्लाह की पसंदीदा सिफत को अपनी जिंदगी में ला रहे होते हैं। इस्लाम में तहारत सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं, दिल की सफाई भी जरूरी है। हसद, नफरत, तकब्बुर, झूठ और बुग़्ज़, ये दिल की गंदगी है। जैसे जिस्म की गंदगी पानी से साफ होती है, वैसे ही दिल की गंदगी जिक्र, दुआ, तौबा और अच्छे अखलाक से साफ होती है। इसीलिए एक मुसलमान की शख्सियत बैलेंस्ड होती है। वो अपने जिस्म को भी साफ रखता है, अपने कपड़ों को भी, अपने घर को भी और अपने दिल को भी। आज के दौर में एक बड़ा मसला ये है कि लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। सुबह जल्दी उठना, स्कूल या ऑफिस जाना, वापस आकर काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असाइनमेंट्स, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों ने जिंदगी को बहुत हैक्टिक बना दिया है। और जब इंसान थक जाता है तो सबसे पहले उसकी जिंदगी में बेतरतीबी आती है। कभी कमरा बिखर जाता है, कभी कपड़े जमा हो जाते हैं, कभी वर्क प्लेस मैसी हो जाता है, कभी दिल इतना थक जाता है कि इंसान खुद को भी इग्नोर करने लगता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सफाई सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। एक साफ माहौल इंसान के मूड, जहन और रूह पर मुस्बत असर डालता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप नमाज के लिए साफ कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, जायनमाज साफ होती है तो नमाज में दिल ज्यादा लगता है, क्योंकि सफाई इबादत की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ जाती सफाई सिखाते थे बल्कि इज्तिमाई सफाई पर भी जोर दिया। रास्ते से तकलीफ

0: करता है तो उसकी शख्सियत मजबूत बनती है। यही डिसिप्लिन बाद में इबादत, पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामलात में भी मदद देता है। लिसनर्स, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सफाई का ताल्लुक सिर्फ अपीयरेंस से नहीं। बाज लोग बाहर से बहुत नीट एंड क्लीन लगते हैं लेकिन जबान सख्त होती है, दिल में नफरत होती है या दूसरों के लिए तकलीफ का सबब बनते हैं। इस्लाम ऐसी सफाई नहीं चाहता जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। असल पाकीज़गी वो है जो इंसान के जाहिर और बातिन दोनों में हो। चेहरा भी साफ हो, दिल भी साफ हो, घर भी साफ हो, नीयत भी साफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ह्यूमिलिटी भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में मदद करते थे, अपने कपड़ों की मुरम्मत भी कर लेते थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सफाई और घर के काम किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आज अगर हम अपने बच्चों को सफाई सिखाएं, उन्हें छोटे छोटे कामों में शामिल करें और सफाई को पनिशमेंट के बजाय सुन्नत के तौर पर इंट्रोड्यूस करें तो उनकी शख्सियत भी बेहतर बन सकती है। याद रखें, अल्लाह ताला नियत देखते हैं। अगर आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपना माहौल बेहतर बनाते हैं तो एक आम सा काम भी इबादत बन सकता है। तो इस हफ्ते जब आप वजू करें, अपना कमरा साफ करें या कोई बेतरतीबी दूर करें तो ये ना सोचें कि मैं सिर्फ क्लीनिंग कर रहा हूँ बल्कि ये सोचें कि मैं एक सुन्ना को अपनी जिंदगी में ला रहा हूँ, मैं अपने ईमान को मजबूत कर रहा हूँ और शायद यही छोटी छोटी आदतें हमें अल्लाह के करीब ले जाएं।
1: आप सुन रहे हैं हदीथ टू हैबिट,
2: हदीथ टू हैबिट
1: आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: लिसनर्स, अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका हम सबको इंतजार होता है, यानी हैबिट प्लान। क्योंकि सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, असल तब्दीली तब आती है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इस्लाम हमें हमेशा अमल की तरफ ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि छोटे छोटे अमाल अगर मुस्तकिल हों तो वो इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। इसीलिए आज हम सफाई को एक आसान, काबिल अमल और खूबसूरत रूटीन में ढालेंगे। ये हैबिट प्लान इस तरह से हम शेयर करेंगे कि चाहे स्टूडेंट हो, घर में रहते हो या काम करते हो, सभी इस पर आसानी से अमल कर सकें। आप अपने आप से आगाज करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी नीयत साफ करें। दिल में ये सोचें, या अल्लाह, मैं आज अपनी सफाई को तेरे लिए बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अच्छी तरह वजू करें, ब्रश करें, साफ कपड़े पहने, अपने बेड को सही करें। ये बहुत छोटे काम हैं, लेकिन दिन का आगाज खूबसूरत बना देते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका मूड बेहतर हो गया है और आप ज्यादा फोकस्ड हैं। पूरा घर साफ करने की जरूरत नहीं, इब्तिदा में एक छोटा सा हिस्सा मुंतखब करें। अपनी टेबल, एक शेल्फ, एक ड्रॉअर या कमरे का कोई कोना। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगाएं, चीजों को तरतीब दें, गैर जरूरी चीजें अलग करें और जगह को साफ कर दें। ये छोटा सा अमल आपके जहन पर भी बड़ा असर डालेगा क्योंकि जब बाहर का माहौल साफ होता है तो अंदर का जहन भी क्लियरर महसूस करता है। अब अपनी स्टडी टेबल या वर्क प्लेस को साफ करें, कागजात तरतीब दें, बुक्स, नोट्स, पेन वगैरह अपनी जगह पर रखें और साथ ही साथ अपने मोबाइल के गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को भी बंद कर दें। डेस्क और स्क्रीन को साफ करें। ये अमल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपको काम आसान लगने लगेगा और जहन बिखरने के बजाय फोकस में आएगा। अब सफाई को अब अकेले नहीं बल्कि फैमिली एक्टिविटी के तौर पे करें। किसी एक काम में घर वालों को शामिल करें, साथ मिलके कमरे तरतीब दें, बच्चों को छोटे काम दें, हल्की सी सफाई को टीम वर्क बनाएं। इस्लाम हमें इज्तमाईयत सिखाता है।

तब घर के लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो ना सिर्फ घर साफ होता है बल्कि दिल भी करीब आते हैं। अब अगला दिन कम करने का दिन है। पुराने या गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े अलग कर दें, टूटी हुई या गैर जरूरी चीजें हटा दें, मोबाइल से गैर जरूरी फाइल्स डिलीट करें, सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल कम करें। यह अमल आपकी जिंदगी को हल्का करेगा क्योंकि क्लटर सिर्फ घर में नहीं होता बल्कि जहन में भी होता है। अब एक सिंपल रूटीन बनाएं, सुबह उठते ही बेड को सही करना है, दिन में चीजों को अपनी जगह पे रखना है और शाम में क्विक क्लीनिंग कर लेनी है चाहे 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, और सोने से पहले भी घर को थोड़ा सा टाइडी करना है। ये कोई सख्त रूल नहीं बल्कि एक नरम सी आदत है, आप इसे जारी रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफाई नहीं करना पड़ेगी। अब अपने आप से सवाल करें, क्या मेरी जिंदगी पहले से साफ और मुनज्जम हुई है? क्या मुझे ज़हनी सुकून महसूस हुआ है? क्या मेरी नमाज में तवज्जो बेहतर हुई है? क्या मेरे घर का माहौल बेहतर हुआ है? ये सोचें कि सफाई सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक एहसास है सुकून का, क्लैरिटी का और डिसिप्लिन का। और फिर फैसला करें कि मैं इस हैबिट को सिर्फ एक हफ्ते तक जारी नहीं रखूंगा बल्कि मैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूंगा। एक छोटा सा मशवरा भी है, हर दिन सिर्फ परफेक्शन का मकसद ना रखें, मकसद ये हो कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट रोज हो, क्योंकि असल कामयाबी है कंसिस्टेंसी। तो लिस्टर्स, अगर आप इस 7 दिन के हैबिट पर अमल कर लें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा पीसफुल और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप सफाई अल्लाह की रजा के लिए करते हैं तो ये सिर्फ आदत नहीं रहती बल्कि इबादत बन जाती है। लिसनर्स, आज के एपिसोड में हमने सफाई और तहारत के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन अक्सर लोगों के जहन में कुछ सवालात और गलत फहमियां भी होती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि सफाई सिर्फ इस वक्त होती है जब घर साफ हो, कपड़े धुले हो या चीजें तरतीब में हो, लेकिन इस्लाम हमें इससे ज्यादा गहरा तसव्वुर देता है। सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती बल्कि अंदर की भी होती है, यानी दिल की सफाई, नियत की सफाई, जबान की सफाई, सोच की सफाई। अगर इंसान का घर साफ हो लेकिन दिल में हसद, गुस्सा या तकब्बुर हो तो मुकम्मल सफाई नहीं। इसीलिए हमें दोनों तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जाहिर भी और बातिन भी। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है सफाई करने का, लेकिन हकीकत यह है कि सफाई हमेशा बहुत सारे वक्त की मोहताज नहीं होती। असल चीज कंसिस्टेंसी है। आप सिर्फ 5 मिनट में अपना बेड सही कर सकते हैं, 10 मिनट में टेबल साफ कर सकते हैं, 2 मिनट में चीजें अपनी जगह पर रख सकते हैं। ये छोटे छोटे काम जमा होकर बहुत ज्यादा लगते हैं। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि छोटे अमल अगर मुस्तकिल हो तो बड़ी इबादत बन जाते हैं। तीसरी गलतफहमी यह है कि सफाई सिर्फ खवातीन या किसी एक शख्स की जिम्मेदारी है। ये सोच बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इस्लाम में सफाई एक इज्तमाई जिम्मेदारी है। हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने हिस्से का माहौल साफ रखे। बच्चे अपने खिलौने संभाल सकते हैं और यंग लोग अपना स्टडी एरिया साफ कर सकते हैं। मर्द और औरत दोनों घर के कामों में हिस्सा ले सकते हैं। सब मिलकर घर को खूबसूरत बना सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर के कामों में मदद फरमाते थे, इसलिए कहना दुरुस्त नहीं कि किसी एक शख्स की जिम्मेदारी होती है सफाई। चौथी गलतफहमी यह है कि सफाई सिर्फ घर तक महदूद है। सफाई सिर्फ घर की नहीं होती, इस्लाम हमें एक वसी सोच देता है। सफाई में शामिल है घर, आपका अपना जिस्म, कपड़े, रास्ते, मस्जिद, वर्कप्लेस, इवन के आपका फोन एनवायरनमेंट भी। आज के दौर में हमारा मोबाइल भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर इसमें बेतरतीब फाइल्स, गैर जरूरी एप्स और मुसलसल नोटिफिकेशन हो तो वो भी जहनी बोझ बन जाते हैं, इसीलिए डिजिटल सफाई भी जरूरी है। अब हम कुछ

बहुत आसान टिप्स देखते हैं जो आप फौरन से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले 1 मिनट रूल। अगर कोई काम 1 मिनट में हो सकता है तो उसे फौरन कर दें, मसलन कपड़े रखना, चीज उठाना या कचरा फेंकना। फिर नंबर 2, नो क्लटर जोन। अपने कमरे में एक ऐसी जगह बनाएं जो हमेशा साफ रहे, ये आपको मोटिवेशन देगी। रात का 10 मिनट का रूटीन। सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने कमरे को तरतीब में लेकर आए, अगले दिन की तैयारी करें। और फिर हफ्तावार डीक्लटर। हफ्ते में सिर्फ एक दिन आप गैर जरूरी चीजें जो इधर उधर पड़ी होती हैं वो हटाएं, जगह पे रखें। और हर सफाई से पहले दिल में कहें, या अल्लाह मैं ये काम तेरे लिए कर रहा हूं। ये नियत आम काम को इबादत बना देती है। रिसर्च एक बहुत अहम बात यह है कि सफाई सिर्फ जिस्मानी फायदा नहीं देती बल्कि जहनी सुकून भी देती है। जब जगह साफ होती है, जहन हल्का होता है, परेशानी कम महसूस होती है, कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होती है, इबादत में दिल लगता है। और जब जगह बिखरी हुई हो तो जहन भी बिखर जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसलिए सफाई को सिर्फ काम ना समझें बल्कि इसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट समझें। जरा सोचें, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और वो साफ, खुशबूदार और मुनज्जम माहौल देखे तो क्या महसूस करेगा? वो जरूर आपकी तारीफ करेगा, लेकिन इससे भी बढ़कर आप खुद अंदर से सुकून महसूस करेंगे। और यही एहसास हमें अल्लाह के करीब ले जाता है, क्योंकि अल्लाह पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। लिस्टर्स, सफाई को कभी भी बोझ ना समझें। ये ना सोचें कि मुझे फिर से सफाई करनी है, बल्कि ये सोचें कि मैं अपने माहौल को बेहतर बना रहा हूँ या बना रही हूँ, अपने दिल को हल्का कर रहा हूँ, अपने रब की पसंद को अपना रहा हूँ। ये छोटी छोटी आदतें वक्त के साथ बड़ी तब्दीली बन जाती हैं। लिसनर्स, अब हम शो के बिल्कुल आखिर की तरफ हैं, लेकिन इससे पहले कि हम शो को एंड करें, हमें याद रखना है कि ये इख्तिताम नहीं बल्कि ये तो असल में एक शुरुआत है। आज हमने सीखा कि सफाई सिर्फ जिस्म या घर तक महदूद नहीं, ये दिल की, नियत की, सोच की और जिंदगी की सफाई भी है। और जब एक मुसलमान अपनी जिंदगी में सफाई को शामिल करता है तो वो ना सिर्फ अपने माहौल को बेहतर बनाता है बल्कि अपने ईमान को भी निखारता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम साफ रहते हैं तो हम अल्लाह की पसंदीदा आदत को अपनाते हैं। और ये बात कितनी खूबसूरत है कि एक आम सा अमल जैसे कमरा साफ करना, कपड़े तरतीब से रखना, वजू करना अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बन सकता है। लिसनर्स, कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी इबादतें ही अहम हैं, लेकिन देखिए हकीकत यह है कि छोटी छोटी आदतें भी हमारी शख्सियत बनाती हैं, हमें अल्लाह के करीब करने में मदद देती हैं। और सफाई इन्हीं छोटी आदतों में से एक है जो दिल को भी नरम करती है और घर को भी खूबसूरत बनाती है और जिंदगी को भी आसान करती है। अगर आज आपने इस एपिसोड से सिर्फ एक बात भी सीख ली तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें, क्योंकि इल्म फायदा तब देता है जब वो अमल में बदल जाए। तो यकीनन हमें अपने घरों को साफ रखना है। कोशिश कीजिए कि चाहे आपका किचन हो, चाहे आपका बेडरूम हो, आपका लाउंज हो, आपके वॉशरूम्स हो, हर जगह साफ सुथरी रहे। और जैसे कि मैंने शो में पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करूंगी कि जब आप अपना घर साफ करेंगे, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपको अच्छा महसूस होगा बल्कि ये आपके लिए एक बहुत ही जहनी तौर पर आसूदगी का जरिया भी बनेगा। इसी के साथ एक बात और याद रखनी है। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपना घर तो साफ कर लेते हैं लेकिन अपने घर के सामने की जगह गंदी कर देते हैं, या अपना कचरा कहीं इधर उधर किसी दूसरे के दरवाजे पर रख देते हैं, उसे प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जहां हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं वहीं

0: अपने इर्द गिर्द के माहौल की भी सफाई करें। कहीं पे भी बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, तो आप जो भी कोई रैपर्स हैं आपके पास, खाने पीने की चीजें हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीजों को प्रॉपरली डिस्पोज करें। जो उनके लिए जगह बनी हुई है, प्रॉपरली डस्टबिन हैं, उनका इस्तेमाल करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें। आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो जाहिरी और बातनी दोनों तरह से पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को हसद, गुस्से और बुग़्ज़ से पाक फरमा और हमें नरम दिल और मेहरबान बना। या अल्लाह हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और बरकत से भर दे, हमारे माहौल को साफ, हमारे जहनों को पुरसकून और हमारी नियतों को खालिस बना दे। या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, खास तौर पर सफाई, तहारत और अच्छे अखलाक की सुन्नतों पर। या अल्लाह हमें सुस्ती, गफलत और बेतरतीबी से बचा और हमें मुनज्जम, डिसिप्लिन्ड और जिम्मेदार इंसान बना। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा और हमारे अमाल को बेहतर बना और हमारी जिंदगी को अपने जिक्र से रोशन फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो लिसनर्स, हदीस टू हैबिट के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सफाई और तहारत की खूबसूरत याद दहानी पसंद आई होगी। इस हफ्ते कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में छोटे छोटे क्लीन हैबिट जरूर शामिल करें और हमें बताएं कि आपने क्या तब्दीली महसूस की। हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ये पैगाम जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका है। मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हम भी वो हैं जो कभी

0: FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है. MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर. डोंट मिस इट.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

कर दिया, जिसके बदौलत उनके जन्नत मिसाल बागात बर्बाद हो गए और उनकी जगह जंगली बेरियां, खारदार दरख्त और बेलों के दरख्त उग कर ये शहादत और देने और इबरत की कहानी सुनाने लगे कि खुदा की नाफरमानी और सरकशी करने वाली अक़वाम का यही हशर होता है। पहली सजा तो ये थी कि वो बंद जिसकी तामीर पर उनको बेहद नाज था और जिसकी बदौलत उनके दार हुकूमत के दोनों जानिब 300 मुरब्बा मील तक खूबसूरत और हसीन बागात और सरसब्जो शादाब खेतों और फसलों से यमन गुलजार बना हुआ था, वो खुदा के हुक्म से टूट गया और अचानक उसका पानी जबरदस्त सैलाब बना हुआ वादी में फैल गया और मारब और इस तमाम हिस्से जमीन पर जिनमें ये फरहत बख्श बागात थे छा गया और उन सबको गर्क आब करके बर्बाद कर डाला। और जब पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो गया तो उस पूरे इलाके में बागों की जन्नत की जगह पहाड़ों के दोनों किनारों से वादी के दोनों जानिब जंगली बेरों के झांडों और उन पेलों के दरख्तों ने ले ली जिनका फल बद जायका और बेमजा होता है। खुदा के इस अजाब को अहले मारब और कौम सजा की कोई कुव्वत और सतवत न रोक सकी और बंद बांधने में इंजीनियरी और इल्म हंदसा की महारत फन का जो सबूत उन्होंने दिया था वो उसकी शिकस्तगी के वक्त सब नाकारा होकर रह गया और अहले सभा के लिए उसके सिवा कोई चारा कार बाकी न रहा कि अपने वतन मालूफ और बल्दे तैयबा मारब को छोड़कर मुंतशिर हो जाए। कुरान अजीज ने इसी इबरतनाक वाक़े को बयान करके इबरत निगाह और बेदार कल्ब इंसान को नसीहत का ये सबक सुनाया है। فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدل

हमारे सफरों मंजिलों के दरमियान दूरी कर दे। और ये कहकर उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। बस हमने उनको कहानी बना दिया और उनको पारा पारा कर दिया। बिलाशुबा इस वाकये में इबरत की निशानियां हैं साबिर और शुक्रगुजार बंदों के लिए। कुरान अजीज ने जब अहले अरब को सबा और सैल अरब का ये वाकया सुनाया तो उस वक्त यमन का हर मुतनफ़िस उस हकीकत का बचश्मे खुद मुशाहदा कर रहा था और वो तमाम ख़ानदान भी जो हिजाज शाम उमान बहरीन नजद में उस हादसे की बदौलत पनाह गुजीन हो गए थे अपने आबा अजदाद के इस मरकज़ की हालत ज़ार को देख और सुन रहे थे। हत्ता कि हमदानी जो कि 4वीं सदी हिजरी का सियाह मुअर्रिख है अपनी किताब इकलील में यमन के इस हिस्से के मुतालिक अपनी आईनी शहादत पेश करता है कि कुरान ने जन्नतान आईन यमीन व शिमाल कहकर जिन बागों का जिक्र किया है बिलाशुबा आज उनकी जगह इस कदर कसरत से पीलों के दरख्त मौजूद हैं कि उनकी कसरत के साथ और कहीं नहीं पाए जाते और उन्हीं दरख्तों के साथ झाओ और कहीं कहीं जंगली बेर के दरख्त भी नजर आते हैं। सामिन इस वाक़े के असबाक़ के हवाले से उलमा इकराम फरमाते हैं कि कौम सबा का किस्सा शुक्र और नाशुक्री के दरमियान तवाज़ुन का आयना है। इब्ने कसीर कहते हैं ये वाक़ा मक्के के लोगों के लिए तंबीह था कि अगर तुम भी नाशुक्री करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी कौम सबा जैसा होगा। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं अल्लाह ताला ने कौम सबा को नियमतें दी ताकि वह शुक्रगुजार बने मगर उन्होंने उन नियमतों को अपनी ताकत समझा और मौजूदी के मुताबिक ये एक तारीखी हकीकत है। एक ऐसी कौम जो तजारती लिहाज से मजबूत साइंसी लिहाज से तरक्की याफ्ता थी लेकिन रूहानियत से खाली हो गई तो जवाल उनका मुकद्दर बन गया। तो सरज़मीन आज के प्रोग्राम में हमने कौम सबा का वाकया सुना एक ऐसी कौम जो शुक्र भूल गई और अपनी खुशहाली में गुम हो गई। ये किस्सा हमें ये वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया की दौलत आसाइश और कामयाबी सब आरजी है मगर ईमान और शुक्र हमेशा के लिए सुकून और बरकत का जरिया है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो हर हाल में शुक्रगुजार रहते हैं और अपनी नेमतों को नेकी के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम कससुल कुरान के आज के इस हलके से नदीम अंसारी और तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। मा सलामा फी अमानिल्लाह।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना।

0: 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी. बंधन

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

وَأَنْتَ